पूरी एक प्रक्रिया करने के बाद में आप अंत में शवासन जरूर करें। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि नित सवेरे आकर के योग की योग पाठशाला में 30 दिवसीय योग शिविर में आप रोज योग आसन प्राणायाम करते होंगे और साथ ही साथ योग आसन प्राणायाम के साथ एक नए शब्द की उत्पत्ति, जो हम एक नए आसन प्राणायाम के साथ कर रहे हैं, उसका भी आप लाभ उठा रहे होंगे। नए शब्द की उत्पत्ति एक नए आसन के साथ, प्राणायाम के साथ इसलिए की जा रही है क्योंकि हर एक शब्द का अपने आप में कुछ न कुछ महत्व है। देखा जाए तो हम हर एक शब्द के बारे में इतना विस्तार से जानते जा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमें लगता था कि केवल आसन, प्राणायाम, कसरत ये सारे ही अपने आप में पर्याप्त हैं। लेकिन अगर हम किसी भी आसन प्राणायाम को एक शब्द के साथ जोड़ करके कर देते हैं तो उसका महत्व अपने आप में एक विस्तार और विस्तृत सा हो जाता है। तो आइए हर बार की तरीके से, हर रोज की तरीके से, हर आसन के साथ एक नए शब्द की उत्पत्ति जो हम कर रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं लक्ष्य चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार का जो लक्ष्य है हम आज आपको बताएंगे। योग की भाषा में अगर हम जाने कि योग क्या है, योग का मतलब होता है जोड़ना। जिस तरीके से गणितज्ञ लोग दो और दो का अर्थ बताते हैं जोड़, यानी दो और दो का अर्थ हुआ चार, ठीक उसी तरीके से योग की भाषा में भी हम एक दूसरे को जोड़ना, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को आसन के साथ जोड़ना, इसी मुहिम में एक नए शब्द की उत्पत्ति को आसन के साथ किस तरीके से जोड़ना, उस आसन की उपयोगिता बताना, उस आसन के बारे में विस्तार से जानने को ही योग कहते हैं। आज जैसा कि हम बताने जा रहे हैं लक्ष्य चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार के बारे में हमने पहले भी आपको बहुत सारी सीरीज में समझाया है और हम सभी लोगों ने मिलकर के किया है, लेकिन

चंद्र नमस्कार, लक्ष्य चंद्र नमस्कार क्यों है? आज की सीरीज में, आज के योग शिविर में हम आपको बताने वाले हैं। चंद्र नमस्कार अपने आप में एक संपूर्ण आसन है, जिसमें 12 से लेकर के आसनों में हर एक आसन की अपनी अपनी उपयोगिता बताई गई है। जिस तरीके से सूर्य नमस्कार जब हम 12 आसनों से करते हैं, हर एक आसन को हम जिस तरीके से बहुत ही तल्लीनता से हर एक शरीर के अंग को अलग अलग प्रकार से मोड़ना और उसके बारे में जानकारी करते हुए प्राणायाम करना, ठीक उसी तरीके से चंद्र नमस्कार भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले आइए हम जानते हैं कि चंद्र नमस्कार लक्ष्य चंद्र नमस्कार क्यों है। अन्य उपयोगियों के लिए लक्ष्य बहुविकल्पी है। लक्ष्य उद्देश्य, भविष्य या वांछित परिणाम एक विचार है जिसे एक व्यक्ति या लोगों का समूह कल्पना करता है, योजना बनाता है, प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होता है। लोग समय सीमा निर्धारित करते समय सीमित समय के भीतर लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और इसीलिए आज जो हम लक्ष्य को चंद्र नमस्कार के साथ जोड़ करके आपको करवाने जा रहे हैं, हम सभी मिलकर के करने वाले हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि हमें स्वस्थ रहना है और हमें आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखना है। लक्ष्य सही मायने में एक संकल्प है जो हमें गतिशील रखने के लिए ऊर्जा देता है, बाधाओं से लड़ने का साहस प्रदान करता है और उन सब अवरोधों को हटाने के लिए उसका सामना करने में सक्षम बनाता है। लक्ष्य प्राप्ति के बीच में आने वाले जितने भी अवरोधक होते हैं उसे आसन द्वारा, प्राणायाम द्वारा, कसरत द्वारा ही हम उसे पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि लक्ष्य का सही अर्थ मायने में क्या होता है। इरादा, अभिप्राय, उद्देश्य, अंत वस्तु, लक्ष्य का मतलब कोई पूरा करने वाला लक्ष्य जिसे हम पूरा कर सकते हैं। तो आइए, लक्ष्य के बारे में हमने आपको बताया कि जिस तरीके से हमारे लिए हर एक लोग के लिए, हर एक व्यवसाय के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए, हर एक महिला के लिए कुछ न कुछ अपने जीवन का लक्ष्य होता है। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य होता है कि हम पढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कुछ बन जाएं। महिलाओं का लक्ष्य होता है कि हम अपने घर को किस तरीके सुव्यवस्थित रखें और अपने परिवार को किस तरीके से सुख और शांति प्रदान करें। ठीक उसी तरीके से पुरुषों का लक्ष्य होता है अपने व्यवसाय को लेकर के। तो इसी तरीके से हर वर्ग के लिए कोई न कोई लक्ष्य निश्चित है। और अब संपूर्ण लक्ष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि सभी वर्ग लोगों के लिए एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जो कि है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है, ये सभी को पता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये आप स्वयं भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है तो हमारे लिए रखी गई तमाम वस्तुएं बेकार है। हम सभी का एक उद्देश्य मात्र लक्ष्य होना चाहिए कि सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हमारा स्वास्थ्य किस तरीके से ठीक हो सकता है। यदि हमें उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत भी करनी पड़े तो हमें उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आइए आज कुछ ही क्षणों में हम सभी मिलकर के एक छोटी सी चीज को, यानी एक छोटे से आसन को जब हम साथ में करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिना खर्चे के, थोड़े से परिश्रम से हमारा स्वास्थ्य जिस चीज से ठीक हो सकता है वह क्या है। तो हम सभी मिलकर के चंद्र नमस्कार करने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग खुद को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए एक्सरसाइज, आसन, योग की सहारा ले रहे हैं। योग ही सबसे अच्छी बात ये है कि इसे करने के लिए किसी तरह से जो भी हम एब्लिमेंट्स की जरूरत नहीं होती है और इसे आप करने के लिए घर के अंदर ही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। योग के सबसे प्रचलित आसनों में से एक है सूर्य नमस्कार और साथ में है चंद्र नमस्कार, जो कि आज हम आप सबके साथ में करने जा रहे हैं। चंद्र नमस्कार में भी 12 आसन हैं, यह आप सभी जानते हैं। चंद्र नमस्कार में 12 आसनों में सबसे पहला आसन है नमस्कार, यानी कि पहला पोज नमस्कार। सबसे पहला है चंद्र नमस्कार में, सबसे पहला जो कि हम सभी मिलकर के करते हैं, जो है नमस्कार पोजीशन।
नमस्कार पोजीशन में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक अद्भुत सी शक्ति का प्रयास होने लगता है। प्राणासन की मुद्रा में खड़े होकर के गर्दन को सीधा रखते हुए प्रार्थना या प्राणायाम की मुद्रा में आएं। हाथों को पीछे ढकेलकर सीधे पीछे की ओर झुकें और श्वास लेते हुए हाथों को आगे और ऊपर लाएं। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। और अब चंद्र नमस्कार के बारे में हम जानेंगे और भी तरीके। यानी कि सबसे पहला हम इसमें बता दें आपको, प्राणासन, हस्त उत्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन, अर्ध चंद्रासन, संतुलासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, अर्धोमुख शवासन। ये 9 ऐसे हैं जिसे हम रिपीट करेंगे। उसके बाद है अश्व संचालन, अर्ध चंद्रासन और उसके बाद प्राणासन। ये जो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको, यह है चंद्र नमस्कार का अभ्यास। सबसे पहले प्राणासन की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। गर्दन को सीधा रखते हुए प्रार्थना या प्रणाम की मुद्रा में आएं। हाथों को पीछे ढकेलकर पीछे की ओर झुकें और श्वास लेते हुए हाथों को आगे और ऊपर लाएं। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। हाथों को फर्श पर रखें, घुटनों को मोड़ें और उसके बाद फर्श पर हाथों के साथ घुटनों को सीधा रखें। दाएं पैर को जितना संभव हो सके उतना पीछे ढकेलें। फर्श पर दाहिने घुटने को छुआते हुए ऊपर देखें। श्वास रोककर बाएं पैर को पीछे ढकेलें। घुटने को सीधा रखते हुए शरीर को एक सीधा आकार में हम कर सकते हैं। चंद्र नमस्कार से जुड़ी सावधानियां। चंद्र नमस्कार का अभ्यास करते समय आपको समय का सही ध्यान रखना चाहिए। इस योगासन का अभ्यास रात के समय में नहीं करना चाहिए या मना किया जाता है। चंद्र नमस्कार का अभ्यास सवेरे ही करना ज्यादा लाभकारी होता है। इस योगासन का अभ्यास आप सभी लोग सुबह के साथ में कर सकते हैं और जितना हो सके एकांत और स्वच्छ वातावरण में करें, इसका लाभ आपको दुगना मिल सकता है। सावधानियों के साथ में आज हम लोगों ने मिलकर के चंद्र नमस्कार के बारे में जाना, यानी कि लक्ष्य चंद्र नमस्कार के बारे में जाना। तो इस तरीके से हम कल फिर एक नए शब्द के साथ, एक नए आसन की शब्द की उत्पत्ति के साथ हम मिलेंगे। लेकिन अभी हम लोग लक्ष्य चंद्र नमस्कार के बाद में 10 से 15 मिनट का ध्यान, जो कि योग आसन के बाद बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए हम सभी मिलकर के ध्यान योग करते हैं और फिर हम कल मिलेंगे एक नए आसन, एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हम हमेशा से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते आते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो योग अभ्यास को लेकर के हो, चाहे वो मानसिक शांति को लेकर के हो। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया तो धन भी उसे उठा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जो कुछ हम लोग लेकर के आए हैं वो आपके लिए तो सबसे सर्वोपरि है ही, खास करके उन सभी के लिए है जो कि जॉब में है। आजकल बच्चे कम उम्र में ही उन्हें जॉब मिल जाती है, या फिर बड़े बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे, उन्हें क्या हो जाता है कि मोबाइल की लत लग जाती है। मेरा इशारा शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसका निवारण और उसका संचालन हम खुद कैसे कर सकते हैं। संचालन से याद आया, जब हम अपने आप को स्वयं चलाने की कोशिश करते हैं तो ही बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, बनती हैं। ठीक उसी को अगर हम स्वचालित रूप से करने लगते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और हम अपने मन के मुताबिक काम भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योग प्राणायाम के साथ में एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल आम हो गई है। हर घर में हर एक दूसरे इंसान को ये प्रॉब्लम है ही, जो कि है सर्वाइकल। सर्वाइकल सबसे पहले हम जानेंगे कि वो है क्या, क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल देखने से या फिर कहीं घूमने फिरने से, अगर आप कहीं जा रहे हैं और हल्की सी अगर मोच आ गई तो लोगों को लगता है कि हमें सर्वाइकल हो गया है। सर्वाइकल एक्चुअल में है क्या? सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का वो हिस्सा, यानी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन के ऊपर 7 कोशिकाएं,
C1, C7, ये जब सब एक साथ मिल करके जब इस हिस्से की हड्डियां, डिस्क, मांसपेशियां या नसों में समस्या होती है तो वो आम बोलचाल में लोग इसे सर्वाइकल कहते हैं। ये क्यों होता है, ये इसके कारण क्या है? जैसे लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर पर झुककर काम करना और एक ही टक उसे देखते रहना, गलत तरीके से बैठना या सोना, आजकल बहुत ज्यादा देखा गया है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, तकिया दो ले लेना और दो तकियों पर आराम से लेट करके मोबाइल देखना और घंटों मोबाइल देखना, बढ़ती उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों में घिसाव, गर्दन में चोट लगना, लंबे समय तक एक ही मुद्रा में काम करना और बैठना, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, आइए हम आपको वो बताते हैं। गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे और हाथ तक दर्द फैलना, हाथों में झंझनाहट या सुन्नपन का रहना, सिर के पीछे दर्द, गर्दन झुकाने में कठिनाई और कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लगते हैं। ये ठीक हो सकता है, बिल्कुल अधिकांश मामलों में, यदि ये व्यायाम, योग और सही बैठने की आदत से हम इसकी आदत बना सकते हैं। फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर दवाइयों में काफी आराम भी मिल सकता है, लेकिन कहते हैं ना, योग से जुड़ें और सही बैठने की आदत डालें तो हमें इन सब चीजों की भी कोई जरूरत नहीं होती है। यदि नस पर अधिक दबाव हो या गंभीर समस्या हो तो आगे जांच और विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके कारण आपको लगता होगा कि शायद इसके कारण भी हम बता दें कि ये किन कारणों से होता है। यदि आपको लगता है कि आपको सर्वाइकल है तो ये कुछ ऐसे छोटे मोटे सिम्टम्स होने लगते हैं कि आपको गर्दन में हल्का सा दर्द होने लगेगा, चक्कर आने लगेगा और या आपको उठने बैठने और चलने में भी प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे नियम जो मैं आज आपको बताऊंगी, यानी सर्वाइकल में अपनाने वाले योग्य नियम। गर्दन को लंबे समय तक एक ही स्थिति में बिल्कुल ना रखें। मोबाइल को नीचे झुककर देखने की बजाय आंखों के सामने ही रखें और कम समय के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आप 0 पॉइंट का ही, लेकिन आपको चश्मा लगा करके ही मोबाइल को देखना है। हर 30-40 मिनट बाद 2-3 मिनट का ब्रेक जरूर लें। यदि आप किसी जॉब में हैं या घंटों बैठकर आपको काम करना पड़ रहा है, बहुत ऊंचा या बहुत मोटा तकिया ना लगाएं, पतला तकिया बेहतर रहता है। अचानक गर्दन झटकने या भारी वजन उठाने से भी बचें। कई बार मैंने देखा है महिलाएं सुबह जब काम करती हैं अपने घरों में, पानी भारी से भारी बाल्टी को यूं ही झटके में उठा लेती हैं, या फिर जमीन पर कोई चीज गिर जाती है तो उसे झटके से झुक करके उठा लेती हैं। तो ये आदतें भी आगे चल करके आपको सर्वाइकल का शिकार बना सकती हैं। रोज 20 से 30 मिनट हल्की सैर करें, पर्याप्त नींद यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त नींद कहलाती है, जो कि हर किसी को लेनी चाहिए। सर्वाइकल के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल कई घरों में सुनने को मिला है, देखने को मिला है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको यही कहते हैं कि आप अपना वजन कम करें और योग अभ्यास करें। गिरवा संचालन यानी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाने के लिए यह आसन किया जाता है। आप रोज 15 से 20 मिनट इस आसन को कर सकते हैं, जो कि है ग्रीवा संचालन। दूसरा है ताड़ासन। कई बार बहुत सारी सीरीज में हमने ताड़ासन के बारे में बताया है। भुजंग आसन, मकरासन, मामरी आसन, मांजरी आसन या उसे कैट काउ स्ट्रेच भी कहते हैं, बालासन और अंत में शवासन, जो कि 5 से 10 मिनट हम आराम की मुद्रा में जाकर के इसको कर सकते हैं। अब आता है प्राणायाम की स्थिति। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम 10 मिनट और 5 मिनट करके आप अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। सर्वाइकल के लिए आज मैं आपको एक डाइट चार्ट भी देने वाली हूं, जो कि सुबह से लेकर के शाम तक का आपको हर एक खाने की डाइट उसमें बताई जाएगी। सबसे पहले तो सुबह गुनगुना पानी,
आपको आदत डाल लेनी है कि एक गिलास गुनगुना पानी आराम से बैठ करके सिप सिप करके आपको पीना है। इकट्ठा भी नहीं पी जाना है, थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी सुबह पीना है। 5 से 6 भीगे हुए बादाम, 1-2 भीगे हुए अखरोट और थोड़ी सी किशमिश, इसको आपको रात में ही भिगो के रख देना है। कहा जाता है कि जिन भी लोगों ने इस डाइट को लेना शुरू कर दिया, यानी कि सुबह आपने ड्राई फ्रूट्स और या सूखे मेवे को खाना शुरू कर दिया, जीवन भर जब तक आपकी आयु है तब तक आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अब आते हैं नाश्ते की ओर। दलिया, ओट्स, पोहा, मूंग दाल का चिल्ला और साथ में 1 गिलास दूध, दही या छाछ भी आप ले सकते हैं। दोपहर में 2 से 3 रोटी, यानी कि बहुत ही पतली और हल्की रोटी, हरी सब्जी, दाल, सलाद और 1 कटोरी दही, अगर आपको नुकसान नहीं करती है तो। शाम को मौसमी फल जैसे सेब, अमरूद, पपीता आदि आप ले सकते हैं। शाम का समय है, 5 और 6 के पहले ही आपको ये ले लेना है। भुने चने या अंकुरित दाल। अब आती है रात की बात, यानी कि रात में हम खाना कैसा लें। रात में हमेशा से हल्का भोजन लेना चाहिए। पतली पतली 2 रोटियां अगर आप खा रहे हैं तो ठीक, वरना 1 रोटी और दाल और सब्जी की क्वांटिटी को बढ़ा देना चाहिए। सोने से 2 घंटे पहले खाना खाएं और सोने से आधा घंटा पहले जिन भी लोगों को लगता है कि वो दूध पीते हैं और उन्हें वो हजम हो जाता है, तो दूध में चुटकी सी हल्दी डाल करके दूध का सेवन भी कर सकते हैं। क्या खाएं जिससे हमें और पौष्टिक आहार मिल सके। दूध, दही, पनीर, तिल और अलसी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें और अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी, यानी कि 2 से 3 लीटर प्रतिदिन पानी आपको पी जाना है। इन चीजों से आपको बचना है, जैसे जंक फ्रूट हो गया, तला भुना भोजन, अधिक चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स, लंबे समय तक मोबाइल या लैपटॉप पर झुक कर काम करना सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये थी दोस्तों सर्वाइकल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, योग और डाइट प्लान। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस डाइट प्लान और योगासन को आप अपनी जिंदगी में, आप अपने दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में जरूर इसे अपनाएंगे। और उसके बाद में जब आपने अपनाना शुरू कर दिया तो चैट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये डाइट प्लान और योग करने से अगर आपको सर्वाइकल है और उसमें फायदा हुआ है तो मैसेज में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई सीरीज के साथ, एक नए योगासन के साथ। तब तक करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में सबसे पहला स्थान योग का होता है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे योग के कुछ प्राणायामों की मुख्य सूची, जो इस प्रकार है। प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये सभी जानते हैं। प्राण का अर्थ है जीवन, शक्ति या श्वास, और आयाम का अर्थ है विस्तार या नियंत्रण। प्राणायाम के नियंत्रित अभ्यास से शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। सबसे पहला प्राणायाम, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ध्यान योग से शुरू करते हैं, ध्यान योग प्रणव प्राणायाम। अपना ध्यान एकाग्र करके, एकाग्रचित हो करके त्रिनेत्र पर लगाना है, यानी कि दोनों आंखों के मध्य। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राणायाम में प्रणव प्राणायाम का क्या महत्व होता है। प्रणव प्राणायाम यानी कि ध्यान को केंद्रित करने का अर्थ हमारे आजकल के विद्यार्थियों को, खास करके जो बच्चे काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, और बच्चे ही क्यों, सभी लोग, बड़े भी और बूढ़े भी, सभी लोगों के लिए प्रणव प्राणायाम ध्यान योग इस तरीके से है जैसे एक औषधि। नियमित रूप से करने वाला अभ्यास यानी प्रणव प्राणायाम हम करें तो काफी कुछ हमें लाभ मिलता है। दूसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, जो कि सुखासन में हमें बैठ जाना है, पद्मासन में। जिस स्थिति में अपने आप को आप अच्छे से महसूस कर पाए उस स्थिति में आपको बैठ जाना है।
दाहिने अंगूठे दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से सांस लें। अब बाईं नासिका को बंद करके दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें और फिर दाहिनी से सांस लेकर बाईं से छोड़ें। यही प्रक्रिया यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती रहेगी। इसका जो लाभ होता है वो बहुत ही ज़्यादा हमने देखा है कि कई प्रॉब्लम्स में ये ठीक करने में सफल हुआ है। मानसिक तनाव कम करता है, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, रक्त संचार में सुधार करता है, मन को शांत करता है, साथ ही साथ हमें एक स्वस्थ जीवन जीने की कला बताता है। दूसरा है कपालभाति प्राणायाम। सीधा बैठकर गहरी सांस लें, पेट को अंदर खींचते हुए जोर से सांस बाहर निकालें। सांस लेना स्वतः होता है और जैसा कि हम एक विधि हमेशा से बताते आ रहे हैं, जैसे हम किसी के भी जन्मदिन पे जाते हैं या फिर हमारा खुद का ही जन्म होता है, तब हम क्या करते हैं, एक केक को कट करते हैं, जो कि आज की ये एक विधि बन चुकी है। तो केक जब हम कट करते हैं और उस पर लगाते हैं मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को बुझाने के लिए हम मुंह से फूंक मार करके उसका प्रयोग करते हैं। कपालभाति सीखने का सबसे सरल जो एक उदाहरण है वो ये है कि आप नाक के सामने अपनी एक उंगली को लेकर के जाएं और उस उंगली को मोमबत्ती समझें और उसे आप अपने नासिका से यानी श्वास से उसे बुझाने का प्रयास करें, यानी कि स्वतः बाहर श्वास को निकालें। और ऐसे ही इस उदाहरण से आप बहुत जल्दी कपालभाति करना भी सीख जाएंगे। पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट की चर्बी कम करने में सहायक होता है, शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, श्वसन तंत्र मजबूत होता है। उसके बाद प्राणायाम आता है भस्त्रिका प्राणायाम। सीधा बैठ जाएं, तेजी से गहरी सांस लें और छोड़ें। यह क्रिया धौंकने की तरह होती है। इसको करने से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, सर्दी जुकाम में लाभदायक होता है। उसके बाद प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम। इसको करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद कर लें, कानों को उंगलियों से हल्का बंद करें, श्वास लेकर छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी या हुम ध्वनि का प्रयोग करें। हुम ध्वनि को प्रयोग करते हुए जब हम करेंगे तो हमारे कानों में एक हल्की सी आवाज और कंपन होगी, जिससे यह प्रतीत होगा कि हम भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं। तनाव, चिंता और क्रोध कम होता है, मन को शांति देता है और एकाग्रता बढ़ाता है। इसके बाद प्राणायाम होता है उज्जयी प्राणायाम। गले को थोड़ा संकुचित करके श्वास लें और छोड़ें। श्वास लेते

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: परफेक्ट सॉन्ग फॉर दिस वेदर, फॉर दिस मौसम, जो कि हो रहा है फिलहाल काफ़ी ज़्यादा ऑसम। सो एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और आज का स्पेशल बनाता है संडे, यानी संडे जब आता है तो पूरे वीक का सबसे स्पेशल बन करके आ जाता है। तो चलिए भाई, आज इतना ख़ास दिन है और आज तारीख भी 23 है, यानी 23 अगस्त है। और इसी 23 अगस्त में आज संडे है और आज काफ़ी ज़्यादा संडे को हम फन डे के रूप में मनाने वाले हैं। फिलहाल बहुत सारी बातें हैं जो आपसे कहनी है, करनी है, लेकिन इसी के साथ ही साथ अब आपको ले चलते हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि भाई आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आखिर क्या है और आपसे क्या कहने की कोशिश करने वाला है आज का थॉट। क्यों? क्योंकि आज का दिन हम खास बनाएंगे अपनी बहुत सारी बातों से, बहुत सारी गुफ्तगू से।
4: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो फिलहाल वक्त है आपको ये बताने का कि आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे क्या कह रहा है। देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि अरे यार, मुझे सब पता है, मुझसे क्या छिपा है। दरअसल कई बार ऐसा ओवर थिंकिंग में होता है कि ऐसा हमको लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सब सही है और सब सही पता है। इसी को लेकर के आज का थॉट ऑफ द डे बड़ी अहम बात कहता है। आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि ओवर थिंकिंग का इलाज हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं है। जरा गौर फरमाइएगा, ओवर थिंकिंग का इलाज हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि हर सवाल को जरूरी ना मानना है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मुझे लगता है बात ऐसी है कि भैया जोरदार जरा तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे बात बिल्कुल सटीक है, बहुत सही है कि यार ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है। हम हर सवाल का जवाब ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हर सवाल होता ही नहीं है जवाब देने के लिए। और इस बात को जब जान लेते हैं तो वही हमारे ओवर थिंकिंग का इलाज होता है। ओवर थिंकिंग मतलब वो चीज़ें जो अननेसेसरीली हम लगातार सोचते जा रहे हैं, जितना हमको समझ में आना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा डीप जा रहे हैं। कई बार कहते ना कि भैया ये बंदा बड़ा खुरपेंच है, तो जब हम वो कहते हैं खुरपेंच है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा पता कर रहा है। लेकिन खुरपेंच का मतलब ये नहीं कि कोई ओवर थिंकर है, राइट? लेकिन ओवर थिंकिंग का ये सीधे से मायने हैं कि हम खुद इतना ज़्यादा सोच लें कि हम उसमें उलझते जाए और किसी एक रिजल्ट पे, किसी एक परिणाम पे हम पहुँचे ही ना। ऐसा अक्सर होता है, और ऐसी जो ये चीज़ें देखी जाती है ये अक्सर टीनएजर्स में देखी जाती है, जब 14-20 के आसपास की एज होती है तो इस एज ग्रुप में ज़्यादा ये नज़र आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं होता, बल्कि हर किसी में कहीं ना कहीं हो सकता है, हो सकता हो बहुत थोड़ा सा हो, या हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा हो जो ओवरथिंकर हो, चीज़ों को लेकर के सोच सोच में अपने ही सोच बना करके खुद पैनिक होने लग जाए और खुद से ही बता दे कि उसका कौन दुश्मन है, उसका कौन बुरा चाहता है। इस तरह से लगातार सोचते रहना, उस चीज़ों के बारे में समझना, ये ओवर थिंकिंग की निशानी होती है। और ओवर थिंकिंग का इलाज, जैसा कि आज का थॉट ऑफ द डे बता रहा है, वो हर सवाल का जवाब ढूंढना नहीं होता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में सवाल बहुत होते हैं, ये कैसे, ये क्या, ये क्यों, ये कब। और जब उसका जवाब ढूंढने लग जाते हैं तो वहाँ हम जाते हैं उलझ, और उसी उलझन में हम परेशान रहते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हम ओवर थिंकर हैं, या मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से हम परेशान हो गए। इसमें करना सिंपल सी बात ये होती है कि भाई आप जो हैं वो हर सवाल को ज़रूरी क्यों मानते हैं, क्योंकि हर सवाल ज़रूरी नहीं होता है। कहते हैं ना कि जितना इजी आप खुद की सोच को रखते हैं, जितना सरल रखते हैं, उतनी ही सरल आपकी लाइफ हो जाती है। यानी सब कुछ आपके नज़रिए पे, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और नज़रिया और सोच किस पर डिपेंड करता है, सवाल तो ये भी आता है। हाँ, ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल वाजिब है। और ये नज़रिया, ये जो थॉट्स होते हैं, ये जो सोच होती है, वो हमारे समझ से ही आता है। यानी हमारे अंदर एक ऐसी समझ होता है, एक ऐसी इंटेलिजेंस होती है, जिसके ज़रिए हम कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि हाँ, ये जो थॉट बन रहा है ये किस तरह बन रहा है और क्यों बन रहा है, इसके पीछे की वजहें क्या है, इसका सोर्स क्या है। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, बस इतना ही आपको पता है कि लाइफ को जितनी सिंपली तरीके से आप देखेंगे, उतना ज़्यादा आप खुश रहने वाले हैं, उतना ज़्यादा फ्री रहने वाले हैं, उतना ज़्यादा आप एंजॉय करने वाले हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचने का, क्या करने का, गहरी सांस लेने का, सुबह देखने का, रात फील करने का, फूलों को देख कर निहारने का, आसमान को फील करने का, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए काफ़ी कुछ है। तो कहते हैं ना कि बहुत सारी अगर हम लग्जूरियस चीज़ ले लेते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए फैसिलिटी होती है, सिर्फ वो सुविधाएं होती है, सुकून नहीं दे सकता है कोई चीज़। सुकून हमारा नज़रिया ही तय करता है, और हमारा नज़रिया तय करता है हमारी समझ। हम थोड़ा सा उस बारे में समझें कि इतना ज़्यादा सोचना ज़रूरी नहीं है बाबू मशाय। तो चलिए, संडे स्पेशल है, आपको थॉट कैसा लगा फटाफट से आइए, कमेंट करिए और बताइए कि भाई ये थॉट आपके लिए भी था क्या, आप कहीं ओवर थिंकर तो नहीं है।

ये गाना सुनने के बाद पता नहीं क्यों अपना अपना सा लगता है। कुछ लोग कहते हैं, नहीं छोड़िए क्या कहते हैं क्या फायदा, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, कुछ तो बुरा कहते हैं लेकिन बहुत लोग कुछ तो और अच्छा तारीफ करते हैं। खैर एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया गोंडा एफएम रेडियो कैलस 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। कहे भैया इतना हम ज़्यादा हैप्पीली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार नाश्ता जब आप बढ़िया कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो लंच भी बढ़िया मिलने वाला है और डिनर का तो क्या ही बात है, वाओ। सो फिलहाल आप भी आज बेहतरीन नाश्ता करिए, क्योंकि आज

हाँ जी, तो भाई जो पहला मैसेज मुझे नजर आ रहा है वो सोनिया तिवारी जी का है और आपने लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड साथ ही साथ नव्या का है गुड मॉर्निंग डियर सर, कैसे हो आप, गुड मॉर्निंग टू यू, मैं बढ़िया हूँ। आशु जी का लखनऊ से है, सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। और आप लिखती हैं कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छा, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा टैक्स देती है, नहीं निंदा सावधान होने का अवसर। ओके, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद जो है सविता जी लिखती हैं, सुप्रभात, आज तो मस्ती वाला संडे है। बेशक आज मस्ती वाला संडे और काफी मस्ती होने वाली, कॉल इन प्रोग्राम 10 से 11 गायका कुंडा विद आरजे अंदान। फिलहाल प्रीति जी लिखती है बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, आप वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपको भी। और श्रीनाथ पटेल जी छपिया से लिखते हैं प्रेम ऑटो पार्ट्स गोड़ा चौकी से, गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति जी का कहना है आज के थॉट पे, वाह वाह वाह, सत्य बयां करता हुआ जानदार थॉट, सच में जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वही बाद में पछताते हैं। पूर्णिमा भी आ गई है, लिखा संडे वाला गुड मॉर्निंग आरजे अदनान सर, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग टू यू पूर्णिमा, मैं बहुत बढ़िया हूँ, चंगा सी। और मैंने बताया ना, लेकिन नाश्ते में क्या खाए ये नहीं बताएंगा। फिलहाल पूर्णिमा ने लिखा है थॉट बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सविता जी हरखापुर से लिखती है, मैंने सोचना कम किया है, मैं मस्ती ज़्यादा करती हूँ, खुश रहती हूँ, सुविचार बहुत प्यारा लगा सर आपके जैसा। आए अरे, हम तो आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हैं। वैसे थॉट भी काफ़ी अच्छा था सच में, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आप ओवर थिंकिंग को हटाना चाहते हैं तो हर सवाल का जवाब ढूंढने की बजाय कई सवालों को ज़रूरी मानना ही छोड़ दीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे सिंपल सटाक एक्सप्रेसवे जैसी हो जाएगी। पूर्णिमा लिखती है सर आज हमने भी पपीते का हलवा बनाया। अरे क्या बात है जी, पपीते का तो हमने पत्ता खाया है, वो भी जब बोलते हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ानी होती है, फिलहाल हमारी प्लेटलेट्स बढ़ी हुई है। आपने क्यों बनाया पपीते का हलवा, ये आप कमेंट करके अब चला फटाफट से बताइए। और फिलहाल आपको ले चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ, एंजॉय करिए क्योंकि वापस से आ रहे हैं कुछ ही देर में आपके मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान।

एमएस धोनी का ये सॉन्ग जब तक इतना प्यारा लगता है अरमान मलिक की आवाज में। फिलहाल इस खूबसूरत से गाने को मुझे लगता है यार मन ही मन सही, लेकिन किसी को डेडिकेट आप कर सकते हैं जिसको भी आप चाहें। बड़ा प्यारा सॉन्ग है, स्पेशल फॉर यू।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

क्या बात है भैया, तुम जो आए जिंदगी में, जिंदगी तो हम क्या बताए। कई बार दोस्तों को अगर सोचिए तो इसकी उल्टी लाइन आ जाती। खैर वो आप बेहतर बना लेंगे। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉग आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो 91.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और आज आपको बताया कि भाई संडे है और संडे का मतलब है कई सारे सवाल हम करने वाले। वैसे आज का संडे आपका कैसा शुरू हुआ? मुझे तो लगता है अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो चुपके चुपके से प्यारे प्यारे फेसेस निकाल करके सिर्फ ऐसे देख रहे, अय रेडियो प्ले हो रहा है, अभी उठे नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 12 बजे उठते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठ गए होंगे तो न जाने किस पर इल्ज़ाम धर रहे होंगे। उनमें से कहीं आप तो नहीं हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, वैसे हो भी सकता है। ऑलराइट, तो चलिए भाई, इतनी सारी बातों के बीच में कई सारी बातें हैं जो आपसे कहनी है, करनी है, बतानी है, सुनानी है, और आपको सुनने के बाद होनी है हैरानी। क्योंकि हम ऐसी बातें ही लेके आते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें आप तक बता देते हैं। आज क्या होने वाला है? आज भी हम आपको कई सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है और आप उसको काफ़ी एन्जॉय करने वाले हैं। चलिए, इन्हीं बातों के बीच में हम कुछ ऐसी बुक्स की बात बताने वाले हैं जो शायद आप पढ़ना चाहेंगे। जी हाँ, आज संडे है, आज का वक्त जो होता है वो कहीं ना कहीं हम कहते तो हैं कि आराम का है, लेकिन दरअसल देखा जाए तो आपके लिए ये ज़्यादा वक्त होता है। यानी आप जो सोचते हैं, आप उन चीज़ों को कर पाएँ, आप अपनी चीज़ों को फील कर पाएँ, उसके लिए ये वक्त ज़्यादा होता है। तो क्या कर सकते हैं आप? ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जिसको पढ़ सकते हैं आप? चलिए, अगर आप भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं या बुक्स पढ़ना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको हम बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ऐसे बुक्स जिनको पढ़ने से आपको उनसे लव हो जाएगा, वो किताबें आपको इतनी प्यारी लगने लगेंगी। जैसे पहली जो किताब है वो है जैसा दिखा वैसा प्रेम, जी हाँ, बाय सचिन कोहली। सो क्योंकि किताब छोड़ी ही नहीं जाएगी, एक बार में पूरी किताब पढ़ते आप चले जाएंगे। और ये है जैसा दिखा वैसा प्रेम बाय सचिन कोहली। दूसरा है प्रेम सप्ताह के उपरांत बाय मनीष यादव। प्रेम सप्ताह के उपरांत बाय मनीष यादव, इसको मनीष यादव जी ने लिखा है और इसका टाइटल है प्रेम सप्ताह के उपरांत। इसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइटल के साथ में तीसरी किताब आती है, वो है बोगेनवेलिया का दुख। जी हाँ, बोगेनवेलिया एक तरह का एक फूल है, आपको पता है। और बोगेनवेलिया का दुख, इसको लिखा है इप्सित पांडे ने। इप्सित पांडे ने ये जो लिखा है, इसका टाइटल काफ़ी पढ़ने में ही इंटरेस्टिंग सा साउंड करता है। इसके बाद आता है अंबुज आनंद की मजदूर की डायरी का आखिरी पन्ना। जी हाँ, मजदूर की डायरी का आखिरी पन्ना बाय अंबुज आनंद। सो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्राग है, एक अधूरी मुलाकात। जी, प्राग एक अधूरी मुलाकात भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। स्वप्निल जैन की लिखी हुई रोमियो जूलियट एंड स्मार्ट सिटीज़। अब ज़रा सोचिए कितने खूबसूरत खूबसूरत से कॉन्सेप्ट्स हैं, कहाँ रोमियो जूलियट किस ज़माने के और आज की स्मार्ट सिटीज़ से मिला करके देखा गया। सो ये स्वप्निल जैन ने लिखा है ये बुक और ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली। सचिन कोहली की दूसरी बुक का नाम है दूरी का गणित। दूरी का गणित, ये किताब भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगने वाली है। सो ये सभी किताबें हमने बताया, क्योंकि आज आप संडे हैं और इसको ले सकते हैं और पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं आराम से, अगर आपको शौक़ है किताबों को पढ़ने का। दूरी का गणित बाय सचिन कोहली, रोमियो जूलियट एंड स्मार्ट सिटीज़ बाय स्वप्निल जैन, प्राग एक अधूरी मुलाकात, मजदूर की डायरी का आखिरी पन्ना बाय अंबुज आनंद, बोगेनवेलिया का दुख बाय इप्सित पांडे, प्रेम सप्ताह के उपरांत बाय मनीष यादव, जैसा दिखा वैसा प्रेम बाय सचिन कोहली। सो ये कुछ ऐसी खूबसूरत सी किताबें थी जिसको आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आप रुक ही नहीं पाएंगे और आप पढ़ते ही चले जाएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि वो प्रेमी जो किताबों के हैं उनके लिए आज का दिन बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि आज आपको फाइनली वक्त मिलता है अपनी बुक्स के साथ में बैठने का, अपने खुद की चीज़ों को फील करने का और ज़िंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का, है ना? हाँ जी।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NGMPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, हीरो की अगर बात हो ही रही है तो चलिए हम आपको रियल के हीरो से मुखातिब कराते हैं, उनसे मिलाते हैं, जिनको आप सुनने के बाद कहेंगे यार दिस इज आर रियल हीरो। जी हाँ, ऐसे हमारे आसपास भी कई सारे लोग हैं जो रियल हीरो वाला काम कर रहे हैं, यानी मूवी के बनावटी ढिशुम ढिशुम को ना करके कर रहे हैं सच में ऐसा काम जिससे लोगों को सीधे सीधे बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं। सो आज के रियल हीरो में कौन है, आइए ले चलते हैं आपको बताने के लिए।
1: Now you're listening, Good Morning Kota with your favorite RJ Khan.

सात साल की मेहनत, 2000 से ज्यादा लोगों का साथ और एक सूखती झील की बदल गई तस्वीर। जी हाँ, लिटरली आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंटरनेट पे इसको देखेंगे तो आप कहेंगे ओह माय गॉड, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ सकता है। तो चलिए बताते हैं। दरअसल चेन्नई के चितलापक्कम में लोगों ने सिर्फ शिकायत नहीं की थी बल्कि खुद आगे आकर अपनी झील को बचाने की मुहिम शुरू की, जैसे कि कई एरियाज में आज भी तालाब सूख रहे हैं या कई ऐसी प्राकृतिक धरोहर है जो ख़त्म होती जा रही है, जिसको अब सहेजने की हम बात लगातार करते हैं। ऐसा ही कोई एक मामला सामने आया था चेन्नई के चितलापक्कम में, जहाँ पे लोगों ने सूखती हुई झील को लेकर कंसर्न जताया, चिंता जाहिर की, लेकिन किसी से शिकायत ना करके खुद ही बचाने के लिए उतर गए। सो पेटिशन और बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, साफ सफाई अभियान, ये सब हजारों लोगों ने आखिर इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी और ये रंग लेकर भी आया। सो तमिलनाडु सरकार ने झील के वैज्ञानिक पुनरुद्धार के लिए 25 करोड़ मंजूर किए। सो कभी ये गंदगी और सीवेज से भरी झील आज जिंदा है और भूजल भी रिचार्ज हो रहा है, पानी की जो सेफ्टी है वो भी बढ़ी है और लोगों को खूबसूरत पब्लिक स्पेस भी मिला है। सो यही है असली सिविक सेंस, जब लोग अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे बदलने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। सो ये बात सच है कि कहीं ना कहीं हमारे आसपास ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम सिर्फ रोज़ देखते हुए निकल जाते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हैं। पर ये जो हमने घटना आपसे जाहिर की है, ये हज़ारों लोगों की एक ही सोच जो बदलने भी उतर आए और आखिरकार अब आप उस तस्वीर को देखेंगे, उस झील को देखेंगे तो जहाँ कूड़ा भरा होता था, जहाँ पट चुका था, पूरी तरह से सूख चुकी थी झील, आज वहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा है और ये इतने सारे लोगों ने मिल करके किया, एक जिम्मेदारी उठाई। तो हमने कहा ना, आपने रियल हीरोज से मिला दें। सो ये लोग जिन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया, आगे बढ़े, वो हमारे आज के रियल हीरोज़ हैं। और ये बात बहुत अहम है अपने आप में कि हम ऐसे लोगों को रियल हीरोज़ मानते हैं सच में, कि जो सच में बदलाव लेकर आ रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई किस्सा आपने भी इससे पहले सुना है या अपने आसपास के एरिया में देखा हो जहाँ पे तालाब को वापस से जिंदा किया गया हो, या जहाँ पर कट रहे पेड़ों को रुकवाया गया हो, या जहाँ पर गंदगी साफ करके उसको क्लीन किया गया हो पूरी तरह से? अगर ऐसा कोई भी किस्सा है तो आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा। फिलहाल आपको ये स्टोरी आज की कैसी लगी, आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। अब से 20 मिनट बाद हम हाजिर होंगे आपके 89.6 FM के मॉर्निंग सेगमेंट गागा गोंडा विद आरजे अदनान में।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9861 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
7: अरे भाई एक बात पता है तुझको?
8: अरे भाई पता तो सब कुछ है, लेकिन जो तू अभी बताने जा रहा है बस वही नहीं पता मुझे।
7: सही में? कई बार नहीं बताता हूँ। सुन, वो लुगाइयाँ भी बड़ी गजब की होती हैं यार, जो पूरे 7-8 घंटे बैठकर मोहल्ले भर की चुगली करती है और बाद में पता है क्या कहकर उठ जाती है।
8: अरे भाई क्या कहकर उठ जाती है?

0: जिसे सब नामुमकिन मानते थे। अगर मैं कहूं कि वो सच हो गया है तो? जी हाँ, कई बार आप जो सोचते हो कि ये चीज़ मुमकिन हो ही नहीं सकता है और वो मुमकिन हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जाहिर सी बात है, अब ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या नामुमकिन था और क्या मुमकिन हो गया है। क्या हम कोई सस्पेंस बना रहे हैं? नहीं जी नहीं, सस्पेंस नहीं बना रहे हैं। बस हम तो बता रहे हैं उन आँखों की रोशनी के बारे में जिसे अब बिना किसी के दान किए हुए आँखों की रोशनी ट्रीटमेंट के थ्रू लाई जा सकेगी। जी हाँ, हो गए ना हैरान? चलिए हम बताते हैं क्या है पूरी बात।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

सो बिना किसी डोनर के आंखों की रोशनी का लौटना नामुमकिन अभी तक माना जाता रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसा अब मुमकिन हो गया है कि बिना किसी डोनर के आंखों की रोशनी लौट सकेगी। जी हाँ, दरअसल एम्स की नई टेक्निक आई हुई है। एम्स में केराटोप्रोस्थेसिस यानी कि आर्टिफिशियल कॉर्निया से इलाज हो रहा है और बिना किसी डोनर के इंतज़ार किए ख़राब कॉर्निया की जगह ये डिवाइस लगाई जा रही है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल होते तब तक ध्यान ही किसी का नहीं जाता है। दरअसल ऐसा हो रहा है डोनर्स की भारी कमी की वजह से। अगर आपको हम एक डेटा बताएं, सो देश में हर साल 1,00,000 लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। डोनर ना मिलने से तकरीबन 34,000 लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, सो कैसे काम करता है और कैसे होता है ये खर्चा, ये बताते हैं आपको। दरअसल ये डिवाइस जो है आंखों में ब्लॉक हुए रोशनी के रास्ते को फिर से खोलती है, और भारत में इस टेक्निक से इलाज जो है वो लगभग 2 से 4 लाख का है खर्च। यानी आंखों की जो रोशनी लौटाने के लिए जो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, इसका 2 से 4 लाख का खर्च आया है, और ये जो है बिना किसी डोनर के आंखों की रोशनी लौटाने का काम कर रहा है। सो फिलहाल एम्स ने ये नई टेक्निक जो है वो मिल रही है मरीज़ों को, और 34,000 के करीब हर साल डोनर ना मिलने से ऐसे पेशेंट्स कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का शिकार रहते हैं, और इसी वजह से एम्स के आरपी सेंटर में अब तक 20 से ज़्यादा मरीज़ों में ये आर्टिफिशियल कॉर्निया जो है वो सफलतापूर्वक लगाया जा चुका है। सो ये टेक्निक जो है रेटिना तक रोशनी पहुंचाने का नया रास्ता बनाती है, जिसे बहुत ही गंभीर मरीज़ों की नज़र में भी काफ़ी सुधार मुमकिन है। और जैसा कि हमने बताया कि भारत में केराटोप्रोस्थेसिस का इलाज जो है लगभग 2 से 4 लाख रुपए के बीच का है। सो आई होप कि आपको ये जो जानकारी मिली है ये काफ़ी पसंद आई होगी, और आप भी मानते हैं कि हाँ भाई, आंखों की रोशनी आने का मतलब है दुनिया का मिल जाना। बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये अगर सच में सफल हुआ है तो ये काफ़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी। आई होप कि ये जानकारी आपको मिलने के बाद आपके चेहरे पे भी स्माइल ज़रूर आ गई होगी, स्पेशली उन लोगों के बारे में सोच करके जो इसके मरीज़ हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स है।

संडे के बड़े बड़े प्लान्स, बहुत बड़े बड़े, जी हाँ, ताकि संडे को और भी ज्यादा आप यूटिलाइज कर सके। लेकिन प्लान तो बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं संडे के, लेकिन असली मजा तो आता है जब बिस्तर छोड़ने की बारी आती है भाई साहब। तो बिस्तर भी नहीं छोड़ा जाता। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो जरा आप सोचिए और उसके बाद देखिए कि आपको मन ही मन में क्या जवाब मिलता है। फिलहाल 10 बजे से हम कॉलिंग प्रोग्राम में आपको जोड़ने वाले हैं अपने 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुंडा में। गाएगा गुंडा वेद आरजे अदनान में।

0: भैया आपको हमारे बताते वो स्ट्रगल याद आ गया कि भैया हाँ फिलहाल जो है वो आपके प्लान्स तो बड़े बड़े होते हैं संडे को लेकर के, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब उठने की बारी आ जाती है। फिलहाल उठने में कितनी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, कितनी ज्यादा बाधाएं आती, इसी को तो कवि कहते हैं कि यही तो संघर्ष है जीवन का। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Aajya Khan.

0: चाहे जितनी भी मुश्किलें आए राहों में, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए राहों में, अपनों के लिए दिल से निकली दुआ कभी रुकती नहीं। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग।
1: ओ माय गॉड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। भैया कौन है आप, जरा अपना परिचय दे दिए हमारे श्रोताओं।
0: जी सर, रेडियो की वही जानी पहचानी श्रोता पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर रायबरेली से, और लोग मुझे रिंकी पिंकी के नाम से सर जानते हैं।
1: रिंकी पिंकी फ्रॉम दीवानों का शहर रायबरेली। अच्छा हाँ, इससे पहले हमने यही मसला हो गया था, उसके बाद हम लोग बहस कर रहे थे आपस में, फिर गुंडा को क्या कहेंगे, गुंडों का शहर नहीं।
0: जी सर, वही तो क्वेश्चन सर आज हम आपसे करते हैं कि सर गोंडा वाले ने क्या सोचा है कि अपने शहर को क्या नाम देंगे।
1: चलिए अब आपको हम इसका फिलहाल मुझे लगता है जवाब ना दें, और हमारे श्रोता जो गोंडा से बिलोंग करते हैं वो खुद चैट बॉक्स पे आकर के लिखें, ज्यादा बेस्ट होगा। पहले तो अपना हालचाल बता दी, कैसी हैं आप?
0: जी सर, हम तो एकदम मस्त और झकतुआ वानी, और सर आप बताइए आप कैसे
1: हम तो बढ़िया वानी, सुबह सुबह पीते हैं पानी।
0: जी सर, हमें पता चलल वानी कि आप भोजपुरिया बहुत अच्छी बोलेला, तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा भोजपुरिया में आपसे बतियाते हैं।
1: वो तो बस थुचका थुचका ट्राई करेला।
0: जी सर, आप ही लोगों से सिखले वानी, हम तो सर प्रयास करत बानी कि भोजपुरी अच्छी बोल पावत बानी कि ना बोल पावत बानी।
1: हमसे ना सीखा तानी, नहीं तो एक एक कहानी खत्म बानी।
0: सर ऐसा कुछ नहीं है सर, कोशिश करेंगे तो सर हम सभी भाषाएं बोल सकते हैं, बस मतलब श्रोताओं के अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए कुछ करने की। बेशक,
1: नहीं मैं अपनी बारे में बात कर रहा था, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझसे मत सीखिएगा, आप अलग से सीखिएगा तो आप पक्का सीख जाएंगे। अच्छा
0: सर, ऐसा क्यों, आप तो इतनी अच्छी भोजपुरी बोले कि सर हमको तो बहुत अच्छा लगता सर भोजपुरी बोलना और भोजपुरी सुनना, भोजपुरी गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
1: अच्छा तो सुनाइए इसी बात पे दो लाइन अगर कोई याद आ रहा है तो।
0: बिना मौसम के बदिरा बरस गई हो, बिना मौसम के बदिरा बरस गई हो, अनजाने में मनीवाई तरस गई हो, बिना मौसम के बदिरा बरस गई हो।
1: क्या बात है, बिना मौसम के ही बादल ने बारिश कर दी।
0: ये सर मेरा फेवरेट सॉन्ग है और ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने देखी, मुझे भोजपुरी मूवी भोजपुरी गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत बढ़िया, मतलब आपको भोजपुरी कुल मिला के काफी ज्यादा पसंद है, राइट?
0: जी सर बिल्कुल, और सर मुझे रेडियो सुनने के साथ साथ मुझे मूवी देखना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा चलिए, मूवी तो हम लोग आ जाएंगे,
0: लेकिन फिलहाल सर मूवी हम देखते बहुत कम है और सॉन्ग भी बहुत कम देखते हैं, बस सुनते ज्यादा है रेडियो पे।
1: वाह, यानी आपका कान जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है।
0: जी सर बिल्कुल, क्योंकि मीठी मीठी आवाजें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा बचपन से सर रेडियो सुनने का।
1: ओहो हो हो हो, मीठी मीठी आवाजें थोड़ा महंगी हो गई हैं, चीनी इधर पता है ना।
0: जी सर बिल्कुल।
1: ऑलराइट, सो एक काम करते हैं रिंकी पिंकी, आपको हम कुछ हिंदी के डायलॉग्स देते हैं, उसको आपको भोजपुरी में बोलना है, ठीक है?
0: नहीं सर, नहीं बोल पाएंगे, नहीं, एक बार, नहीं आती भोजपुरी।
1: एक बार तो टिराई करना पड़ेगा आपको।
0: नहीं सर, नहीं हो पाएगा, हमको नहीं आती भोजपुरी, बस हमने थोड़ी बहुत सीखी थी वो बोल दी।
1: अरे एक ट्राई करिए। अच्छा रिंकी पिंकी का फोन कट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
0: सर नहीं हो,
1: एक बार एक बार, अरे बिल्कुल थोड़ा सा ट्राई करना है, थोड़ा सा।
0: सर आप बोल के बताए, हम उसको मतलब रिपीट कर देंगे।
1: हमका ना वतनी, हम तो पूछा था नहीं।
0: जी सर, हमें भोजपुरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा अभी हम लोग नहीं बोल पाते हैं सर।
1: अच्छा तो चलिए, कितने आदमी थे, अच्छा ये बता दिए, ऐसे जो बॉलीवुड को डायलॉग है, कितने आदमी थे, सुना है ना ये?
0: नहीं सर, नहीं हो पाएगा।
1: अरे कोई एक तो बोलना पड़ेगा। अच्छा मोगैम्बो खुश हुआ कहेगा, रिंकी पिंकी खुश हुआ, इसको भोजपुरी बोलिए।
0: नहीं सर, नहीं हो पाएगा, हम नहीं बोल पाएंगे। आपके मुंह से अच्छा लगता है सर आपकी आवाज में, क्योंकि आपकी आवाज बहुत प्यारी बहुत मीठी है।
1: रिंकी पिंकी खुश हो गई।
0: जी सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया और फर्स्ट कॉलर आज की आप बनी, थैंक यू सो मच रिंकी।
0: जी, और सर बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके, और सर इसका क्रेडिट हमारे दोस्तों को जाता है, क्योंकि वो सुबह से हमें रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर के कार्यक्रम में कॉल करो कॉल करो।
1: अच्छा, तो कितना क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब 30% 40%?

0: परसेंट कितने इंटरेस्ट पे दे रहे हैं?
1: 100 में से 100।
0: अरे बाप रे बाप, बहुत बढ़िया दोस्ती है ये, निभाते रहिए आप लोग।
1: दोस्ती बहुत पक्की है सर, और ये दोस्ती सर रेडियो के माध्यम से ही हुई है,
0: तो
1: मतलब इसका क्रेडिट हमारे रेडियो को ही जाता है, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और हर पल हमारे साथ रहता है, सुबह से लेकर रात तक हमारा साथ निभाता है।
0: क्या बात है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है, एंड बहुत अच्छा लगा रेडियो का ये प्रेम आपका सुन करके, थैंक यू सो मच।
1: क्योंकि सर ऐसी दोस्ती मिलना भी आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग जान नहीं पाते, लेकिन हो जाती है अनजाने में, और इसका क्रेडिट हमारे रेडियो को जाता है कि इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी पक्की दोस्ती हो गई हम लोगों की।
0: जाएगा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्रेडिट जाएगा, पूरा जाएगा।
1: जी सर,
0: थैंक यू सो
1: मच। हम ऐसी बातें बोलते हैं सर, किसी को जलन वलन तो नहीं होती?
0: जलन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे सबके पास स्प्रे है, अगर होती भी है तो वो लगा लेते हैं।
1: अगर होती हो तो भैया दिल से माफ़ी, दिल से सॉरी।
0: नहीं नहीं, दरअसल जलन की कोई बात ही नहीं है, बल्कि हम हर कोई काफी एंजॉय करता है एक दूसरे की बातें, हम लोगों को काफी पसंद आती है,
1: क्योंकि सर बातें सुनने में जो इंटरेस्ट मिलता है ना सर, हाँ। वो रेडियो पे ही मिलता है, तो बहुत सारे श्रोताओं के अंदर दिलचस्पी रहती है रेडियो सुनने। मेरे यहाँ तो बहुत कम लोग सुनते थे, लेकिन अब काफी सुनने लगे हैं।
0: अरे वाह भाई, ये इसका श्रेय तो आपको जाता है कि ये भी आप किसी और को दोगे?
1: जी सर, मैंने काफी श्रोताओं को रेडियो से जोड़ा है, और सुनते भी हमारे गांव में अब बहुत सारे लोग सुनते हैं।
0: बहुत बढ़िया, ऐसे ही सुनते रहिए, और ऐसे ही हम सब लोगों को हंसाते गुनगुनाते रहिए।
1: जी सर, और सर आप बुलाते रहिएगा तो हम सभी श्रोता आते भी रहेंगे।
0: एक बार बुलाएंगे ना, कितनी बार बुलाना है?
1: सर जितनी बार दिल करे उतनी बार बुलाइए, क्योंकि सर रेडियो होता ही ऐसा है कि माध्यम की श्रोताओं को बुलाना पड़ता है, श्रोता इंतजार भी करते रहते हैं कि सर कब बुलाएं, हम कब हट जाएं।
0: अच्छा, रेडियो की बात आप कर रहे थे, हमें लगा रेडियो स्टेशन की बात आप कह रहे हैं।
1: नहीं सर, रेडियो स्टेशन तो सर हम आ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ काफी दूर है आपका स्टूडियो।
0: कोई बात
1: और सर अभी तो हम सर लखनऊ भी अपने फेवरेट मतलब स्टेशन पर भी नहीं गए हैं, क्योंकि वहाँ पे तो अनाउंसर भी बुलाते रहते, लेकिन हम लोगों का ज्यादा नहीं हो पाता।
0: कोई बात नहीं, आप लोगों का प्यार ऐसे मिल जाता रेडियो पे, बहुत बड़ी बात है, इतना ही काफी है।
1: सर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब अपने फेवरेट अनाउंसर से मिलने का मौका मिलता है ना, उसकी एक अलग ही खुशी होती है।
0: बिल्कुल,
1: और सर हम लोग तो सर घर पे ही रहते, घर पे रहकर रेडियो सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे हम मतलब अपना पूरा स्टूडियो घूम चुके हों।
0: बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच रिंकी पिंकी कॉल करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके।
1: जी सर, आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए आपको भी सर दिल से शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सर, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते। तो भाई ये थी रिंकी पिंकी फ्रॉम दिल वालों का शहर रायबरेली, और हमने पूछा कि भैया गोंडा को फिर किस नाम से बुला लिया जाए, क्योंकि आज भी यही बहस छिड़ गई है, और ये बहस बड़ी ही गजब की होती है, मतलब काफ़ी मज़ा आता है, ऐसा लगता है कि भाई ये देखे कि किसने क्या कहा है और क्या है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: बस हम तो आपके आशिक हैं, पुराने,
0: बहुत पुराने हो गए अब तो।
2: जितने साल का ज्ञान असली हो गया उतने पुराने तो कम से कम हो गए।
0: सिर्फ 4 साल के हैं आप?
2: और क्या।
0: अरे वाह, कैसे हैं आप?
2: कैसे हम अच्छे हैं।
0: अले तो त्या बोला है।
2: आप तो सुन रहे
0: ता ता सुना आपने तू बातें
2: तो बात है कहाँ सुना, दो तीन दाना सुना, एक वो कौन था
0: अले तो
2: सलप लग गई,
0: सलप लग गई कपले में। कपले में छलप लग गया।
2: ना भाई।
0: अले आप तो छोटे हैं। सो भैया हम बता दें, ये हमारे साथ में बादल गोयल जी, जो कि आजकल काफी ज्यादा छा रहे हैं और 2 दिन से बहुत दबा के बारिश करवा रहे हैं। क्या बात है, आजकल आप ज्यादा बरस रहे हैं, मसला क्या है?
2: टेम्परेचर तब भी तो लो नहीं हुआ।
0: टेम्परेचर नहीं हुआ, लेकिन कंप्रेशर जरूर पूरा चल गया।
2: असल में हम बरस नहीं रहे, हमारी बहन
0: है,
2: वर्षा वो बरस रही
0: है। अरे वाह, क्या बात, सारा परिवार मिल करके खैर किसानों का और आम इंसानों का भला करने में लगे हैं, एंड थैंक यू सो मच इतना बरसने के लिए।
2: वर्षा फिर बादल फिर अंबर,
0: वर्षा बादल अंबर, वाओ क्या बात है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है पूरी फैमिली का। है ना,
2: इसके लिए माता जी से मिली है।
0: माता जी
2: धन्यवाद के लिए,
0: बेशक बेशक उनको पूरा पूरा धन्यवाद जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा ये एक बात बताइए मुझे,
2: बताइए सर,
0: आज सुबह उठते ही खुद से सबसे पहला झूठ क्या बोला था आपने? आज सुबह उठते ही सबसे पहला खुद से झूठ क्या बोला था?
2: खुद से झूठ
0: सबसे पहला, हाँ आज
2: झूठ भी बोला जाता है क्या सुबह?
0: हाँ अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि बस 5 मिनट या बस आज से वॉकिंग पक्की पक्की एकदम।
2: तो वही कि चाय पीने के आधा घंटा पहले कम से कम उठना है, उठते ही चाय पी लेते हैं।
0: देखा, हमें पता था कि कोई ना कोई झूठ हर किसी का रहता है। अच्छा मतलब
2: एक्चुअली सुबह,
0: हाँ
2: सुबह उठ के खाली पेट जो है थायराइड है तो धनिया का पानी पीते हैं, फिर तिफला चूर्ण खाते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं।
0: अच्छा।
2: तो सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में आधे घंटे का गैप रहे, वही झूठ डेली हो जाता है, हो ही नहीं पाता है।
0: ओहो, तो अंदर जाके तो लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा।
2: हाँ वो अंदर जाके गरम ठंडा सब लड़ाई झगड़ा होने लगता है,
0: नहीं ये हमारा है, नहीं ये हमारा है। वाह। एंड मुझे लग रहा थोड़ा सा तबीयत भी आपकी नासाज है।
2: ये तो हमारी इम्यूनिटी, इसीलिए तो तिफला चूर्ण खाना शुरू किए हैं।
0: अरे वाह बढ़िया,
2: इम्यूनिटी इशू हमें तगड़ी है।
0: हाँ हाँ अच्छा, एक और चूर्ण आता है उसको खाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी।
2: कौन सा जहर?
0: गैप, गैप चूर्ण, गैप गैप बीच में जो स्पेस देता है, गैप देता है।
2: ये कौन सा चूर्ण होता है? हमने तो पहली बार
0: ये चूर्ण आधे घंटे पे खाना होता है, आधे घंटे में अगर आपने कुछ खा लिया आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है।
2: अच्छा।
0: तो जब आप एक एक चीज लीजिए खाइए पिए तो उसके साथ ये मान लिए कि आपने गैप चूर्ण ले लिया, फिर आधे घंटे बाद ही खाएंगे, इस तरह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखा,
2: बात में दम है।
0: थैंक यू सो मच, मैंने कहा था ना डॉक्टरी बस किया नहीं है लेकिन आती पूरी है।
2: अरे आप ऐसे ही डॉक्टर है ज्ञान स्थली के?
0: अरे हम तो 4 साल पुराने डॉक्टर हैं।
2: क्या है?
0: 4 साल पुराने डॉक्टर।
2: 4 साल पुराने? नहीं डॉक्टर आप पुराने हैं लेकिन यहाँ अपॉइंटमेंट 4 साल।
0: कैसे हैं आप? क्या बात
2: है, जैसे आपने छोड़ा था।
0: वेरी नाइस वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा, 4 साल पहले अपॉइंटमेंट यहाँ लिया है, बेशक सही है। एंड आपका ये जो आपने प्रॉब्लम बताई है, दरअसल ये सच में इसको करने की कोशिश प्लीज करिएगा, थोड़ा सा गैप मेंटेन करिएगा, क्योंकि ऐसा होता है अगर हम अगल बगल ऐसी चीज़ों को खाते हैं तो ये फायदे की जगह बल्कि नुकसान कर जाता है, ऐसा होता है।
2: अब वो कल से अलार्म लगाना पड़ेगा।
0: हाँ बिल्कुल, अलार्म लगाइए।
2: माता जी का अलार्म बजता है एकदम इमीडिएट पर, हमें अपना अलार्म
0: अलग से लगाना पड़ेगा। भैया आप डिपेंडेंट होना छोड़िए और खुद से शुरुआत करिए।
2: अरे तो सुबह सुबह माता जी की आवाज कान में चली जाती है ना।
0: अच्छा
2: ए, उठना नहीं है, चाय नहीं लेना है। चाय बन गई है।
0: हमारे बादल जी सोचते हैं बादल तो इधर है तो गरज कौन रहा है। बादल जब इधर हो रहा है तो गरज कौन रहा है। तो ये कह रही है तो सब
2: वो आवाज फिर नहीं जाएगी कान में ना।
0: सही बात है, ये आवाज ना आए तो सुबह ही ना हो, बात तो बिल्कुल सही है। सही बात है। एंड थैंक यू सो मच बादल जी, और प्लीज अपना ख्याल आप रखिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे।
2: ओके थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच। सो हमारे बादल गोयल जी जो कि गोंडा से ही सुनते हैं और उनसे बातचीत हुई। अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी हेलो।
3: मैं से मीना सीना साथी सेना, पैमाने से दिल बहलता है मेरा।
0: आपके हाँ है, हेलो। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज आ तो रही है लेकिन ऐसा लग रहा है आप पीसेस में काट काट के तब दे रहे हैं।
3: अच्छा आप ठीक है?
0: अभी एकदम मस्त आ रही है, मतलब एकदम पूरी आ रही है आराम से। सो अपना हालचाल बता दीजिए।
3: मेरा हालचाल सही है, मैंने गाना सुनाई दी आपको।
0: हाँ अपना घर का पता बता दीजिए।
3: घर का पता नहीं,
0: अपना
3: फेवरेट गाना सुनाई दिया था।
0: अच्छा अपना फेवरेट कलर बता दीजिए।
3: मेरा फेवरेट कलर काला है, लाल है, नीला है, ब्लू है, सफेद है।
0: अपना फेवरेट खाना बता दीजिए।
3: मेरा खाना है दाल चावल आलू का भुजिया।
0: अच्छा, और अपनी कमजोरी बता दीजिए।
3: मेरी कमजोरी, कमजोरी तो बहुत कुछ है, कमजोरी ज्यादा नहीं है, मस्ती जाती है। कमजोरी नहीं है, मस्ती जाती है।
0: कमजोरी ज्यादा ये है कि हमें कमजोरी लगती है। मेरी कमजोरी ही कमजोरी है। ऑल राइट, तो भाई ये हमारे साथ में सविता दुबे जी जुड़ चुकी हैं अरखापुर गोंडा से। कैसी हैं आप?
3: मैं बढ़िया
0: हूँ। अरे वाह, आज सुबह उठते ही क्या किया था आपने?
3: मैं सुबह उठी नहीं, मेरे को उठाया गया।
0: आप उठी नहीं, आपको उठाया गया है?
3: हाँ, बाहर से आवाज आया कि हमें चार्जर दो, तो उस आवाज से हमने उठी। अच्छा। दरवाजा खटखटाया गया, मेरे से चार्जर मांगा, तब जाके उठी। उठ जाती हूँ, ऐसा बात नहीं कि रोज रोज उठाना पड़ता है।
0: बहुत सीधे साधे हैं आप। एक अगर चार्जर मांगे जाने की आवाज से आप उठ जाते हैं, नहीं तो लोगों को तो उठाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, पता है ना आपको?
3: जी।
0: ओके, अच्छा ये बताइए, अगर आपको कोई ख्वाहिश पूरी करनी हो और संडे के दिन हो, तो वो आपकी कौन सी ख्वाहिश होगी? थोड़ा सा फिर आवाज जा रही है आपकी, थोड़ी सी आवाज चली गई। हाँ, फिर से बोलिए।
3: दो दिन में छुट्टी लेके रखी हूँ, आज मेरा छुट्टी है, मैं थोड़ा साफ सफाई करूँगी।
0: तो ले तो लिया, रखा कहाँ है छुट्टी आपने?
3: हाँ तो ले लिया हूँ, साफ सफाई करूँगी थोड़ा घर की थोड़ा साफ सफाई करने जरूरी।
0: मतलब कहाँ रखा है? चौकी पे रखा है, कहीं कोने में रखा है, कहीं जमीन पे रखा है? छुट्टी लेके रखा कहाँ? फिर गई आवाज आपकी। आज आवाज लग रहा है बदला ले रही है पुराने, जब हम लोग की अच्छे से बात हो जाती है उसका बदला ले रही है।
3: और साफ है अब?
0: अभी अभी सही है, अभी साफ सफाई में आपने इसकी भी साफ सफाई कर दी, अभी साफ आ रही है। तो कुछ सुनाएंगे नहीं आज आप?
3: हाँ सुनाएंगे, पहली लाइन।
0: हाँ हाँ हाँ, इना मीना डी का
3: नहीं, मैं तो सुनाई थी, मैं सेना साथी सेना। अच्छा सर, पैमाने किसको बोलते हैं?
0: पैमाना? पैमाना पूछ नहीं, आप किसे बोलते हैं?
3: उसका अर्थ नहीं जानती मैं।
0: पैमाना मतलब कोई भी चीज नापने का जो यंत्र होता है।
3: अच्छा।
0: उसे बोलते हैं, जैसे लीटर नापने का होता है ना, फिर किलोमीटर। अच्छा, होता है। अच्छा। मीटर होता है, उसी तरह पैमाना होता है, मानक।
3: अच्छा, पता नहीं था।
0: कोई बात नहीं, हमको जो पता है वो हम बताते जाएंगे।
3: मैं से मीना से ना साथी से ना पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से।
0: अरे क्या, थैंक यू।
3: इसीलिए सोच रहे थे पैमाने किसको बोलते हैं, मुझे मेरे को पता नहीं था, आज पता चला।
0: आज पता चला कि पैमाना किसे बोलते हैं, राइट?
3: जी,
0: याद रहेगा ना।
3: मापा कुछ भी नहीं जाता। हाँ। जैसे कि मेरा आपका ये संपर्क ज्ञानस्थली सा नाता रिश्ता कितना है, उसका तो कोई ना माप सकेंगे, ना आप माप सकेंगे, ना मैं माप सकूंगी, ना कोई माप सकेगा।
0: कोई नहीं, कोई है ही नहीं जो माप सके।
3: है ही नहीं।
0: और किसी ने हिम्मत की तो मैं बताता हूँ, रुको भी।
3: अच्छा, आप हिम्मत करके तो ही ना बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे।
0: नहीं मतलब क्या, किसी ने अगर हिम्मत भी की तो मैं बताऊंगा फिर कायदे से। ये कह रहा हूँ,
3: आप नहीं बता पाएंगे, आप तो खाली बातों में उसको घुमा सकेंगे, दिमाग घुमा सकेंगे बातों।
0: अरे मुझे लगा, देखिए वैसे घुमाना बड़ा महंगा पड़ जाता है, तो ऐसे ही बातों में घुमा लिया जाए। थैंक यू सो मच सविता जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मस्त था। और आपकी आवाज़, आपका अंदाज, जब आप एंट्री लेती हैं बच्चों के गाने से, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो ये हमारे साथ में रही सविता दुबे जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की, और लगातार आपसे बातचीत जारी है क्योंकि आज संडे का स्पेशल शो है। आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 6393 316429, हर रविवार होती हमारी आपकी बातचीत 10 से 11 गागा गुंडा विदार चेतना में। फिलहाल आइए चलते हैं, देखते हैं अगली कॉल पर कौन कॉलर हैं जो आ गए हैं अपना स्वागत कराने। हाँ जी हेलो।
1: हेलो गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग आपको भी। ये आप आपका हेलो से पहले जो सांसें खींचती ये बड़ा बढ़िया लगता है।
1: पहले से ही हंसा दिया कि अपना स्वागत करने के लिए, देखते हैं कौन आ गया।
0: अरे अच्छा इसमें हंसी आ गई आपको।
1: तो आपको हंसी आ गई कि हम ही अपना स्वागत कराने के लिए आए।
0: अच्छा आपको आई होगी, खैर हमको ज़्यादा नहीं हंसी आई, मतलब हमको ऐसा लगा नहीं कि हमने कोई ऐसी बात बोल भी दी है। खैर कोई बात नहीं, अगर लग गई है आपको ये बात तो बहुत अच्छी बात है। तो स्वागत करा मतलब कैसा कराना चाहेंगे आप बताइए। चलिए
1: सर आप जैसे करना चाहें, आपकी जैसे इच्छा हो स्वागत करने का ना वैसे ही कर दो।
0: अच्छा वो कौन सा गाना है, थोड़ा थोड़ा मीठा खट्टा लेते चलो, थोड़ी बात और प्रश्न लेते चलो, आज अनु से पूछना है मुझे। पूछूं?
1: पूछो।
0: अच्छा तो वही सवाल आपसे भी है।
1: कौन सा सवाल?
0: वही सवाल।
1: वही क्या है?
0: वही सवाल आज आपसे भी है, बताइए उसका जवाब।
1: वही तो सर, वही जवाब ही आज आपके लिए भी है मेरी तरफ से।
0: ज्यादा दिमाग लगा लिया। चलिए प्रश्न सुनिए, देखिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। प्रश्न मेरा ये है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है वो शेफ बनने के चक्कर में कोई ऐसी चीज आपने बनाई हो खाने में जिसे देखकर घर वालों ने कहा है रहने दो बाहर से ही मंगवा लेंगे, रहने दो तुमसे ना हो पाएगा।
1: सर कितना भी गड़बड़ कर दो पर घर वाले ये बोलते ही नहीं है कि बाहर से मंगवा लेंगे, कहते हैं इसी से काम चला लेंगे।
0: देवता है घर वाले आपकी कसम से। मतलब हमने तो एक बार चाय बनाई थी, इतनी जहरीली चाय बनाई थी जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। मतलब एक घूंट अगर लगा लिया तो उसके बाद अगले घूंट के लिए आप इस पृथ्वी पर रहेंगे जीवित या नहीं मुझे भी नहीं पता था। मतलब उसमें हमने सारे मसाले मिला दिए, पता है हमने एक बार देखा कि भाई कोई बना रहा है जिसमें उसने काली मिर्च मिलाया है, इलायची डाला है, तो उसमें हमने बड़ी इलायची भी डाल दिया, छोटी इलायची भी डाल दिया, काली मिर्च भी डाल दिया, लौंग भी डाल दिया और अदरक भी डाल दी। अब ज़रा सोचिए कि उस चाय का क्या हाल होगा। नहीं बस यही तो नहीं हुआ था ना, हमको भी यही लगा था। वो एकदम बकवास चाय बन गई थी। मतलब वो उसका टेस्ट क्या था हमको भी नहीं पता था, ऐसा लगा था कि कई सारे केमिकल्स मिला लिए गए हैं, वो क्या होने वाला भगवान जाने आगे। नहीं तो गला ही ना बचेगा ना फिर तो। नहीं तो मतलब उसके लिए जीवित रहना जरूरी ना, जब गला अगर सही हो तो, क्योंकि उसको पीने के बाद कोई स्कोप बचता नहीं था। ऑलराइट तो कुछ ऐसा कभी आपने बनाया है जो गड़बड़ हो गया और घर वालों का रहन तो तुमसे नहीं हो पाएगा?
1: ऐसे तो हमको लगता है एक बार मैं ना इडली बना रही थी।
0: क्या बना रही थी?
1: अच्छे से बना दिया था इडली।
0: अच्छा इडली बना रही थी आप फिर?
1: हाँ तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से बना दिया था, तो फिर फाइनली हमको छुट्टी मिल गई थी।
0: फाइनली छुट्टी मतलब क्या? अच्छे का मतलब सच वाला अच्छा या वो कमेंट कर रही बहुत गंदा बना था क्या था?
1: अरे नहीं तो गंदा बना था।
0: हाँ तो ये ऐसे साफ साफ बोली ना, साफ सुनना मुझे पसंद है।
1: अच्छा बंदा तो फिर कहे कि छुट्टी मिलती, गंदा था तो छुट्टी मिल गई।
0: ये तो हमें आपकी चाल का अंदाजा, जैसे बाकी घर में कई लोग यही करते हैं कि अच्छा बनाएंगे नहीं, बनाएंगे तो ये लोग की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, फिर रोज रोज मांगेंगे ऐसा गंदा बनाओ कि आइंदा पूछे ही ना, ये इनकी हिम्मत ही ना पड़े। ऐसा होता है ना?
1: ऐसा होता है लेकिन सर कभी कभी ऐसा करने से भी नहीं बचते।
0: हाँ नहीं तो फिर आपके घर वाले आपसे ज्यादा होशियार है ना, तो बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि सबको पता है पिछली बार बनाई थी तो अच्छी थी, इस बार ऐसी कैसे हो गई।
0: सही बात
1: है। कुछ करके किया है, ऐसे कोई शरारत है, इसको सही से करो।
0: सही बात है। आप जैसे लोगों को तो आप जैसी फैमिली मिलना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, गुड, कीप इट अप, ऑसम।
1: आपको ना खुशी मिल जाती है जब मैं पकड़ी जाती हूँ।
0: बिल्कुल खुशी मिलती है।
1: कभी मेरा सपोर्ट कर दिया करो, फैमिली वालों पे इतना सपोर्ट क्यों करते हो?
0: नहीं, फैमिली क्यों ना सपोर्ट करे भाई, फैमिली आपको सुधारने में लगी है और आप सुधर ही नहीं रहे हो, आप जानबूझ के गड़बड़ बना रहे हो, तो क्यों हम आपका सपोर्ट करें? जाहिर सी बात है
1: नहीं सुधर सकती, क्योंकि
0: जानबूझ के लगी रहा था। अरे वाह, बोलते मीठा है खाते तीखा, ये होता कैसे? मतलब इनपुट कुछ और हो रहा है, आउटपुट कुछ और आ रहा है, मतलब प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये बदल कहाँ रहा है, मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है?
1: ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको तीखा बहुत पसंद है।
0: अच्छा चलिए, नेक्स्ट वीक तक हो सकता है, नेक्स्ट वीक तक हो सकता है हम पता लगा लेंगे, कोशिश कर रहे हैं, हमने अपने जासूस छोड़ दिए हैं, पता चल जाएगा।
1: अच्छा वैसे भी आपके तो बहुत सारे
0: चांस। बहुत सही, ये डर बना रहना चाहिए, चाहे हो या ना हो, डर हमेशा रहना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए, बड़ा अच्छा आज आपने बातचीत हमसे की, एंड आपके ये जो टेस्ट है वो हमेशा यूं ही बना रहे और आप ऐसे ही खाते रहे और मीठा बोलते रहे, थैंक यू सो मच।
1: सर मुझे ना आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज मैं देखना चाहती थी, वो मैं देख नहीं पाई।
0: रेडियो पे देख नहीं सकती आप? हाँ बताइए।
1: अरे आज नहीं, वो तो मैं पिछले संडे को देखना चाह रही थी।
0: हाँ हाँ, क्या
1: अभी वो नहीं बताऊंगी, वरना सबको पता चल जाएगा।
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, आप रेडियो पे भी देख सकते हैं, अगर आप महसूस करना जानते हैं तो डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। एंड
1: मैं सोचती हूँ ना, काश ऐसा रेडियो बन जाए कि जिससे आप लोग दिखे और हम लोगों को आप भी देख पाए, फिर हम खूब शरारत करें, खूब शरारत करें।
0: हमसे ना हो पाएगा, हम देख ना पाएंगे। अरे बारिश बहुत हो रही, पर्दा भीग जाएगा, बदलना पड़ेगा, रहन दीजिए रहन दीजिए, ये ना हो पाएगा इस वक्त, इस सीजन में तो नहीं हो पाएगा। चलिए थैंक यू सो मच अनु, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। बाय बाय, टेक केयर। तो भाई ये थी हमारे साथ में अनु, जिन्होंने हमसे बातचीत किया है। अब फिलहाल लेक ले रहे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जो कि ज़रूरी है, और म्यूजिकल ब्रेक के उस पार हम वापस से हाजिर हो रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल आप बने रहिए अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, क्योंकि इस वक्त स्पेशल हो गया है शो, गाय गुंडा वेदार चेतना।

0: क्या बात है, तो भैया पूरा मूड बन चुका है इस वक्त संडे स्पेशल वाला, ओनली ऑन रेडियो 89.6 FM। और दलेर मेहंदी जी पाजी जहां जय, वहां माहौल ना बने ऐसा कहां हो सकता है। फिलहाल माहौल बनता जा रहा है क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस आते जा रहे हैं चैट बॉक्स पर संडे स्पेशल शो में। तो चलिए बताते हैं भाई किन किन के मैसेजेस आ रहे हैं, कौन कौन जुड़ चुके हैं, और उसके बाद जोड़ते हैं आपसे कॉल इन प्रोग्राम में आपके गुड मॉर्निंग गोडा शो में आपके मॉर्निंग जोकर जी अदनान। फिलहाल जो हमारी फैमिली है वो इस वक्त उठ चुकी है और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ तक आ गए हैं। और हम बता दें कि भाई पूर्णिमा से हमने पूछा था कि हलवा क्यों बनाया, तो आपने बताया कि मम्मी को पसंद है और आज संडे भी है, बच्चे भी घर पे हैं, तो सोचा कुछ मीठा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। एंड इसके बाद जो है कृति केवल्य हैं, सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। धर्मेश त्रिपाठी हेलो, आपका भी स्वागत है। और सुजीत जी हैं, गुड मॉर्निंग टू यू, वी आर विद यू, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। एंड यस प्रीति जी ने लिखा है जिंदा दिली, इसी का नाम है हमारा गुंडा, वाओ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। एंड धर्मेश आपको पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड यस गुमनाम उद्यालक शर्मा मौजूद हैं, आपने लिखा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं। फिलहाल चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं दूर से कौन आया है मिलने हमसे। हाँ जी हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर,
0: गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
1: तनुश्री बात कर रहे हो महाराष्ट्र से।
0: मैं अदनान बात कर रहा हूँ गोंडा से। नहीं मैं बात कर रही नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ओके ऑलराइट, कैसी है तनुश्री, अपना हालचाल बता दिए। तो हम कैसे समझे कि आपका हाल भी बढ़िया और चाल भी बढ़िया है?
1: इधर आकर देखना पड़ेगा।
0: अच्छा, वो अभी फिलहाल बहुत महंगा पड़ जाएगा। एक काम करते हैं, एक आपसे बढ़िया सा कोई गाना सुन लेते हैं, जरा कुछ लाइन जरा सुना दिए, माहौल बन जाए आज के संडे स्पेशल का। पुराना कोई हिंदी गाना।
1: हाँ सर,
0: अरे वाह। क्या बात है, क्या बात है, इनको भी गाने कस्टमाइज करने का बड़ा शौक है कि गाने में अपनी लाइन जोड़ करके अपनी सिचुएशंस बता दिया जाए। सो कुल मिलाकर के अब आप जुड़ गई हैं फाइनली गोंडा एफएम के साथ और आपको बहुत पसंद आया है रेडियो ज्ञानस्थली, राइट? बहुत बढ़िया। अच्छा सेम क्वेश्चन आपसे भी है तनुश्री, जैसे आप कुछ अभी कुछ खाना ना बनाते हो घर पे आप कभी कभी?
1: हाँ सर, जब मेरा मन होता है ना कि मतलब मैं खुद के लिए तो मैं अच्छा बनाती पाती हूँ, पर दूसरों के लिए मुझे बनाना तो डर लगता है कहीं ज्यादा हो ना जाए, कभी कम ना हो जाए। तो इसलिए मैं बनाती हूँ पर मैं खुद के लिए बनाती हूँ।
0: ये सब आपकी चाल हम समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने बनाया हो, गड़बड़ हो गया हो, तो घर वाले ने कहा हो कि रहने दो तुमसे नहीं?
1: हाँ सर, गड़बड़ तो हो भी है। एक दिन अच्छा। मैंने वो हमारे अच्छे राव से बोलते हम मैंने वो बनाया था, वो क्या पता मतलब वो ठीक से नहीं बना, तो हम दोनों मतलब घर वालों के डर से मैं और मेरे बहन ऐसे खा रही थी। तो एक दिन मतलब वो हमने फिर मैंने बोला छोड़ दो बहन ये तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारे घर में तब मुर्गियाँ थी, तब नीचे जो पंडित था ना तो मुर्गियाँ खा लेती थी, पर मैंने बोला अरे मुर्गियाँ तो खा रही है, तो हमने सब मुर्गियों के सामने रख दिया, पर मैं सर जब हमने छोड़ दिया खाना तो मुर्गियों ने भी छोड़ दिया खाना।
0: वाह भाई वाह, इंसानों की बात मैंने पूछी थी, आपने इंसान से जानवर वाली बात बता दी कि मुर्गियों तक को एहसास हो गया कि भैया ये आज गड़बड़ बनाया, आज तो इसको छूने वाला नहीं। हमारी मुर्गी, मुझे आपसे अब क्या बताए, बेचारी मुर्गी को लेकर हमको बड़ा अफसोस हो रहा है। कैसी है मुर्गी, अभी ठीक ठाक है?
1: हाँ, हो रही हूँ, टिकटॉक ही थी तो मैं छोड़ दिया, तो टिकटॉक ही हो गया।
0: थैंक गॉड। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उसकी खैरियत बता दी कि वो ठीक ठाक है। आप ठीक ठाक है? अभी हमें याद आया, आपसे भी पूछ ले। पक्का ना? अच्छा ऐसा तो नहीं उसी दिन के खाने के बाद से आपके सुर जो है वो और बढ़िया हो गए हो? अच्छा ऐसा नहीं हुआ ना? पक्का? अच्छा तब ठीक है। चलिए आप जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और आपने गोंडा एफएम उत्तर प्रदेश में कॉल किया है, तो मैं कुछ हिंदी के डायलॉग्स बताऊं तो आप उसको मराठी में बोलेंगी? ओके तो चलिए, ऐसा बोलना है आपको कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सनोरिटा।
1: मोटा मोटा शहराती ऐसे छोटे छोटे तो मतलब मोटा मोटा शहराते जो छोटे छोटे गोष्टे तो होते रहते
0: हैं। मोटे मोटे नहीं, हमने बड़े बड़े बोला है, मोटे मोटे थोड़ी ना बोला हमने। अरे तो यहाँ मोटा मतलब मोटा हो गया,
1: तो मराठी में से बोलते मोटा मोटा चेहरा तो छोटे छोटे गोष्टे तर होते रहता।
0: तो यहाँ पे जो छोटा बोलते वहाँ पे छोटा बोलते, यहाँ पे बड़ा जो बोलते उसको मोटा क्यों बोलते वहाँ पे?
1: अब मुझे क्या पता सर, जो मराठी बोलते
0: हैं। पक्का ना मोटा मोटा बोलते? आप मुझे चिढ़ा तो नहीं रहो?
1: नहीं
0: सर, मुझे लगा आप मुझे चढ़ा रहे हो, मोटा मोटा मुझे बोल रहे हो, ये मैंने कहा इतना मोटा भी नहीं हूँ मामा। ठीक है वही तो, इतने मोटे तो हम दिखते भी नहीं, मतलब आपने दो बार मोटा मोटा बोला तो ज्यादा मोटा हो गया ना फिर तो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको बख्श दिया, नहीं तो हम लगा था आज हम भी गए। अच्छा अगला डायलॉग बोले?
1: हाँ।
0: ओके अगला डायलॉग है कि तनुश्री का गाना सुनना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है।
1: तनुश्री का गाना ऐकना सोपं
0: नाही, मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है।
1: हाँ तनुश्रीचं गाणं ऐकणं बोलते मराठी मराठी
0: असंभव असंभव असंभव बोलना है।
1: सर आपकी वजह से मेरी मराठी कमजोर हो
0: गई। ये देखो भाई
1: सवाल कर रहे हैं कि मैं मराठी में आंसर नहीं दे पा रही क्योंकि मराठी हमारी बहुत बोली जाती है, अब तो मेरी मराठी कच्ची हो गई है।
0: इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भाई मराठी बोलने वाली ये बच्ची जो है इनको हमारे बोलने से हमारे सवालों से इतनी दिक्कत हो गई कि ये मराठी बोल गई है। पक्का यही है?
1: अब फिर क्या, अब हिंदी में आता से नहीं हिंदी में झूठ क्यों ना, तो सर घर में तो सब मतलब कई कई बार पहले हिंदी में जब बात करते थे तो मराठी के शब्द आते थे, अब मराठी में बात करते तो हिंदी के शब्द आते हैं।
0: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, मतलब कुछ तो इधर उधर हो रहा है जो लोचा हो रहा है आपके साथ, कोई बात नहीं बच के रहिएगा।
1: कोई बात नहीं, अब क्या घर वालों को सब पता है तो घर वाले मैनेज कर लेंगे, आप भी मैनेज कीजिए।
0: हाँ आई मैनेज एंड प्लीज अगले सप्ताह आप थोड़ा सा एक गाना बढ़िया सा रेडी करके हमको सुनाइएगा, वही उसी पे आप क्या बोलते हैं हारमोनियम पे, राइट? ठीक है हारमोनियम पे हम सुनना चाहेंगे, जैसे अपने लास्ट वीक सुनाया था हम लोगों को फर्स्ट टाइम, वैसे ही नेक्स्ट टाइम भी आप हम लोगों को सुनाइएगा कोई बढ़िया सा गाना, हम नेक्स्ट टाइम आपसे पक्का सुनने वाले हैं।
1: ठीक है सर।
0: हाँ हारमोनियम लेके बैठिएगा अगली बार। हाँ हाँ नहीं इस बार तो आप जैसे वो लेके बैठे ना खाने का थाल, तो ठीक है खाना खा लिए, लेकिन नेक्स्ट वीक पक्का मतलब हारमोनियम लेके बैठिएगा। ठीक है बहुत अच्छा लगा एंड बहुत प्यारे हैं आप, थैंक यू सो मच तनुश्री, बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ऐसा ना हो कि तनुश्री पूरी तरह से मराठी भूल जाए, उससे पहले हमने कहा यार अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, नहीं तो ये सच में मसला हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब ऐसा यार मतलब इतिहास में मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसमें ही वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्या मैं सच में इतना डिस्टर्बिंग हूँ? क्या ये बात मुझे आज समझ में आ रही है? हाँ, मुझे लगता है कि ये इसमें आप हमारी हेल्प कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं कमेंट करके चैट बॉक्स पे कि क्या मैं सच में इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग हूँ। हाँ, चलिए ज़रा सोचिए, बताइए। फिलहाल हम लेते हैं अगले कॉलर को अपनी कॉल पर। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? आशु मिश्र जी फ्रॉम लखनऊ। तबीयत कैसी है आपकी? अरे वाह, सुन के बहुत खुशी हुई हमको। अच्छा, मुझे भी ये बताइए, सेम सवाल आपसे भी है, कभी आपने ऐसा बनाया किसी भी मतलब कभी ऐसा हुआ कि कुछ बनाया हो आपने और घर में कहा हो कि रहने दीजिए बाब, आपसे ना हो पाएगा?
1: नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीज कभी अच्छी नहीं बनती है तो बच्चे मुंह पे बोल देते हैं भी नहीं क्या, मामा आज अच्छा नहीं बना।
0: अच्छा, नहीं बच्चों की बात अगर छोड़े, अगर आपके वहाँ मायके की हम बात करें, जब आपकी शादी नहीं हुई थी उस जमाने में कभी कुछ ऐसा हुआ?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, शादी जब नहीं थी तो बहुत छोटे थे सर।
0: अच्छा,
1: जन्माष्टमी थी सर, सब लोग व्रत थे।
0: अच्छा अच्छा, फिर
1: तो हमने छौका सर, तो नमक और फिटकरी रखी हुई थी। जब मैम सर प्यालता है, उसमें प्यालता सेंधा नमक पड़ता है, तो पहले आते थे जैसे हुआ नहीं रहता था, तो फिटकरी और नमक दोनों हमने मम्मा से बोला कि आज बहुत अच्छा बना हुआ, खा के देखिएगा मजा है, कहीं अच्छा लाओ, सब लोग खाया जाए, खाए तो मीठा मीठा लगा था, कहीं आज भी कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है।
0: ये घटना नहीं, बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाएगी।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
0: हमें देखा था, हमने पेपर में पढ़ा था, इस पे लिखा था कि एक घर में खिलाया गया मीठा खाना।
1: आई थी फिलहाल तो बताई कि नहीं नहीं, इसमें तो वो तो नहीं डाल दिया, तो क्या मुझे नहीं पता था।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं, ऐसा होता रहता है ना, इसलिए हमने कहा पूछे आपसे, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ।
1: उसके बाद फिर कभी गलती नहीं हुई सर, ऐसी गलती कभी नहीं।
0: बढ़िया, तो चलिए अब दो दो लाइन कोई मीठा सा गाना भी सुना दीजिए फटाफट से। हाँ जी प्लीज।
1: दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक सवाल ये बताइए, ये गम का मतलब ये दुख वाला गम है ना? और इसे अंग्रेजी में जब पढ़ेंगे GUM गम, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा?
1: गम का मतलब जवाब ही बताऊंगी,
0: चिपकाने वाला, चिपकने वाला,
1: गम गम गोंद।
0: हाँ, गोंद, गोंद वाला। तो उसको उसको लेके हम एक गाना, एक लाइन हम भी गा दे। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम चिपकता कम है। ये जब कोई कॉपी वॉपी जोड़ने की बात आती थी या कुछ ऐसा सजाने की, तब यही लगता था कि अपना वाला गोंद सबसे बेकार है भाई, ये चिपक ही नहीं रहा, ये तो पकड़ ही नहीं रहा है। सही बात। एंड थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी बातचीत की आपने और बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड थैंक यू सो मच आशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह ये थी हमारी आशु जी फ्रॉम लखनऊ, और आपसे भी हमारी बात हुई, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और देखिए ना, आज संडे स्पेशल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, 10 से 11 गायका गुंडा विद आरजे अदनान। और ऑफकोर्स आपसे बातचीत के इस दौर में लगातार कॉल्स भी आती जा रही है और हम बातचीत भी करते जा रहे हैं। सबलू जी को पसंद आया है गाना लाजवाब सॉन्ग, थैंक यू सो मच कि आपको हमारा GUM गम वाला इतना ज़्यादा भाग गया सॉन्ग कि आपको तारीफ करनी पड़ी, तारीफ पर तारीफ। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर हमारे साथ आखिर कौन है मौजूद। हाँ जी, हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: अरमान।
0: हाय अरमान, कैसे हैं आप? हेलो
2: हेलो,
0: हाँ कैसे हैं आप?
2: अच्छे हैं।
0: बहुत बढ़िया अरमान, आज क्या सुनाने वाले हैं आप?
2: आज आपको एक हिंदी गीत, हिंदी गाने सुनाने वाले
0: हैं। अच्छा अच्छा, एंड कोशिश करिएगा कि प्लीज एक स्टैंजा ही गाइएगा, क्योंकि हम लगातार और भी कॉल्स लेते रहेंगे, सो प्लीज। हाँ, आप सुनाइए।
2: तेरी

सनम हम तो फिर तो तुम से प्यार करते हैं, सनम हम तो फिर तो तुम से प्यार कर

तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं या सनम, हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम।

0: जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं।
1: थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया अरमान आपने ये गाना सुनाया, और मुझे लगता है कि भाई आपकी आवाज़ सच में बहुत बेहतरीन है, और आप अलग अलग हर बार डिफरेंट डिफरेंट सिंगर्स का आप गाना पिक करते हैं और हम तक सुनाते हैं, और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपकी आवाज़ को सुन करके। एंड आज भी आपने हमको कॉल किया और इतना बेहतरीन सॉन्ग सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो भाई ये तो थे हमारे साथ में ऑफकोर्स अरमान, जिन्होंने अपने अरमान पूरे किए और हमको एक बहुत बेहतरीन सॉन्ग जो है वो सुनाया है, और ऐसा गाना जो अक्सर लोगों की ज़ुबान पे रहता है और सुनते रहते हैं, और काफ़ी बेहतरीन गाना है ये, थैंक यू सो मच। फ़िलहाल अब हम बढ़ने वाले हैं अगले कॉल की तरफ, क्योंकि कई सारी कॉल्स आई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे भाई हम बातचीत ज़रूर कर पाएँ, और इसी कड़ी में चलिए फ़िलहाल अब हम अगले कॉलर की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि अगली कॉल किसकी आ रही है। हाँ जी हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
2: वार्निंग, फोन इज नॉट कनेक्टेड।
1: ऑलराइट, एक बार वापस से आप अपना नाम बता दीजिए।
2: नॉट कनेक्टेड,
3: कनेक्टेड
1: जी, प्लीज बोलिए।
3: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
1: जी जी जी, वालेकुम सलाम।
3: मैं मोरबी गुजरात से बात कर रही हूँ।
1: और मैं गोंडा से बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप?
3: वो मुझे भी पता है।
1: तो मैं ये कैसे, आपको कैसे पता चला? अरे
3: क्योंकि हमने ज्ञान एक्चुअली को फोन किया है और आपकी मीठी आवाज रोज ही सुनते हैं, इसीलिए पता है।
1: मैं डर गया, मैंने कहा आपको कैसे पता चला भाई कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ।
3: लेकिन मैं कुछ दिनों से नाराज हूँ आपसे, मेरी कॉल रिसीव नहीं होती है, मैं इतना कोशिश करती हूँ बात करने की पर होता ही नहीं है, रिसीव ही नहीं होता।
1: आई एम रियली रियली सॉरी, मतलब मैं क्या बताऊँ कि हाँ फिलहाल कुछ हमारे और फैमिली बढ़ गई है और लगातार उनसे बात हुई है।
3: इनकी पिंकी है, दो चार त्रिपुरा और शिमला से हैं, वो लोग आ गए। अच्छा लगता है जब ये सुनने को मिलता है कि हमारे अपने यूपी के फन सेट पे सारे लोग जो रहे हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन जब कोई बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है और उससे फोन रिसीव नहीं होता तो बहुत ही गुस्सा आता है मुझे।
1: हम समझ रहे हैं, कोई जब तुम्हारी कॉल ना उठा।
3: तो मैंने बहुत ही कोशिश की है लेकिन कभी कभी झुंझलाहट सारी हो जाती है,
1: हो जाती
3: ट्राई कर रही हूँ,
1: वही चीज़
3: फोन रिसीव ही नहीं हो रहा।
1: हाँ बताइए, लेकिन हो गया ना।
3: बता तो रही
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो गुस्सा है पहले आप निकाल लीजिए, चलिए गहरी सांस ले लीजिए।
3: हाँ आपसे बात हो गई, उससे खत्म।
1: अरे नहीं पक्का गहरी सांस नहीं लेंगे? अरे हमने सोचा प्रैक्टिस करा दे आप पहले ही।
3: जी, शांत पक्का।
1: अच्छा ये भी बड़ा अजीब होता है मोहसिना कि जैसे आप पूरी तैयारी के साथ जाएं, यार आदमी गुस्सा होगा, अच्छा फिर हम ये बोलेगा।
3: इस दिन 15 अगस्त था, मतलब 16 अगस्त था, उस दिन मैंने इतना कॉल ट्राई किया, इतना किया, फोन नहीं रिसीव हुआ तो बहुत
1: ही झंझट सारी। अच्छा ऑलराइट, सॉरी अगर आपको वाकई बहुत परेशान होना पड़ा।
3: हाँ बात नहीं सर, बस आप ऑन या ना कर सके, ऑफलाइन ही बात हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन बात ही नहीं होती।
1: ऑलराइट ऑलराइट, पक्का पक्का, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन है, अगर ऑनलाइन नहीं हो पाई तो ऑफलाइन पक्का। अच्छा मैं ये कह रहा था कि कभी कभी ऐसा होता ना कि आप बहुत तैयारी के साथ आए हो कि भैया रुको अब बहुत सामने वाला गुस्सा होगा, अभी फिर ये बोलेंगे फिर ये बोलेंगे, और सामने लगे नहीं कोई ऐसी बात नहीं है।
3: हाँ नहीं सर, तो होता है ना, बहुत सारे लोगों के गुस्सा भाग की तरह देखने में लगता है, अरे बाप रे गुस्से का ढेर है, लेकिन हाथ रखते ही वो एकदम से नरम और स्मूथ हो जाता है बराबर।
1: सही बात है, सही बात
3: है। मेरा भी गुस्सा इसी तरह, बस हाँ। जब तक बात नहीं हुई थी तब तक गुस्सा था, अभी झाग की तरह बैठ गया।
1: अरे वाह क्या बात है, पक्का बैठ गया?
3: जी पक्का बैठ गया।
1: चलिए अब हम खड़े होकर के एक सवाल आपसे पूछते हैं।
3: जी जी पूछिए।
1: वही वाला सवाल कि कभी आपने ऐसा बनाया है कुछ कि घर वालों ने कहा हो कि बस ब्रांड तो वही तुमसे ना हो पाएगा।
3: डांट भी बहुत पड़ी थी और खाना भी मुझे ही पड़ा था, हम तीन लोगों ने बनाया था, मैं मेरी छोटी बहन और मेरी खाला की लड़की।
1: अच्छा क्या बोल, ओके
3: गुड़ को कैरमलाइज करके उसकी पपड़ी नहीं बनाते हैं, उसमें मूंगफली डालते हैं।
1: नहीं, पपड़ी बनाते हैं।
3: मेरे से पता नहीं क्या मिस्टेक हुआ था कि वो कैरमलाइज तो हुआ, लेकिन जब उसमें मैंने हाल में ब्रिज करके घी तेल के साथ में रखा तो वो कड़क ही नहीं हुआ।
1: अरे
3: फिर पूरे आधे किले बेली मतलब वो जो था वो पूरा खराब हुआ। तो जाहिर सी बात है हमें तो गुस्सा आ गई। इस बात पे डांट पड़ी थी और मुझे आज की याद है। और जब मैं याद करती हूँ रात पे तो हंसी भी बहुत आती
1: है। अरे इसकी
3: हमारे एक्सपेरिमेंट भी कैसे होते थे।
1: अच्छा अच्छा, मतलब इतनी हिम्मत की वो हुआ नहीं कैरमलाइज, इतनी हिम्मत
3: नहीं, वो कैरमलाइज हो गया था। लेकिन जब उसको मैंने थाल में डाला कि अगर कड़क हो जाए तो शायद मेरी गलती ये थी कि मैंने उसको धूप में रखा
1: तो धूप मलाइज नहीं होगा।
3: हाँ। तो ऐसे ही रहेगा ना।
1: अच्छा।
3: फिर उसमें कुछ और भी मिस्टेक हो गया था तो वो कड़क नहीं हुआ, पपड़ी जैसे बनाई नहीं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, जी
3: वजह से डांट पड़ी थी क्योंकि वो काम हमने अम्मी से छुपके किया था, हमें नहीं थी घर पे, तभी किया था तो डांट के पड़नी थी।
1: चुपके चुपके चोरी चोरी। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो चूंकि हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ऐसे कौन कौन से वक्त पे आपने कुछ बनाया हो और घर वालों ने कहा हो कि भाई अब तुमसे तो ना हो पाएगा, वो हम खुद देख लेंगे, हम बाहर से मंगवा लेंगे, रहने दो। तो अक्सर ये सारे घरों की कहानी होती है।
3: लेकिन अम्मी के घर हुआ है, यहाँ पे आने के बाद तो नहीं हुआ है कुछ, लेकिन अम्मी के घर पे हुआ है।
1: हाँ, ऑलराइट, कोई बात नहीं। सो कुछ सुनाना चाहेंगी आज आप? नहीं तो फिर मतलब पक्का ना, फिर आप मनी मनी तो नहीं सोचेंगे जबरदस्ती गवा रहे हैं?
3: नहीं नहीं ऐसा
1: क्या सोचा करिए हमसे क्या
3: मतलब, इस शो का नाम ही है गाय का गोली।
1: हाँ हाँ वही हमने कहा, सोचा भी करिए तो क्या मतलब है। ऑलराइट प्लीज सुनाइए।
3: ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तो तेरे हर एक हम को गले से लगाया है ना। ए जिंदगी गले लगा ले। थैंक यू सर।
1: वाह क्या बात है, बहुत प्यारा सॉन्ग। एंड थैंक यू सो मच टू यू कि आपने कॉल तो किया ही किया और जाते जाते एक बहुत बेहतरीन सा सॉन्ग दे गए।
3: थैंक यू
1: सो मच, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया भाई। और ये मोरबी गुजरात से मोहसिना अंसारी हमसे बात कर रही थी। फिलहाल ऐसे कई कॉल्स हैं जिनको सच में हम रिसीव नहीं कर पाए हैं पिछले 2-3 वीक से या शायद उससे भी पहले से, बट ऐसा जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं हुआ, आपको पता है। और लगातार हम कोशिश ज़रूर करते रहते हैं कि भाई आपसे बातचीत हमारी हो जाए और हम आपसे बातचीत कर ले। और कहीं ना कहीं ये बात अच्छी भी लगती है कि हाँ आपकी कॉल्स लगातार आती रहती है और हमारी बातचीत होती है। और संडे का दिन एक ऐसा स्पेशल डे होता है जब हमारी आपकी प्रॉपर वाली बात हो पाती है ना। तो आज तो हमने कई सारे सवाल किए जिसका आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में जवाब दिया और कई सारे लोगों ने बहुत उसको घुमाया। वैसे मैं सच में बहुत बोलता हूँ क्या? मैं मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है शायद शो में ही ऐसा बोलता हूँ। वैसे आपने सामने भी तो नहीं मिला है, खैर जो लोग सामने से मिले हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ सच में हम इतना ज़्यादा बोलते हैं या नहीं। बहर आज का शो संडे स्पेशल कैसा रहा हमको आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। एंड उनके लिए माजरत जिनकी हम कॉल्स नहीं ले सकते हैं, मतलब नहीं ले पाए हैं, हम नेक्स्ट वीक ज़रूर पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी भी कॉल ले लें। एंड थैंक यू सो मच, आज का ये संडे स्पेशल शो आपको कैसा लगा हमको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू सो मच आज की मॉर्निंग की शुरुआत अपने 89.6 FM के साथ करने के लिए। स्टे ट्यून्ड।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री

0: रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260-981-976 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

0: हाँ जी, सो पानी से निकालो या पानी में डालो, दोनों में डर जाएगी क्या मैम, ये जरा बताइए आप हमको।
1: बिल्कुल
0: पक्का?
1: पक्का
0: कितना?
2: बहुत बहुत बहुत पक्का।
0: हमें लगा बहुत बहुत करके आप स्वागत करने वाली है।
2: देखिए ये तो बच्चों की राइम्स है ना।
0: हाँ बिल्कुल करेक्ट करेक्ट,
2: तो उनको तो पक्का कहना ही कहना है।
0: और क्या भाई, बच्चे तो पक्के पक्के वाले होते हैं। तो चलिए भाई आपका वापस से स्वागत करते हैं आपके अपने संडे स्पेशल बच्चों वाले शो हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी में, और साथ ही साथ इस शो की होस्ट गीता दीदी का भी वेलकम करते हैं।
2: तो मैं भी सभी का वेलकम करती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल और सुबह की राम राम आपको।
0: तो हम एक बात बता दें कि भाई बहुत सारे मैसेजेस आते हैं हाय हेलो के, लेकिन आज पहला मैसेज आया और बहुत ही प्यारा मैसेज है दीदी।
2: ओहो,
0: मानसी का है और मानसी ने लिखा आज उनका बर्थडे है।
2: ओ मानसी, वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू डियर मानसी।
0: हाँ बेशक मानसी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और अच्छी बात यह कि आपने आकर के हमसे शेयर किया है, और जाहिर सी बात है ये एक फैमिली हमारी ज्ञानस्थली।
2: बिल्कुल,
0: और आज हम मिल करके सेलिब्रेट करेंगे, गीता दीदी की स्टोरी को सुनेंगे, देखते हैं क्या गजब कलाई, और उसके बाद हम मानसी को दीदी एक गाना भी डेडिकेट करेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और पहले तो मैं कर देती हूँ एक कि तुम हैप्पी बर्थडे मानसी अगेन, और आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे हंसती रहिए, मुस्कुराती रहिए, और हम आपको ऐसे ही प्यारी प्यारी विश देते रहें।
0: लेकिन इससे काम नहीं चलेगा दीदी, इससे काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, गाना पड़ेगा,
2: गाना तुम ही।

0: क्या बात है दीदी, क्या बात है, आपने मतलब पूरा माहौल फीलिंगफुल बना दिया। मुझे लगता है मानसी को इससे बेस्ट क्या विशेज मिलेगी। गीता दीदी ने खुद अपनी आवाज में इतना इमोशनल सॉन्ग बर्थडे पे सुनाया है। एंड मानसी, आपको लाइफ टाइम बहुत सारा सुकून, बहुत सारी खुशियां मिलती रहे, और अगर आप चुलबुली हैं तो आप ऐसी ही बनी रही, और नहीं है तो बन जाइए प्लीज गीता दीदी का शो सुन करके। हाँ, बच्चों वाला
1: बिल्कुल, मेरे शो में तो सभी चुलबुले हो जाते हैं बच्चों की तरह।
0: बेशक बेशक बेशक। इम्तियाज अहमद भी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग लिखा। गुड मॉर्निंग इम्तियाज, आपका स्वागत है।
1: वेरी गुड मॉर्निंग आपको।
0: बिल्कुल, तो दीदी आज क्या सुनाने वाली हैं आप?
1: आज बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं, और एक नहीं दो दो धमाका होने वाला है।
0: धमाका होने वाला है
1: जी।
0: कान बंद कर ले या आंखें खोल ले या कान खोल ले, ये वाला धमाका है।
1: वो वाला धमाका नहीं होता, ये अच्छा। सीख का धमाका होता है कि लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए, और बहुत सारे मॉरल्स छिपे होते हैं स्टोरी में, उनको फॉलो करना चाहिए।
0: क्या बात है। तो मानसी का भी थैंक यू आ गया है, मानसी ने सुन लिया है आपका गाया हुआ गाना। बिल्कुल, और थोड़ा सा इंतजार करिएगा इस स्टोरी के बाद, आपको एक गाना हम लोग भी डेडिकेट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बेशक। सो क्या है स्टोरी दीदी आज?
1: आज अब फिर सस्पेंस खत्म कर देते हैं। पहले पूरी कहानी ऐसी सुनना चाहते, फिर हम क्या सुनाएंगे?
0: ओके ठीक है,
1: लड़ाई हो जाएगी हमारी आप?
0: लड़ाई नहीं, ललाई हो जाएगी। ललाई हो जाएगी पक्का वाली। ऑलराइट,
1: तो शुरू करें कहानी?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो सारे लोग तैयार हो जाइए मेरी प्यारी सी कहानी सुनने के लिए। होता क्या है कि कई वर्ष पहले एक घने जंगल में चार चोर रहते थे। चोरी से मिला धन वे एक बर्तन में छिपा कर रखते जा रहे थे, और उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज़्यादा किया करते थे। उस समय बाद उनमें से तीन चोर चोरी चकारी झूठ बेईमानी की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब गए। एक चोर बोला, अब मैं ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं पकड़े ना जाएं। दूसरे ने कहा, मैं भी अब शांत और ईमानदार जीवन जीना चाहता हूँ। तीसरे ने सुझाव दिया, चलो जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर में चलें जहाँ हमें कोई ना पहचानता हो, वहाँ कोई अच्छा सा काम धंधा कर लेंगे और आराम से ज़िंदगी गुजार देंगे। तीनों की बात चौथे चोर को पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मौका मिलते ही वो सारा धन लेकर अकेला चंपत हो जाएगा, यानी कि भाग जाएगा। तब चारों चोर जो थे एक शहर में पहुंचे और एक धर्मशाला में ठहर गए। कुछ जानकारी लेने के बाद उन्हें एक वृद्धा का घर पसंद आया। उन्होंने स्वयं को व्यापारी बताते हुए उसके घर में कुछ कमरे किराए पर ले लिए। वृद्धा बहुत खुश हुई और उनकी खूब सेवा करने लगी। चारों ने देखा कि वृद्धा बहुत ही नेक और ईमानदार है, इसीलिए उन्होंने धन से भरा अपना वो बर्तन उनको सौंपते हुए कहा कि माताजी कृपया इसे सुरक्षित रखिएगा, लेकिन ध्यान रहे ये बर्तन तभी दीजिएगा जब हम चारों एक साथ इसे लेने आए। वृद्धा ने वचन दिया, बेटा ऐसा ही होगा, और घर के पिछवाड़े जमीन खोदकर बर्तन गाड़ दिया। एक दिन चारों काम की तलाश में निकले। थक हार कर वे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक स्त्री वहां स्वादिष्ट दही की लस्सी बेचती हुई गुजरी। उन्होंने लस्सी खरीदी और सोचा कि भोजन के साथ पीने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए उन्होंने लस्सी और ज़्यादा लेनी चाही। तीनों चोर बहुत थके हुए थे। चौथा चोर तुरंत बोला, मैं बर्तन लेकर आता हूँ। वह वृद्धा के घर पहुँचा और बोला, मेरे साथियों ने मुझे बर्तन लेने भेजा है। वृद्धा ने कहा, मैंने तो कहा था कि बर्तन चारों के साथ आने पर ही दूंगी। चोर ने चालाकी से कहा, मेरे साथी यहीं पास में बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। वृद्धा बाहर आई और दूर बैठे तीनों चोरों से खूब ऊंची आवाज में पूछा, क्या आपके साथियों ने बर्तन लेने क्या आपने अपने साथी को बर्तन लेने के लिए भेजा है? तीनों ने अनजाने में कहा, हाँ माता जी। वृद्धा ने चोर को फावड़ा दे दिया। वो पिछवाड़े गया और खोद कर वो बर्तन निकाल लिया जिसमें धन भरा हुआ था, और मौका पाकर सारा धन लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। काफी देर बाद तीनों चोर वृद्धा के पास पहुंचे और बर्तन मांगा। वृद्धा ने सारी बात बता दी। तीनों समझ गए कि उसके साथी ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन उन्होंने उल्टे वृद्धा पर ही आरोप लगाते हुए कहा, हमने आपको स्पष्ट कहा था कि बर्तन चारों के आने पर ही देना, आपकी लापरवाही से हमारा धन चला गया। वे वृद्धा को न्यायाधीश के पास ले गए। न्यायाधीश ने बिना पूरी बात समझे वृद्धा को ही दोषी मान लिया और तीनों चोरों को उस नुकसान का हर्जाना भरने का आदेश दे दिया। बेचारी वृद्धा बहुत गरीब थी, रोती हुई घर लौट रही थी। उसी समय उस वहाँ का राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर नगर का हाल जानने के लिए ही निकले थे। जब उन्होंने वृद्धा को रोते हुए देखा तो उससे उसका कारण पूछा। पास ही कुछ बच्चे भी खेल रहे थे, उनके नेता का नाम रमन था। उसने भी वृद्धा की पूरी कहानी सुनी और बोला, भगवान करे उन तीनों को भी उनके कर्मों की सजा मिले। राजा ने रमन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर के कहा, क्या तुम इस मामले का सही फैसला कर सकते हो? रमन ने कहा, हाँ, लेकिन फैसला मैं राजा के दरबार में ही सुनाऊंगा। अगले दिन दरबार लगा। रमन ने तीनों चोरों से पूछा, तुमने वृद्धा के सामने क्या शर्त रखी थी? तीनों ने कहा, बर्तन तभी देना था जब हम चारों उसे लेने आए। तब रमन मुस्कराया और बोला, तो तुम्हारी शर्त अभी पूरी कहाँ हुई है? तुम तो केवल तीन ही हो, जाओ अपने चौथे साथी को भी लेकर के आओ, तभी वृद्धा तुम्हें बर्तन देगी। तीनों चोर निरुत्तर हो गए। राजा समझ गए कि रमन ने बड़ी चतुराई से उनके ही शब्दों से उनका झूठ पकड़ लिया है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश, तुम उम्र में तो छोटे हो लेकिन बुद्धि में बहुत बड़े हो। आज से तुम मर्यादा रमन के नाम से जाने जाओगे और हमारे दरबार में ऐसे मामलों का न्याय तुम ही संभालोगे, तुम ही करोगे। तो देखा, इस प्रकार रमन ने अपनी बुद्धि और न्यायप्रियता से निर्दोष वृद्धा को बचाया और यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा न्याय वही है जिसमें बातों को ध्यान से समझकर सत्य और तर्क के आधार पर निर्णय लिया जाए। तो अदनान जी, बताइए कहानी कैसी रही?
0: मैं तो उस चौथे चोर के बारे में सोच रहा था, वो कहाँ गया होगा और क्या कर रहा होगा। बहरहाल एक बात ज़रूर समझ में आई कि जब इंसाफ की बात आती है, जब किसी को समझने की बात आती है, तो एक तरफा हमेशा समझा जाना घातक, खतरनाक और ख़राब होता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा। लेकिन जब आपने दोनों पक्षों को समझ लिया तब आपको सही उत्तर मिल जाता है कि इसका वजह क्या है, इसका सोर्स क्या है, इसका कारण क्या है।
1: जी, तो हमेशा मतलब सोच समझ कर ही निर्णय करना चाहिए। अब देखिए न्यायाधीश ने कितनी बड़ी गलती करी थी कि बिना सोचे समझे न्याय भी कर दिया और वृद्धा के पास तो कुछ था नहीं जिससे वो उनकी भरपाई करती। तो इससे सीख मिलती है कि हमको हमेशा सोच समझ कर दोनों पक्षों को अच्छे से समझ कर ही न्याय करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए, आप लोगों को कैसी लगी कहानी बहुत अच्छी से बताइए। फिलहाल इम्तियाज़ ने लिखा है, गीता दीदी आपकी कहानी बहुत मस्त होती है।
1: चलिए, थैंक यू आपको ढेर सारा।
0: थैंक यू। और भोजपुरी फरमाइश दो दिन के लिए, ऑल राइट, तो ये आप शाम के आरजे से ज़रूर कहिए जो भोजपुरी फरमाइश लेकर आती हैं। एंड साथ ही साथ, चूँकि हमने कहा था भाई एक गाना किसको डेडिकेट करना है दीदी, मानसी को। जी हाँ, सो उनका बर्थडे है, तो एक बार वापस से हमारे और गीता दीदी और हम 89.6 FM की पूरी टीम और सभी लिसनर्स की तरफ से मानसी को उनके बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये गाना हम सब आपको डेडिकेट कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: Guys.
1: No, Papa.
0: Sleep time now.
1: Okay, Papa.
0: Good night, Johnny.
1: Good night.
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री।
1: तो हम आ गए हैं
0: शहर की
1: हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी के मंच पे, और आज हमारे साथ ढेर सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। उसमें से जैसा कि आप लोग जानते हैं, सानिध्य तो है ही हमारे साथ बंस देशराज, और हमारे साथ बलराज हैं, और छोटे से हमारे प्यारे क्यूट से

0: कि लेडीज फर्स्ट, तो सानिध्या को ही हम मौका देंगे। सानिध्या आज क्या क्या सुनाने वाली हो भाई? हम तो तविता, देखो वो तविता लेकर के आई है। बच्चों जरा एक बार ताली बजा दो तविता के लिए। हमारी सानिध्या जो है तविता सुनाने वाली, कौन सी तविता है आपकी? मोर पे तविता सुनाने वाली है। तो भाई ये मोर जो होता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी, अब जानते हो बच्चों?
1: जी दीदी,
0: हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और बरसात में तो मोर खूब धूम मचाते हैं, जैसे देखते हैं कि काली काली घटाएं छा गई हैं, वैसे ही मोर अपने ढेर सारे पंख फैला करके और डांसिंग शुरू कर देते हैं। डांस डांस डांस डांस है ना सानिध्या, कितना अच्छा लगता है। देखा है आपने मोर को? अरे ओ, इसने मोर को नहीं देखा। कितने बच्चों ने मोर को देखा?
1: दीदी मैंने देखा है।
2: दीदी मैंने
0: भी देखा। अरे देखो सारे बच्चों ने देखा, आपने मोर क्यों नहीं देखा? आपने केवल किताब में मोर देखा है। चलो अब की बार हम लोग कहीं घूमने चलेंगे और आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ ढेर सारे मोर होंगे और वहाँ हम आपको मोर जरूर दिखाएंगे। तो ठीक है, चलिए फिर सुना दीजिए मोर वाली ये अपनी पोयम तविता।
3: बढ़ाता अपने देश की शान, बादल छाए नाचे झूम, खुशियों से भर जाए धूम, रंग बिरंगे पंख फैलाता, सबका मन हर्षा जाता, दर से शरीर ऊंचा तो सुंदर था संदेश कहता, वन वन उपवन और हरियाली मोर परे इनकी रखवाली, प्रसिद्धि की यह शान अनोखी, सबको लड़की प्यारी किसकी बोली,
0: हाँ भाई
3: हम सब।
0: हाँ तो बच्चों देखो भाई, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ शिकारी होते हैं वो इतने सुंदर पक्षी को मार देते हैं, कितना बुरा लगता है ना।
1: जी दीदी,
0: मारना नहीं चाहिए, इतना सुंदर पक्षी है हमारा, सबसे सुंदर सारे पक्षियों में सबसे सुंदर मोर पक्षी होता है, और उसको भी लोग कहते हैं कि क्या करते होंगे उसको मार करके, ये तो मुझे पता नहीं। उसके पंख इतने सुंदर होते हैं, मेरे ख्याल से उसके पंखों के लिए ही उसको मार देते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं भाई, नहीं करना चाहिए, सबको जीवित रहने का अधिकार है। और
1: दी दी दी।
0: हाँ, पंख तो उसके सुंदर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं किसी की सुंदरता को सुंदरता के लिए उसकी हत्या कर दी जाए, है ना
1: जी दी।
0: तो एक तो ये भारत का गौरव है, इतना सुंदर पक्षी है, हमारे देश का जो क्या कहते हैं इसको, राष्ट्रीय पक्षी, तो इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। अगर कहीं ऐसा कोई कोई करता है तो हमें क्या करना, रोकना है उसको, उसकी शिकायत करना है, है ना
1: जी दीदी।
0: तो ये दंडनीय अपराध भी है कि किस इसकी मोर की हत्या, जो भी हमारे गौरव हैं, हमारे देश के जो भी हमारे राष्ट्रीय चीजें हैं उनको नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। यहाँ तो केवल मोर की बात हो रही, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम सुरक्षित रखें जो हमारे देश का गौरव है।
1: जी दीदी, जैसे बाघ।
0: हाँ बाघ है पक्षी, बाघ को भी लोग देखिए आप बहुत मार देते हैं,
1: उसकी स्किन की वजह से,
0: स्किन की वजह से मारते हैं। और दूसरे देखिए, हमने उनके जो उनका रहने का स्थान वो छीन लिया है ना, वनों में रहते हैं तो हमने क्या किया है, वनों, हाँ वनों को काट डाला है और उसकी जगह खेत बना दिए हैं। अब वो बेचारे कहाँ जाए जब हमने उनका शेल्टर ही छीन लिया है ना, तो वो क्या करते हैं, शहरों की तरफ भागते। अब यहाँ उनको खाने के लिए क्या है, तो या तो जंगली मतलब कुत्ते वगैरह मार के खाते हैं, कभी कभी छोटे बच्चों को अभी शिकार कर लेते हैं, कभी कभी जो बहुत गुस्से में होते हैं तो वो बड़ों का भी शिकार कर लेते हैं। तो हमें क्या उनका शेल्टर छीनना चाहिए?
1: नहीं दीदी,
0: है ना, नहीं छीनना चाहिए,
1: नहीं दीदी,
0: वनों को और लगाना चाहिए उनको, ताकि वो जो हमारे जंगली जीव हैं वहाँ पर आसानी से अपना रह सके, अपना जीवन बिता सके। हम क्या करते हैं, उनका छीन लेते हैं आवास।
1: जी दीदी,
0: तो चलो अब चलते हैं हम किसकी तरफ।

0: चले चले चले चले चलो हम शशकर को मौका देते हैं। शशकर आज क्या बताने वाले हो?
1: दीदी आज मैं आप सभी को इंटरनेट दिवस के बारे में बताने वाला हूँ।
0: ओहो थोड़ा सा भाई उन्नति हो गई। ताली बजा दो जरा शशकर के लिए। शशकर मालूम है पहले ये हमेशा छोटी छोटी पोयम सुनाता था, फिर ये कहानीकार बन गया था, बीच में खूब सारी कहानी सुनाता था, अब ये थोड़ा सा थिंकर बन गया है, विचारक बन गया है। देखो आज क्या लेकर के आया है, चलिए सब लोग इसका ध्यान से सुनते हैं।
1: प्रतिवर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेट दिवस। यह विशेष दिन इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के इतिहास और हमारे दैनिक जीवन में इसके क्रांतिकारी प्रभाव को याद करने के लिए समर्पित है। इंटरनेट शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेट और नॉट, जिसका अर्थ ग्रीक भाषा में नाविक या यात्री होता है। जिस प्रकार अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, उसी प्रकार इंटरनेट की दुनिया में सफर करने वाले, इसे नेविगेट करने वाले और इसके माध्यम से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनॉट कहा जाता है। 23 अगस्त 1991 को ही टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाए गए वर्ल्ड वाइड वेब को पहली बार सर्न की प्रयोगशालाओं से बाहर निकालकर आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था। हालांकि इंटरनेट की शुरुआती रूप अर्पानेट इससे पहले आ चुका था, लेकिन आम लोगों के लिए वेब पेजों और ब्राउजर के जरिए इंटरनेट की दुनिया के दरवाजे इसी दिन खुले थे। इसी ऐतिहासिक कदम की याद में हर साल 23 अगस्त को इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। आज इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ना, जानकारी प्राप्त करना और संवाद करना संभव हो गया है। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान के असीम भंडार, ऑनलाइन कक्षाओं और शोध पत्रों तक पहुंचना आसान हो गया है। ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान, क्लाउड कंप्यूटिंग और रिमोट वर्क संस्कृति पूरी तरह से इंटरनेट को की ही देन है। इंटरनेट दिवस केवल तकनीक का जश्न नहीं है, बल्कि यह उन वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने मानव जाति की प्रगति के लिए सूचना के इस महासागर के द्वारा सबके लिए खोला। आज के डिजिटल युग में हम सभी एक सच्चे इंटरनॉट हैं, जो इस अनंत डिजिटल स्पेस में यात्रा कर रहे हैं।
0: बहुत खूब, इतनी सुंदर जानकारी दी है। और देखो बच्चों, एक आज आपको हम सूचना देने वाले हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं वो भी जान लें कि हमारे जो समर जी थे, यानी ठंडी हवा का झोंका था, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज वो शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए लखनऊ गए हुए हैं। बहुत सुंदर कार्य के लिए उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। तो तालियां बजा दो एक बार बच्चों समर के लिए। और मैं चाहती हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा ऐसे ही जो है उन्नति के मार्ग पर चले और कुछ ना कुछ वो हासिल करे, क्योंकि ये मंच आपके सीखने के लिए है। आप यहाँ पे सीखते हैं, कुछ ना कुछ आप तैयारी करके आते हैं, वो तैयारी आपकी फॉरएवर के लिए हो जाती है। तो भाई आप समर कहीं भी हैं, आप कहाँ मतलब शिक्षा मंत्री से मिलने गए हैं, शिक्षा मंत्री आज उनकी मम्मा जो है हमारे साथ बैठी हुई हैं, उन्होंने इतनी सुंदर जो है हमको जानकारी दी है, उसके लिए उनकी मम्मा भी बधाई की पात्र हैं। और हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा खूब खूब खूब आगे जाए। और जहाँ भी आप समर हैं सुन रहे हैं, ज़रूर होंगे आप रेडियो ज्ञान स्त्री 89.6 FM, और वहाँ तक हमारी ये जो बधाई पहुँच जानी चाहिए। तो चलो चलते हैं अब हम बलराज की ओर, और बलराज जो है हमारे बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए आ चुके हैं और वो बहुत प्यारी सी एक पोयम सुनाने वाले हैं। तो जल्दी से सुना दीजिए बलराज।
2: या लघु सरता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिर के हिम से निकल या विमल दूत सा हिम का जल, करकर निनाद कलकल छलछल बहता आता नीचे पलपल, तन का चंचल मन का विवल, यह लघुसरता का बहता जल निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार, रखता है तन में उतना बल, यह लघुसरता का बहता जल। एकांत

0: प्रांत निर्जन निर्जन या वसुधा के हिमगिरी का वन रहता मंजुल मुखरित छड़छड़ लगता जय है जैसे नंदन कानन करता है जंगल में मंगल या लगसरता का बहता जल ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर गिर की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता वसुधा का अंतस्थल या लघुसरता का बहता जल।
1: बहुत सुंदर। देखिए ये कविता हमने सिक्स क्लास में शायद पढ़ी थी और याद करी थी, आज हम वही बच्चे कविता को दोहरा रहे, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि जो हमारे बचपन की कविताएं हैं वो बच्चे जब सुनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम परिचय कराएंगे समर की मम्मी जी का, और बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अब हम चलते हैं देशराज की ओर। देशराज जी, आज आप क्या लेकर के आए हैं?
2: दीदी, मैं आज किसान के लिए कविता लेकर आया हूं।
1: किसानों के लिए? अरे भाई, ये तो बहुत सुंदर कविता होनी चाहिए, क्योंकि किसान जो हैं अगर वो ना होते, ठीक है, तो हमारे लिए अनाज कौन उत्पादित करता?
2: जी दीदी,
1: है ना?
2: जी दीदी।
1: तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
2: लाल बहादुर शास्त्री जी ने।
1: हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान दोनों का नारा दिया था, और एक नारा और जुड़ गया है, जय विज्ञान।
2: जी दीदी,
1: जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो चलिए भाई, हमारे किसानों के बारे में हमारे छोटे बच्चे भी सोचते हैं और इतनी सुंदर कविता लेकर के आए हैं हमारे देशराज जी, चलिए सुनते हैं इनकी कविता।
2: हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से किया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। रवि शश का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश। श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ जड़ में चेतन का विकास। दानों दानों में फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। यह है ना पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धार। हे ग्राम देवता नमस्कार, अध खुले अंग जिनमें केवल हैं, कसे हुए कुछ अस्थिखंड, जिनमें दधीच की हड्डी है, यह वज्र इंद्र का है प्रचंड। जो है गतिशील सभी ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड। झोपड़ी झुकाकर तुम अपनी, ऊंचा करते हो राजद्वार। हे ग्राम देवता नमस्कार, तुम जन जन के अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो, यह राज्य तुम्हारा है अशेष। अपनी कविता से लूं आज मैं विमल आरती तुम्हारी उतार, हे ग्राम देवता नमस्कार।
1: वाह भाई वाह, बहुत सुंदर कविता है। ग्राम देवता उपाधि दी गई हमारे किसानों के लिए, वास्तव में वो देवता तुल्य ही हैं, है ना?
2: जी दीदी,
1: क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए अनाज का को उत्पादित कर रहे हैं, और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी ऋतु हो, वो अडिग खड़े रहते हैं खेतों में, पसीना बहाते हैं। लेकिन मालूम है बच्चों, ये सब तो ठीक है कर रहे हैं हमारे किसान, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन मालूम है उस समय मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि जब अनाज की बर्बादी होती है हमारी आंखों के सामने और हम देखते रहते हैं, उस समय हमें याद करना चाहिए उन किसानों के बारे में, जब हम अनाज का निरादर कर रहे होते हैं, अनाज को फेंक रहे होते हैं, अनाज का सम्मान करने के बजाय उसे नाली तक पहुंचा रहे होते हैं, तो मुझे बड़ा ही कष्ट होता है।
2: जी दीदी,
1: कहते हैं उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।
2: जी दीदी,
1: तो ये सबके अंदर ये भाव होना चाहिए कि जिस खाने के लिए किसान अपना तन मन पूरा जीवन लगा देता है, और वही खाना जब हम उसको नहीं खाते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो ऐसा होना चाहिए क्या?
2: नहीं दीदी,
1: बिल्कुल
2: हमें ऐसा नहीं करना चाहिए,
1: है ना? बड़ी बड़ी पार्टियों में हम जाते हैं और हम देखते रहते हैं कि किस तरीके से भोजन का निरादर हो रहा होता है, लोग ले लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे इतने सारे व्यंजन जो बने हुए वो केवल और केवल उनके लिए बने हुए हैं, इसलिए वो हर चीज़ को अपनी प्लेट में सजा लेते हैं और फिर वो खा नहीं पाते हैं, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस समय देखिए कितनी गर्मी है, या कोई भी मौसम हो तो उसमें पता चलता है, गर्मियों में शादियाँ बहुत होती हैं, सड़ जाता है, फिर उसको जानवर भी पसंद नहीं करता है।
2: जी दीदी,
1: तो ये हमको संदेश पहुँचाना है कि भाई आप लोग जो है अनाज का निरादर ना करें और उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। जिसके पास नहीं है उसके दिल से पूछो कि वो कितना परेशान रहता है इसके लिए, कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, जैसे किसान

0: अनाज उपजाने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करता है। तो आज हमारे बीच में समर जी की मम्मी है, तो बच्चों ताली बजा करके जरा एक बार स्वागत कर दीजिए समर जी की मम्मी का। तो आज हम आप हमारे बीच में उपस्थित हुई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चों के जब पेरेंट्स आते हैं हमारे पास तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात होती है कि वो देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ बैठ करके और इतना ज्ञान अर्जित कर रहा है। तो ये बात तो बहुत ही हमारे लिए गर्व की है। तो आज आप बता रही थी कि समर कहाँ गए हुए हैं।
1: जी दीदी, आज समर अपने प्रधानाचार्य के साथ लखनऊ गए हैं दीदी।
0: अच्छा,
1: तो बताया
0: एक बहुत, हाँ ये तो शुभ मौका है कि उनको जो है शिक्षा मंत्री जी ने बुलाया है। ये ऐसे ही हमारे और बच्चे ये सुन रहे हैं तो वो भी जो है समर की तरह ही बनना चाहेंगे, क्यों बच्चों?
2: जी दीदी
0: बिल्कुल। तो आपका भाई हमारे जो ये छोटे बच्चों का मंच है यानी कि हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, उस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार दीदी जी।
0: जी बिल्कुल भाई, देखिए आप सबको नमस्कार भेज रही हैं।
1: जी दीदी, और जो ये आप अनाज के बारे में बताए ये बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। आज के लोग यही पार्टी में करते हैं, कुछ ले लेते हैं जो खाते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं।
0: बिल्कुल नहीं करना
1: तो
0: चाहिए ऐसा।
1: सोचने की बहुत बड़ी बात है कि ऐसा सब लोग ना करें, ये मेरा हाथ जोड़ के सब लोग से प्रार्थना है।
0: चलिए भाई, ये लोग आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लें, और मैं तो ऐसा ही चाहूँगी। मैं एक छोटी सी घटना बच्चों आप लोगों को बताती हूँ जिसको देख करके मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो घटना आज मैं अपने जो श्रोताओं से भी शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। होता क्या है कि एक दिन हम जो है सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे, तो सड़क पर यहीं पास ही में दाल चावल किसी ने यूं ही सड़क पे फेंक दिया था, मतलब ज़मीन में ही उसको फेंक दिया था। और एक इंसान कितना भूखा होगा सोचिए, उस ज़मीन में बैठ करके वो उस अनाज को खा रहा था। इतना कष्ट हुआ मुझे कि बताइए, इंसान पेट भरने के लिए कहाँ बैठा हुआ है, और कौन ऐसा है कि जो फेंक गया है अनाज को। भाई ठीक है अनाज नहीं खाया जाता घर में, बच जाता है, लेकिन आप उसको बहुत ही इज्जत से बहुत ही सलीके से रख दीजिए तो जानवर भी उसको खा सकता है। और जैसे कि हमने बताया कि वो इंसान कितना भूखा रहा होगा और इस तरह ज़मीन का पड़ा हुआ भोजन वो खा रहा था। तो ऐसे ही किसी को अच्छे से अगर मिल जाता है कि साफ़ सुथरा रखा हुआ भोजन, तो शायद किसी ना किसी का पेट भर जाएगा। तो ये घटना घटी हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे कष्ट हुआ था। और मैं तब से कभी भी जो भोजन कहीं कोई अगर फेंकना चाहता है तो मैं उसको बताती हूँ कि भाई किस तरीके से इसको इज्जत से सम्मान से रखिए, हो सकता है कोई किसी जानवर का पेट भर जाए, किसी इंसान का भी पेट भर सकता है।
2: जी तो, दीदी
0: हाँ, अनाज को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने इतनी प्यारी कविता सुनाई और उसमें इतनी सारी बातें मुझे याद आ गई। तो अब हमारी सानिध्या फिर हमारी तरफ देखो देख रही है और इंतज़ार कर रही है अपनी बारी का कि दीदी कब मुझसे कहें कि सानिध्या और क्या सुनाना चाहती हो।
3: दीदी कहानी।
0: कहानी लेके आई है, देखो सानिध्या के कौन सी कहानी है सानिध्या?
3: दीदी सूर्य किरण और चंद किरण।
0: सूर्य किरण और चंद किरण की कहानी सुनाने जा रही है, तो जल्दी से सुना दो। देखो सारे लोग बैठे हुए हैं और अच्छे से सुना ना। हाँ चलो सुनते हैं इसकी कहानी। ओहो
3: दोनों बातें सच्ची तो झूठी तो सच्ची, सूर्य किरण ने एक बहुत ही चंद किरण की बच्ची।

0: सूरज और चंद्रमा दोनों ने मन सुलझ कराई। सूर्य किरण और चंद्र किरण धरती पर मिलने आई। चंद्र किरण हंस पड़ी चांदनी नदी किधर फैलने। सूर्य किरण चल पड़ी दूसरे देश पर सवेरा लाने। सूरज और चंद्रमा हंसते धरती भी मुस्काई। सूर्य किरण और चंद्र किरण धरती पर मिलने आई।
1: भाई देखिए, लड़ाई भी हुई और दोस्ती भी हो गई। कितनी अच्छी कहानी सुनाया है भाई। ऐसे एक और कहानी थी हम लोग बचपन में कि एक बार छिड़ गई बहस ये हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान है हम में तुम में, इस तरीके की कविता थी। तो देखिए भाई, सही बात है कि जो सूर्य की किरणें और चंद की किरणें बिल्कुल अपोजिट हैं। सूर्य क्या देता है?
2: रोशनी देता।
1: अच्छा ये बताओ कि कितने लोगों को सूर्य अच्छा लगता है? सूरज मामा मतलब अच्छा लगता है।
2: मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
1: और
2: चंद्रमा मामा भी बहुत अच्छे लगते हैं।
1: तो दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ना।
2: जी दीदी,
1: अगर मान लो सूरज नहीं निकलेगा तो ये जो हरियाली है ये भी नहीं होगी।
2: जी दीदी,
1: जानते हो क्यों? क्योंकि सूरज के प्रकाश में ही जो ये पेड़ पौधे हैं अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं।
2: जी दीदी,
1: फोटोसिंथेसिस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना?
2: जी दीदी,
1: तो सूर्य के प्रकाश में ही वो अपने लिए भोजन बनाते हैं, है ना? तो अपनी उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। और देखो भाई, खेत लहलहाते हैं तो सूरज की वजह से। उसके बाद सुखाने का काम कौन करता है? सूरज ही करता है। अगर सूरज नहीं निकले तो हमारा अनाज सूखेगा नहीं और खाने योग्य नहीं रहेगा।
2: जी दीदी,
1: वैसे ही चंदा मामा भी अपनी कम महत्व नहीं रखता है। चंदा मामा जब रात में निकलते हैं तो सारे बच्चों के वो प्यारे दुलारे मामा होते हैं। और जब गर्मी का मौसम होता है तो हम लोग छत पर लेट के चंदा मामा को देखते थे और खूब सारे तारे गिनने की कोशिश करते थे और अपनी दादी से कहते थे, दादी एक प्यारी सी कहानी सुना दो चंदा मामा वाली।
2: जी
1: तो हमारी दादी जी जो थी वो कहानियाँ खूब सुनाती थी और आज मैं भी एक कहानीकार बन गई हूँ। मुझे भी खूब अच्छी लगती हैं कहानियाँ। तो बहुत प्यारी जो ये कहानी सुनाया है सूर्य किरण और चंद किरण दोनों सहेलियों की। तो इसके लिए भाई क्या होना चाहिए? तो बच्चों बस थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर आके गपशप करते हैं और खूब मजे करते हैं, मस्ती करते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। तो ठीक है भाई, देखिए सारे गामा पाधा नीसा सब मेरे साथ है और ये एक गीत बन जाता है हमारे हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी के मंच पे जो है इतना प्यारा गीत। भाई मुझे तो बहुत मजा आता है, कैसा लगता है?
1: मुझे भी बहुत मजा आता है दीदी।
0: बलराज कैसा लग रहा है?
2: अच्छा लग रहा दीदी।
0: तो चलिए भाई अब हम चलते हैं, हमारे शेषकर जी हैं। शेषकर भी अभी कहानी, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहानी नहीं सुनाएंगे, कहानियों का स्टॉक तो उनके पास बहुत सारा है, लेकिन आज उन्होंने एक नई पहल की है। तो चलो भाई कहानी भी सुनते हैं और चलते हैं हम शेषकर की ओर, प्यारे से सुंदर से क्यूट से शेषकर हमारे एक प्यारी सी कहानी सुना। बच्चों कहानी सुनेंगे ना आप लोग?
1: जी दीदी।
0: तो चलो सुनते हैं शेषकर की कहानी।
3: किसी गांव में एक पुजारी रहता था, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था।
0: अच्छा।
3: एक बार उसके गांव में बाढ़ आई, गांव के सभी लोग जरूरत का सामान लेकर ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे।
0: जी।
3: जाते जाते लोगों ने पुजारी को भी चलने को कहा, पर पुजारी ने कहा कि तुम लोग जाओ, मुझे विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा करने जरूर आएगा।
0: बिल्कुल।
3: पुजारी भगवान का इंतजार करने लगा, तभी एक जीप पुजारी के सामने आकर रुकी। जीप में बैठे लोगों ने पुजारी को चलने को कहा, पर पुजारी ने फिर वही जवाब दिया कि तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएगा। पानी बढ़ता ही जा रहा था। कुछ समय बाद एक नाव वाला पुजारी के पास आया और चलने को कहा, पर पुजारी ने उससे भी वही बात कही। पानी अब कंधे तक आ गया था।
0: वाओ।
3: पर पुजारी को अब भी विश्वास था कि भगवान उसे बचाने जरूर आएगा।
0: डूबने नहीं देंगे भगवान जी।
3: पानी और बढ़ने पर वो घर के छत पर चढ़ गया और भगवान का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में एक बचाव हेलीकॉप्टर आता है और ऊपर से रस्सी फेंकते हुए पुजारी को पकड़ लेने को कहता है, पर अब भी वो पुजारी वही बात दोहराता रहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे तो भगवान बचाने आएगा। पानी बढ़ता गया, आखिरकार पानी इतना बढ़ गया कि पुजारी उसमें डूब गया और मर गया। मरने के बाद जब वो भगवान के पास पहुंचा तो भगवान पर चिल्लाते हुए उसने कहा,
0: क्यों नहीं हमको बचाने आए?
3: कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त था, मुझे पूरा विश्वास था कि आप बचाने आएंगे, मैं इंतजार करता रहा पर आप नहीं आए, क्यों? भगवान ने कहा, मैं तो 3 बार तुम्हें बचाने की कोशिश किया लेकिन तुम खुद ही नहीं बचना चाहते थे। पहली बार मैंने तुम्हारे लिए जीप भेजा तो तुम नहीं आए, दूसरी बार मैंने तुम्हारे लिए नाव भेजा पर तुम तब भी नहीं आए, तीसरी बार मैंने तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा फिर भी तुम नहीं आए। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद
0: स्वयं करता है। ये तो बिल्कुल 100% सही बात कही है कि जब हम अपनी मदद स्वयं करते हैं तो ईश्वर भी उसमें पावर लगा देता है ना?
1: जी दीदी
0: बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। ये नहीं कि बस केवल भगवान आएगा, अच्छे से कपड़े पहन के मोर मुकुट लगाए और तब वो तुमको बचाएगा, ऐसा थोड़ी ना। भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को वहाँ पर भेज देते हैं।
1: जी
0: और दीदी। हाँ, और हमें तो खुद, मतलब अगर हम किसी समस्या में घिरे हुए हैं तो हमें निकलने का प्रयास स्वयं करना चाहिए, तभी तो भगवान हमारी मदद करेगा।
1: जी दीदी।
0: तो भाई अब किसकी बारी है? हमारे बलराज नहीं, देशराज जी। चलिए देशराज जी की बारी है।
1: दीदी मैं आज ओ हेनरी की कहानी सुनाऊंगा।
0: ओ हेनरी?
1: जी दीदी।
0: अच्छा।
1: उस कहानी का नाम है आखिरी पत्ता।
0: आखिरी पत्ता?
1: जी दीदी।
0: पत्ता मतलब ताश का पत्ता?
1: नहीं दीदी, पेड़ वाला।
0: ओ चलो देखते हैं।
1: एक छोटी सी गली में दो सहेलियां रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों चित्रकार थीं। एक दिन जॉन्सी बहुत बीमार पड़ गई। वह खिड़की से बाहर बेल की पत्तियां गिरते देखती रहती। उसने गिनना शुरू किया, जब इस बेल का आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं भी मर जाऊंगी। सू ने उसे बहुत समझाया लेकिन जॉन्सी का विश्वास नहीं बदला। रात में तेज बारिश और आंधी आई। सुबह जॉन्सी ने खिड़की से देखा, बेल पर एक पत्ता अब भी लगा था। अगले दिन भी वह पत्ता वहीं था। तीसरे दिन भी। जानसी के मन में सवाल उठा, इतनी आंधी में भी यह पत्ता नहीं गिरा तो मैं क्यों हार मान रही हूँ। उसने धीरे धीरे जीने की इच्छा वापस पा ली। बाद में पता चला कि वह असली पत्ता था ही नहीं। उनकी बिल्डिंग के बूढ़े चित्रकार बेहर मैन ने उस रात दीवार पर पत्ता बना दिया था। बारिश और ठंड में पेंट करते हुए उन्हें निमोनिया हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। जॉन्सी बच गई, लेकिन उस आखिरी पत्ते ने अपनी कीमत किसी की जिंदगी देकर चुकाई थी। सीख, कभी कभी इंसान को छोटी सी उम्मीद किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत बड़ा त्याग बन जाती है।
0: जी बिल्कुल सही बात कही। हमें कभी निगेटिव पॉइंट तो से तो दूर ही रहना चाहिए, निगेटिविटी लानी नहीं चाहिए अपने अंदर, और हमेशा जो है पॉजिटिव बने रहना चाहिए। जैसे कि देखा तुम्हारी क्या शू नाम था,
1: जी दीदी,
0: हाँ, तो उसने देखा वो पत्ता लगा हुआ है, पत्ता नहीं गिर रहा है, तो उसके मन में कैसे भाव आ गए कि जब ये पत्ता नहीं गिर सकता है तो मैं क्यों मरूंगी,
1: जी दीदी,
0: मैं भी तो जीवित रह सकती हूँ। बस वहीं से देखिए कहानी पलट गई और वो बच गई, वरना अगर वो पत्ता गिर जाता, वो चित्रकार उस पत्ते को नहीं बनाता तो कितनी मतलब दुखद घटना घट जाती है ना?
1: जी दीदी,
0: हाँ, तो ऐसे किसी के लिए एक मतलब प्रेरणा बनना ये बहुत बड़ी बात है। वो तो खुद स्वयं तो मर गए, लेकिन उन्होंने एक पत्ता बना दिया ताकि उसको ये लगे ये असली पत्ता है और ये पेड़ से नहीं टूट रहा है। तो ऐसे हमको भी दूसरे के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए काम करना चाहिए, है ना?
1: जी दीदी,
0: तो ये कहानी कई तरीके से हमको बहुत अच्छी शिक्षा देती है।
1: जी दीदी,
0: तो अब भाई सत्यम जी हैं हमारे बीच में, और सत्यम जी आज आप क्या लेकर के आए हैं?
4: नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूँ। आज जापान में आए भूकंप के बारे में, यह घटना बिल्कुल ताज़ा है। आज 23 अगस्त 2026 की सुबह जब जापान के लोग गहरी नींद में थे, लगभग रात के 2 बजे अचानक धरती कांप उठी। दक्षिणी इबारकी प्रांत में आए इस भूकंप की तीव्रता करीब 5.9 बताई गई है, और इसके झटके टोक्यो समेत आसपास के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। सोचिए रात के 2 बजे का समय, ज्यादातर लोग सो रहे हैं, हाँ, और अचानक मोबाइल पर अलर्ट बजने लगते हैं, इमारतें हिलने लगती हैं और लोग नींद से जाग जाते हैं। लेकिन यहीं से जापान की असली कहानी शुरू होती है। भूकंप आया, लोगों को झटके महसूस हुए, कुछ लोग घायल भी हुए, रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन पूरी व्यवस्था ने तुरंत प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट में किसी सुनामी के खतरे की सूचना नहीं, और परमाणु संयंत्रों में भी कोई असमानता स्थिर नहीं बताई गई है। अब सवाल है, आखिर जापान भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा के सामने इतना तैयार क्यों रहता है? इसका जवाब है तकनीक, प्रशिक्षण और अनुशासन। जापान में भूकंप की शुरुआती चेतावनी देने वाली प्रणाली लोगों के मोबाइल फ़ोन और दूसरे माध्यमों तक अलर्ट पहुंचा सकती है। आज सुबह भी लोगों के फ़ोन पर चेतावनी दिखाई दी। जापान में बच्चों को स्कूल से ही भूकंप जैसे आपदाओं से निपटने के अभ्यास कराए जाते हैं।
0: बिल्कुल मालूम है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा आते रहते हैं, अक्सर करके आते रहते हैं
4: जी,
0: जापान में।
1: जी दीदी,
0: और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग्स है, वो भी उसी तरीके से डिजाइन करी गई है ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो सके।
4: जी दीदी,
0: और देखिये, हाँ, जब वहाँ पे बहुत सारे ये अर्थक्वेक आते रहते हैं तो वहाँ इस तरीके के जो मतलब प्रबंधन है वो किया गया है, मैनेजमेंट ऐसा है कि किसी को ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े,
4: यानी जापान,
0: हाँ, पहले से अलर्ट कर देता है। अलर्ट मतलब टेक्नोलॉजी ही उन्होंने ऐसी बना रखी है कि जैसे कोई ऐसी सूचना मिलती है, ऐसा आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं हमको पहले से ही पता चल जाती है। हाँ,
4: तो यानी जापान का संदेश बिल्कुल साफ है, भूकंप को रोका नहीं जा सकता,
0: नहीं, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता,
4: लेकिन उसके सामने
0: प्रभाव को, हाँ, कम किया जा सकता है,
4: उसके सामने तैयार जरूर हो सकते हैं। और दोस्तों, यही बात हमारे लिए भी सीख है। भारत में भी कई क्षेत्र भूकंप के लिहाज में संवेदनशील हैं, इसलिए हमें सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए भूकंप आएगा या नहीं, बल्कि यह सोचना चाहिए अगर भूकंप आया
0: तो गया तो हमें तैयारी करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए जी, उस आपदा से निपटने के लिए
4: जी, क्योंकि आपदा के समय सबसे बड़ी ताकत केवल मशीनें और तकनीक नहीं होती, जानकारी, तैयारी और सही समय पर सही कदम ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
0: बिल्कुल, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसका उचित समय पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी तो दिक्कतें खड़ी हो सकती
5: हैं। जापान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जैसे लगता है कि वो 2050 में जी रहा है।
0: बिल्कुल, और क्या, हमें उससे सीख लेनी चाहिए, और खैर सीख तो हम लोग ले ही रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है।
5: मैं आपको उनकी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगा। दरअसल क्या है कि जैसे हम लोग फुटपाथ पे चलते हैं तो क्या रहता है कि इस जापान ने देखा कि हम लोग के जो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है हमारे इंडिया में, लेकिन जापान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली है कि उन्होंने एक ऐसे टाइल्स का डिस्कवरी की है कि जो जब हम लोग चलें उस पर जितने भी लोग आते जाते रहते तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, और यही जापान ने एक तरह से लोगों के खर्चे को कम कर दिया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो जो चीज़ है वो क्या है कि जनरेट कर रही इलेक्ट्रिक को जी। ऐसा कुछ हमारे देश में भी हो जाता तो कितना अच्छा होता है, हमारे देश में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती। सबसे बड़ी तो इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम है, जैसा बच्चे देख रहे हैं कि आज हमारे स्टूडियो में थोड़ी देर के लिए लाइट नहीं थी तो सारे बच्चे कितना परेशान हो रहे थे। तो गॉड हमें भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जो बच्चों को परेशानी से बचा सके। तो आप किसकी तरफ चलते हैं भाई, कौन अकड़ बकड़ करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, अकड़ बकड़ का टाइम मेरे पास नहीं है, अब मेरे साथ हैं अथर्व, और अथर्व देखो क्या बताने वाले हैं आज। अथर्व
5: दीदी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो हम सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम लोग इसके बारे में ना जाने तो आज का शो शायद अधूरा
0: रहेगा।
5: आपकी बातों से लग रहा है मुझे कि आपको टॉपिक के बारे में पता है
0: कुछ।
5: तो ये टॉपिक बहुत ही फेमस है, हम सभी लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, मतलब जिस टॉपिक के बारे में लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही फेमस हिस्टोरिक इवेंट कह लीजिए आप इनको। आज के दिन यानी कि 23 अगस्त 2023, ये डेट आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आज ही के दिन हमारे इंडिया ने एक ऐसी अचीवमेंट हासिल करी थी कि जिसे हम लोग सालों तक नहीं भूल सकते, और ये दुनिया के सामने एक हैरतअंगेज कारनामा था।
0: जी बिल्कुल
5: जी, हम लोग बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के डेट के बारे में, जो आज ही के दिन हुई थी शाम 6:03 पे। तो हम लोग इसके बारे में शुरुआत से जानते हैं। तो देखिए, तारीख था 14 जुलाई 2023 का, कि जब श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक ऐसा LVM-3 और M4, ये दो रॉकेट हैं जिनका मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूँगा, लॉन्च व्हीकल Mark-3 और Mark-4
0: LVM,
5: ये हाँ जी। तो ये दोनों रॉकेट उनके साथ में फिट किए गए थे, और इनमें 3 मेन कंपोनेंट्स थे, प्रोपल्शन मॉड्यूल, प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर, ये 3 मेन कंपोनेंट्स थे इस मिशन के। तो हम सभी को पता है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के बारे में तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन प्रपोल्शन मॉड्यूल के बारे में कोई नहीं जानता है।
0: बिल्कुल,
5: बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं बताना चाहूँगा, ये ऐसा मॉड्यूल है कि जो स्पेस क्राफ्ट में फिट रहता है, जो कि मून की ऑर्बिट तक पहुँचाता है, यानी कि अगर ये ना रहे तो हम लोग का मिशन तो वैसे ही पूरा ना हो
0: जी।
5: जो आप लोग देखते होंगे स्पीड से रॉकेट जाते हैं और फिर बाद में जो रॉकेट अपने पूरे सिस्टम को खोलता है, तो फिर ये जो प्रपोल्शन मॉड्यूल होता है ये अर्थ की ऑर्बिट तक पहुंचने का इसका मतलब एक रोल होता है, बहुत ही मेन रोल होता है। अगर यही ना पहुंचेगा तो मिशन कैसे पूरा होगा। और लैंडिंग, क्योंकि मून पर लैंड करना इतना आसान नहीं था, आप जानते होंगे हम लोग जब साउथ पोल पर लैंड करे थे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले बार भी ऐसे ऐसे कई मिशन बनाए थे, चंद्रयान 2 चंद्रयान 1, जिसमें हम लोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि हम लोग को साउथ पोल पर उतरने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि साउथ पोल पर लैंड करना किसी के बस की बात नहीं थी
0: जी।
5: लेकिन फिर हम लोगों ने वो कारनामा कर दिखाया।
0: और क्या नाम था शिव
5: उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट, क्योंकि एक हिस्टोरिक लैंडिंग साइट
0: शिव शक्ति पॉइंट है।
5: और इसीलिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि साउथ पोल पर लैंड करना इसीलिए आसान नहीं था क्योंकि मून का जो साउथ पोल है वो सबसे नीचे एल्टीट्यूड पर है, जिस पर विक्रम जो लैंडर था, खैर उसके पास तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जैसे नेविगेशन सिस्टम, कैमरास, लेज़र और वेलोसिटी सेंसर्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा वेलोसिटी सेंसर्स ये बहुत ही मेन चीज़ था जो चंद्रयान 2 में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए, क्योंकि वेलोसिटी सेंसर्स वो होते हैं जो जब स्पीड हम लोग को पहुँचना होता है उस जगह पर तो वो अपनी स्पीड को कम कर देता है और डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, और यही चीज़ चंद्रयान 2 में अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी
0: इसलिए वो असफल रहा था।
5: हाँ, इसीलिए वेलोसिटी सेंसर्स अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए थे, इसीलिए चंद्रयान 2 पर साउथ पोल पर लैंड करना मुश्किल हो गया था और हम लोग उस पर असफल हो गए थे, लेकिन फिर चंद्रयान 3 में हम लोगों ने वो चीज़ कर दिखाया। और फिर बाद में जब विक्रम लैंड हो गया 23 अगस्त 2023 को, तब उसमें से एक छोटा सा ल्यूनर मॉड्यूल था जिसका नाम है प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर एक बहुत ही कह सकती मेन चीज़ था जो हम लोग को, जो साइंटिफिक स्टडी करता था मून के साउथ पोल पर, और हम सभी को पता है कि साइंटिस्ट ने मून के साउथ पोल पर इसीलिए चंद्रयान 3 के इस मिशन को अंजाम दिया था ताकि हम लोग पता कर सकें कि साउथ पोल पर पानी है भी कि नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारा मून है वो 1.5 डिग्री पर टिल्ट है, तो इसीलिए क्या है कि मून की जो सन की जो रेज होती है वो मून तक नहीं पहुंच पाती इसीलिए जो साउथ पोल है वो इतना
0: ठंडा है बहुत ज्यादा।
5: मैं आपको बताना चाहूंगा इसका टेम्परेचर कितना है, -240 से 248 डिग्री सेल्सियस।
0: वहाँ तो हम लोग जैसे लोग जम ही जाएं।
5: जी, वहाँ पर जो क्रेटर्स रहते हैं उसमें ये वाटर आइस जो हम लोग जानते हैं पानी है वो उसमें जम जाते, उसमें फिट हो जाते हैं, और यही चीज़ का पता लगाने हम लोग ने इस मिशन को अंजाम दिया था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रज्ञान रोवर में दो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे, पहला LIBS जो कि लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप था, और दूसरा था APXS यानी कि अल्फा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इनकी मदद से ल्यूनर सरफेस पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि जो आइस था, वाटर आइस था, उसकी स्टडी के बारे में इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को फिट किया गया था प्रज्ञान रोवर में। तो सोच सकती है हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि अगर हम लोग जहाँ कहीं भी से फिट कर दें वो वहाँ काम कर जाती है।
0: बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मतलब ये हाल की ही बात है तुम्हारी, ये सुन करके ऐसा लग रहा कि जैसे ये घटना अभी हाल में ही घटी है।
5: और अभी तो शाम 6:03 पे ये मिशन को पूरे 3 साल हो भी जाएंगे, तो उसको देखना मत भूलिएगा।
0: मैं
5: तो मुझे तो बताते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं इतने।
0: तो बच्चे देखो कितनी ठंड है वहाँ पे कि हम लोग जाएंगे और जम सकते हैं, इसलिए चांद पे जाना कैंसिल। हम हमेशा गाना गाते थे ना, आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए। तो सपने तो सजाएंगे भाई, फिर चांद पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ तो बहुत ठंड है और मुझे अभी से ही इतनी ठंड लग रही है। चलिए भाई, अब कुछ ऐसा कुछ बताना अथर्व कि वहाँ पे हमारे बच्चों का ग्रुप जा सके और वहाँ हम मौज मस्ती कर सके।
5: चांद पे जाना तो पॉसिबल है
0: लेकिन साउथ पोल पे नहीं जाएंगे।
5: नहीं नहीं, साउथ पोल पर कैसे जा पाएंगे हम लोग, वो तो उसके लिए भी फिर हम लोग को टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि ह्यूमन जा सकता है वहाँ पर कि नहीं।
0: तो देखो भाई, चलते चलते ये 4 लाइनें जो है हमारी वो जो सानिध्य है कुछ सुनाने वाली है, तो देखते हैं कि इस समय सावन का महीना चल रहा है और शिव जी की भक्ति में तो हमारा पूरा ये भारत जो है, हमारी इंडिया लीन है इस समय। हर जगह देखिए कांवड़ियों का मेला, हर जगह मंदिरों

0: भीड़ हर जगह ओम नमः शिवाय।
1: और कल तो खैर वैसे सोमवार भी है, तो कल तो देखेंगे आप दुखरनाथ मंदिर पर इतनी भीड़ होगी कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे।
0: और हम तो भाई बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इस आखिरी सोमवार पे भी। तो चलिए सुनते हैं सानिध्या, बहुत प्यारा सा स्त्रोत सुनाने वाली है।

0: सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृदाधीश च चमंगरमंडलमालं।
1: भाई वाह, भाई वाह,
0: संत
1: देखो तो कितनी छोटी सी हमारी सानिध्या है और कितना अच्छा जो है ये शिव जी का रुद्राष्टकम है, बहुत प्यार से सुना रही है। तो सानिध्या, मंदिर जाते हो?
2: जी दीदी।
1: ओहो, पूजा करते हो?
2: जी दीदी।
1: ओ देखो कितनी छोटी सी सानिध्या पूजा भी करती है, मंदिर भी जाती है और इतना प्यारा रुद्राष्टकम भी सुनाती है। तो भाई क्या कहना चाहोगे, तुम लोग ताली बजाओगे कि नहीं?
3: जी दीदी जरूर।
1: तो जरा सा हमारी सानिध्या के लिए जोरदार तालियां बजा दो। वो भाई समय हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का और हम फिर इस वादे के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय इसी मंच पर, यानी कि हम टीरमटी विद गीता दीदी के मंच पर आपसे फिर मुलाकात होगी।
3: और हमेशा की तरह आप हमें सपोर्ट करिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एक एक सपोर्ट हमारे प्रोग्राम को और भी बेहतर बनाए।
1: बिल्कुल। और आप सुनते रहिए
3: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
4: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
5: क्या माँ?

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9816 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: जी हाँ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञान 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। दोपहर हो चुकी है और भाई दोपहर के एक बजे से प्रोग्राम ऐसा होता है जो आपका ही कार्यक्रम होता है जी। ये समय है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM का। मैं जुड़ चुका हूँ आप सभी के साथ मनु, और हमारे साथ हैं आप सभी के फेवरेट वाले आरजे यानी आरजे।
1: एक मैं और एक तू है, आरजे मनु साथ के साथ आरजे अदनान है। जी आरजे अदनान जुड़ गया है साथ में, और वक्त बहुत बेहतरीन हो रहा है। देखिए कितने बज के कितने मिनट हो रहा है, जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: हम श्रोताओं को बता दें कि इस समय ठीक 111 हो रहा है।
1: यही मैंने कहा था।
0: हाँ।
1: बैठे हैं यहाँ चार, इनमें से बचेंगे तीन। अब देखना है कौन जाएगा बाहर। और राइट, डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई नॉमिनेट नहीं करने वाले। वैसे आप सब लोगों का वेलकम करते हैं आपके लाइव ओपन माइक वाले प्रोग्राम में। हर संडे को हम लेकर आते हैं, और इस प्रोग्राम का सीधा सा उद्देश्य होता है कि हमारे गोंडा वासियों में, हमारे लिसनर्स में जो टैलेंट है वो खुद यहाँ आ करके हमसे मिल भी ले, और साथ ही साथ अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। जिसमें आपको अगर सिंगिंग आती है तो आप सिंगिंग कर सकते हैं, अगर आपको

0: बेहतरीन स्टोरी टेलिंग आती है तो आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, और अगर आप आरजी मनु की तरह जोक्स क्रैक करने में माहिर है तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप लिखने के शौकीन है तो अपना लिखा हुआ भी रिसाइट कर सकते हैं। क्यों, बात सही?
1: बिल्कुल सही बात है, और अगर मिमिक्री करना हो तो वो भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिलहाल किसकी करने वाले हैं आप?
1: नहीं, हम तो मिमिक्री कहाँ करने वाले हैं।
0: मुझे लगता है ट्राई किया होगा, आपके चेहरे से लगता है, और आपके चेहरे से लगता है ओमपुरी का बहुत ट्राई किया होगा आपने, आपका चेहरा कुछ कुछ वैसा हो गया है करते।
1: नहीं, हमने ओमपुरी का तो कभी ट्राई नहीं किया।
0: हाँ हाँ, नहीं प्लीज,
1: नहीं हमने अमिताभ बच्चन का ट्राई।
0: अमिताभ बच्चन, अच्छा भाई,
1: चलिए अमिताभ बच्चन तो वो अग्निपथ वाला याद आता है, विजय देवनाथ चौहान पूरा नाम है, माँ का बाप का नाम देवनाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, उम्र 36 साल 18 घंटे और ये 9वां मिनट चल रहा है। पर क्या कहना चाहता है तुम, हाँ कि वो लोग हमारी मौत का दिन कौन सा डिसाइड किया है, हम तुमको दिखाता है कि वो कौन सा टाइम मुकर्रर किया है। ये देख, इंग्लिश बोलता है 6 बजे, आज शाम को 6 बजे मौत के साथ अपना अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट इंग्लिश बोलता है।
0: अरे बाप रे बाप, भैया सब बहुत गजब का था, एकदम लगा 36वीं कॉपी है। और जब आपने माता का नाम दीनानाथ बताया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया।
1: नहीं, पिता का नाम, निकाह पहले पिता का नाम बता देते हैं। ये यही डायलॉग है।
0: आप लोगों को हमारे आरजे मनु की मिमिक्री जो कि 36वें नंबर की थी वो कैसी लगी हमको जरा बताइएगा।
1: अच्छा, ये 36 नंबर जो है, ये समझ नहीं है कि लोग कहते हैं उनके और उनके बीच 36 का आंकड़ा है,
0: 36
1: कोई और संख्या क्यों नहीं चुनी गई, कोई गेस?
0: नहीं, मुझे कोई गेस नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में।
1: कभी देखा हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनके उनके बीच 36 का आंकड़ा।
0: इस बात को आप पूछ सकते हैं, हमारे दो कैंडिडेट्स इस वक्त मौजूद हैं, हरि ओम हैं और अविनाश हैं
1: जी।
0: आप इनमें से किसी से पूछ सकते हैं इस सवाल का जवाब, अगर उनको बताए तो।
1: जी बताइए भाई, हरि ओम जी आपका स्वागत है, और अविनाश जी आपका भी स्वागत है,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो ये मतलब 36 ही क्यों चुना गया, कोई वजह होगी इसके पीछे?
0: जिसने बोला होगा वो 36 साल का रहा होगा तो उसको कुछ ऐसा,
1: मतलब 36 का आंकड़ा है, मतलब 36 अपने आप में कुछ कहता होगा,
0: कुछ कहता होगा।
1: हाँ, क्या कहता है?
0: कान लगाइए।
1: कुछ कहता है ये 36,
0: क्या करो आप बातों की 32।
1: जानते हैं क्या है सर?
0: क्या है
1: 36 को मैंने बहुत दिन तक सोचा कि आखिर में है क्या,
0: है क्या।
1: फिर मैंने 36 लिख कर देखा तो समझ में नहीं आया कि 36 ही क्यों लिया गया। तो जब आप हिंदी वाला 36 लिखते हैं, यानी 3 ये और 6 वो, तो आप देखेंगे जिधर 3 वाले की मुंह है उधर 6 वाले की पीठ है। इकलौता ऐसा अंक है जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बाकी कोई नहीं है। तो जब आप इंग्लिश में लिखेंगे 1 2 3 4 तब नहीं आएगा, लेकिन जब वो 1 2 3 4 लिखेंगे तो 36 3 ऐसे बनेगा और फिर 6 ऐसे बनेगा। तो मैं समझ में आया, ओहो यहाँ पर मामला है।
0: ये नहीं कह, यही हम नहीं कहते कि हड़प्पा की खुदाई में निकले हैं अर्जुन, बहुत ज्ञान लेके निकले हैं, मतलब लिटरली बहुत बेहतरीन। ये सच में सोचने वाली बात थी।
1: हाँ, मतलब मैंने सोचा, मैंने अध्यापक से पूछा भी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर मैंने सोचा कि सोचेंगे और रिजल्ट निकले।
0: मे बी अध्यापक का आपसे वही आंकड़ा होगा, इसलिए जवाब नहीं दिया होगा।
1: अध्यापक का आंकड़ा हमसे एक बार खराब हो गया। उन्होंने हमारे सर एक पढ़ा रहे थे हमको LBS में हिंदी, मैं उसमें MA का स्टूडेंट था। तो उन्होंने पंक्ति बोली कि तुलसी कर पर कर करे, कर पर कर न करे। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी कर पर कर करे, कर पर कर न करे। तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें इस लायक बनाओ कि हम अपना हाथ दूसरों के हाथ पर रख सकें, मेरा हाथ कोई, मतलब ऐसा ना हो कि कोई मेरे ऊपर अपना हाथ रखे। तो उन्होंने बताया कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है, होता ही है। और उन्होंने आगे बोल दिया और इसका कोई अपवाद नहीं है। तो कुछ देर तक हम सोचते रह गए क्लास में, कहा भाई देने वाले का हाथ ऊपर और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और इसका कोई अपवाद नहीं। और फिर उन्होंने कहा अगर हो तो बताओ, मैं तो गारंटी से कहता हूँ कोई अपवाद नहीं। कुछ देर तक मैं सोचता रहा, फिर मेरे दिमाग में एक अपवाद आ गया। क्योंकि मैंने जब मैं कॉलेज में घुस रहा था तो 2 रिक्शा वाले बैठे थे और वो कुछ काम कर रहे थे। उनके कार्य को हमने बहुत गौर से देखा था। तो हमने कहा सर जी एक अपवाद है, जहाँ पर देने वाले का हाथ नीचे और लेने वाले का हाथ ऊपर होता है, कहीं हो ही नहीं सकता। हमने कहा हुआ है, मेरी आंखों के सामने हुआ, उन्होंने बताओ क्या हुआ, हमने कहा सर जीचू नहीं, ये जब ऐसे दी जाती है तो देने वाले का हाथ नीचे होता है और लेने वाले का हाथ ऊपर होता है, अभी मैं देख कर आया हूँ। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ तुम भाग जाओ पता। मतलब वो एक समझ में आया कि मतलब वहां पर
0: तो जो आज आपने फिर सिद्ध कर दिया कि आपकी उत्पत्ति अपवाद से हुई।
1: नहीं नहीं मतलब उन्होंने कहा था उस जगह कि कुछ तो हो सकता है, लो जरा ट्राई करते हैं। तो सब लोग समझते हैं ना कि मतलब ट्राई करने में क्या जाता है, तो दिमाग अगर आप लगाएंगे, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो हमने सोचा ये धोबी कुत्ता का है पालेगा यार, तो बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि वास्तव में वो शब्द कुत्ता था, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अलगनी, जो जिस पर हम कपड़े टांगते हैं। तो धोबी जब लाता है कपड़े को तो अलगनी पर टांगता है, और फिर जब ले जाता है घाट पर तो वहां से लेकर फिर अलगनी पर ही टांग देता है। तो जो धोबी की अलगनी होती है वो न घर के अंदर होती है और न घाट की होती है, तो वो शब्द अलगनी कुत्तदा है। अब वो कुत्ता कुत्ता लोग बोलने लगे, आजकल तो कुत्ता लिखा भी जा रहा है, जबकि धोबी का कुत्ते से कोई संबंध नहीं। अगला शब्द था खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, हमने कहा गधे का पहलवानी से क्या मतलब। फिर मैंने रिसर्च किया।
0: आपने खुद को तो नहीं देखा?
1: हाँ नहीं नहीं, हमने खुद को नहीं देखा, हमने सोचा ये गधा पहलवान हो क्यों रहा है। तो नीचे गए गहराई में तो पता चला कि वास्तव में वो शब्द गधा है, और उर्दू शब्द का है शब्द ये जिसका अर्थ होता है कमजोर। खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, यानी अगर ईश्वर आपके ऊपर मेहरबान है तो कमजोर भी ताकतवर है,
0: हो सकता है।
1: तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो विश्लेषण करने पर सामने आती है।
0: तो चलिए फिलहाल सामने हमारे एक नहीं दो दो विश्लेषक बैठे हुए हैं, हरिओम के रूप में और ऑफ कोर्स अविनाश के रूप में। तो चलिए भाई हरिओम से शुरुआत करते हैं, चूंकि ये फ्लूट प्लेयर हैं और ये ट्यून देने वाले हैं आपको फ्लूट के जरिए, और आपको पहचानना है बॉलीवुड का वो कौन सा गाना है जो फ्लूट की टोन से आने वाला है, हरिओम उसको प्ले करने वाले हैं। एंड आई होप कि आप लोग अंदाज़ा लगाकर जवाब देंगे। एंड यहाँ बैठे मैं अपने दो और कैंडिडेट से, चूंकि अभी एक बच्ची और आ गई प्यारी सी, शानवी से और अविनाश से भी कहूँगा कि आप लोग भी ज़रा पता लगाने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा सॉन्ग इन्होंने फ्लूट से टोन निकाली है हरिओम ने। तो अब जो अगली आवाज़ आ रही है वो हरिओम की आ रही है, अपनी फ्लूट लेकर के तैयार हैं, और अब बस आपको पहचानना है कि आखिर कौन सा ये बॉलीवुड का गाना है।

0: क्या बात है, ये फिल्म भी मेरी बहुत फेवरेट मूवी, बहुत फेवरेट मूवी है मेरी।
1: बट मैं जाऊंगा, प्लीज अभी रिवील मत करिएगा।
0: बिल्कुल,
1: पहला चांस मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को,
0: बिल्कुल
1: जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त लाइव इस शो को, तो आप चैट बॉक्स पे आकर के बता सकते हैं। अरे वाह क्या बात है। चलिए भाई, एक बोनस में इन्होंने कहा लास्ट में एक सॉन्ग भी है, वो भी आप जरूर सुनने वाले। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है इसका अंदाजा जरा लगा करके आप बताइए चैट बॉक्स पर। और ये लीजिए भाई, अनिल शास्त्री जी ने रिस्पॉन्ड कर दिया, बट अभी मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, मुझे लगता है कोई और भी आके रिस्पॉन्ड करे, फिर उसके बाद हम बताते हैं। वैसे हमारे साथ में अविनाश हैं मौजूद और शानवी भी मौजूद हैं। शानवी, आपका भी वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ सर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अविनाश तो बहुत तो खुश नजर आ रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। अविनाश क्या बात है भाई, क्या सोच लिया ऐसा, स्माइल आ गई चेहरे पे।
3: ये जो गाना था कहीं धूप कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
1: अच्छा ओके,
3: लिरिक्स तो पूरी नहीं याद है, लेकिन मैं कनेक्ट कर पा रहा था कि ये वही सॉन्ग है।
1: ऑलराइट, वैसे आपको बता दें अनिल शास्त्री जी ने भी सेम यही लिखा है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ का सूरज,
0: सांझ की दुल्हन बदन चुराए, हाँ। चुपके से आए,
1: चुपके से आए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
0: हाँ
1: शानवी, आपको पता चला था कि नहीं, सही बताइएगा, अंदाजा लगा पाई थी कि नहीं? नहीं लगा पाई थी, इतना सिंपल तो था।
0: ये फिल्म बहुत शानदार है, आनंद।
4: हाँ मतलब हाँ वो आप सीने में अगर देख रहे होंगे, जब चांद वो सूरज जब डाउन हो रहा है, सेट हो रहा है, उनके हाथ में लाइक किताब है और
0: गुब्बारा है,
4: गुब्बारे भी है, लाइक वो एक पर्सन लाइक वो एक आदमी को दिखाता है जो अपने मौत के करीब, उसको पता है कि मेरी डेथ होने वाली है, लेकिन तब भी वो जीना चाहता है, वो लाइफ खुल के जीना चाहता है।
0: मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपकी जिंदगी में कितने लम्हे हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि एक लम्हे में कितनी जिंदगी है।
1: क्या बात है, वाह।
0: तो ये फिल्म यही वही रिवील करती है कि ये मत देखिए कि आपकी जिंदगी में कितने लम्हे हैं। हाँ मुझे पर्सनली बहुत पसंद है।
1: बहुत ही उम्दा सॉन्ग था जो कि फ्लूट के जरिए प्ले किया है हरिओम ने, और अंदाजा लगाया है अनिल शास्त्री जी ने और साथ ही अविनाश ने। चलिए बहुत अच्छी बात है, बोनस के रूप में एक सॉन्ग अभी हम लोग के लिए और बचा ही रहेगा, दैट्स वेरी ग्रेट। तो सिंगिंग की बात चल रही है तो हमारे बीच में एक प्यारी सी बिटिया हमारी मौजूद है, नाम तो हमने बता ही दिया है, शानवी है। सो शानवी क्या लेकर आई हैं आज आप?
2: आज मैं सिंगिंग के अलावा भी कुछ लाई हूँ जो कि मनोज मुंताशिर के मतलब उसे बोले गए हैं।
1: ओके,
2: और ये है कि राम क्यों पूजे जाते हैं।
1: अच्छा,
2: तो मैं शुरू करूँ?
1: श्योर श्योर श्योर, आप मनोज मुंतशिर का लिखा हुआ आप लाए हैं
2: जी,
1: कि राम क्यों पूजे जाते हैं।
0: अभी बॉर्डर टू में उन्होंने गीत बहुत अच्छा लिखा था, संदेश से आते हैं। जब पहली बार बॉर्डर आई थी तो जावेद अख्तर का लिखा हुआ था संदेश से आते हैं, उस बार मनोज मुंतशिर शुक्ला ने लिखा है। क्या बात है, बहुत प्यारे कवि।
2: राम क्यों पूजे जाते हैं? राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वनवास देने वाली कैकेयी को भी उन्होंने कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि समाज द्वारा ठुकराए अहिल्या को भी उन्होंने देवी कहकर बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि जिसे पुत्र की तरह अपने हाथों से मुखावली देते हैं वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। वह एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपनी अयोध्या के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका उन्होंने त्याग दी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने रावण की नाभि में तीर भेद दिया। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने लक्ष्मण को उनकी चरणों में भेज दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो एक भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे।
1: क्या क्या बात, देखिए कितना बड़ा और कितना डीप कॉन्सेप्ट है। यूजुअली जो लोगों को पता है वो बातें करते हैं जिसकी हर लाइन के पीछे उन्होंने दूसरी लाइन बोली और कहा इसलिए नहीं बल्कि इसलिए, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए। तो ये मुझे लगता है हर चीज को देखने का एक नजरिया यहाँ बताया गया है।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी चीज को आप देखते कैसे हो, आप ये देखते हो कि कोई बहुत ज्यादा मान सम्मान वाला है, या आप ये देखते हो कि मान सम्मान की वजह क्या है,
0: क्या है exactly.
1: ये बहुत बड़ी बात है।
0: बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा।
1: हाँ, थैंक यू सो मच शानवी, बहुत अच्छा लेके आई थी। लेकिन हमें तो आपसे सॉन्ग भी सुनना है ना।
2: हाँ ठीक है।
1: तो शानवी बिना सॉन्ग सुनाए जाए, उस दिन शानवी का भी ऐसा लगता है भूख अभी मिटी नहीं है और हम लोग को भी लगता है कि अभी पेट भरा नहीं है। तो चलिए भाई, शानवी का एक गाना भी सुन लेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं अविनाश की तरफ। अविनाश की बहुत देर से मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हैं, क्या ख्याल है जो आप छिपाए जा रहे हैं?
3: ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: इसका मतलब है
3: बिल्कुल नहीं है।
1: ऑलराइट, सो हम बता दें कि अविनाश जो हमारे बीच में है, ये दरअसल हम बहुत सौभाग्य वाले हैं कि ये आईआईटी मंडी से आए हुए हैं। मंडी मतलब ये सब्जी मंडी की बात नहीं कर रहा है, आईआईटी मंडी मतलब हिमाचल का जो मंडी एरिया है वहाँ से आईआईटी है, देश का बहुत जाना माना एक संस्थान है, और वहाँ पे रोबोटिक्स की पढ़ाई करके आप यहाँ गोंडा वापस आए हैं। आप चूँकि गोंडा के रहने वाले हैं, हाँ, साथ ही में आपको जो शौक़ है वो गाने का भी है, सिंगिंग का भी है। तो हम चाहेंगे कि पहले तो एक सॉन्ग अविनाश आप सुना दे, और उसके बाद फिर कुछ बातें भी आपसे हम करना चाहेंगे आपके वर्क रिलेटेड, ताकि हमारे जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं उनको पता चले कि करियर में रोबोटिक्स का क्या रोल है।
0: बिल्कुल सही,
3: ज़रूर। तो जो जो सॉन्ग है वो भोलेनाथ के ऊपर है,
1: वाह,
3: जहाँ पे उन्हें बताया गया है कि वो कैलाश के वासी हैं, तो मैं उन्हीं को ये डेडिकेट करना भी चाहूँगा।
1: क्या बात, बहुत खूब।

0: शंकर संकट हरना।
1: आहा, मतलब इसके आगे सुनाइए, मतलब क्या, मतलब डूब गए हम लोग। जी जी बिल्कुल, हाँ।

0: राजा शंकर संकट हरना।
1: क्या बात है,
2: क्या बात है। ये बताइए, आप बहुत रोबोटिक सीखने गए थे कि गायन सीखने गए? मतलब लगता है कि सिंगिंग सीख के बहुत प्यारी आवाज़ और मतलब मुर्की भी ले लिया, लाभ भी ले लिया, मतलब शानदार।
1: मतलब ये सिर्फ शौक नहीं रखते बल्कि उसकी नॉलेज भी रखते हैं।
2: हाँ, मतलब बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत सावन का महीना चल रहा है, वो देवों के देव महादेव को ये पैसा भजन आपने समर्पित किया। वास्तव में ईश्वर आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे और हम लोग बहुत शीघ्र,
1: बिल्कुल कुछ मनोकामनाएं शायद जल्दी पूरी हों दो हफ्ते के अंदर। और बाकी मैं यही कहूँगा कि रोबोट पे काम करने वाला शख्स इतनी फीलिंग के साथ गए, ऐसा लगता है जैसे कॉरपोरेट कल्चर्स में या कॉरपोरेट के माहौल में इंसान सच में मशीन होता जा रहा है। बट अगर कोई ऐसे इंटरेस्ट एरिया को रखता है, सिंगिंग जैसा है या गायन है, कोई वाद्य यंत्र को प्ले करना, तो बहुत बड़ी बात है,
2: बहुत बड़ी बात है। मतलब वास्तव में वो दिल से गाया है,
1: दिल से गाया। इनके अंदर के आर्टिस्टिक का जो एक पार्ट है ना, जो कलाकार है, वो है। That's very great.
2: क्या बात है।
1: So, अविनाश, चूंकि आप, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि रोबोटिक्स पे आप काम कर रहे थे, तो प्लीज आप बताएं कि क्या काम आपने किया इन शॉर्ट में, और फिलहाल जो युवा इसमें आना चाहते हैं वो कैसे जा सकते हैं, और रोबोटिक्स का फ्यूचर में क्या भविष्य है?
3: जैसा कि अभी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रही है, जहाँ पे जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है कहीं ना कहीं। जैसे कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट मॉडल्स मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, जहाँ पे एनवीडिया ने कुछ मॉडल्स को ऑलरेडी फ्री कर दिए हैं, जो कि कोड को इतने सटीकता से वो लिख सकते हैं जितनी सटीकता से एक ह्यूमन नहीं लिख सकता है।
1: करेक्ट।
3: जहाँ की जो एरर रेट, अगर हम बात करें एरर रेट की, तो वो बहुत मिनिमाइज़ हो जाती है और एक परफेक्शन के साथ वो पर्टिकुलर कोड या एप्लीकेशन हम इजीली बना सकते हैं। तो उसी तरफ एक छोटा सा योगदान मेरा भी था, जहाँ पे जो मेरा रिसर्च टॉपिक था वो था डिजिटल स्मेल का, जहाँ पे हम लोग एक कृत्रिम नाक बोल सकते हैं, मैंने वो कोशिश की बनाने की, जो कि सफलतापूर्वक हमने एक प्रोटोटाइप तैयार किया है और कुछ पेपर्स भी पब्लिश किए हैं, इंटरनेशनल पेपर्स जो हमने पब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोटोटाइप ऑलरेडी रेडी है जो IIT मंडी में है, प्रोटोटाइप ऑलरेडी रेडी है जो IIT मंडी में अभी शोकेस के लिए रखा जा चुका है। उसके अलावा भी बाकी चीज़ें पैरेलली की जा रही हैं, जैसे कि हम अगर कोई चीज़ स्मेल करते हैं तो हमें उसे बहुत देर तक सूंघना नहीं चाहिए, रादर देन कि हल्की सी स्मेल मिल जाए और हम बता सकें एग्जैक्टली कि वो क्या चीज़ है,
1: क्या चीज़ है।
3: तो अभी फ़िलहाल उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि अर्ली एंटिसिपेट कर सके पर्टिकुलर किसी भी स्मेल को।
1: तो अविनाश, क्या ये हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मानव का कोई अंग, मान लीजिए नाक ख़राब है, तो क्या उसका प्रत्यारोपण संभव होगा कि उसको एक ऐसी आर्टिफिशियल नाक दे दी जाए?
3: एक्चुअली प्रत्यारोपण ये पूरा मेडिकल डोमेन में जाता है।
1: करेक्ट।
3: हमारा काम यहाँ से इंस्पायर है, जब कोविड आया तो लोगों के सूंघने की जो क्षमता थी वो चली गई, जिस वजह से उन्हें अंदाजा नहीं मिल रहा था कि वो जो कुछ भी खा रहे हैं वो खाने योग्य है या नहीं है।
1: ओके।
3: तो उसी की ओर एक कदम बढ़ाया हमने ताकि वो जो आर्टिफिशियल नोज है वो एटलीस्ट ये बता सके कि जो पदार्थ आप सेवन करने जा रहे हैं वो खाने योग्य है या नहीं है, या ख़राब हो चुका है, या ख़राब अगर होना है तो कितने दिन में होना है।
1: ओके।
2: वो मतलब इस पर तो काफ़ी शोध किया होगा आपने।
3: बिल्कुल। अभी मेरे साथ में कुछ मेरे जो PhD स्टूडेंट्स थे, इस पर काफ़ी हम लोगों ने लगभग 2 साल तक शोध किया, डेटा कलेक्ट किया, मॉडल की प्रिपरेशन की, डेटा प्रीप्रोसेसिंग की, उसके बाद इस नतीजे तक पहुंचे हैं ताकि जहां पे हमने अभी पेपर इनिशियल स्टेज में पब्लिश किया है।
1: इन शॉर्ट जानना चाहेंगे क्या भविष्य है रोबोटिक्स का
3: इन फ्यूचर? अभी अगर मार्केट को देखा जाए तो अभी बहुत ही पीक पे चल रहा है एक्चुअली जो ये AI फील्ड है, जिस वजह से लोगों की जॉब जा रही है, खतरे में हो रही है। लेकिन इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो पीछे अपने बहुत सारे जॉब लेके आएगा वो।
1: जैसे
3: प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बीच में आया था लेकिन चला गया है, लेकिन इन फ्यूचर वापस से, क्योंकि रोबोट को जो हम सिखाएंगे वो वही कर सकता है, वो सोच नहीं सकता है। अगर वो गलत करेगा तो बताने वाला कौन है? ह्यूमन है,
1: ह्यूमन बताएगा,
3: तो हमें एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पर्सन रखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए जो उस मशीन को ट्रेन कर सके,
1: मतलब ट्रेनर बोल सकते हैं या ऑपरेटर बोल सकते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे मैकेनिज्म है, जैसे एक गाड़ी है, कार है, तो कार के पार्ट्स जैसे जैसे ख़राब होते हैं तो उस तरीके से हम उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड इंजीनियर के पास लेके जाते हैं। साउंड चेक कराना तो साउंड इंजीनियर के पास लेके गए, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियर के पास लेके गए। सिमिलरली जब हम किसी रोबोट को हम देखते हैं तो वहाँ भी काफ़ी सारी मैकेनिज्म अंदर चल रही होती हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास जो काम आएंगे वो डेडिकेटेड पर्सन के हिसाब से आएंगे, तो जॉब क्रिएट होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए हमें खुद को ट्रेन करने की ज़रूरत ज़्यादा है,
2: मतलब हमको रोबोट से ज़्यादा जानना पड़ेगा,
3: हमें अपडेट करने की ज़रूरत है इस समाज के हिसाब से कि क्या चल रहा है मार्केट में अभी। जैसे अगर हम बात करें, पहले जावा चलता था, पाइथन उतना नहीं था बोलचाल में, सी शार्प हो गया, ये सारे बहुत ज़्यादा चलते थे क्योंकि इन पे जितने भी एप्लीकेशन हैं वो बने होते थे। अभी ये सब डिप्रिकेट हो चुके हैं क्योंकि पाइथन के आने की वजह से और मॉडल्स के आने की वजह से हम एक कमांड देते हैं और पूरी वेबसाइट, पूरी एप्लीकेशन विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट बन जाती है, इवन वो लॉन्च भी कर देती है, तो ह्यूमन का कोई रोल नहीं रहा यहाँ पे। तो अब उस चीज़ को सीखने के बजाय हम YouTube से या कोई कोर्स लेकर के खुद को अपग्रेड करें उसी

0: रास्ते पे जो भी चल रहा है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन जो डेप्रिकेट हो चुके हैं उनको पढ़ने के।
1: ओके, और एक लास्ट बात ये कि अगर जो युवा इस वक्त आपको सुन रहे हैं और रोबोटिक्स में वो भी इंटरेस्टेड हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे इसमें वो भविष्य अपना तलाश सकते हैं?
0: हाँ ज़रूर, अगर जो युवा है अगर वो 10th या 12th से हैं, तो मैं उनको इंकरेज करूँगा कि वो पहले खुद के जो बेसिक्स हैं मैथ्स स्पेशली, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। मैट्रिक्स जो होती हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वहाँ पे, और इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती दौर में ज़रूर कठिन लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे बहुत आसान हो जाती हैं वो चीज़ें। और हमें खुद से नहीं करना होता है उस टाइम पे, वो मशीनें करती हैं, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। उसके बाद आप जेई मेंस ज़रूर अपीयर हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और नहीं होता है कोई बात नहीं, बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप के बेसिस पे एडमिशन ले लेती हैं। अगर जेई मेंस और एडवांस क्लियर होता है तो मोस्ट वेलकम, अगर आप IIT आपको मिल जाती है तो वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा होता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके कनेक्ट्स अच्छे होते हैं, तो वो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।
1: अविनाश कैसे पहुँचे IIT तक?
0: मैंने BTech 2022 में जब क्लियर किया, उसके बाद मैंने 1.5 ईयर C# एज अ .NET डेवलपर मैं नोएडा में कार्यरत रहा। उसके बाद मैंने गेट ऐसे ही बस दे दिया कि लेट्स सी, देखते हैं। और मेरा इंटरेस्ट भी था शुरू से कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि मैं जब BTech में था तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मैं पढ़ूंगा ज़रूर, चाहे मैं जाऊँ या ना जाऊँ, पढ़ूंगा ज़रूर एक बार। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बस एक चांस लिया कि लेट्स एक्सप्लोर, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बैक आने का ऑप्शन अपने पास है। क्योंकि मैं .NET डेवलपर था तो मेरे पास बैक आने का ऑप्शन था। तो मैं जब एंट्री किया वहाँ पे घुसा, तो मुझे जब ये प्रोजेक्ट दिया गया तो मैं बहुत इंटरेस्टेड था और बहुत ही मन लगा के इस पर काम किया मैंने। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और उसके बाद पेपर की ओर हम लोगों ने कदम रखा, फिर पब्लिकेशन एंड बाकी फर्दर जो प्रोसीडिंग होती हैं वो सारी चीज़ें की।
1: दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। और मुझे लगता है ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन काफ़ी बड़ी
2: निर्देशक
1: साबित हो सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो टेक्निकल अच्छा साउंड करते हैं, जिनको लगता है कि इसमें वो करियर बना सकते हैं। मुझे लगता है फिलहाल एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चूंकि शानवी रेडी हैं सॉन्ग सुनाने के लिए, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, और उसके बाद फिर हरिओम भी हमारे बाकी हैं, तो चलिए फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची है, उसका एक मनोज मुंतशिर की लिखी हुई कविता उन्होंने पढ़ी और अपने मधुर कंठ से अब वो कोई गीत गाने वाली है। तो शानवी जी, क्या गाने वाली हैं आप?
1: मैं गाऊंगी, जैसे अभी आपने कहा कि इस समय सावन का महीना चल रहा है।
0: हाँ,
2: आपने कहा तो आपने माना, वैसे नहीं पता था।
1: नहीं, मतलब पता था।
2: अच्छा,
1: लेकिन कनेक्ट कर रही हूँ।
2: अच्छा, कनेक्ट कर रहे हैं।
1: हाँ, तो मैं आज गाने वाली हूँ सावन का महीना।
0: मतलब मतदान साहब आपको छोड़ते नहीं है ना, घेस देते हैं थोड़ा सा।
2: नहीं नहीं, बस छोटा सा मजाक कर रहा हूँ किसी बच्ची से।
1: सावन का महीना पवन करे सोर, सावन का महीना।

सावन का महीना पवन करी शोर, चियरारी झूमे ऐसी जैसे वन माना चे मोर।

0: झूम गया है मन में,
1: एकदम झूम गया भाई। क्या गीत सुना और किस मौसम पर जियेला जी झूमे ऐसे जैसे बनमन नाचे। बहुत प्यारा गया शरण जी आपने।
0: अनिल शास्त्री जी लिखते हैं, बहुत खूब बेटा, बहुत बढ़िया गा रही हो,
1: बहुत अच्छा गा रही हो। और ये खुद अनिल जी भी बहुत अच्छा गाते हैं,
0: बेशक बेशक। और इतनी छोटी सी हैं शानवी खुद। और बताइए, सावन में माहौल बना दिया, जिस स्टूडियो में पानी की एक बूंद नहीं टपकती वहाँ पूरी फुहार आपने ले आई, क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत खूब। और फिलहाल अब चलते हैं आज की लास्ट परफॉर्मेंस की तरफ, वो है हरिओम, जो कि आपसे वादा करके गए थे कि भाई जाने से पहले एक और सॉन्ग सुनाने वाले हैं, इसको भी आपको गेस करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से आप लोग अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन कर लीजिए और बताइए कि इस बार ये कौन सा सॉन्ग आ रहा है। इससे पहले तो कहीं दूर जब दिन ढल जाए था जी, इस बार क्या होगा ये आप जरा सोचिएगा। ओके
2: ओके

0: क्या बात है भाई।
1: एक तो इतना खूबसूरत गाना प्लस प्ले करने का स्टाइल इतना प्यारा, इतना स्मूथ। तो मुझे लगता है कि अगर कोई हमारे श्रोताओं में बता दे चैट पर आकर के तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल बता दिया गया है, बता दिया गया है, एक नहीं दो दो रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। अनिल शास्त्री जी ने बोला है अभी ना जाओ, अभी छोड़ कर दिल भरा नहीं। और मोहित मालवीय नगर से लिखते हैं अभी ना जाओ छोड़ कर,
0: बिल्कुल कि दिल अभी भरा।
1: लेकिन पहले हम शानवी से पूछ ले कौन सा गाना है।
2: मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने गाना सुना है।
1: मुझे लग रहा था आपको पता नहीं था, बस आप ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे थे।
2: नहीं
1: पक्का?
2: हाँ,
1: चेहरे से लग नहीं रहा था। अविनाश अंदाजा लगा था आपको?
3: हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग में लग गया था कि बड़ा प्यारा गाना है। वैसे गुनगुनाने का भी दिल कर रहा था उस टाइम साथ में।
1: तो गुनगुना लीजिए।
0: हाँ, दोबारा इनको कहीं बांसुरी बजा दें और आप गुनगुना।
1: नहीं नहीं, खुद आप गुनगुना लीजिए
3: बस एक लाइन।

0: क्या बात है। और देखिए जाते जाते ऐसा गाना ऐसी बात कि अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, लेकिन एक्चुअल में वक्त हो गया है तो अभी ही जाना पड़ेगा और छोड़ कर ही जाना पड़ेगा। ये अब हम इस पर क्या ही बोले, लेकिन ये कि जाना तो पड़ेगा। वो पीके का डायलॉग है ना कि जाए के पड़ी भाया,
1: जाए के पड़ी भाया,
0: जाए के पड़ी भाया। तो टाइम हो गया है 1:55, तो अब चलने का समय हो चला है
1: जी।
0: और ऑफ कोर्स अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो चलिए भाई, आज का प्रोग्राम कैसा लगा पहले आप लोगों से पूछ ले। शानवी कैसा, मजा आया? थैंक यू। अविनाश कैसा लगा?
2: बहुत
0: और हरिओम, आप भी बहुत दिन बाद आए हैं जी, क्या बताना पड़ेगा। ऑलराइट, सो बहुत टाइम बाद आए हैं और बहुत मज़ा आया हरिओम आपसे भी मिल करके। एंड थैंक यू सो मच अविनाश कि आपने स्पेशली वक्त निकाला और ये प्यारी सी बच्ची पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है, हर बार आती हैं और अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में हम लोगों को गाने सुनाती हैं। आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन लोगों ने आज इस शो को संडे को हमारे साथ में बांटा, एंजॉय किया। फिलहाल अगला प्रोग्राम टॉप 20 आप एंजॉय करिए और इस प्रोग्राम से हमको दीजिए इजाज़त। और कहते हैं आरजे मनु,
1: आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी ठीक 1 बजे आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम में। तब तक सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम।
0: ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: रेडियो
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: हेलो गोंडा, तो कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आदाब। और घड़ी में वक्त हो चला है 2:03 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। वक्त हो चला है आपके अपने कार्यक्रम यानी कि इंडिया टॉप 20 का, आपके अपने काउंटडाउन वाला धासु सा शो जिसके अंदर होते हैं बॉलीवुड के गाने। और आज की प्लेलिस्ट आपके लिए स्पेशल बॉलीवुड संडे शफल, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट काफी ज्यादा शफल करती है और हम हमेशा एक ही जॉनरा पे अटके रहे, ऐसा हो नहीं सकता बाबू जान, बिकॉज आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर्चनती मौजूद है आप सभी के साथ। और आज दिमाग से सारी चीजें आप निकाल दीजिए। वैसे मैं हर संडे यही लाइन बोलती हूँ कि दिमाग से सारी चीजें निकाल दो, बिकॉज निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप नहीं निकालते तो परेशान रहते हैं, और संडे परेशानी वाला दिन नहीं होता। परेशान को परेशान कर दो, यानी कि परेशानी को परेशान कर दो, टेंशन को टेंशन दे दो, लेकिन आप टेंशन में आज बिल्कुल भी मत रहना, बिकॉज संडे इज गोइंग टू बी मी टाइम, क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम, दोस्त टाइम, पार्टी टाइम, जो मर्जी वो टाइम बनाओ, लेकिन टेंशन का टाइम ना नको इल्ले कभी नहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए भैया इंडिया टॉप 20 के बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ वापस से, और आज हम सुनेंगे बॉलीवुड शफल। मुझे भी नहीं पता अगला गाना किसकी प्लेलिस्ट से होने वाला है, मुझे भी नहीं पता कि अगला गाना कौन से आर्टिस्ट का होने वाला है, कौन से जॉनरा से आने वाला है। क्या वो 80s का है, क्या वो 2026 का है, क्या वो 2025 का है, या फिर वो सीधे हम किशोरदा की आवाज़ में कहीं से तो उठाकर लेकर आ गए हैं। आई डोंट नो, वी डोंट नो, इसीलिए हम साथ में एंजॉय करने वाले एक ऐसी प्लेलिस्ट जिसको ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर इस प्लेलिस्ट को कोई जानता है तो वो हमारे ऑपरेटर बाबू, और ऑपरेटर बाबू ही डिसाइड करने वाले हैं कि आज की ये सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट आपकी आर्चनती की क्या होने जा रही है। तो एनी गेस, कोई गेम खेलेगा मेरे साथ बैठ के कि अगला गाना कौन सा हो सकता है। एनी गेस, एनी गेस। अगर हाँ, अगर आप लोग ये गेस वाला गेम खेलना पसंद करते हैं तो चैट बॉक्स में आ जाइए, फटाक से अपनी हाजिरी लगाइए, क्योंकि हम ट्यून करने जा रहे हैं अपना सॉन्ग नंबर 20। और ये मैं लेकर आई हूँ आपकी अपनी फिल्म मैं तेरा हीरो से। पहला गाना तो मैंने ही सेट किया है, तो आई नो क्या होने वाला, लेकिन अगले गाने से हम करेंगे गैस गैस गैस, यानी कि गाना कौन सा होगा। एनी गेस, फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं साजिद वाजिद का गाना बेशर्मी की हाइट। ऑलराइट, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 बॉलीवुड का अपना वाला प्लेलिस्ट अपनी आर्चनती के साथ। स्टे ट्यून्ड,
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

जी तो आप एंजॉय कर रहे थे बेशर्मी की हाइट, साजिद वाजिद का गाना, बैनी दयाल और शाल मली की आवाज में, मैं तेरा हीरो फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। और आज है बॉलीवुड शफल, यानी कि वो गाने जिसका आइडिया ना आपको है ना मुझे है, तो ये कह सकते हैं आई डोंट नो, शी डोंट नो, ही डोंट नो, वी डोंट नो कि आज की प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है। भाई साहब फिलहाल के लिए धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं और वो लिख रहे हैं, उन्नति जी गुड आफ्टरनून, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच धर्मेंद्र मोहन जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू। और साथ ही लिखा है मेरा गाना दीवाना तेरा हाय हाय, अब आपसे माफी चाहेंगे बिकॉज आज हमारा कॉल टीम गुंडा नहीं जाने वाला है, तो इसलिए आपसे माफी चाहूंगी बिकॉज मैं आपके गाने नहीं प्ले कर सकती फिलहाल के लिए। क्या पता आपका गाना कहीं सेट हो, आई डोंट नो, वी डोंट नो एज यूजुअल, क्योंकि हमको नहीं पता आज की प्ले लिस्ट में क्या होने वाला है। शफल में 90s बजने वाला है, 2026 के होंगे या सीधे किशोर दा या फिर मुकेश की आवाज आने वाली है, वी डोंट नो डाइज। फिलहाल अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम मनकापुर, लिख रहे हैं हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब, मैं बढ़िया झकास बिंदास मस्त, आप बताइए अब आप कैसे हैं। आई

0: होप कि आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, सब अच्छे हैं। और जी हाँ सुनने के बाद तो ऐसा लगता है ना जैसे वो जी हाँ मैं ही हूँ खलनायक। फिलहाल मैं खलनायक नहीं हूँ, मैं खलनायिका भी नहीं बन सकती, है ही नहीं वो गुण मेरे अंदर कि मैं अपने आप को खलनायिका के नाम से फेमस कर सकूँ। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, ट्यून कर लेते हैं बिकॉज अगला गाना कौन सा होने वाला है, लेट्स सी। क्या आप इस गाने को पहचान पाते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र मात्र मात्र 5 सेकंड के अंदर? अगर हाँ तो चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और नहीं पहचान पाते हैं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन In the top 20 with Raj Unnati, 89.6 FM Radio Gyanasthali par.
1: Radio Gyanasthali 89.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 19.

0: चौहान और आपके अपने पसंदीदा सुखविंदर सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे बीड़ी ओमकारा फिल्म से। और सविता दुबे जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लिख रही है शुभ दोपहरिया सभी को। शुभ दोपहरिया आपको भी, आपका स्वागत करते हैं हम इंटर टॉप 20 में। और बहुत सारे इमोजी सेंड कर दिए उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, बिकॉज अगला गाना होने वाला है और भी ज्यादा सरप्राइजिंग, क्योंकि ये गाना थोड़ा सा हटकर होगा। इतना तो मुझे पता है कि अभी क्योंकि हम सुनते हैं हमेशा से हाई एनर्जेटिक बीट वाले गाने, जो ऑफ कोर्स हमारे स्टार्टिंग के शो के शान होती है, मान होती है, जान होती है, जहान होता है। अदरवाइज जैसे जैसे दोपहर ढलती जाती है, शाम आती जाती है, वैसे वैसे हम धीरे धीरे गानों की तरफ बदल जाते हैं, सूथिंग सॉन्ग हो जाते हैं हमारे, हमारे रोमांटिक गाने हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी सूरज हमारे सर पर है और एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, तो दोपहर की नींद को करते हैं टाटा बाय बाय, चलते हैं अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए। आलस को भगा दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट सॉन्ग पर आप करने वाले हैं डिस्को वाला डांस, बिकॉज आई नो यू एंड आई नो मी टू। फिलहाल एंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए इंटर टॉप 20 बॉलीवुड के अपने 20 गाने, जो कि आज बॉलीवुड शफल संडे स्पेशल सॉन्ग्स चल रहे हैं। और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, होने वाले हैं बॉलीवुड के गॉसिप, बॉलीवुड के किस्से भी, लेकिन कब ये आपको बताते हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए सॉन्ग नंबर 18 विद राजीवनति।
1: Radio Gala 99.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 18.

0: हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं बेफिक्रे फिल्म से उड़े दिल बेफिक्रे, और हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ गए हैं, आ गई हैं, आई डोंट नो। फिलहाल के लिए लिखा है अरविंद जी ने, हेलो आरजे मैम, कैसी हैं आप? अभी तो बताया था मैं बहुत मस्त, बहुत बिंदास, बहुत चकास और फुल एनर्जी के मूड में, ताकि मैं आपको भी एनर्जेटिक फील करा सकूं। ऐसी हूं मैं, और आप बताइए आप कैसे हैं। सविता दुबे जी लिख रही हैं, नमस्ते, नमस्ते टू यू, और इसके बाद बहुत सारे इमोजीज हैं। गुमनाम हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल आप इतने गुमनाम क्यों हैं ये बताइए मुझे पहले। एंड इसके बाद लगातार आप ही के मैसेजेस आ रहे हैं, और हमारी सविता जी ने कहा है कि वो 4 बजे वापस आती हैं। फिलहाल के चैट रूम में नहीं रहेंगी, लेकिन रेडियो सुनती रहेंगी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आइए बढ़ते हमारे अगले गाने की तरफ, सॉन्ग नंबर 17 की तरफ, और इसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे दूसरे एरा में, यानी कि कहीं और किसी जमाने में घूम घाम कर आते हैं। फिलहाल आप बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए इंटर टॉप 20 विद आरजे रति, और ये है आपके संडे का दोपहर वाला स्पेशल शो, जिसके अंदर आप इंजॉय करते हैं बॉलीवुड के 20 गाने बैक टू बैक। और आज है हमारे ऑपरेटर साहब की मर्जी, यानी कि 89.6 FM की मर्जी, कि आपको कौन से गाने कब कैसे सुनाए जाएंगे। ये तो क्या ख्याल है, आगे बढ़े? जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, और हम मिलते हैं अगले गाने पर। अगले बीच पर तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: हाँ जी भैया, तो जैसा हमने कहा था कि हमको भी नहीं पता आज की प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है, किसका गाना प्ले होने वाला है, किसका पसंदीदा होने वाला है, और ऐसे में ही निकल कर सामने आया भैया जो हमने गाना प्ले कर दिया है, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, ये हमारे अरविंद जी का फेवरेट सॉन्ग निकल आया और इसके लिए उन्होंने हमको कहा है थैंक यू। हालांकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था ये आपका पसंदीदा होने वाला है, बट कहते हैं ना कभी कभार किस्मत कनेक्शन इतनी ज़बरदस्त होती है, दिल से दिल तक का कनेक्शन इतना बढ़िया होता है कि ना चाहते हुए भी हम आपके पसंदीदा गाने को पकड़ ही लेते हैं। जनाब बहुत ही बेहतरीन गाना, बारिश होते हुए। बारिश होने लग गई क्या भाई? एक तो अंदर बैठे बैठे मुझे कभी समझ में नहीं आता है कब बारिश, कब धूप, कब तूफान आ जाता है, ये तो बाहर निकलने के बाद समझ में आता है कि ओ माय गॉड मैंने गाने इतने ज़बरदस्त बजाए हैं कि सावन भी झूमने लगा और सावन ने कहा कि उतनी देर से बरस नहीं रहते, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्यों ना बरस ही लिया जाए। फिलहाल हमारे अरविंद जी लिख रहे हैं, दिल से किसी का हाथ अपने हाथों में लेकर देखो, दिल से किसी का हाथ अपने हाथों में लेकर देखो, फिर मालूम होगा कि अन कहीं बातों को कैसे सुना जाता है। ओ माई गॉडनेस, कितना खूबसूरत लिखा है, मतलब सच में बहुत मासूमियत के साथ ये कुछ लाइंस आपने लिखी हैं एंड बहुत ही प्यारी लिखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्र में रहती है मोहब्बत की ज़रूरत, हर उम्र में रहती है मोहब्बत की ज़रूरत, इस उम्र में क्या दिल दिल नहीं करता। अब इसका जवाब तो हमारे लिसनर देने वाले हैं। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 15 आपकी अपने इंडिया टॉप 20 की प्लेलिस्ट से, क्योंकि ये है आपका अपना रेडियो 99.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग नंबर 15।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं, मैं दीपाना तेरा, और इसी के साथ आइए चलते हैं बॉलीवुड न्यूज की तरफ, बिकॉज ये है आपके बॉलीवुड का स्पेशल वाला प्रोग्राम। और बिना बॉलीवुड की न्यूज़ या थी बॉलीवुड के गपशप के बिना हमारी ये बॉलीवुड की बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। तो फिलहाल के लिए जो आपके पास मैं न्यूज़ देने वाली हूँ उसे शायद आप एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि सुनने में आए हैं सनी देओल जी वापस आ रहे हैं अपनी घातक फिल्म के साथ। घातक 2 डेवलपमेंट में चल रही है, यानी कि अभी बीच रास्ते में अटकी हुई है। फिलहाल के लिए इसकी तैयारी हो चुकी है और सुनने में आया है कि राजकुमार संतोषी जी और सनी देओल वापस से एक साथ जुड़ने वाले हैं घातक 2 के लिए, यानी कि एक नया सिक्वल। आपके 90s का वो टशन वाला हीरो, वो ढिशुम ढुशुम वाला हीरो वापस से आ रहा है अपने फुल और एक्शन के साथ अपनी ही फिल्म का सिक्वल लेकर, क्योंकि आवारापन को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। आवारापन 2 को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। उसके जो नए गाने रिलीज हुए हैं वो बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। आई होप आपने भी सुना होगा तेरा मेरा रिश्ता 2.0 जो नया वर्जन आया है, या फिर तू फेराओ, आपने इस गाने को भी सुना होगा। दोनों बहुत ही लाजवाब है और मुझे लगता है कि 90s का एरा अब कहीं ना कहीं घूम घाम के वापस आने वाला है और आपको बॉलीवुड की वही फिल्में दोबारा से देखने को मिलेंगी जो आप 90 के दशक में एंजॉय किया करते थे। थोड़ा हल्के, थोड़ा हटके, थोड़ा सा ज़्यादा फन, थोड़ा सा ज़्यादा मस्ती, फुल ऑन एक्शन सनी देओल जी वापस आ रहे हैं। फिलहाल अगर आपने घातक फिल्म देखी है और आपको पसंद आई है तो आई नो आपको पसंद आने वाली घातक 2 भी, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल के लिए अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही है, तो जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद शूटिंग का आइडिया आई थिंक लग जाने वाला है और बहुत जल्द आपको घातक 2 देखने को मिल जाएगी। फिलहाल थोड़ा इंतजार कीजिए क्योंकि अभी स्क्रिप्ट नहीं हुई है, तो 2027 के लास्ट तक या 28 के स्टार्टिंग तक आपको ये फिल्म मिलने वाली है। फिलहाल इसी के साथ आइए चलते हैं चैट बॉक्स में। सबलू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया आशुमती जी, शुभ दोपहरिया आपको भी, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम इन द टॉप 20 में। और अरविंद जी लिख रहे हैं खुदा भर दे तेरे दामन में खुशियां से, खुदा भर दे तेरे दामन को खुशियां से, क्योंकि तुझे खुश देखना मेरी आदत बन गई है। क्या बात है भैया, इसको कहते हैं मोहब्बत। अगर आप किसी को सच में बेइंतहा चाहते हैं तो उसके चेहरे की स्माइल ही आपकी पसंदीदा चीज होती है। नव्या गोंडा जी हमारे साथ जुड़ी है, लिख रही है गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। और आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, ट्यून कर लेते हैं हमारा अगला सॉन्ग जो किसका होने वाला है आई डोंट नो, पर एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, आई थिंक आप इस गाने को गेस कर लेते हैं तो चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, बस एंजॉय करते जाइए। लेकिन हिंट दे देती हूं मैं आपको, अगला गाना आपकी अपने पसंदीदा किशोर कुमार की आवाज में होने वाला है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 अपनी आशीर्वादी के साथ।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 14।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे सपनों की रानी कब आए गीतु आराधना फिल्म से, और हमारे साथ जुड़ गई हैं नाजिया अंसारी जी जो लिख रही हैं गुड आफ्टरनून, और हमने गाना प्ले ही किया था, लगता है किसी के सपनों की रानी आ भी चुकी है। और हमारे धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं वह एक दौर था जब सपनों की रानी मिलती थी, अब ये दौर है कि किसी दिन तारे दिखाने वाली मिलती है। ओ माई गॉड। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। एन अरविंद जी आप बिल्कुल भी उदास मत होइए और हमारे साथ एंजॉय करते रहिए, बाकी वक्त है, वक्त का काम है गुजर जाना, तो आइए एंजॉय करते हैं हमारा सॉन्ग नंबर 13 और मिलते हैं अगले गाने अगले बीट पर। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं संडे का स्पेशल शो इंटर टॉप 20 विद राजनीति और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM।
1: रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 13.

0: और भैया इस गाने के अंदर मौजूद है दो ऐसे जबरदस्त कलाकार जिनको देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। पहले चीज तो भैया आपके अपने दिलजीत दोसांझ इस गाने के अंदर नजर आए हैं, और जो आवाज दी है वो किसी और ने नहीं, गुरु रंधावा साहब ने दी है, और इसीलिए गाना इतना ज्यादा हिट है। मैं दीवारा तेरा, मैं दीवारा तेरा, मैं, और मैं पीछे से ही इतना ज्यादा वाइब ले रही थी, इतना ज्यादा डांस कर रही थी। इवन आज की प्लेलिस्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई फुदक रहा होगा वो इकलौती मैं ही हूँ जो अपने चेयर पर बैठे बैठे फुदक रहे हैं इधर से उधर, कहीं ना कहीं हाथ पैर मेरे जरूर चल रहे हैं। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला गाना क्या होने वाला है, ये है थोड़ा सा शॉकिंग सॉन्ग। फिलहाल 90s का वाइब आपको मिलने वाला है, 90s का थोड़ा सा टच आने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट सॉन्ग आएगा आपकी फिल्म तेजाब से। एनी गेस कौन सा हो सकता है, अगर आपने गेस कर लिया तो चैट बॉक्स में बताइए, और अगर नहीं तो अपनी वाइब को जरूर बताइएगा। क्या मैं अकेली ही तो नहीं हूँ जो यहाँ पे फुल ऑन डिस्को मूड में हूँ, या आप भी उनमें से एक हैं जो पीछे से काम करते करते हाथ पैर आपके लगातार चल रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे थे टॉप 20 विद आरज शे उन्नति।
1: Radio Garasani 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 12.

0: पर
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

0: आप सभी का एक बार गिनती सीखने के बाद वापस से स्वागत है। अब एक बात बताइए, कितनी बार आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक गिनती सीख ली है? इस गाने में कितनी दफा बोला गया है लाइन, अगर आप मुझे बता सकते हैं तो कमाल की बात है, मैं आपके लिए क्लैपिंग करूंगी। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और सुजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं दोनों मैम को नमस्ते। आइला, मेरे पास दूसरी मैम भी है कोई? नहीं, यही है। हम कल भूतों की बातें कर रहे थे, आज नहीं कर रहे सुजीत जी, आज हम सिर्फ अकेले हैं और मैं हूँ आपकी अपनी आरजूनती। ये है संडे का स्पेशल वाला प्रोग्राम इंडिया टॉप 20। फिलहाल आइए चलते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ, अगले सॉन्ग की तरफ, जो हम लेकर आए हैं सॉन्ग नंबर 11 आपकी टॉप 20 की सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट का। सॉन्ग नंबर 11 क्या है, क्यों है, आइए सुनते हैं, जानते हैं, पता करते हैं और उसके बाद हम मिलते हैं अगले गाने पर अगली बॉलीवुड न्यूज के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 11.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 11।

0: आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9।

हाँ जी, तो आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज में सोचेंगे तुम्हें प्यार करे या नहीं। बहुत ही प्यारा रोमांटिक सा गाना आपने एंजॉय कर लिया है और अब वक्त है अपने अगले सॉन्ग की तरफ बढ़ने का। अगला सॉन्ग जो आपको लेकर जाएगा सीधे एक ऐसे टूर पर जिसको सुनने के बाद आपको बड़ा मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए हम आपको बता दें, हिमेश और श्रेया जी की आवाज होने वाली है। कर्ज फिल्म से हम लेकर आए हैं आपके लिए वो गाना जिसको सुनने के बाद आपके दिल में कुछ कुछ होता है, और यही वो सॉन्ग है जिसके गिटार की ट्यून इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि अगर इसके स्टार्टिंग में सिर्फ गिटार का म्यूज़िक भी आ जाए तो लोग समझ जाते हैं ये गाना कौन सा होने वाला है। इतना खूबसूरत सॉन्ग पहले फिल्माया गया था ऋषि कपूर के ऊपर और उसके बाद फिल्माया गया था ये हिमेश रेशमिया के ऊपर। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, अगर हाँ तो आइए इन्जॉय करते हैं कर्ज फिल्म से एक हसीना थी एक दीवाना था। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर प्रोग्राम चल रहा है इंडिया टॉप 20।

आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान।

हाँ जी, तो आपने एंजॉय किया, एक हसीना थी एक दीवाना था, और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे बॉलीवुड न्यूज की तरफ। और बॉलीवुड न्यूज कुछ इस तरह से है, आप सबने एक फिल्म एंजॉय की थी, नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और ये बात सच भी है वैसे, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, या फिर कहें हर सुबह मिलती है, वो आपको लगता है कि मिलती नहीं है, और इसीलिए जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कीजिए, हर मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कीजिए। फिलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं फिल्म की, और सुनने में आ रहा है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का सिक्वल आने वाला है, यानी कि एक और फिल्म बनने जा रही है जो शायद कुछ इस तरह से होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2.0 या फिर 2, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल के लिए तैयार रहिएगा, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग भी है इसके अंदर, सेनोरिटा। आई लव द सेनोरिटा सॉन्ग, क्योंकि अक्सर कुछ जगह पर मैं इसी गाने के साथ अपने इमोशंस को बयां कर पाती हूँ, समझा पाती हूँ कि तुमने जो कहा वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगा है, और यही जब बोलना होता है ना तो मैं सेनोरिटा गा दिया करती हूँ। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ जो आपका इंतजार कर रहा है, सॉन्ग नंबर 7, ओम शांति ओम से दर्द डिस्को, क्योंकि क्योंकि क्योंकि आने वाला है इस महीने की 26 तारीख, और 26 तारीख यानी कि हमारी दर्द डिस्को की असल वाली तारीख है। एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहा गया था ये गाना ऐवे ही बनाना, बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई सेंस के, और जिस कमाल के राइटर ने इस गाने को लिखा है, कोशिश की गई थी कि बिना लॉजिक के लिखा जाए, बिना सेंस के लिखा जाए, लेकिन इतना खूबसूरत बन जाएगा ये उन्होंने भी नहीं सोचा था, ना अंदाज़ा लगाया था कि कभी ऐसा हो सकता है। बट कहते हैं ना कि अगर कोई राइटर कमाल का है, किसी के थॉट कमाल के, और वो लिखता बहुत अच्छा है, तो चाहे वो बकवास ही क्यों ना लिखे, उसके बोल हमेशा इतने खूबसूरत फिट बैठेंगे कि गाना हिट हो जाएगा। फिलहाल आइए एंजॉय करते रहिए ओम शांति ओम, वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म, और मैं उम्मीद करती हूँ कि काश इसके जैसी भी एक और फिल्म बन जाए, बिकॉज मुझे शांति प्रिया बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, हालाँकि दीपिका पादुकोण की इसमें असल आवाज है ही नहीं। जी हाँ, उनकी आवाज किसी और एक्टर ने दी थी, दीपिका पादुकोण का सिर्फ शक्ल अच्छी लगी, यानी कि फेस अच्छा लगा था शांति प्रिया के रोल में, और इसके अलावा जब उनकी आवाज सुनी गई थी तो कहा गया था नहीं, आवाज में वो बात नहीं है, आवाज लाने के लिए किसी और वॉइस आर्टिस्ट को बुलाया गया था, और उसने डब किया था, उसने वॉइस ओवर दिया था दीपिका पादुकोण को इस फिल्म के अंदर। क्या आपको ये बात पता थी? अगर नहीं तो आइए एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 7, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये था भाई आपका दर्द वाला डिस्को। दर्द में भी अगर डिस्को कर सकते हो तो जरूर सुनो दर्द डिस्को। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या हैं, एंड इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले गाने की तरफ। इम्तियाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिखा है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू अगेन। नीलम परी कौन है? अरविंद जी ने सवाल किया है। नीलम परी वही है जो नीली रंग की है। एंड पापा की परी तो सुना था, कोई बात नहीं, अब आपने नीले रंग की परी भी सुन लिया है, उसी को हम नीलम परी कहते हैं। फिलहाल के लिए आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और नव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार आपकी मैसेजेस आ रही हैं लगातार आपके अपने चैट बॉक्स में। और अगला सॉन्ग थोड़ा सा आपसे, आपके दिल से जुड़ा हुआ गाना, मेरे साथ चलते चलते ये कहाँ ठहर गए तुम। आए हाय क्या ही खूबसूरत गाना है। आइए इंजॉय करते हैं, हम मिलते हैं अगले सॉन्ग को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी भैया, तो आप सुन रहे थे मेरे साथ चलते चलते, ये कहाँ ठहर गए तुम बताओ, कहाँ ठहर गए? शान सुनिधि चौहान और कृष्णा की आवाज में, अनु मलिक का म्यूजिक, समीर के बोल, और हमको दीवाना कर गए फिल्म से। आप एंजॉय कर रहे थे एंड हमारी तारीफ में चंद शब्द लिख दिए गए हैं, और लगता है कुछ इस तरह से कि कैसे उन्नति मैम हंसती हैं तो अच्छी लगती है, ओह माय गॉड, हा हा हा। एंड जब सवाल करती हैं तो हम डर जाते हैं, ओहो हो आई ला, और ये हमारा फेवरेट काम है, फिलहाल हमारा खौफ है, ऐसा हम कह सकते थे, फिलहाल हम कहेंगे नहीं क्योंकि हमसे कोई भी नहीं डरता है, ये सिर्फ एक मजाक है। और इसके बाद लिखा है उन्नति मैम को, मत डिस्टर्ब करो नहीं तो हम लोगों की भी क्लास लेना स्टार्ट कर देंगी। ऐसा हम नहीं करेंगे, वो अलग बात है कि बॉलीवुड के कुछ किस्से आपके साथ ज़रूर होने वाले हैं। और फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और अगला सॉन्ग करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया गाना, आप इंजॉय करने जा रहे हैं वो सॉन्ग जिसको सुनने के बाद आप या तो रोएंगे, या तो हंसेंगे, या तो गाएंगे, या तो किसी की याद में कहीं खो जाएंगे। अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाज़ में आप इंजॉय करेंगे नदीम श्रवण का म्यूज़िक और मेरे जीवन साथी फिल्म 2006 से दीवानी दीवानी, मैं साजन की दीवानी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं आपका अपना इंडिया टॉप 20 विद आरजी मति, और ये 89.6 एफएम रेडियो ज्ञानस्थली।
1: रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 5।

0: ऑल राइट और फुल ऑन रिवेंज मोड पर हमारी साधना सरगम जी इस गाने को गुनगुना रही हैं, और मुझे लगता है इस गाने के साथ जो जस्टिस किया है ना हमारी करिश्मा कपूर ने, वो शायद कोई और ना ही कर पाता। बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग आप इंजॉय कर रहे हैं। एंड आज कॉल नहीं लगता क्या स्टूडियो का? उन्नति मैम जी, कुछ आप भी रिप्लाई कर दो। भैया जरूर लगता जरूर है, वो अलग बात है कि आज हम फरमाइशी नहीं ले पाते हैं क्योंकि आज आपका फरमाइशों का कार्यक्रम नहीं होता है। और इसी के साथ आगे चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग आप सुनेंगे फुकरे से, फुकरे रिटर्न से नेहा कक्कर और हमारे मेल सिंगर की आवाज़, जो आप बताने वाले कि कौन है वो जनाब जिनकी आवाज़ में आप एंजॉय कर रहे हैं। महबूबा, ये वही महबूबा है जो आपको कहीं मिले तो थे।
1: सॉन्ग नंबर 4।

0: बाय बाय टाटा। और आप एंजॉय कर रहे थे नेहा कक्कर और यशो देसाई की आवाज में वो गाना जिसको सुनने के बाद बहुत ज्यादा मजा आता है। फिलहाल के लिए आप सुन रहे थे फुकर टन से महबूबा। अगर ओरिजिनल सिंगर की बात की जाए जिन्होंने सबसे पहले इस गाने में अपनी आवाज़ दी थी, वो थे आप सभी के पसंदीदा मोहम्मद रफ़ी साहब। वैसे आपको पता है मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाना गाने की शुरुआत क्यों की थी? किसी को याद है? अगर नहीं हम बता देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप बताइए कि मोहम्मद रफ़ी इंस्पायर्ड कहाँ से हुए थे, उन्हें गाना गाने का शौक क्यों चढ़ा था, क्यों उन्हें लगा था कि मुझे सिंगर बनना चाहिए। फिलहाल वो बनने वाले तो कुछ और थे, बट बन सिंगर गए, इसके पीछे एक बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत कहानी है। अगर आपको पता है कि मोहम्मद रफ़ी क्यों सिंगर बनना चाह रहे थे, ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। और आइए चलते हैं अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं, क्योंकि अगला गाना सोनू निगम की आवाज़ में होने वाला है। और आप भी जानते हैं सोनू निगम साहब आवाज़ के कितने कितने ज़बरदस्त सिंगर हैं। ये गाना तब शूट हुआ था जब शाहरुख खान साहब के पास टाइम नहीं था और वो कहीं जा रहे थे और गाने को शूट करने के लिए भी टाइम नहीं बचा था। अब क्योंकि ना एक्टर के पास टाइम था ना डायरेक्टर के पास टाइम था, तो दोनों ने मिलकर एक डील की कि हम जाएंगे और तुम पीछे से कैमरा लेकर आ जाओ और शूट कर लेते हैं। तो ये गाना चलते फिरते शूट किया गया था और इतना हिट सॉन्ग हुआ है कि आजकल इसको हर कोई इंजॉय कर रहा है, फिर चाहे वो किसी भी जनरेशन का इंसान क्यों ना हो। तो आइए इंजॉय करते हैं परदेश फिल्म से ये दिल दीवाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं Top 20 with your RJ Unnati.
1: Radio Gana 79.6 FM presents India's Top 20 songs. Song number 3.

एंड इसी गाने के साथ आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर वन की तरफ। और अब चाहूंगी आपसे इजाजत, और जाने से पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल वर्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। शुभ दोपहरिया सभी सुनने और सुनाने वालों को। सुनाने वाला तो इकलौता मैं ही बैठा था यहाँ पे, मतलब बैठी थी, और आप सुन रहे थे रेडियो 89.6 FM। फिलहाल आपको छोड़कर जाते हैं, जब तक है जान फिल्म से इश्क शवा पर AR रहमान का म्यूजिक, एंजॉय करते रहिए। और हम मिलेंगे बस कुछ ही पलों में अपने अगले वाले कार्यक्रम में, तो सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, और जुड़ते रहिए मेरे साथ आपकी अपनी क्लिनिक 11 स्लीवर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
4: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
3: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
4: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
3: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9861-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूँगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
7: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
6: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
7: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
6: जी,
7: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
6: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
7: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
6: जी,
7: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
6: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
7: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
6: जी,
7: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
6: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
7: जी आज दीदी
6: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
7: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
6: जी।
7: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
6: जी,
7: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
6: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
7: जी दीदी
6: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
7: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
6: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: हां जी, तो कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 4:11 बाद स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन पर। आपके साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉकी उन्नति, और मेरे साथ मौजूद है हमारे को होस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी। सर कैसे हैं आप
1: जी? हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करते हैं कि हमारे लिसनर्स भी अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो जल्दी से वो आ जाएं और हमको कॉल कर सकते हैं या चैट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ताकि अगर वो अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छे हो जाएं।
0: जी हाँ, क्योंकि ये है आपका अपना क्लिनिक ज्ञानसली, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानसली की बहुत ही खूबसूरत पहल है, इसके अंदर हम बात करते हैं आपके अपने सेहत की और आपकी सेहत को बनाए रखने के लिए आपसे लगातार जुड़े रहते हैं। फिलहाल संडे का स्पेशल प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है?
1: मुझे लगता है कि आज के प्रोग्राम में कुछ हमारे आसपास के जो वातावरण में जो बीमारियां चल रही हैं या ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला है जो इस मौसम से रिलेटेड है?
0: वातावरण में तो बैक्टीरिया है, बीमारियां तो लोगों के अंदर हो रही हैं।
1: जी जी, वातावरण में बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया अपने साथ में बीमारियां भी लिए हुए हैं।
0: जी, तो फिलहाल क्योंकि आजकल मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ ना, हर दूसरा इंसान कह रहा है मैं बीमार हूँ। पूछो क्या हो रहा है, बुखार हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं।
1: जी, ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है, और बार बार बारिश के मौसम में बीमार पड़ना, सर्दी खांसी जुकाम, बट कई बार कारण अलग होते हैं, सबके कारण सेम नहीं होते हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि उस पर हम चर्चा कर सकते हैं और आज इस पर वार्ता कर सकते हैं।
0: जी हाँ, तो चलिए भैया शुरू करते हैं आज के आपके मॉनसून का स्पेशल वाला प्रोग्राम, क्योंकि हर कोई दूसरा इंसान बीमार हो रहा है और इस बीमारी की जड़ किसी को पता ही नहीं है। हर कोई बस दवा खाया जा रहा है, पैरासीटामोल खाया जा रहा है, ये सोच कर कि 3 दिन में तो ठीक हो ही जाएंगे, नहीं हुए तो हफ्ते भर बाद चले जाएंगे डॉक्टर के पास, दिखा लेंगे, टेस्ट करा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकलेगा, डेंगू मलेरिया टाइफाइड।
1: हाँ, फीवर में लोग डेंगू मलेरिया टाइफाइड या वायरल समथिंग कॉमनली यही लेकर के चलते हैं, बट कई बार क्या होता है कि कुछ समस्याएं इससे भी ज़्यादा बढ़ के होती हैं, जटिल होती हैं, अलग होती हैं, तो बिल्कुल इन पे चर्चा कर सकते हैं और देखते हैं कि

0: इस पर क्या जानकारियाँ उन्नति मैम पूछने वाली हैं और इनके प्रश्न क्या होने वाले हैं?
1: वेल, आपने भी देखा है कि जब भी कोई बीमारी होती है उसका सबसे पहले सिम्टम हमें मिलता है बुखार का आना
0: जी,
1: शरीर में दर्द होना, सर में दर्द होना, और हर बीमारी के एक ही लक्षण को पकड़ के लगता है कि मलेरिया है, टाइफाइड है, कि ये रियल वाला वायरल हो गया है, क्लासरूम में गए थे वहाँ से किसी से इन्फेक्टेड हो गए हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। जिनको जुकाम होता है, कई लोगों का जुकाम ऐसा होता है कि उनके सर में दर्द रहता है, उनकी आंखें लाल पड़ जाती हैं, आंखों से भी पानी निकल रहा है, नाक से भी पानी निकल रहा है, कुछ को तो सांस ही नहीं आ रही है
0: जी।
1: और मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है कि मेरी सांस बंद हो चुकी होती है ऑलमोस्ट जब भी जुकाम आता है
0: जी। ऐसा होता है, साइनसाइटिस की वजह से हमारे साइनस जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और सांस बिल्कुल भी नहीं ली जाती है, मुंह खोल करके सांस लेना पड़ता है।
1: हाँ, और मुझे वो लोग बड़े लकी लगते हैं जिनकी कम से कम नाक तो खुली होती है जुकाम के टाइम पर, वो अलग बात है कि उन्हें बार बार सुरुड़ सुरुड़ करना पड़ता है
0: जी, उनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं और इसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये ठीक लगता होगा और इन लोगों को वो ठीक लगता होगा।
1: हाँ, क्योंकि हमें सांस नहीं आती, हम रात में सोते हैं तो अजीब लगता है।
0: और वैसे अब इतनी बात आपने कह दी है तो मैं भी शेयर कर देता हूँ। मुझे यूजुअली जब जुकाम होता है तो फर्स्ट वो मतलब रनी नोज वाला जुकाम होता है जिसमें नाक बहती है।
1: ओके,
0: लिटरली ये बहुत इरिटेटिंग लगता है, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगता है ये।
1: और क्योंकि मुझे ऐसा नहीं होता, मेरा पूरा ब्लॉक हो जाता है, मुझे सांस ही नहीं आ रही है, प्लस मुझे दर्द हो रहा है नाक के अंदर, मैं सांस ले भी नहीं पा रही।
0: हाँ, वो साइनसाइटिस की वजह से ये नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं और वो पेन भी थोड़ा कॉज करते हैं।
1: जुकाम आने से पहले एक सिम्टम मिलता है कि नाक के अंदर दर्द हो रहा है और हम समझ जाते हैं कि अब 3 से 4 दिन मेरा गया।
0: यूजुअली इतना तो लग ही जाता है हमारे इम्यून रिस्पांस को ट्रिगर होने में और कम्प्लीटली वायरल लोड को डिस्ट्रॉय करने में इतना टाइम लग जाता
1: है। और कमाल की बात यह है कि हमारे घर में होता है कि जुकाम हो गया, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। अब मैं 3 दिन का इंतजार कर रही हूँ कि 3 दिन में अगर ठीक हुआ तो हो गया, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा फिर।
0: बेसिकली जो 3 दिन लोग वेट करते हैं उन 3 दिनों में भी उन्हें कुछ होम रेमेडीज़ लेनी चाहिए। काढ़ा पीना हो गया, गर्म भाप लेना चाहिए पानी वगैरह का, विक्स वगैरह डाल करके, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा जल्दी रिकवर होने में हेल्प मिलती है और सिम्टम्स जो है वो और वर्सन नहीं होते हैं
1: जी। फिलहाल ये बताइए कि मानसून के सीज़न में जुकाम हो सकता है क्या?
0: जी बिल्कुल हो सकता है, होता ही है, बहुत से केसेस आ रहे हैं जिनको सर्दी, जुकाम, खांसी, जकड़न और मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक से लेकर के संबंधित बीमारी
1: जी। एक्चुअली कभी कभार किसी के लंग्स में फील होता है सांस लेते टाइम कि कुछ आवाज़ें आ रही।
0: हाँ बिल्कुल, वो साई साई करने की आवाज़ आती है, कई बार घरघराहट होती है।
1: हाँ, और छोटे बच्चों की आवाज़ आती है तब तो लोग टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको भी इंजॉय करते हैं कि अंदर से आवाज़ आ रही है
0: जी बिल्कुल, ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको इंजॉय करते हैं एंड समटाइम्स हम भी इसको इंजॉय करते हैं जब बहुत ऐसे क्रॉनिक साउंड आता है तो जब स्टेथ में लगा के सुनते हैं तो कई बार होता है कि वो एक बार में क्लियर हो जाता है कि क्या है, बट हम कई बार उसको अच्छा फिर से सांस लीजिए, फिर छोड़िए, लीजिए छोड़िए और ऐसा करवाते हैं, तो हम भी कभी कभी इंजॉय कर लेते हैं इन चीज़ों।
1: ओह माय गॉड, चलिए ये भी पता चल गया है मुझे, अदरवाइज मुझे कभी इस चीज़ की खबर नहीं पता चलती कि आप लोग भी ऐसा करते हैं
0: जी।
1: वैसे मैंने भी कई बार किया है आपके आला को लेकर उस पर ठोकने का काम, देखती हूँ कितनी जोर की आवाज़ आती है।
0: हाँ हाँ, ये एक्चुअली जो बिगनर्स होते हैं वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि लेकर के उस पर नॉक करते हैं
1: जी, जी। फिलहाल के लिए ये बातें तो साइड करते हैं और अब बात करते हैं सेहत की। इस वक्त इतने सभी लोगों को वायरल क्यों हो रहा है?
0: देखिए, जो मानसून का सीज़न होता है, जैसा कि तमाम टॉपिक्स में और तमाम एपिसोड्स में हम लोगों ने इन चीज़ों पर चर्चाएं की हैं, बातें की हैं, मानसून में चूंकि नमी का माहौल रहता है और एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, एयरबॉर्न डिसीज़, वाटर बॉर्न डिसीज़ के लिए एक अच्छा वातावरण होता है उन बैक्टीरियाज़ के पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए, और इसमें क्या होता है कि कंटामिनेशन भी ज़्यादा होता है। एक और समस्या मैं देखता हूँ कि यूजुअली वो लोग जो गांव देहात में क्षेत्रों में रह रहे हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ऑलमोस्ट हर तरह के कॉमन बैक्टीरियाज़ और ऐसे माइक्रोब्स के अगेंस्ट डेवलप कर चुकी होती है अपनी इम्यूनिटी, बट फिर भी वो बारिश के मौसम में बीमार पड़ जाते हैं। देखिए, बारिश के मौसम में जो वाटर का फ्लो होता है वो धरती पे थोड़ा सा चेंज होता है, अलग अलग जगह के वाटर रिजर्वायर्स जो होते हैं, तालाब होते हैं, गाय वगैरह जहाँ पाली जाती है उन सभी, उनके जो मल होते हैं, मानव के भी मल होते हैं, वो पानी के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और उनमें उपस्थित संक्रमण भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है क्योंकि पानी का बहाव होता है। तो ये कारण हो जाता है कि बारिश के मौसम में मतलब वाटर मूवमेंट में थोड़ा चेंजेस होने की वजह से, कंटामिनेशन बढ़ जाने से, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के ग्रोथ का अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने से ये चीज़ें और ये समस्याएं ऐसे मौसम में वातावरण में ज़्यादा फैलती हैं।
1: अच्छा, मैंने एक चीज और नोटिस की है कि मॉनसून के सीजन में, यानी जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा एक्ने की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और एक्ने भी ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट्स पर होते हैं कि वो बेचारे बता भी नहीं पाते हैं कि कहां जाकर बताऊं मैं ये चीज।
0: आज एग्जैक्टली आई डोंट नो कि हो सकता है अगर कहीं से लोग मुझे सुन भी रहे हो तो मैं थोड़ा सा प्राइवेसी में ही शेयर करूंगा कि आज ही एक पेशेंट ऐसे मॉर्निंग में ही देखा जिनके मतलब चक्कों पे, जो बट होते हैं, ह्यूमन बट्स होते हैं, उनके चक्कों पे और काफ़ी मैसिव सा, मतलब 2.5-3 इंच के डायमीटर का फोड़ा जो है निकल रखा था, और वो बैठने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। किसी तरह से साइड से टिका करके बैठे हुए थे वो,
1: बैठने में, लेटने में, चलने में, इवन आप कपड़े भी पहन रहे हो तो भी वो इरिटेट करता है
0: जी।
1: और ये चीज़ें मॉनसून के सीजन में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
0: बढ़ जाती हैं।
1: और इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस वक्त आपको ड्राई चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो अपने कपड़े ले सुखा रहे हो उसको एक बार आयरन जरूर करो, भले ही वो आपके अंडरगारमेंट्स हैं,
0: बिल्कुल
1: प्लीज आप उसे आयरन करें। सेम रिपीट ना करें। बारिश में एक्चुअल में लोग रिपीट कर देते हैं बिकॉज कपड़े सूखते नहीं
0: और मतलब कम्प्लीटली वो ड्राई नहीं हो पाते हैं और वो उसको पहन लेते हैं। तो अगर इन चीज़ों की मात्रा बढ़ाएं, अपने अंडर गारमेंट्स के नंबर्स बढ़ाएं ताकि आप उनको फ्रीक्वेंट यूज़ करने से बच सकें। और इसके अलावा अगर वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हो रहे हैं या फिर हल्का भीगा हुआ है तो उस पर जो हेयर ड्रायर होता है, ब्लोअर से थोड़ा देर 10-5 मिनट ऐसे ब्लो करने से वो अच्छे से सूख जाता है। और इन चीजों का मतलब सावधानी बरतते हुए मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन और भी दूसरे तरह के स्किन इन्फेक्शन जो हैं वो ऐसे फ्रीक्वेंट होने से बचेंगे।
1: अच्छा सर, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ये इन्फेक्शन सिर्फ हमारे हाथ पैरों में ही नहीं होता है
0: जी,
1: स्कैल्प के अंदर भी हो जाता है।
0: देखिए वैसे तो इन्फेक्शन एक ऐसी चीज है भाई, संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इन्हीं सारी चीज़ों से होता है
1: जी।
0: ये हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट, लिटरली किसी भी पार्ट में हो सकता है, बोन्स में हो सकता है, हड्डियों में हो सकता है, नेल्स में हो सकता है, बालों में हो सकता है, स्कैल्प में हो सकता है, स्किन पे हो सकता है, दांतों में, मतलब एनीवेयर इन द बॉडी वो कहीं भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं।
1: ऐसे मैंने भी केस रीड किया था जिसमें एक इंसान बार बार शिकायत लेके जाते हैं डॉक्टर के पास कि मुझे सर में बहुत दर्द है। अब उसे हर तरह की दवा दे दी गई, एक्सरे करा दिया गया, MRI करा दिया, क्योंकि दवा निकल ही नहीं रही थी, कोई मर्ज नहीं निकल रहा था। एक रोज जब वो कहीं अपने बाल कटाने गए और उन्होंने कहा कि पूरा बाल हटा दो, उस दौरान पता चला कि उनके स्कैल्प के अंदर इतने बड़े बड़े छाले टाइप के पड़े हुए हैं, पूरा स्कैल्प उनका वाइट हो रखा है उस चीज से। और ये चीज बिकॉज मैं एक वो इंसान हूं जो ऐसे होल्स टाइप की चीजें देखकर थोड़ा सा वियर्ड फील करते हैं, तो मुझे तो काफी अजीब लगा था। इवन जब वो बाल काट रहा था तो उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी
0: जी।
1: और इसी की वजह से उन्हें हेडेक बना हुआ था लगातार लगभग 6-7 महीनों से
0: जी।
1: और इस चीज को कोई ध्यान नहीं देता, हमको लगता है सिर्फ बालों में डैंड्रफ ही होता है
0: जी।
1: बट स्कैल्प में कुछ ऐसे भी फोड़े पड़ जाते हैं जिसमें बमाद भी होता है, इसके अलावा उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, इचिंग हो रही है, और हमें लगता है कि कोई भी शैम्पू लगा लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा।
0: बिल्कुल। और बेसिकली मैंने ये देखा है कि जो स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन होता है वो आगे धीरे धीरे लीड करके मतलब मल्टीपल कॉज डर्मेटाइटिस बन जाता है, मिक्स डर्मेटाइटिस बन जाता है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। अब चूंकि क्या होता है ना कि जैसे जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है वो किसी तरह के बैक्टीरिया वगैरह को रेजिस्टेंट करने में काफ़ी ज़्यादा ईजिली सधी होती है, बट अगर उस जगह पर फंगल इन्फेक्शन हो गया और लंबे समय तक रह गया तो वहाँ पर एक नॉर्मल से नॉर्मल बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो वो जब वो मिक्स डर्मेटाइटिस बन जाता है, डीप स्कैल्प तक वो पेनेट्रेट करके इन्फेक्ट हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे वहाँ पे पेन होना, सूजन होना, मल्टीपल लेयर्स वहाँ से पील ऑफ होना, वो लेयर बाय लेयर करके पील ऑफ हो जाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड एंड डेड टिश्यूज होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको बिल्कुल उसको ध्यान देना चाहिए। अगर बार बार सर में इचिंग होता है, सर में खुजली होता है, डैंड्रफ ज़्यादा आता है, पपड़ियाँ बन के, मोटी पपड़ियाँ अगर उजड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको फिर वो एक नॉर्मल डैंड्रफ से अलग हो सकता है और आपको उसकी प्रॉपर क्योर करने की ज़रूरत है।
1: गर्मियों में स्कैल्प पे अक्सर दाने भी निकल आते हैं, ये चीज़ भी आपने नोटिस की होगी। हमारे बालों में लगातार पसीना रुकता है और वो सूखता भी नहीं, स्पेशली लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं सूखता बिकॉज वो किचन में है, वो बाहर हैं, फैन में आती हैं, 5 मिनट बैठती हैं, फिर वो चले जाती हैं और ऑल द टाइम उनके बाल बंधे होते हैं, इसकी वजह से स्कैल्प में हवा कभी पहुंचती ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: और ये चीज़ बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है कि लगातार स्कैल्प में इचिंग हो रही है, कभी कभार लगता है कि डैंड्रफ है और हम जाकर डैंड्रफ वाले शैम्पू ले आते हैं कि इसे ठीक हो जाएगा, बट वो चीज़ ठीक ही नहीं होती, बार बार रिपीट पर आपको डैंड्रफ हो रहा है। ये सिम्टम होता है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो रहा है स्कैल्प में।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो स्कैल्प के फंगल इन्फेक्शंस हैं, जैसे इन्फेक्शन तो तरह तरह के होते हैं, फोड़े भी होते हैं बहुत सारे, जैसा कि उन्नति मैम ने बताया। उन्नति मैम को मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि धीरे धीरे काफ़ी चीज़ों की काफ़ी अच्छी जानकारी हो गई है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे थोड़ा इनसिक्योर भी करती है, बट ठीक है, फिर भी समाज में जानकारी फैलाते हैं, अपना काम करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया
0: जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि फोड़े हो जाते हैं गर्मी में, वहाँ पे पसीना होता है, वो पसीना रुकता भी है, स्टे करता है, तो फिर ऐसे में बैक्टीरिया वगैरह और फंगस वगैरह के लिए अच्छा वातावरण बनता है ताकि वो स्प्रेड कर सकें और इन्फेक्ट कर सकें आपके टिश्यूज़ को। तो फोड़े वगैरह भी देखने को मिलते हैं, और समटाइम्स क्या होता है कि जो फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं उनके लिए सिर्फ टॉपिकल सॉल्यूशंस काफ़ी नहीं होते हैं। टॉपिकल सॉल्यूशंस मतलब जो हमारे स्किन पे बाहर से अप्लाई किए जाएं, जैसे लोशन हो गया, शैम्पू हो गया एंड ऑल। अच्छा, कुछ तरह के जो ऐसे हेयर में फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनमें सिर्फ शैम्पू के बजाय उनमें कुछ डिफरेंट टाइप के लोशंस और समटाइम्स कुछ ओरल एंटी फंगल्स भी देने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो जो डीप टिश्यू, जो कोशिकाओं की गहराइयों में जो उनकी जड़ें हैं, उनको भी समाप्त किया जा सके।
1: अच्छा सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी, अगर इन्फेक्शन स्कैल्प में लड़कों को होता है तो डॉक्टर उनसे कहते हैं आपने पूरे बाल हटवा दो
0: जी,
1: इसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं
0: जी।
1: बट ये केस लड़कियों के केस में थोड़ा उल्टा हो जाता है, हम उनसे नहीं कह सकते कि आप अपने पूरे बाल हटवा दो
0: जी,
1: और ना वो हटवाएंगी ही
0: जी।
1: तो उस तरह के इन्फेक्शन को आप उस दौरान कैसे ठीक करोगे अगर किसी लड़की को हो जाए, या फिर आप मुझे ये बता दीजिए कि कैसे हम पहले से ही ध्यान रखें ताकि लड़कियों में स्कैल्प इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाए।
0: टाइमली बाल धोना,
1: हफ्ते में दो बार लगभग,
0: और कोई एक अच्छा शैम्पू जो आपके बालों के हिसाब से, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, हेयर टाइप के हिसाब से जो आपको सूट करता हो, बहुत ज़्यादा उससे हेयर फॉल और ऐसी समस्याएं ना आए, तो इन चीज़ों का यूज़ करके। और अगर मान लीजिए कभी थोड़ी बहुत समस्या हो रही है तो ऐसी समस्याओं को डिटेक्ट करके और उसका ट्रीटमेंट, क्योंकि समस्या तब वर्सन हो जाती है जब हम उसको इग्नोर करते हैं
1: जी।
0: हमें लगता है कि नॉर्मल खुजली है, सबके सर में होती है, फिर वो खुजली कॉन्टिन्यूस होती है, खुजाने में मजा भी आता है लोगों को।
1: हाँ, बहुत ज्यादा जी, इवन तो, वो पेनफुल भी हो जाता है
0: जी, खुजाते पेनफुल भी हो जाता है, बट फिर भी उसमें इचिंग होती है और फिर भी लोग खुजाते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें धीरे धीरे कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है तो उसको बेहतर होगा कि प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके और उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाए। जैसे कि अब मान लीजिए किसी को खुजली हो रही है, उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है, लगता है, तो उसके लिए जो नेसेसरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। अगर शैम्पू से काम चलता है तो शैम्पू, नहीं चलता है तो कुछ लगाने के दूसरे सॉल्यूशंस, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और है जो साइंटिफिकली कहीं, जिस पे हम ये नहीं बात कर सकते हैं कि वो प्रूवन है या नहीं प्रूवन है, बट बालों में जो तेल लगाने की बात होती है, ऑयलिंग,
1: बिल्कुल ये बात मैं भी बोलने वाली थी, जो बहुत ग्रीसी ऑयल लगाते हैं स्पेशली मॉनसून या गर्मियों में
0: जी,
1: उन्हें बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
0: बिल्कुल, और देखिए ऑयलिंग करना ठीक है, इसको मैं बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये भी बॉडी एंड हेयर टाइप पे डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल, आपका स्कैल्प अगर पहले से ही ऑयली है और आप उस पर और ज़्यादा ग्रीसी ऑयल लगाते हैं तो ये इन्फेक्शन ही क्रिएट करता है।
0: अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे ऑयलिंग अगर आप करते भी हैं, ऑयल लगाते भी हैं, तो उसका एक ड्यूरेशन होता है कि 4-6 घंटे इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसके बाद आप उसको अच्छे से शैम्पू वगैरह लगा करके धुल लीजिए, तो ये उसको क्या करता है कि उसका जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको बनाए रखता है। अगर आप उससे ज्यादा मॉइस्चर देंगे तो भी वो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है।
1: कई लोग ऐसा करते हैं कि वो हफ्ते हफ्ते भर तेल लगाए रखते हैं, बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी उसी स्कैल्प पे उसी तेल में चिपक रही है, और आप हेयर वॉश करते हैं, जल्दी जल्दी वॉश करके आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, और यूजुअली एक चीज और देखने को मिलता है, जब हमारे यहाँ हमारे समाज में जब कोई बीमार पड़ता है
1: जी,
0: स्पेशली लड़कियां कभी बीमार पड़ती हैं, तो उनके सर पे ढेर सारा तेल मतलब रख दिया जाता है, और उनके मतलब वो तेल एब्जॉर्ब होके फिर फेस की स्किन से धीरे धीरे सेक्रेट होने लग जाता है, फेस भी पूरा ऑयली हो जाता है, और वो लगता है कि वो और ज़्यादा बीमार है पेशेंट।
1: और स्कैल्प के ऑयल की वजह से फोरहेड पर भी एक्ने बहुत तेज़ी से आते हैं,
0: तो ऑयल जब भी आप यूज़ करें सीमित मात्रा में, एक अच्छा कोई हल्का ऑयल यूज़ करें अपने बॉडी एंड हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, और उसको मैक्सिमम 2-3 घंटे या 4 घंटे के बाद, या अगर आप नाइट में लगा रहे हैं तो ओवरनाइट के बाद मॉर्निंग में उसको अच्छे से शैम्पू वगैरह से धुल लेना चाहिए।
1: तो इससे आप स्कैल्प इन्फेक्शन से बच सकते हैं
0: जी।
1: अगर आप अपने हाइजीन का ख्याल रखते हैं, आपके स्कैल्प को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हेयर वॉश करते हैं तो एक्चुअल में अपनी लेंथ धोने लग जाते हैं, यानी कि बालों की जो लंबाई है उसको साफ करते हैं। हालांकि इस पे शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, शैम्पू की ज़रूरत आपके स्कैल्प को है और वहीं पर हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स क्रिएट करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप शैम्पू को पूरी तरह से निकाल नहीं रहे हो या अच्छे से उसको शैम्पू कर नहीं रहे हो या फिर आपने जो कंडीशनर कहीं और लगाना था उसे अपने स्कैल्प में लगाया है तो इन्फेक्शन होना तय है।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया ये तो थी बातें आपके स्कैल्प इन्फेक्शन की, लेकिन इन्फेक्शन सिर्फ स्कैल्प में होगा ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि आजकल पानी सब जगह भरा हुआ है और मैं अपने रास्ते में भी देखती हूँ, जब निकलती हूँ तो पानी भरा रहता है और निकलने में बहुत दिक्कत होती है। इसी दौरान उसी पानी में आपका पैर भी जाता है और कई लोगों के, स्पेशली मैंने गाँव के इलाकों में देखा है कि लोग कहते हैं मेरा पैर ही सड़ गया है, इन्फेक्शन हो गया है। वो पेनफुल होता है, उसमें व्हाइट कलर का एक लिक्विड भी आ जाता है, ईचिंग भी हो रही है, चला भी नहीं जा रहा, और इसके बाद भी आप डॉक्टर के पास ना जाके घरेलू इलाज में लगे हुए हैं
0: जी।
1: आप मुझे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब पैरों में ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो जाती है?
0: देखिए, जो स्पेशली गांव में लोग रहते हैं, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि वो चप्पल भी नहीं पहनते हैं बहुत से लोग, या जो चप्पल पहनते हैं वो भी खेतों में घंटों तक काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने पैरों पे ही खड़े होंगे और पैर उनके नमी में, पानी, मिट्टी में और ऐसी जगहों पे ही, गंदगी में ही रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा खेतों में तरह तरह के खाद और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं, तो कभी कहीं ना कहीं पानी भरने पे उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो भी पानी में आ जाती है जिसमें कि पैर रहते हैं। अब उनमें अगर कोई भी व्यक्ति 2-3 घंटे तक रहता है, अगर आप अपने ही पैर 2-3 घंटों तक पानी में डालेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी जो नीचे की लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा फूल गई है, मतलब लगने लगता है कि वो फूल गई
1: है
0: और
1: सॉफ्ट हो गई है,
0: सॉफ्ट हो गई है, वाइटिश कलर में हो गई है और तुरंत पैर पोछ लेने के कुछ घंटों बाद तक भी वो उसी तरह रहती है, गीली और भीगी हुई लगती है, फूली हुई। तो ऐसे कंडीशन में जब वो फूल जाती है तो बहुत माइनर से माइनर प्रेशर भी स्किन को डैमेज कर देता है। अब स्किन को डैमेज कर दिया तो फिर वो जो भी पानी है या उस पानी के अंदर की मौजूद टॉक्सिसिटी है वो आपके इनर टिश्यूज़ तक पहुंच गई और इनर टिश्यूज़ तक पहुंचने के बाद फिर वहाँ पे इन्फेक्शन और सेल्यूलाइटिस और वहाँ पे पस का आना या पंछा निकलना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं। तो इसका कारण कई बार फंगल भी होता है, कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो ये मिक्स डर्मेटाइटिस है। और इसके लिए आपको, जैसे मैंने एक बार बताया था कि खेतों में जो लोग काम करते हैं, देर तक काम करते हैं, उन्हें 400-600 रुपये अपने खर्च करके और जो हाई बूट्स होते हैं, जो फार्मिंग बूट्स होते हैं, उनको परचेज कर लेने की आवश्यकता होती है, उससे वो काफ़ी हद तक के पैरों की इन्फेक्शन से बच सकते हैं।
1: अच्छा सर, एक और बात आपसे जाननी है, इस इन्फेक्शन के दौरान और नॉर्मली भी हमारे देश में औरतें अपने पैरों में महावर लगाती हैं, जिसको हम आलता कहते हैं, कलर कहते हैं, जी। क्या इस कलर से भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है?
0: देखिए, अगर आप इन्फेक्टेड पैर पे ये लगाते हैं जिसको आलता या महावर कहते हैं, तो वो सुरक्षित तो नहीं है। अगर आपका पैर पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी भी जगह पे कोई
1: कटी हुई एड़ियां हैं, उस दौरान भी लोग लगाते हैं, इवन मैंने देखा है उनके पूरे साल पैर ऐसे ही कलरफुल होते हैं जो कि अच्छे भी लगते हैं देखने में, बट एक हेल्थ के नजरिए से अगर हम इस चीज को देखें तो ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है?
0: बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं जो महिलाओं में यूज़ होने वाले कॉस्मेटिक्स हैं, मैंने देखा था कि किसी जगह पे एक पोस्ट पढ़ी थी कि महिलाओं के जो कॉस्मेटिक्स हैं जिनको यूज़ करती हैं डेली बेसिस पे, अब तो मुझे थोड़े बहुत नाम भी याद हो गए हैं, जैसे कि लिप टिंट हो गया, लिप बाम हो गया और फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या, बहुत ज़्यादा तो अभी भी नहीं मालूम है मुझे, तो ऐसी चीज़ों का जो यूज़ करते हैं, नेल पेंट्स हो गए, ठीक है, पहले तो नेल पॉलिश एक वर्ड चलता था, अच्छा वर्ड्स भी ट्रेंडिंग होते रहते हैं, अभी वो नेल पॉलिश कोई नहीं कहता, नेल पेंट लोग कहते हैं उसको, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इनमें मोर देन 180 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं, 180 तरह से ज़्यादा के पदार्थ उसमें, केमिकल्स ऐसे डाले जाते हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, मतलब वो तत्व जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, कैंसर जैसे टोबैको इज़ अ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस, ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर रोग को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, उसी तरह से 180 से ज़्यादा तरह के केमिकल कंपाउंड्स ऐसे उसमें यूज़ होते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों को पैदा करते हैं
1: जी।
0: कई सारे ऐसे भी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें कई सारे ऐसे पॉजिटिव क्लूज भी मिले हैं कि उनके यूज से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और पीसीओडी जैसी समस्याएं हो रही हैं। नेल पेंट और ये सारा आप अपने नाखून में लगा रहे हो, चेहरे पे लगा रहे हो, लिप्स पे लगा रहे हो, आंखों के पास लगा रहे हो और प्रॉब्लम आपके यूटेरस में हो रही है जाकर के, ठीक है। तो ये चीज़ें
1: ये बिल्कुल वैसा ही है कि खाना आप भले ही किसी भी प्लेट में खा रहे हो, पानी आप बॉटल से पी रहे हो और आपकी बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक जा चुका है।
0: जी जी जी, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी इससे रिलेटेड हुए चीज़ें हैं और इसीलिए आप देखिए कि अब महिलाओं में जो यूट्रस एंड सर्वाइकल कैंसर जैसी घातक समस्याएं हैं ये पहले से बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट दिखती हैं क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं दूर गांवों में भी, अच्छा दूर क्षेत्रों में तो बहुत ही जो कॉस्मेटिक्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही थर्ड क्लास के, बहुत ही थर्ड क्वालिटी के यूज़ होते हैं सस्ते और चीप होने की वजह से। शहरों में तो चलो लड़कियाँ थोड़ी पढ़ी लिखी हैं तो वो लैक्मे और लॉरियल जैसे ब्रांड्स और पता नहीं क्या क्या, उतना तो जानकारी भी नहीं है मुझको, इनका यूज करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं
1: okay, हमारे पास एक कॉल है।
0: बिल्कुल,
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी, आपका नाम?
2: नाम है मेरा मोहम्मद रफीक खान।
1: मोहम्मद रफीक खान जी, आपका स्वागत करते हैं क्लिनिक ज्ञान असली में। क्या आपका कोई सवाल है?
2: मेरा सवाल तो नहीं, रेडियो मेरा आपके खराब चल रहा है, क्या पूछना चाहता हूँ?
1: ओके, मैं आपकी प्रॉब्लम बस कुछ ही देर में ठीक करती हूँ। सर प्लीज आप ना नेटवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है सर, तो एक मिनट आप हमें देंगे, हम चेक करके बताते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम है। शुक्रिया
0: जी। हमारे कोई एक बहुत ही जागरूक लिसनर हमें सुन रहे थे और उनकी समस्या ये थी कि वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं, रेडियो कुछ काम नहीं कर रहा है। इनकी इस जिज्ञासा का मैं बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और हम बात कर रहे थे कि वो क्या चीज़ें होती हैं जो नुकसान कर सकती हैं या फिर वो जो आलता होता है जिसको महिलाएं पैर में लगाती हैं। देखिए, नो डाउट कि वो भी एक केमिकल कलर होता है, एक रसायन से बनाया गया रंग होता है और यदि फटी एड़ियां हैं, टिश्यूज़ गहरे हैं, घाव हैं, उनमें दर्द भी होता है। तो ऐसी समस्याएं होने के बाद अगर उस पर हम ये कलर लगाते हैं, ये केमिकल उसमें एब्जॉर्ब होकर हमारे अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाता है या किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन वगैरह है वहाँ पर ये केमिकल्स वहाँ जाते हैं, तो बहुत ही एक बार में तो ये बहुत बड़ी गंभीर और घातक समस्या नहीं पैदा कर सकते हैं। बट यदि ऐसा रेगुलर बेसिस पे होता है, बार बार ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में ऐसी कोई गंभीर समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं।
1: ऑल राइट, तो ये तो बात थी आपके पैरों की और अब बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन रिंग वॉर्म जो आपके उंगलियों के बीच में हो जाता है।
0: जी, ये भी एक कॉमन समस्या है, मानसून के समय में देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब समाज में प्रचलित समस्या है, बहुत से लोग इसका सामना कर चुके होंगे।
1: रिंग वॉर्म ऐसी ऐसी जगह पर आपको मौजूद मिलेंगे लाइक पैरों की उंगलियों के बीच में, हाथ पे, स्कैल्प पे, इसके अलावा आपके इनर थाइज में।
0: जी,
1: और रिंग वॉर्म दांत छूने से फैलता है, इसलिए कई लोग बताते भी नहीं हैं इस चीज़ को।
0: हाँ जी बिल्कुल, बताते भी नहीं हैं और मतलब थोड़ा सा ऐसे जो सामाजिक कुछ विभ्रम ऐसे हैं जिनको लोग थोड़ा सा डरते हैं, उनको लगता है कि लोग हमसे छुआछूत करेंगे, हमें नहीं बताना चाहिए, छुपाना चाहिए, तो ऐसे कई सारी भ्रांतियाँ हैं।
1: जी, तो चलिए आप मुझे ये बताइए कि मानसून के सीज़न में स्पेशली रिंग वॉर्म से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में मैं और भी एक दो चीज़ें ऐड कर देता हूँ। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रिपीट होता रहता है, फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादातर समस्या होती है रीअकरेंस की,
1: जैसा कि आपने बताया था कि या तो कंप्लीट कोर्स नहीं है या तो वो पुराना हो चुका है।
0: हाँ, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस लाइक समस्याएँ हो चुकी हैं उसमें और ये मेजर समस्या ये आती है रीअकरेंस की। तो ऐसे लोग जिनको रिपीटेड होता है, जो लोग जिनको नहीं हुआ है वो बचाव करने का यदि विधि जानना चाहते हैं, तो उसमें सिंपल सी बात है कि बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो भीग गए हुए हैं या आपके ऊपर कीचड़ वगैरह पड़ा है तो अच्छे से नहाएं, साबुन लगा करके नहाएं। और बेहतर ये होगा कि मानसून के समय में आप जो अपना जनरल सोप यूज़ करते हैं उसको बीच बीच में, जैसे अगर हफ्ते में आप 7 दिन नहा रहे हैं, साबुन लगा के नहा रहे हैं, तो बीच बीच में एक दिन करके 3-3 दिन पर आप एक एंटीसेप्टिक सोप यूज़ करिए, जैसे डिटॉल हो गया और सेवलॉन वगैरह का भी साबुन आता होगा, तो एंटीसेप्टिक सोप यूज़ करिए। और यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो ही गया है तो या रिपीट होता है, बार बार आता है, तो ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वो एंटी फंगल सोप का इस्तेमाल करें, जिससे इनको उसको काउंटर करने में उनको आसानी मिलेगी।
1: और जिन्हें हो चुका है वो क्या करें, क्योंकि वो परेशान रहते हैं, गर्मी आते ही उनके दिल में एक अजीब सा दर्द बैठ जाता है कि गर्मी आ गई, मानसून आ गया, मतलब अब ये वापस आएगा।
0: देखिए ये भी समस्या है, काफ़ी ज़्यादा पीड़ित भी हैं लोग इससे। जिनको हो चुका है उनके लिए बेहतर ये है कि वो एंटीफंगल थेरेपी लें, जैसे जिसमें इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये आपके फंगल इन्फेक्शन को देख करके और एक एडवाइज़र ही बेहतर एडवाइस कर सकता है। तो किसी अच्छे एडवाइज़र से सलाह ले करके और जो इसका एक कोर्स होता है उस कोर्स को कम्प्लीट करें। वो आपको कुछ स्पेसिफ़िक क्रीम्स जैसे कि क्लोट्रिमाजोल होता है, कीटोकोनाजोल होता है, और भी दूसरे सॉल्ट्स आते हैं जिनको आप कैंडिड के नाम से, क्लोबेट जीएम के नाम से और बेटनोवेट के नाम से, बेटनोवेट सी और समथिंग, इन सब नामों से आप जानते हैं, उन क्रीम्स का यूज़ करें आप। और फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाने के बाद भी जिस जगह पे हो रहा है आप उस जगह को स्पॉट कर लीजिए कि इस जगह पे मुझे था, और उसके बाद भी हफ्ते 10 दिन तक, 15 दिन तक या कुछ कुछ दिनों तक छोड़ करके आप क्रीम वहाँ पर लगाते रहिए, ताकि वो मतलब उसका जो फ़ायदा है क्रीम का, जो रिस्पॉन्स है उसके, जो सॉल्ट हैं, वो डीप टिश्यू में पेनिट्रेट करके और आपको बेहतर रिजल्ट्स दे सकें।
1: अच्छा सर, ये जो जहाँ जहाँ पर पसीना स्पेशली रुकता है, लाइक इनर थाइज़ है, हमारे गर्दन है, हमारे हाथों के पास है
0: जी,
1: तो ऐसे एरियाज में क्या ड्राई पाउडर या टेलकम पाउडर लगाने से मदद मिल सकती है?
0: उस एरिया में पाउडर लगाने से बिल्कुल मदद मिल सकती है। आप कॉमन कोई टेलकम पाउडर वगैरह भी लगाते हैं उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है।
1: पाउडर मुझे लगता है वहाँ पर गीला नहीं होने देता,
0: वो उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और फंगल को जो ग्रोथ होती है, जो स्प्रेड करता है, उसमें ये मतलब बाधा बनता है। इसके अलावा अगर ऐसे लोग हैं जिनको जेनिटल एरियाज में और ऐसे जगहों पे, इनर थाइज में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनके लिए बेहतर है कि वो कई सारे एंटी फंगल पाउडर्स भी आते हैं, जैसे कैंडिड बी पाउडर आता है, क्लोसिप पाउडर आता है, क्लोट्रिमाजोल का और दूसरे भी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, माइकोडर्म सी आता है, ये बहुत कॉमन पाउडर्स हैं जिनको लगा करके आप ये फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से, ग्रोथ होने से आप रोक सकते हैं।
1: फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए अगर आपका कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में ज़रूर से भेजिएगा और आप एंजॉय करते रहिए क्लिनिक ज्ञान असली अपनी आशुनति और अपने हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी के साथ। स्टे ट्यून्ड।
3: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए, इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
3: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
4: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए, यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
3: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
4: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
3: अच्छा।
4: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
3: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
4: बहुत सारी,
3: जैसे?
4: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
3: जी।
4: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
3: और बाकी?
4: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है, बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है, और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
3: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
4: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है, और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है, 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
3: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए?
4: देखिए आकांक्षा जी,
3: जी,
4: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
3: जी
4: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है, या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए, शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे, तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है, देर मत करो। RJ दीदी
3: जी,
4: खासकर कम वजन वाले बच्चे, 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
3: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
4: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, KMC यानी माँ की छाती से चिपकाकर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल ना घी ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
3: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
4: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
3: और भैया, हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
4: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं, और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
3: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
4: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
3: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो क्लिनिक ज्ञान असली में। मैं हूँ आपकी अपनी आयुष्मती, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी, और आपके लिए हमारे पास एक सवाल है।
0: जी, हम देख पा रहे हैं कि कोई प्रश्न भी आया है लगातार। पढ़िए प्रश्न और देखते हैं कि क्या पूछना चाहते हैं हमसे।
1: अविनाश शुक्ला जी का सवाल है, और सबसे पहले उन्होंने विश किया है, गुड इवनिंग सर एंड मैम, गुड इवनिंग,
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग।
1: सर, हमारे यहाँ एक स्टाफ है, उनको फंगल इन्फेक्शन है, 4 साल से ज़्यादा हो गया है। बीच में ठीक हो गया था, पर पिछले 2 महीने से बहुत हो गया है। क्या सर ये एक दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकता है? क्या करे सर, स्टाफ है।
0: हाँ, देखिए, इनकी चिंता भी मैं समझ पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जैसा कि मैं, इस बात का ज्ञान है मुझको, और मैं इस फील्ड में और अपने लिसनर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ये इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि इन्होंने अपने स्टाफ के लिए खुद कॉल करके दवाइयां प्रिस्क्राइब कराई, वो दवाइयां जाकर के बताए हुए जगह से इन्होंने परचेज करी और परचेज करके जाकर के स्टाफ को दी, और उसके अलावा स्टाफ को छुट्टी भी दी कि तुम ये दवाइयां खाओ और हफ्ते 10 दिन आज जो है आराम से घर पे आराम करो। काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत बहुत इनका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल इनका जो प्रश्न है उसका समाधान करते हैं। ये एक दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, इनफैक्ट ये ऐसे ही स्प्रेड होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में और दूसरे से तीसरे में ही ये इन्फेक्ट होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको ये बचाव करना चाहिए कि आप किसी भी बहुत कॉमन जगह पे जहाँ पे सब लोग बैठते हों वहाँ पे ना बैठें। कपड़े अगर आप पहन रहे हैं तो एटलीस्ट फुल स्लीव्स के और हाथ पैरों के पहने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो आपका ढका रहे। अब वो अलग बात है कि कपड़ों का मतलब चूज़ करना पड़ेगा आपको कि कैसा मौसम है, सूती कपड़े पहनने हैं कि ब्रीथेबल पहनने हैं, क्या पहनने हैं।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है ऐसे मोमेंट में आपको कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनने चाहिए। आजकल लोग सिल्क पहनते हैं और जॉर्जेट पहनते हैं, इन कपड़ों से थोड़ा दूर रहें क्योंकि ये और भी ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है, कंडीशन वर्स कर सकता है।
0: जी जी बिल्कुल, तो वो चॉइस करके, और आपको चाहिए कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े पहने ताकि एटलीस्ट जो आपकी स्किन है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट में ना आए और दूसरों को मतलब इन्फेक्ट ना करे। इसके अलावा जो भाई इन्होंने कही कि स्टाफ है, तो ठीक है स्टाफ है, आपने बिल्कुल जागरूकता के साथ उसको अच्छा एडवाइस भी दिया और जो बेहतर हो सकता था आपने उसके लिए डिसीजन लिया, और इसके लिए आपको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: अच्छा सर, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की बात करते हैं तो इस वक्त क्योंकि मच्छर भी बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं
0: जी,
1: तो मैं सच में चाहूँगी कि हर दूसरा इंसान, अब स्पेशली बच्चे जो पार्क में जा रहे हैं उनको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए जाए, हालांकि बच्चे पहनते नहीं, और मैंने देखा स्लीवलेस ऐसे ही कपड़े पहन के वो घूम रहे हैं
0: जी।
1: और इस दौरान बच्चों के अंदर एक बुखार है जिसको हम कहते हैं जापानी बुखार, वो देखने को मिलता है अगर आप खेतों के आसपास रहते हैं, पार्क में रहते हैं और मॉनसून की बारिश में इस वक्त वो बुखार बहुत तेजी से फैलता है, तो आप अपने बच्चों को स्पेशली फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाकर ही घर से बाहर निकालें, ओडोमॉस लगाकर बाहर निकालें, ऐसे ही उन्हें मत छोड़ दें, अदरवाइज फिर उन्हें फीवर, उन्हें जुकाम, उन्हें बुखार, उन्हें सर में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द होता है।
0: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो फुल स्लीव्स की बात है ये बिल्कुल सही है, और इसको अपना करके आप काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं इसको बढ़ा सकते हैं कि आपने तमाम तरह के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर दिया है। 100% आप नहीं रोक सकते हैं, बट मुझे लगता है कि 50% चांसेस जो है वो आपने घटा दिए इन्फेक्ट होने के। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर बच्चों में ध्यान रखना चाहिए, किसी भी जगह पर जाते हैं, खेलते हैं, दौड़ते भागते हैं इधर उधर, और इन्हीं सारी चीज़ों का और इन्हीं हैबिट्स का ध्यान रखना चाहिए।
1: और इसी के साथ, क्योंकि घड़ी ने इशारा कर दिया है वक्त होने जा रहा है विदा लेने का, तो मैं आपसे चाहूंगी कि मॉनसून में कोई हेल्थ को लेकर एक बढ़िया सी ट्रिप आप दे दीजिए ताकि हमारे लिसनर स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
0: देखिए वैसे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड एडवाइस भी हैं, बट कुछ मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ जो आपके एक्चुअल लाइफ में, डेली लाइफ में काम आएंगे। अगर आप बाहर जाते हैं, बारिश का मौसम है, छींटे पड़ते हैं, कीचड़ हैं, और अगर आप भीग जाते हैं, तो ऐसे में जब आप घर आएँ तो सबसे पहले आप नहा करके अपने आप को अच्छी तरीके से सुखाएं, पहली एडवाइस। दूसरा टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि बारिश के मौसम में, मॉनसून के सीज़न में, आप अपने जो सोप यूज़ करते हैं उनको बदल के किसी एंटीसेप्टिक सोप में जैसे कि डिटॉल या सेवलॉन जैसे स्विच कर दें। तीसरी एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा आपको कि अगर आप भीग रहे हैं या भीग गए हैं तो अपने, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कई बार मुझे भी ऐसा करना पड़ता है, मैं इसको भी एडमिट कर रहा हूँ, कि वही भीगे हुए कपड़े ही पहन करके वो रह जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बारिश है भीग सकते हैं तो अपने साथ एक कपड़ा रखें और अच्छे से सूख जाएँ, ज़्यादा देर तक शरीर को गीला ना रहने दें। बचाव करें, हाथ पैर अच्छे से धोते रहें, समय समय पर धोते रहें, कहीं भी हाथ इधर उधर ना रखें, या बेयर हैंड्स हैं आप इधर उधर हाथ रख रहे हैं तो वो हाथ अपने चेहरे के आसपास, मुंह के आसपास ना लगाएं, और कुछ भी खाने पीने या मुंह को टच करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज या किसी सोप या डिटर्जेंट से वॉश करें। इतनी एडवाइजेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा नहीं तो भी 30-40% संभावनाओं को आप घटा देते हैं इन्फेक्शन होने के।
1: ऑल राइट, और इसी के साथ अब चाहेंगे आपसे इजाजत, फिर मुलाकात होगी, आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय।
6: चैरिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260 पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
7: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
8: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
3: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
8: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
3: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
8: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
3: जी।
8: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
3: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
8: देखिए आकांक्षा जी ये सच है
3: जी
8: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहां स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच कम है वहां जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
3: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट, ढेर सार मसालेदार बातें चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: दुलारी, बड़ा देर कर दियो, नहीं आती तो तुमका बहुत बढ़िया आइटम खवाते हैं।
2: अरे चाची, राम राम। चाची बहुत गर्म की हाँ है, अब कचवाए है गर्मी, पानी बरसते ना, ये झूठ है, बादल आवत है और डरवाए डरवाए चला जाता है।
1: ना ही कुछ, थोड़ा बहुत तो बरसा है।
2: आज तनिक भर कलिया नाग पंचमी है तो रहा।
1: हाँ,
2: वो है जो नगवा के यहाँ दूध उध पियावा जाता है।
1: मालूम नहीं का हम।
2: हाँ, तो वो है जो है कलिया त्योहार वा रहा, तो कलिया दिना भर बरसा है, अब असकार कहाँ बरसा है।
1: बरसी बरसी, देखो ये गर्मी जब पड़त है ना,
2: हाँ,
1: तब जान लो कि बारिश हो वाली है।
2: ये बारिश का होते चाची?
1: अरे बारिश मतलब दै जो बरसत है उनका बारिश,
2: पनिया बरसत है।
1: हाँ, जो दई बरसत है,
2: हाँ,
1: उनका बारिश भी कहा जात है
2: अंग्रेजी में।
1: हाँ, अंग्रेजी में बारिश कहा जाता है।
2: अंग्रेजी में है का जिन्हें बोरिस कहा जाता है।
1: बोरिस नहीं,
2: हाँ,
1: बारिश कहो, बारिश
2: मारिस,
1: बारिश बोलो,
2: बारिश।
1: हाँ,
2: चुल्हवा बार दी
1: जैसे बढ़िया समझावे कोई है कोई।
2: हाँ,
1: का
2: हाँ,
1: तब यही कहो कि बारिश नाई भाई,
2: तो कोई ई न समझे,
1: ई न कहो दयो नाई बरसे।
2: हाँ
1: हाँ, तो बत्ती हाथी हुई जई है, और जब कहियो बारिश नाई भाई,
2: हाँ,
1: तो जान लो सब लोग कहिए बहुत पढ़ी लिखी है ये सब जनी।
2: हाँ, बहुत अंग्रेजी। हाँ, आवत है
1: तो यह तो, कह बारिश हम तो सीख लिया, बारिश बोली थे
2: तो चाची।
1: हाँ,
2: हमारे सबके गौवा में कहा जाता की है चुल्हवा बारिश की नाई बारिश,
1: वो दूसर बारिश होता है।
2: हाँ,
1: जलावे के लिए कहा जाता है।
2: हाँ,
1: तो ये बारिश माने बरसे, देव बरसे के लिए कहा जाता
2: है। पनिया बरसा की नाई बरसा।
1: हाँ, बस वह है,
2: वो है कहा जाता है, वो है
1: हिंदी में बताई था।
2: हाँ हाँ, पूरे कहूँ पूरे कहूँ। तो ये बताओ चाची, कल यहाँ काव काव बनाए रहे हो?
1: कल यहाँ तो हम चना छौका,
2: हाँ,
1: और खीर बनावा,
2: हाँ,
1: और नाग देवता का लाई और दूध से परछा,
2: हाँ,
1: और दलभरी पूरी बनावा रहा है और घुइया बनावा रहा है।
2: हम तो दलभरिया चाची नाई बनाए पाए, तनी बेराम रहन, पिठिया पिरात रही हमार, और जनते हुए हमार बतुहिया कौन मेरे के ही कतना गति के ही आए, तब का करी, तब पूरी बनावा रहा, और वही वही सफेद का चनावा के काव कहा जाते हो का, छोलवा बनाए ना, और मिठकी पकौड़िया बना लिया ना।
1: अच्छा अच्छा,
2: और चनवा तनी घुघरी छोंक दिया ना।
1: गुजिया उठिया ना आई का,
2: कछु ना आया चाची, वह कहेंगे हमार मतारी बेराम ही, तब कछु ना आया,
1: भेजे टाइम। हाँ, सब बीमार हुई जा।
2: अब चाची हियस कोनो चीज जाय खोए, तब कुल चीज चाही, यहाँ चाहिए मम्मी हमका, यहाँ चाहिए अम्मा हमका, यहाँ चाहिए और बतसवो चाहिए, दो मठरियो चाहिए, कुल चाहिए।
1: हाँ, लेकिन जब बांध बांध ले जाए।
2: हाँ, और जब वो हरिया सावक हुए, तब सबके मूड
1: बेराम हो गई,
2: बेराम हो गई। तब का करी चाची, रहो बेराम का करी। अब आपके नंदिया, ये बताओ चाची, रखाऊ दिया आवत है?
1: हाँ, रखाऊ दिया तो आवत है, लेकिन तो हमारा जिया बहुत डरा है।
2: ये कहे,
1: देखो ये फोन करिन,
2: हाँ,
1: कि छुटकी आई हो कि ना आई हो।
2: हाँ,
1: कहीं कहे नहीं, हम आई, हमारा लड़का बच्चा आई, और भैया सुन लो, हम 15 दिन अब के रह के जाए।
2: अरे चाची मरियू दादा,
1: अब हाँ, तो हम तो कहा कि का करी का करी, तो हम इनसे कहा,
2: हाँ,
1: कि ऐसा है कि कोनो पंडित बताए से ये बात बताए दियो तुम अपनी बहनी का।
2: हाँ,
1: हम बताए तो बुरा मान जाई है।
2: हाँ,
1: कहीं का बताए इस पंडित से, का तुम पूछ लिए हो?
2: हाँ,
1: तो हम कहा पंडित अब की बार बताए नहीं कि जौन बहनी अपने भाई का राखी बांधे जई है, ये बार बहुत शुभ मुहूर्त है कि उनकी सास जौन है उनकी आयु बढ़ जाई।
2: हाँ, बहुत दिन तक जी हैं।
1: हाँ, तो ये बताए देन छुटकी से।
2: हाँ,
1: कहें कि बहनी आओ, आपकी बात बहुत नेक मुहूर्त है।
2: हाँ,
1: और रहवा करके, और तुम्हार सास की आयु लंबी हो जाए।
2: हाँ,
1: अब जाने का भा, कहें भैया बहुत परेशानी है, गर्मी बहुत है।
2: हाँ,
1: और लड़के बच्चन की पढ़ाई छूट गई है।
2: हाँ,
1: और ट्रेनिया माँ भीड़ो बहुत रहा है, बसों बहुत भीड़ रहा है, कहे से फ्री रहा है बस।
2: हाँ,
1: उस दिन तो हम तो ना आई पे भैया।
2: हाँ।
1: और तो से हुई सके तो तू यहाँ चले आयो और बंधवा लियो राखी। अब लियो बताओ
2: बताओ हाल।
1: जैसे कहीं की सास की आयु जौन है लंबी हो जाए
2: तो सास दिन
1: बहाना बनाई दी।
2: तब मने चाची सास ज्यादा दिन दी जाए।
1: हाँ, हाँ।
2: ससुए कसके जी जाए ज्यादा दिन
1: बहाय तो।
2: हाँ, हाँ। मूड पे राय लागू के लिए ये सब तो मनावा थी कि हाली हाली मर जाए छुट्टी पाई। और चाची ना हमार सबके सेवा ना सत्कार आए
1: कुछ
2: उल्टे हम ही सब सेवा सत्कार करी थे।
1: अरे लिखाए के आए जो दैवखिया से।
2: हाँ का कही अपने कर्म
1: में।
2: हाँ तो हाँ। तो जानियो सुखलाइन खिया का भवा
1: का होगा।
2: सुखलाइन खिया काल गया बच्चा दीस रहा।
1: अच्छा अच्छा
2: तो उनके खोड़ तो रहा।
1: अच्छा
2: हाँ, हाँ, नाग पंचमिया उनके खुआड़ तो रहा।
1: हाँ, तो अच्छा होगा कि
2: तो गैवा काल बचिया दीस।
1: हाँ,
2: तब वो दुधवा लेके हमारे घरे आई।
1: अच्छा
2: तो हम कहें कि लायवायु ठीक की हूँ सुखलाइन हमार गैवा इस समय गाभिन है।
1: अच्छा
2: भैंसियों गाभिन तो एक लागत थी।
1: हाँ,
2: तो हम कहें लायवायु नीक की हूँ दादा कैसे हमारे दुधो नहीं रहते नहीं बार खोवा उठ ले तो गोजीवा अपने बना ले। तो सुखलाइना रोवे लगी
1: काहे
2: वहाँ पर तो ही रोना।
1: अरे घर घर की है कहानी।
2: हाँ कहीं की छक छक छक छक मचाई ही घर अंगना में। हाँ और कहा थी कि हम जाबे हुआ मैके जाबे रखौंदी आवत है मैके जाबे। तो वो कहीं की अरे तो ये जो नाग पंचमी आवत है का मनाए लो रखौंदी अभी उन्नीस का है तो चली जाए 16, 17, 18 चली जाए। कहती ना आई हम अभी नहीं जाबे हम अभी नहीं भेज दियो।
1: अच्छा गुड़ीवा पे।
2: हाँ गुड़ीवा पे। तो वो कहीं की चाहे जितना छक छक आओ हम तुम्हें गुड़ीवा अपना भेजबे।
1: और का घरे काम पड़ा है इतना गैया बच्चा दीस है।
2: हाँ, सारा काम पड़ा है। हाँ, केले हम मन जूझ मारा बे। तो तू रहाओ थोड़े दिन कई लो तू है कोनो कमो तू खाइका देख लो बाहर के टहलिया हम कहीं ले बे।
1: सही बात है।
2: लेकिन चाची
1: तो
2: अब किए कहा मरी जाती वे कहती नहीं हमें जाए के हमें जाए दो हमार मम्मी हमार बेराम सबके मम्मी इकट्ठा हुए बेराम हो गयी
1: भैया
2: जाए के चक्कर में यहाँ सबके महतारी बेराम हो गयी।
1: क्या है तो कही थे जुग जमाना जो है बहुत बदल गया है।
2: बहुत बदल गया है चाची बहुत बदल गया जुग जमाना। अब इस समय जमाना इतना बदला है कि पतोहिया को ही कह रहे कब्जे में नहीं है।
1: नहीं है सही नहीं
2: हाँ,
1: है
2: बिल्कुल जान लो अपन इज्जत अपने हाथे है
1: बस उन्हें खुशी में खुशी रहा।
2: हाँ जोन हाँ। भाई कहा है तो मम्मी जी मम्मी जी तो हाँ हाँ हाँ दिन का रात कहे तो रात कहो रातिक दिन कहे तो दिन कहो यही जिंदगी काटे
1: बस बस बस वही खुश रहा जानो सब है खुश।
2: हाँ आओ सुनो सुखलाइन कहें कि चलो ठीक है हमारे पतोहिया हमारे लड़का वही

0: क्या बनाए,
1: चना छोक्यो, हाँ
0: इतना कुछ बनाए अकेले
1: अकेले, और का
0: और के बाद जो है शाम का देखी थे कि पन्नी भर के शिवम कुछ ले जात है।
1: हाँ।
0: तो हम कहा भैया का लाए हो, का है?
1: हाँ।
0: तो कहीं कि अरे कुछ नहीं, कहीं रहे कि हमरे लिए आज पिज्जा ले आयो।
1: अच्छा,
0: तो वही पिज्जा ले गए रहन, खैया तुम, हम का हमरे सामने से ले जाओ।
1: कदो हम पिज्जा, पिज्जा हम नहीं खाते।
0: पिज्जा माँ देखे के इडली आवा है, डोसो आवा है।
1: हाँ।
0: पिज्जा आवा, हमका मरी पड़े, इतना बड़ा पेट हुई गा है।
1: सही कहो चाची, फुराई कहो,
0: इतना बड़ा पेट हुई गा, पिज्जो खाई लो।
1: हाँ। और मैंने घर में इतना नीक नीक पकवान बना है
0: खाई। वो देखो था, मतलब का बसियाई डारे, फिर हम गैया गोरुक डारी।
1: हाँ। तब का करे बनावे बताई का, एक काम किन करो चाची, आपकी जब कोनो त्यू त्योहार पर है तो पहले वे पूछ लो है बहनी, पिज्जा खाबो दुल्हन तू और बर्गर खाबो की हम घर में बनेबे तुन खाबो, और जो कह दे कि नहीं हम मम्मी हम बहरे खा, तो उनके हिस्सा ना बनाओ।
0: सही फुरे कहो, अब की बार यह करो कि भैया तू पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ, मोमो ले आओ, चाहे जौन हो तो ले आओ।
1: हाँ।
0: और बस मतलब खाओ तू सब जे, हम नून रोटी खाए के।
1: हाँ। और का क्या करे, हर दिन बनावा जाता
0: का करे बनाई के।
1: हाँ मारो, इतना गर्मी में चलो वही में पसीना इतना गिरे थे, चलो मन मरो और के पता लागत है कि जो है पिज्जा बर्गर आ।
0: और सुनो, खाइबो नहीं करिस
1: ना, खाई
0: ये नहीं कि खाई ले।
1: हाँ।
0: अब कुकुर नहीं, मतलब जब आइस पिज्जा बना कि कुकुर ना पूछे तो जान ले का।
1: अरे का कहे चाची। हाँ। सब घर के वह हाल है,
0: कुकुर का डर है तो वो इधर उधर मुंह डोलावे
1: ना, खाई है चाची ना। देखो ये बरखवा महिया बहरे की चीज है तो वैसे ना खाए चाहिए, तब जब तब की आई रहा वे बहन जी।
0: हाँ बताई गई रहा,
1: तो कथना हमारे सबका समझाए ना।
0: हम तो नहीं बनाए भैया, हम तो घर एक बनाए भाई।
1: हाँ।
0: खाए और जो रीति रिवाज चली आ रही है उसका कहाँ छोड़ दी।
1: नहीं नहीं नहीं छोड़ के चाची, लाई छोड़े की लाई है,
0: ये लोग की सब जत नहीं है, बस खाली पिज्जा असगुन होत है ये, अब सगुन कहा जात है।
1: हाँ, पूरे कहो चाची, घर का जो बना हुआ है
0: का उमा लिबे
1: मिलाए
0: गोरत है, गोरत है।
1: हाँ।
0: वह सब खात है,
1: अब खात है, बेराम हो जाते पेटवा तो जूते बगदत है।
0: हम कहा कि देखो मतलब सवेरे ये सब चना वना बन गया है, शाम का बढ़िया जो है पनीर की सब्जी बनाई दे।
1: हाँ।
0: और चावल और पूरी।
1: हाँ।
0: नहीं वहाँ खाई है,
1: वहाँ कही है पिज्जा, पिज्जा
0: मेम साहब ऊपर से आर्डर कही दी।
1: हाँ।
0: और शिवम तो जो जस नौकर है,
1: है ही है आजकल
0: तो हम, हमें कुछ कहा जरूरत
1: चाची, आजकल के लड़का भाई नौकर रहे हैं दादा तुही इनका।
0: हाँ।
1: हमारे सबके माने कुछ नहीं, पैदा कई दिन पढ़ाए लिखाए दिन नौकरी चाकरी लगवा, अब मेहरारू जैसे आए तैसे हम हूँ आप बेकार हो गए,
0: नचने नाच नचाए है।
1: हाँ बेकार हो गए, हमारे सबके कोनो ढंग सहूर नहीं है, जब तुम्हें पैदा किन पढ़ाएं लिखाएं आए नाक मुंह पोछें तब हमारे सबके सहूर रहा।
0: आजकल तीज त्योहार का कोनो मतलब नहीं रहेगा,
1: कोनो मतलब। अच्छा चाची, पहले का होत रहा, पहले बढ़िया रकम रकम चीज बनत रहा, सब इकट्ठा होत रहा गर्म गर्म। हमार जो ससुर रहा है वो कहा कि हे दुल्हन पकौड़िया जब तलो तो गर्म गर्म हमें भेज दी हो, पकौड़िया जैसे तली गर्म गर्म बप्पक भेज दी बहरे, बैठ के प्रेम से खाए और गहुआ बनाइये बनाए ले। आओ आओ हमारे पतोहिया बनाई सी पकौड़ी, लौकी पकौड़ी बनाई, प्याज बनाई।
0: हाँ, यह सब तो रहा है।
1: हाँ हल्ला मची जाए कि हे आज तोहरे का बना, आज तोहरे का बना है न कहूँ भाई, ये जब से सूगी और ये गाँव चला है ठो मजेटा
0: जमेटा
1: जमेटा और यह कुल जो चला है। हाँ, न होटलिया
0: बिगाड़ दी से।
1: हाँ यह लड़के फोन जुड़ते कई दिन और झुआरा हलावत हाथ हलावत चला आए।
0: हाँ।
1: मैडम जी सामान लीजिए और मन पैसा दे दिन, अब बैठिए अपन चपर चपर खाते हैं।
0: अब त्योहार कोनो मतलब रहेगा,
1: अब त्योहार कोनो मतलब नहीं रहेगा।
0: अब पहले देखो हम लोग बड़ा खुश होते हैं, गुड़िया आवे वाली है, अम्मा जो है गुजिया बनी है, चना उबाला जाए।
1: हाँ, गुड़िया बनावा जाए,
0: यह सब इंतजार करित रहा है
1: और का सबेर
0: बढ़िया लागत रहा है, मतलब कि का खाई लिया है
1: सबे मिलकर। हाँ। इकट्ठा बैठे सब इकट्ठे खाए,
0: इतना उतना तो बनत नहीं रहा,
1: भर भर बने। हाँ
0: वही आए रही जमादारी का देख है, काम वालीन का देख है, महारीन का देख है।
1: हाँ, पूरा क्या
0: चाची? वालीन का सबका देख रहा है।
1: हाँ।
0: और बढ़िया अम्मा जौन है कद्दू तरकारी बनावे और
1: घुइया
0: बनावे और पूरी बनावे दलभरी बनावे और भर भर थाली सबका दे।
1: हाँ।
0: अच्छा लागत रहा है
1: और का?
0: हाँ सब खूब आशीष दे कि बहुत बढ़िया भाई बना है।
1: हाँ। सब बनाए बनाए दिखावे के देखो।

0: पिज्जा और बर्गर और सब खाई हो तो ये पूरी कचौड़ी का स्वाद तुमका लगवे ना करी।
1: कबो ना लगी मुंह पर जी भी ना परी।
0: तो सब त्योहारन से जो परंपरा रहा है हमार
1: सब समझ लो टूटी गए
0: सब खत्म हो जाते है।
1: और का एक से लड़कवे सीखे लेते हैं चाची छोटकन से लड़कवे छुटकवे। अब देखो पैदा होते लड़कवे और बहिरन के चीज मांगे लगा था खाए
0: जुड़ता है।
1: हाँ। खाए शुरू करिए ना कि चिपिस खाए लगी
0: बस
1: चिपिस दे दो
0: मातारी लोग था पकड़ाए दिन पे किट
1: कुरकुरे मुरमुरे
0: माई से निकाल के
1: गचर, कतना गचर। चाची कतना मसाला रहा था पेटवा कतना बगदा
0: था तो वह तो का हुई गा है अबे उनके लड़का का पीलिया हुई गा है ये सब उल्टी सीधी चीजें खवाई हो
1: तब चाची उल्टी सीधी खाए से हाँ
0: बीमारी पकड़ी
1: यह पकड़ी बीमारी पीलिया पकड़ी और जो झावर पकड़ ली यह कुल पकड़ी बगदे रही हमेशा तबियत हुआ
0: कावर उसके बाद झावर। हाँ। जानू कावर माने होते है बताइन वैद्य जी।
1: हाँ।
0: कि पहले होते कावर उसका कहते पीलिया।
1: हाँ।
0: और पीलिया जब बिगड़ जाते उसका कहते झावर।
1: तो ये झावर का होता चाची
0: अब ये ऐसे समझ लो कि जैसे कोनो पीलिया हुईगा।
1: हाँ।
0: वो रोग बिगड़ जाए।
1: हाँ।
0: और बिगड़ करके फिर एक नवा रोग बन जाए उसका कहते झावर यानी बहुत से बुरा।
1: अरे दादा रे
0: हाँ
1: दादा।
0: तो हम लोग उतना ना ही जानी था ये डॉक्टर सब बतावत है कि का है हेपेटाइटिस ए।
1: हाँ।
0: और हेपेटाइटिस बी।
1: हाँ।
0: हाँ।
1: ये का होते
0: यह पीलिया का नाम रखे हेपेटाइटिस ए।
1: हाँ।
0: ए हुईगा यानी पीलिया हुईगा।
1: हाँ।
0: फिर हेपेटाइटिस हुईगा बी यानी झावर हुईगा
1: ये
0: कावर हुआ
1: ये
0: झावर
1: हेपेटाइटिस
0: ए और ए पे हेपेटाइटिस बी
1: हेपेटाइटिस बी।
0: हाँ
1: ये जो वहा है अंग्रेजी ए बी सी डी।
0: हाँ वह जो पढ़ाई रहा है ना।
1: हाँ मैडम जी पढ़ाई ना
0: ए बी हुईगा।
1: हाँ मैडम जी पढ़ाई रही है मैं सबका।
0: अब बरसात है तो पानी सब गंदा है।
1: हाँ
0: तो बहुत सोच समझ के खाए पिए चाहिए है नहीं पड़ी रही है मुँह फैलाए बीमारी अपना परेशान हुई हो और साथ में हम लोग भी परेशान।
1: हाँ, उनका घर भर में परेशानी तो है चाची का
0: भाई, किस्मत जाए। बहुत बढ़िया लिखाए के आए हैं।
1: हाँ बहुत निक लोटन। हाँ, चाचा का हाल है चाची।
0: लोटन चाचा तो मस्त रहा था भाई उनका।
1: हाँ,
0: का उन्हें बस पेट की रोटी मिल जाए।
1: हाँ,
0: उन्हें कोनो परपंच से मतलब ना ही है।
1: हाँ, तो हाँ, चाची जाने हो आज जब हम आवत रहे तुहरे घर तो लोटन चाचा जात रहे तब कहीं है दुलारी तो हम कहें अरे लोटन चाचा राम राम नमस्ते नमस्ते कहीं नमस्ते नमस्ते अरे मजे में हो।
0: अच्छा।
1: तो हम कहें हाँ हाँ हाँ मजे में तो कहें आ जाइबो तो हम कहें हाँ जाए थे चाचिन से मिले जाए थे तो कहें कि जाओ आज बड़ा बढ़िया बढ़िया सामान बनाई निकाल बूढ़ा।
0: अच्छा
1: तुमका बूढ़ा कहीं। हाँ कहीं की
0: भाई जवान हो ना बूढ़ा हो गया
1: कहीं की आज जो है वह चटपटी बहुत बढ़िया बढ़िया सामान बनाई नहीं और जाओ खा आओ तो हम कहें अब जाई थे जो है मिल आई
0: ना हमसे कहें कि भाई देखो दुलारी के लिए थरिया खाना।
1: हाँ।
0: निकाल दियो हमको हम निकाल दे तो तू दे नहीं पाई हो। हाँ तो दुलारी खुद ही है अपना खा ली है।
1: हाँ तो हम कहें तलिया ना आएगा ना लाओ आज तो चाची खे चली तनी हाल चाल ले ली बेराम तो ना ही कहूँ हाल चाल ना ही मिला है
0: दुलारी अब तो 15 अगस्त आवे वाला है।
1: हाँ एक दिन का होते सभे झंडा ले ले दौरत है।
0: झंडा ले दौरत नहीं है।
1: हाँ
0: एक दिन अपन देश जौन रहा है।
1: हाँ।
0: स्वतंत्र भवा रहा है।
1: क्या होता है
0: देखो अंग्रेज रहा है ना पहले कहा रहा है सब की अंग्रेजन का जवाना
1: वो
0: गोरहर के रहत रहा है वो देश पे कब्जा करे रहा है।
1: हाँ
0: हाँ
1: ये कब्जा का होता
0: है चाची यानी कब्जियाए रहा है सब मतलब हमारे देश में वही लोग रहे लगे आके
1: दसवा हमारे रहे रहा है वही लोग।
0: हाँ वही लोग शासन करे
1: झपट्टा मारे रहे।
0: हाँ तब वो है उनका भगावा का गांधी जी और सब जने रहा मिल के भगाए उनका।
1: हाँ
0: अंग्रेजन का तो जब जौन दिन वो भाग के गए छोड़ दिए हमारे देश।
1: हाँ
0: वह दिन 15 तारीख रहा है।
1: हाँ
0: तो 15 अगस्त रहा है यह कहा जाता है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस।
1: 15 अगस्त
0: स्वतंत्रता दिवस कहो कहो
1: 15 अगस्त
0: स्वतंत्रता दिवस
1: स्वतंत्रता
0: दिवस
1: स्वतंत्रता
0: दिवस
1: दिवस।
0: हाँ
1: स्वतंत्रता दिवस
0: सुना हुई है बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गावा जाते है।
1: हाँ
0: लड़के चाची
1: तो हम लोग कहूँ गाय लीन जाए
0: तो गाय लो
1: एक ठो कहूँ हम का एक ठो देश के गनवा आवत है चाची
0: अब देसे गाना तो अब टाइम आएगा सब देसे गाना गई है सब जन।
1: हाँ आज कई तारीखिया होगा?
0: आज होगा 10 तारीख।
1: 10 तारीख है तो
0: अब चार ही दिन बचा है।
1: हाँ चार ही दिन रहेगा वो चाची।
0: तो गाय लो हम हो का आवत है
1: एक तो गाओ चाची शुरू कर चाची पुरवा ले।
0: अच्छा पुरवा ले हो?
1: हाँ पुरवा ले।
0: एक

0: बहुन ने गौनैया गायो बहुत दिन गायो
1: है ऐसे ऐसे गाना रहा
0: चाची कहाँ कहाँ सीखियो रा चाची
1: रेडियो में आवत है रेडियो में
0: अच्छा भाई 89 धड़कन में
1: हाँ धड़कन में आवत है 89.6 एफएम धड़कन
0: 89.6 एफएम धड़कन
1: गोंडा शहर की धड़कन
0: गोंडा शहर की धड़कन
1: हाँ
0: यही मावत है
1: तो एक दिन हम लोग बैठे रहा तू तो गावत रही संगे संग गनवा याद करो
0: हमरे नहीं याद
1: वाला गनवा रहा
0: हमरे नहीं याद आवत है हम तो हम बिसर गए गनवा बिसर गए
1: बढ़िया गाना गावत रही हूँ दिन रेडियो के संगे संगे
0: हाँ
1: आज बिसर गई
0: आज बिसर गए हमरे चेतन नहीं आवत है एक तो बहुत गर्म की हाँ है तो दिमागवा ही उड़ा है हमारा
1: वो गाना नहीं रहा है
0: कौन गाऊ नहीं कहा थी चाची को
1: मेरे वतन के लोगो
0: हाँ
1: गाय नहीं रहा उस दिन
0: गाय रहन गाय
1: रेडियो आवत रहा तब तो गाय लगी रहा संगे संग हम गाय
0: चाची पूरे दुलेनिया हमारे आवत है गाय लीन जाए
1: गाय लो गाय लो गाय लो

0: आतने चाची हमारे आवत है,
1: इतना बढ़िया लागत है ना,
0: बहुत बढ़िया
1: चाची, हमारे दिल का सुकून मिले लगा,
0: दिल का सुकून मिलता, चाची हमारा अखिया भर जाती, हमारा रोए मन करे था।
1: ये जानत है ना ये किकरे लिए गावा गा है,
0: किकरे लिए चाची,
1: ये देखो
0: अंग्रेजवन के लिए
1: नहीं, अंग्रेजवन के लिए ना ही गावा गा,
0: हाँ
1: अंग्रेजवन का भगावत भगावत जे अपनी जान गवा दिया,
0: हाँ
1: हाँ जे मतलब गोली मारी अंग्रेज लोग हमारे देश के लोगन का है,
0: हाँ
1: जब कहें कि छोड़ो हाँ, तो गुस्सा गए अंग्रेज में हाँ, तो गोली ओली मारे लगे
0: हाँ,
1: बस तो उनकी याद में ये गाना बना है
0: हाँ,
1: और जो सेना सेना कहा जाता है ना सेना
0: सेना हाँ हाँ,
1: हुआ वहाँ सेना जो रहा वो लड़ी
0: हाँ,
1: है और वही भी गाना बनावा गया है अंग्रेजन का भगावे के लिए, जो पूरी सेना बन ताकत लगाए देश देश की
0: हाँ
1: हाँ, तो इसमें बहुत लोग मरी गए, तो वह सही गाना बना, इतना बढ़िया गाना है कि मतलब सही मखिया भरिया,
0: सही भरिया हमारे चाची
1: आ गया है
0: हाँ,
1: कि आँख में भर लो पानी
0: हाँ,
1: वैसे खिया
0: तो हमारा खिया भरी आवा चाची हाँ, मारू मन कह दी
1: यह तो कहा कि बहुत बढ़िया गाना भाई, कौन जौनो बनाई से जौनो गाई से
0: बहुत
1: नीक गाना रहा
0: है चाची, तनी एक बिरेक ले लो तो हम तनी खाई ले पूरी
1: हाँ, खाई लो भैया दल भरी बनावा
0: तो तनी बिरेक ले लो,
1: तो हम ले थे एक ठो बिरेक और चली था भाई पूरी खाए
0: हाँ,
1: और दलभरी खाए,
0: दलभरी खाबे और घुइया तरकारी खाबे।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण, याद रखें टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन खुशहाल किसान, टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9286 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
6: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
7: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
8: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
9: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।
10: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने RJ अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, Thought of the day and what happened to this day. जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने RJ अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।
11: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
0: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
0: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: तो कस लगा दुलारी?
3: बहुत नीक लाग चाची, बड़ा नीक बनाए रहू।
2: और दलभरी आजकल आजे कल अच्छी लागत
3: तो
2: है।
3: ये दलभरिया में है काओ चाची? कौन दलिया भरे रहे हो, किसका बनायो तनी बताई दो। तो
2: चनक दाल रही भाई दुलारी।
3: तो चनक दलिया का क्यों रहा, उबाल लियो रहा?
2: हाँ तनी भिगोए दिया।
3: हाँ
2: और फिर तनी का
3: हाँ
2: उबाल दिया।
3: हाँ
2: मतलब उबाला का जैसे छौंक दिया।
3: हाँ हाँ
2: बढ़िया। और तनी पानी डाल के कायदे से पका लिया।
3: अच्छा अच्छा।
2: अब उसका पीस लिया।
3: हाँ
2: सिलबट्टा पे।
3: हाँ
2: और लहसुन डाल दिया, मिर्चा डाल दिया, जीरा डाल दिया, तनी गरम मसाला डाल दिया।
3: हाँ
2: यह सब डाल के।
3: हाँ
2: और बढ़िया बना लिया
3: मसाला। हाँ
2: हाँ, हाँ, हाँ। और भर भर के देखो बनाई दिया पूरी।
3: बहुत बढ़िया। कुतन नींबू वो डाले तो खटलूस लागत रहा।
2: नींबू नहीं डाले है।
3: हाँ
2: तो कल अचार के संग खाए हो ना, वह खटलूस लागत है।
3: लेकिन बड़ा नीक बनाओ चटकौवा। हाँ मजा आएगा वह चाची, बहुत नीक बनाए रही। अचार वो बड़ा नीक बनाया हो चाची।
2: हाँ अचार वो तो अचार हमारा बहुत बढ़िया है।
3: हाँ
2: और बहन जी जो नाई रहे ना।
3: हाँ हाँ हाँ
2: तो उनका खवावा रहा वही दिन।
3: हाँ
2: तो कहीं हमका तनी बांध दे ये अचार। तो
3: हाँ
2: ठीक है बांध देवे।
3: हाँ
2: लोग कहा जाने अचार अचार।
3: हाँ पूरे कहो चाची लोग कहाँ बनावा थी।
2: हाँ अंग्रेजी पढ़े वाले अचार।
3: हाँ अचार अचार कहा जाने। हाँ दूर रहा था पूरे कहो बहन जी पूर गए।
2: तो वह हम कहा चलो दही दे, उनका बड़ा नीक लगा अचार।
3: तो ठीक है
2: कहा नहीं कि अचार ये सब नहीं खाना चाहिए, वो सब नहीं खाना चाहिए।
3: हाँ
2: लेकिन जब खाएं तब एक तो उनका
3: बड़ा नीक लग जाओ
2: खाना चाहिए।
3: चटकारा मार मार खाए।
2: यस कहें कि हम का थोड़ा दही दो।
3: अच्छा
2: का चलो ले जा, कोनो बात नहीं है।
3: नहीं ज्यादा नहीं लेकिन थोर मोर तो खावा ही जाते चाची।
2: अरे नहीं नींबू का अचार हुआ।
3: हाँ
2: कब्बो ने नुकसान करी
3: कब्बो तो नींबू का अचार थोड़े हमें दे दे तू चाची।
2: तो ले जाओ ना, तो तुझे पहले कह रहा है कि हम सबके संती बनावा है।
3: हाँ तो थोड़े हम दे दो। हम ले जाओ
2: नींबू बनावा। अभी देखो मिर्चा आवे लगी है, मिर्चा का अचार बना के धर दिया है।
3: हाँ
2: दो चार दिन में तुका दे दे।
3: अच्छा ठीक है ठीक है। ए चाची
2: बहुत बढ़िया बना मिर्चा का अचार, बहुत बढ़िया है।
3: तो रखूं दिया आवती चाची? कई तारीख है रखूं दिया?
2: 19 तारीख का है बहनी।
3: 19 का है?
2: हाँ
3: अच्छा 15 अगस्त का क्या बताए बुरा बहनी चाची
2: की बहन जी बताए दिवस
3: ना बोल पाई बे।
2: स्वतंत्रता दिवस
3: स्वतंत्रता दिवस। हाँ ये है मनावा जाए।
2: इधर हम लोगों का ऐसे कहो कि आजादी मिली रहा है,
3: आजादी मिली रहा है। हाँ
2: अरे कहानी बताई दे तुमका।
3: हाँ बताई दो चाची।
2: देखा तो ये फुटिया एक फुटुआ बनी हुई है, मुछिया पकड़े है एक आदमी।
3: हाँ हाँ हाँ मोट मोट मनैया है, मुछिया इठत है।
2: उनका नाम मालूम है?
3: नहीं मालूम चाची।
2: वो है उनका नाम रहा है का नाम है देखो देखो बताई थे
3: नवा बिसर गयो।
2: हाँ चंद्रशेखर आजाद।
3: चंद्रशेखर
2: आजाद नवा रहा है।
3: ये क्या रहे चाची?
2: ये छोट लड़का रहा है।
3: हाँ
2: इके सामने मत अंग्रेज मार पीट करा करे।
3: हाँ
2: तो इका ना ही अच्छा ला गए।
3: हाँ।
2: रोजे रोज जो है हमारे देश के लोग मरे, अब गोली मार दिए जाए, उनका घोड़ा मारा जाए।
3: हाँ।
2: तो ये सब देख करके पगलाएगा लड़कवा।
3: अच्छा
2: हाँ। और कहीं इसके हम हो लड़ब और छोट रहा है घर छोड़ के भाग गा।
3: हाँ
2: भाग गा तो बनारस गवा।
3: अच्छा
2: बनारस में जाए करके हुआ मतलब सीखे लगा, जैसे कुछ गोला ओला बनावा जाता है ना।
3: हाँ हाँ
2: वह सब सीखे लगा।
3: अच्छा वह गोला जो दागा जाता चाची।
2: फिर यहो लड़े लगा अंग्रेजन का भगावे के लिए।
3: हाँ
2: हाँ, तो एक बार पकड़गा
3: पकड़ेगा
2: पुलिस वहाँ पकड़ ले गई।
3: अरे मेरी माई,
2: अब पकड़ ले गए अंग्रेज की पुलिस रात रही।
3: हाँ,
2: तो कल ले गई और वो गवाह डरा नाई कुर्सी। हाँ, बैठ गवाह
3: हो ये दादा
2: तो जनुआ जज रहा है।
3: हाँ,
2: कहे इसकी माफी मांग लो।
3: हाँ,
2: कहे सब माफी का है मान ले, हम को तो गलती नहीं किया है।
3: हाँ, फुरे कहीं फुरे। हाँ, कहीं
2: तो कहे की तुम्हार नाम का है।
3: हाँ,
2: कहे हमारा नाम आजाद हो।
3: आजाद
2: कहे तुम्हार मातारिक का नाम हो।
3: हाँ,
2: कहे भारत माता हो।
3: अच्छा,
2: ऐसे डीडर हुई के बोला।
3: हाँ, पुलिसिया मारिस नहीं
2: मारा वो कहे नहीं मारी पुलिसिया पकड़ी तो मारी ना
3: मारी बहुत। हाँ, मारी पुलिस
2: तो जजा कही रहा है कि तू छोट हो।
3: हाँ,
2: तू माफी मांग लो हम तुका छोड़ दे।
3: हाँ,
2: लेकिन लड़कवा डरा नहीं। सुभाष
3: चंद्रशेखर
2: आजाद डरे नहीं पुलिस से।
3: हाँ,
2: कहें कि नहीं हमका माफी नहीं मांगे खे।
3: हाँ,
2: हमें तू फांसी चढ़ा दो हम कहू ना माफी मांगब।
3: हाँ
2: हाँ, अस रहा हुई
3: तो बहुत बहादुर बहुत वीर रहे वे।
2: फिर एक दिन का हुआ बड़े हुए गए और शादी ब्याह नहीं करी।
3: हाँ,
2: महतारी बेचारी परेशान रहा है।
3: हाँ
2: है, तब एक दिन बालू का हुएगा।
3: हाँ,
2: इनका मारे के लिए पुलिस लगाए दी गई।
3: हाँ,
2: कि जहाँ जहाँ दिखे उनका गोली मार दियो।
3: हाँ
2: हाँ, अभी छुपा छुपा छुपा छुपा इधर उधर घूमे फिर भाग गए इलाहाबाद।
3: अच्छा,
2: इलाहाबाद में इनके जो का कहा था पिस्तौलिया होता है।
3: हाँ,
2: बंदुकिया
3: बंदुकिया
2: माँ एक गोली बची।
3: हाँ,
2: अब का करे
3: दाग दीन
2: एक गोली अगर दाग दे तो वह ना बचे।
3: हाँ,
2: तो छुप गए। हाँ, एक तो पार्क माँ छुप गए।
3: हाँ,
2: और उधर जब पुलिस आई गोली चले लगी तो ये सोचे अब हम ना बचे अब तक भाई। तो सब तमाम बंदूक और गोला सब हथियार लिए ना।
3: हाँ,
2: और इनके पास कुछ नहीं एक गोली इनकी बंदुकिया तो बस उठाए कनपट्टी लगाए उठाए से मारे बोले भारत माता की जय।
3: अपने मार ली
2: अपने खुद मार ली
3: यारे
2: अंग्रेजन के हाथन से मरे से अच्छा है कि अब खुद ही गोली मार ली।
3: तो मैं गुरहर के मन ही मार डरते उनका
2: उनका मार डरते।
3: अरे बाप रे बाप। हाँ, गुरहर के मन ही है आई है तो चाची उनका तू मार दियो।
2: अरे अब का आई है कौन मुँह लेके आई है हमारे देश माँ।
3: हाँ,
2: अब हमारे देश वो देश ना ही रहेगा है।
3: हाँ,
2: अब कोनो आँख उठा के देख भर ले तो हमरे इतने सैनिक हो
3: बंदूक चला दे।
2: हाँ, गोली से भून के धर दे हैं उनका
3: पटपटाए
2: जाई हैं सब।
3: हाँ
2: हाँ,
4: राम राम चाची।
3: कहाँ रहे बहनी तू दोनों जनी।
4: अरे चाची, आज हम लोग कॉलेज गए ना।
3: हाँ,
4: कॉलेज में आज हमें पार्टी रहा।
3: हाँ,
4: जो दीदी लोग के कंप्लीट होएगा ग्रेजुएशन।
3: हाँ, ये क्या होते ग्रेजुएशन
4: ग्रेजुएशन चाची। अरे अरे, मैंने पढ़ाई उनके लोग के अब कंप्लीट होएगा।
3: ये कंप्लीट कहाँ होते
4: पूर होएगा चाची। मैंने
3: पढ़िया पूर हो गए।
4: हाँ
3: हाँ, तब
4: तो अब उनके लोग के पार्टी रहा जैसे विदाई वाला पार्टी रहा एक।
3: हाँ,
2: तो अब कलेजवा से विदा कर थी जाओ तू
4: खुशी खुशी। मैंने चाची नाच गवाए के
3: उनका ब्याह के दिन ही
4: वो वाला विदाई ना है चाची।
3: हाँ,
4: अरे मैंने कॉलेजवा से आज सब चली गई हैं तो एक ठू लास्ट बार उन्हें लोग का तनी खुश कर दिया जाए वाला।
3: अब मैंने कलेजवा में बनाई है।
4: हाँ,
3: पढ़ी भाई।
4: हाँ, पढ़ाई हुई
3: क्लास पूर हुई गवा।
4: हाँ,
3: अच्छा, तब
4: वही वही चाची हमने सबका देख रहा हम सब छोड़ रहे हैं उनके क्लास में और वे लोग बड़ी रही तो वही हमें सबका देख रहा तो तनी गिनना मेहनत पर गा
3: नाचू गाई बहनी।
4: हाँ चाची, गाना उनके सबके स्वागत में यहाँ एक ठू गाना गाना हम लोग।
3: हाँ,
4: और वे लोग खाएन पियान उन्हें लोग का।
3: अच्छा,
4: और सब चली गई तो हम कहें चलो चाची यहाँ घूम आई।
3: हाँ, तो बड़ा दिन बाद
2: करो बहुत दिन बाद आई है तू सब।
3: हाँ, अब बहनी काजल नहीं आई और शिवानी नहीं आई।
4: अरे चाची, वैसे मैं तनी हुआ ज्यादा मेहनत कर दी ना तो थकाई गई तो चली गई बाहर।
3: तो घर का चली गई
2: घर चली।
4: हाँ चाची।
3: अच्छा, और ये अर्चना तो बहनी आई है।
5: हाँ चाची, आज मत तबीयत खराब है।
3: का हुईगा बहनी?
5: पेट में दर्द होता है
3: यार। तू खाई हुई हो पिज्जा?
5: ना चाची, कुछ ना खाए।
4: झूठ बोलते चाची, अब समोसा खाए खाई ही।
3: तब बहनी यहाँ कुल बहन के चीजिया खाबो दादा।
2: हम हमेशा मना करी थे
3: पेटवा धार बगा दी जाई अब सिवाने जाए करी।
2: हम कहे थे सावन में ये सब चीजें ना खाओ।
3: हाँ,
2: घर का खाओ खाना
3: और का
2: गरम का खराब बना थे का।
4: अरे चाची, कबो कबो जवान मांगा थे कुछ चटपटा तो खाए।
3: तो बहनी घर हूँ बना लो चटपटा मिर्चा नोन डाई के।
5: अरे चाची बहुत मेहनत पर जाती
2: है। ये देखो वहाँ तो कहा आजकल की बिटिया
3: जो है काम नहीं करा चाहती
2: इन सब का।
3: हाँ मेहनत नहीं की चाहत है
5: मेहनत नहीं चाची।
3: हाँ
5: मेहनत
3: वहाँ मेहनत हुआ मेहनत ना करिए चाची और बहरे सूगी और जमोटा से सामान मगाए मगाए खा ले हैं।
4: स्विगी जोमेटो
3: हाँ वहाँ सूगी जमोटवा अब कुल हंसा थी जब बोलो तब चाची
4: चाची हम जाने नहीं पानी सूगी जमोटा का खाते
3: सूगी जमोटवा से सामान आवत है चाची बताई नहीं अब हमें
2: हम नहीं कह पाए थे ढंग से बहने तो जो नाम कहा था वो कहा था
4: चाची स्विगी होता है जोमेटो
3: होता है वो है बहनी सूगी जमोटा।
2: चलो तुम लोग जाने हो ना हम जाने बस मतलब यहाँ होता है।
3: हाँ तो ये सब गई अपने घर का शिवानी और
4: हाँ,
3: काजल
4: अरे इतना सब तैयार होके आई रहा।
3: अच्छा सज के आई रहा
4: हाँ, सब साड़ी साड़ी पहने रही और एकदम
3: चम चम चम चम साड़ी पहने रही
4: हाँ, चाची सब के सब।
3: अच्छा हमारे सबके चढ़िया पहन रही चाची लाल हरी चम चम चम चम गोटा लाग रहा नहीं
2: कल तो देखा रहा लोग बहुत चमक रही
4: चटपटी चाची। आप जहाँ पढ़त रहे हुआ ना हुआ रहा पार्टी वार्टी।
2: अरे बहनी हम उतना ना ही पढ़े जितना तू लोग पढ़ी हो
3: ये चाची
2: तो स्कूल में पढ़ा
3: ये
2: रहे।
3: चाची जो है दसवीं में फेल
5: ही चाची देखो दसवीं में फेल हो गई तो पार्टी ना ही भवा।
3: हाँ
2: तो भाई जानो भाई जानो
3: लेकिन लेकिन चाची की अंग्रेजी बहुत और दिल्ली गई रहा ये
2: हाँ दिल्ली में बोला जाता है
3: और दिल्ली में अंग्रेजी सीख आई बब्बा एक्टो में कछु बोली हूँ है कुछ अंग्रेजिया मैया नहीं समझ पाने कुछ कहाँ
2: तो समझ नहीं पाओ तो यही से तो हम कतराई था बोले में क्या बोल दे तू समझ ना पाई
3: बिटिवन के सामने बोलो
4: चाची
3: बिटिवन जान जाइए अंग्रेजी बहन तू लोग अंग्रेजी पढ़ा थी ना। हाँ तब देखो ये लोग जान जाइए
2: तो अब देखो अब इनका कहर वाले रहा इंडिपेंडेंस है
3: हाँ, इंडिपेंडेंस हो ना
2: लेकिन
5: इंडिपेंडेंस डे
2: इनका हम कहा स्वतंत्रता दिवस वो ना ही कहीं पाई
3: इंडिपेंडेंस है ना बहनी
4: इन
3: इन
4: डी
3: डी
4: पेन
3: पेन
4: डेंस
3: इंडिपेंडेंस
2: बताओ
3: है तो
2: ऐसे तब बताओ बोले चाहिए अंग्रेज
3: है तो 15 तारीख एक बहनी इंडिपेंडेंस है
4: बोल लेना चाची
3: कौन चीज कही
4: चाची आप कह दो आजादी दिवस
3: आजादी दिवस
4: आजाद
2: ये ठीक है
3: तो हम बहनी
2: आजादी दिवस
3: बहनी हम अपन भैंसिया खोल दी 15 तारीख का आजाद कर दी।
4: अरे नहीं चाची मार गिराए दी सबका मार गिराए दी सबका ना खोल
2: आजादी कहेगा सब
3: तुम्हारे सब कहा तू आजादी दिवस है
4: ना चाची तार भैंसिया बहुत मर कही हुई सबका आजादी ना है घर में बंद करे पड़ी।
2: अरे चलो
5: ओके आजादी हो जाए हमारे लोग के
3: घर में बंद हो जाओ पूरे का
2: टूट जाए कोनो खाट टूट जाए बस बंद।
3: अरे दौरे लागत थी चाची है चाची पाले कहते हैं कि बकरी पाल ले
2: बोले हो तो गैया पाल चुकी भैंसिया पाल चुकी बकरी रहेगा तो
4: चाची देखो कम सांप अपना पाल ली
3: नहीं
4: चलते बकाहला
3: नहीं ये कह रहे कि बकरिया पालन ज्यादा फायदा बकरिया कई उठे बच्चा दे देती।
4: हाँ चाची महंगी भी काटी महंगी भी काटी
3: लियो और हम ओका जब इकुल होई ईद उद होई तब छगड़ियन का बेच दे नहीं
4: नहीं चाची सब ना कराओ पाप लागे चाची चाची
5: राखे को तो राख ले लेकिन बेचो ना
2: ऐसे शौक हो तो पाल ले
3: हाँ।
2: और दुधुआ हाथ हो तो जगह पेट प्लेट लेट कम हुई जात है उसके लिए दुधुआ राम बाण है।
3: अच्छा जगह ये पलेटवा कम हो जाता
2: है हाँ, प्लेट,
4: प्लेट ना है चाची खाने वाला प्लेट ना जाने
2: हाँ। प्लेट लेट
4: अरे खून में एक तब तो होता प्लेट लेट
3: इच खप खलेट ना हो चाय वाला
4: ना ही चाची
5: खप खल
2: परेशान करो दुलारी ना कब
3: कहीं वही खप खलेटवा।
4: अरे वही मैंने चाची खून के लिए बकरी दूध बढ़िया
2: बस ये जानो
3: कि अगर बकरी के दूधवा पी ले वो छगड़ियन के तब खूनवा ज्यादा हो जाये
2: बढ़ जाये
3: हाँ
2: और प्लेटलेट
4: इम्यूनिटी पावर ज्यादा
2: हाँ बीमार ना पड़ी हो
3: ब्यूटी पावर
4: मतलब शक्ति
3: जोर ज्यादा हो जाए
4: रोग से लड़े शक्ति मिले हाँ। चाची
3: शरीर में ताकत हो जाए जोर हो जाए
4: हाँ।
3: हाँ। चटपटी चाची का हम उठा ले भाई
2: इनका है ना भैंस के आगे बीन बजाओ
3: भैंस का होते बहनी
2: अब तो ना चलियो बतायो ना बहनी बात
3: तो चाची हमारे भैंसियन के नाम लिए हुए हमारे भैंसियन का कुछ कही
2: तुमने भैंस की तारीफ कर दिया है और का
3: अच्छा अच्छा तब ठीक है तब ठीक है
2: तो सुनो देखो अब राखी आवत है बहनी आए
3: कहिया है बहनी रखाऊं दी इनसे पूछो तो
2: 19 तारीख का है भाई 19 तारीख का
3: 19 का है
4: हां जानी जाती है नहीं यहां मनावे नहीं जाते
3: ई काहे बहनी तो रे नहीं मनावते
4: खोड़
3: है
4: हां 4 साल पहले हमारी बड़ी मम्मी वही दिन आई रही
2: या हले हो तब कहूँ गैया बच्चा अच्छा दे दे।
5: अरे चाची हमसे हमरे यहाँ ना मनाओ गए नागपंचमी
2: ये का है बहनी
5: हमरे चाचा एक लोग इंस्पायर हो गए रहा
2: उनके चाचा चाचा देखो रिस्पायर हो गए
6: रिस्पायर नहीं ददई ने ददई का समझाई तुमका एक्सपायर
2: रिस्पायर
6: एक्सपायर
5: अरे चाची
2: हम ना बोल पे चाची
5: हर हर अनर्थ चाचा रहे तो चाचा मर गए बस यही ठीक है।
2: हाँ। इनके चाचा मरी गए तभी भी नहीं अब चाची बनाई नहीं बहुत हाँ रकम रकम के सामान
5: चाची हम लोग स्कूलिया सीधा आएंगे
2: आज चाची हमें खवाई नहीं बहनी दाली पूरी बहुत निक दल भरती पूरी
6: दल
2: भरी पूरी खवाई नहीं और खीरिया खवाई नहीं बहनी बहुत मीठ खीर बहुत
5: चाची बहुत दिन के बाद हम लोग आए हैं आपके यहाँ कुछ
2: खाई तब जाया
6: एक ठो राखी के गाना सुना
2: हाँ कौन रखौंदी के गाना बढ़िया
6: तो बढ़िया बढ़िया गाना हमें बहुत नींद लागत है रेडियो खोलो तो एक से एक बढ़िया गाना आवत है राखी के
2: हाँ
6: है, एक हमहू का आवत है
2: अच्छा
5: चाची आप गावत है पहले
6: हम पहले गाए
2: वैसे
5: मैंने ढोलक वोलक वाला ना आया था फिल्म
2: नहीं है गाय दो बहनी
6: बदली से निकला है चांद परदेसी अरे ये हम कौन गावे लगे ये ना ही है
2: तब हम चाची हम चाची हम यहाँ सोच रहे हैं बदली से निकला है चांद
5: अरे चाची ऐसे आज हम गड़बड़ कर दिया है अपने स्कूल
6: सुनो सुनो ये है कि अब देखो
2: हमारे यादव हम गाई थे

0: अतने हमरे याद है बनी
1: हमम जाती एक तो याद है लेकिन दुइये लेनिया
0: दुइये लेनिया काय तो बनी चलो थोड़ा चले टाइम भी होई गवा है दुइये लेनिया काय दो कढ़ाई दो कढ़ाई
1: नचना बहनी तो नहीं का
0: कढ़ाई
1: समझो ना।

0: चलो भाई बहुत बढ़िया गवनई हुई गई, राखी गई, सब गाना करने
1: सदा बहार गाना।
2: हाँ चाची
1: बहुत बढ़िया बढ़िया गाना
0: तो अब खाई है भाई लोग, लेकिन अभी चले का टाइम होएगा है, और सबसे जो है हमारे श्रोता लोग है उनसे नमस्ते करेगा।
2: ठीक है चाची, सब हो जाए, लेकिन तब
0: कहेगा है कि आप लोग इतवार की शाम का
1: 5 बजे
0: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर हमारा प्रोग्राम सुना करो।
1: हाँ, और सबका बधाई दे दो,
0: बहुत बहुत
1: आजादी
0: अच्छा
1: का
0: इस बधाई, गुड़िया की बधाई,
1: और रक्षाबंधन के बधाई, और आजादी के बधाई,
0: आजादी की बधाई,
2: इंडिपेंडेंस डे।
0: हाँ
2: चाची फिर से बोल दे जाए, इंडिपेंडेंस डे,
1: इंडिपेंडेंस डे
0: चलिए।
1: हाँ,

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: अरे रे रे रे रे, घबराइए नहीं
2: डॉक्टर साहब,
1: आज मैं आपको ऐसी दवा दूंगी कि आप फिर से जवान हो जाएं।
2: ऐसी दवा मत दीजिएगा डॉक्टर साहब, वरना मेरी पेंशन बंद हो जाएगी।
3: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत जारी है डॉक्टर रेखा शर्मा मैम से। मैम, आपने बताया अपनी जिंदगी के बारे में, उसके बाद हमने जाना साइंस के बारे में, आपका विज्ञान क्लब के बारे में। अभी चूंकि हमने अपने श्रोताओं से स्टार्टिंग में जब आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था तो मैंने बताया था कि आप गोंडा नगर पालिका की स्वच्छता एम्बेसडर भी हैं, इसको लेके बताइए आप।
4: मैं बताना चाहूँगी कि डिस्ट्रिक्ट साइंस क्लब के माध्यम से और राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी होने के नाते मैंने बहुत से प्रोग्राम स्वच्छता पर भी कराए। और आपको पता होगा कि 3-4 साल पहले हमारा गोंडा जनपद निचले पायदान पर था।
3: जी, देश के सबसे नीचे।
4: सबसे निचले पायदान पर था, मुझे बहुत दुख हुआ। और उसके बाद फिर स्वच्छता पर आधारित मैंने कई कार्यक्रम जिला प्रशासन की मदद से और बहुत से विभाग जब कराते थे स्वच्छता का कार्यक्रम तो भी मुझे हमारे क्लब का सहयोग लेते थे और ऐसा कार्यक्रम हमने कई किया है स्वच्छता के ऊपर। जैसे मैं बताना चाहूँगी कि ये सगरा तालाब आप देख रहे हैं,
3: जी जी,
4: इस तालाब की भी मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिल करके कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस आए कि हमको कचरा फेंकने का ये सिंक नहीं बना देना है सगरा तालाब को, ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है, इसको हमें बचा कर रखना है। दीपदान एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हमने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और उसी के बाद मुझे नगर पालिका का ये स्वच्छता अभियान का एम्बेसडर बनाया गया था।
3: क्या बात है, और ये स्वच्छता भी एक समाज सेवा है। समाज सेवा से याद आया, कई ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपको अपनी मम्मी कहते हैं।
4: जी जी जी, बहुत से लोग कहते हैं। और मैंने जन्म तो केवल 2 बच्चों को दिया है
3: जी,
4: लेकिन माँ मैं पता नहीं हजारों बच्चों की हूँ। बहुत से बच्चे मुझे टीचर ना कह करके माँ कहना ही पसंद करते हैं या गुरुदेव कह के मुझे पुकारते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में जन्म 2 बार होता है, शारीरिक जन्म 1 बार होता है
3: जी,
4: और 1 बार बौद्धिक जन्म होता है। शारीरिक जन्म माँ बाप देते हैं और बौद्धिक जन्म गुरु देता है। तो ऐसा गुरु बनने का मुझे ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मौका दिया। बहुत से स्टूडेंट मेरे संपर्क में आए और मैं ये किसी धर्म के नाम पर नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे किसी को खेलने का पैशन है, किसी को पेंटिंग का पैशन होता है, मुझे नीडी लोगों की सहायता करने का पैशन है। मैं सदैव चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहा है, संसाधन विहीन है, तो उसकी सहायता करने में मुझे बहुत आनंद आता है। और ये मैं अपने नाम के लिए नहीं करना चाहती हूँ, ये बस मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के बहुत नज़दीक रहती हूँ फिर।
3: क्या बात है, ऐसा भी सुना है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बताते हैं कि आपने उनको स्टार्ट से लेके उनके कामयाब होने तक पूरा का पूरा सपोर्ट किया है।
4: जी जी, करीबन 27-28 बच्चे मेरे घर पर रहे हैं और मैंने उनको अपने जो 2 बच्चे हैं उन्हीं की तरह रखा, कोई डिफ्रेंसिएशन उनके बीच में नहीं किया। और जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बने तब तक मैं उनके लिए माता पिता की तरह उनके साथ लगी रही, क्योंकि मैं भी गुरु भी एक माता पिता के जैसे होते हैं, क्योंकि वो बौद्धिक जन्म देते हैं। और मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि हर एक शिक्षक अगर ये सोच ले कि कुछ परिवार को, कुछ बच्चों को अगर हम गोद ले लें, उनके जीवन का निर्माण करें, तो शायद हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे।
3: क्या बात है, बिल्कुल। और ये भी आप बताइए कि जो बच्चे आपने जिनको रखा था अपने पास में, वो आज जो उस एज में आ गए हैं या जो जिन्होंने अपने मंजिल को पा लिया है, वो आज क्या क्या कर रहा है?
4: जी, ऐसे बहुत से बच्चे हैं, कुछ का उदाहरण देना चाहूंगी
3: जी,
4: क्योंकि एक साथ बहुत से नाम याद नहीं आएंगे।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: बहुत से बच्चे मेरे जीवन में आए, जैसे एक संजय कुमार मिश्रा बच्चा था, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था
3: जी,
4: और वही मेरे जीवन का पहला बच्चा था जिसे मैंने अपने साथ रखा। उसने मुझे एक पत्र लिख के दिया था कि मैं बहुत वीक हूँ पढ़ने में, लेकिन सपना है कुछ करने का। तो मैंने उसको अपने पास रखा था, और उसके अंदर भी, मतलब टीचर ही किसी को नहीं बनाता है, टीचर सिर्फ मार्गदर्शन देता है, कुवत अपने अंदर भी होनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: इंटरेस्ट अपने अंदर भी होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, उस बच्चे को मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ, कि अगर मैं सब्जी काट रही होती थी तो वो कहता था, मैम आप सब्जी मत काटिए, मैं सब्जी काटूंगा, और आप मुझे बताइए सोशल फॉरेस्ट्री आ जाएगी तो मैं क्या लिखूंगा, अगर एग्रो फॉरेस्ट्री आ जाएगी तो क्या लिखूंगा। तो वो हर समय मुझसे जैसे गुरुकुल में पढ़ाई होती होगी प्राचीन काल में, उस तरह उसने पढ़ा मुझसे, और बहुत अच्छे अंक से प्राप्त किया। आज वो किसी फार्मास्यूटिकल में रीजनल मैनेजर से भी शायद ऊपर पद पर है। और जो बच्चा कभी एक, मतलब आर्थिक क्राइसिस को झेल रहा था, आज वो भी मेरी तरह लोगों की बहुत मदद करता है।
3: क्या बात।
4: इसी तरह अभी एक दूसरा बच्चा हमारा दुर्गेश कुमार तिवारी, वो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर सेलेक्ट हुआ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो, मतलब मेरे संपर्क में आए और आज अपने क्षेत्र में वो बिल्कुल क्लाइमेक्स पर बैठे हुए हैं।
3: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपने बताया भी कि किस तरह बच्चे सक्सेस हुए, एक गुरुकुल की शिक्षा, सही बात है। उस अगर पद्धति को देखा जाए तो बहुत ही इफेक्टिव पद्धति थी सीखने की, सिखाने की। हर वक्त आप हर चीज़ों से सीखते हैं। अभी हम जानना चाहेंगे कि आपके कॉलेज के बारे में भी सुना है, और लगातार टॉपर्स की लिस्ट में
4: जी।
3: सबसे ज्यादा आप ही अपने बच्चों को देते हैं बलरामपुर से।
4: अच्छा अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं। उत्तरौला में मेरा एक, मतलब एक स्कूल खोला गया था जिसके मैनेजमेंट में मैं हूँ
3: जी।
4: और क्योंकि हम लोग ये चाह रहे थे, मेरे हस्बैंड अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, MSc वहीं से किया था, BSc वहीं से किया था, और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो मैं क्लब की कोऑर्डिनेटर के रूप में अक्सर जिला प्रशासन DM साहब से मार्गदर्शन लेने मुझे जाना होता था। तो जिला अधिकारी महोदय ने एक बार मुझे कहा कि आप दोनों लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और अगर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर की नहीं है तो आप दोनों को समाज के लिए भी काम करना चाहिए। और ये कहा था डॉक्टर MAA खान साहब, जो उस समय DM थे। उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब हम कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां शिक्षा का स्तर बहुत कम हो, और हम तालीम देने के लिए लोगों के लिए प्रयास करेंगे। तो उतरौला वो जगह समझ में आई, क्योंकि वहाँ के SDM साहब ने ये कहा था कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग व्यापार से जल्दी जुड़ जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए, मतलब ये कितना भी पैसा बैंक से निकालते तो अंगूठा लगाते। तो हमने सोचा यही वो जगह है जहाँ हम लोगों को तालीम दें, लोगों को शिक्षा दें। और स्कॉलर एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से वो विद्यालय है, मैं उस विद्यालय की मैनेजर हूँ, और असलम शेर खान जी उस विद्यालय के डायरेक्टर हैं, और हम पूरे मैनेजमेंट की जो टीम है हमारी, सभी लोग सकारात्मक सोचते हैं। मेरे हस्बैंड सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल के प्रोडक्ट थे, तो उन्होंने रूल रेगुलेशन वहाँ से वैसा ही किया, और नकल विहीन शिक्षा के लिए मेरा विद्यालय जाना जाता है। और जब से नकल अब नहीं होती है इंटरमीडिएट और हाई स्कूल माध्यमिक शिक्षा में, तब से मेरा विद्यालय प्रति वर्ष मेरिट लिस्ट में होता है। इस बार हाई स्कूल में हमारे 6 बच्चे 10 टॉपर्स में अपना स्थान बनाने में सफल रहे और इंटरमीडिएट में 10 में से 5 हमारे स्कूल से हैं।
3: क्या बात है, मतलब रिपोर्ट कार्ड तो आपका बहुत इम्प्रेसिव है।
4: जी जी जी, और अभी हमने अपने स्कूल में एक सम्मान समारोह किया था और उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया और सभी पेरेंट्स को हमने मंच पर बुलाकर सम्मानित किया और उन माता पिता के अंदर एक ललक जगाई कि आपका बच्चा हीरा है देश के लिए और इसी तरह उसका सपोर्ट कीजिए, आगे वो देश की सेवा में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा।
3: क्या बात है, तो माँ बाप को सम्मानित करना कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाना होता है कि आपसे 4 कदम आपका बच्चा आगे जाने वाला है और
4: जी।
3: उनको भी खुशी होती है कि हाँ उन्होंने सच में सपोर्ट किया, तो उनकी जो सपोर्ट था उसको भी पहचाना जा रहा है
4: जी।
3: स्कूल के जरिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी पहल है। एक चीज जो मुझे मैम लगती है बहुत जरूरी, वो होता है आपका डे फ्लो, एक दिन में आप करते क्या क्या है, इस तरह से होता है। और जैसा कि आप स्टूडियो आई थी, आपने बातचीत

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ, AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या और शुभ रविवार, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो गंसली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। जी हाँ, बारिश का ये मौसम बहुत कुछ कहता है। जी हाँ, सावन बहुत कुछ कहता है, बारिश बहुत कुछ कहती है। अरे कुछ आप भी कहिए, कुछ हम भी कहें। जी हाँ, और कुछ कहते सुनते हुए अगर ये शाम गुजर जाए तो क्या बात है। और कैसे हैं आपसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। जी हमारे साथ फिलहाल हमको सोनिया त्रिवेदी जी दिखाई पड़ रही हैं और रितेश अवस्थी जी भी हैं हमारे साथ उपस्थित हैं। जी हाँ, नमस्कार करते हैं आपको। और भाई हमारे बाकी श्रोता, दर्द का सांस दे रहा हूँ तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूँ तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें, ये गज़ल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। जी हाँ, तो मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जी हाँ, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और आपसे करते हैं ढेर सारी बातें इस संगीतमय अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणसली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जी हाँ, इस मोहब्बत की शाम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, स्वागत और इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं अपना वाला रेडियो, जी हाँ, रेडियो गणस्थल 89.6 FM जो है गोंडा शहर की धड़कन। और अब ये गोंडा ही नहीं, हमको लगता है कि कई दिलों की धड़कन हो चुका है। जी हाँ, इश्क में मेरी तरह जहमत उठानी चाहिए, तकलीफ। इश्क में मेरी तरह जहमत उठानी चाहिए, कम से कम तुमको भी मेरी याद आनी चाहिए। होना चाहिए ना इश्क में, मतलब अगर रात सबके लिए बनी है तो रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई, तो रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। तो इश्क में मेरी तरह जहमत उठानी चाहिए, कम से कम तुमको भी मेरी याद आनी चाहिए। चंद लम्हों में तुम्हें सोचा तो गजलें हो गईं, चंद लम्हों में तुम्हें सोचा तो गजलें हो गईं। और क्या तुमको मोहब्बत की निशानी चाहिए। इस अंधेरी रात में सूरज के क्यों है मुंतजर, मुंतजर मतलब किसी की चाह रखना, इच्छा रखना। इस अंधेरी रात में सूरज के क्यों है मुंतजर, इन चरागों को भी कुछ हिम्मत दिखानी चाहिए। मुस्कुराना इसलिए भी फर्ज है मुझ पर समर, मुस्कुराना इसलिए भी फर्ज है मुझ पर समर। अहले दुनिया को मेरी आंखों में पानी चाहिए। जी हाँ, जब आपकी आंखों में पानी आता है तो आप कलम से कहानी लिखते हैं, और यूं ही नहीं लिख जाती। कभी कहा था मैंने कि जिसकी न लुटी दुनिया और जिसका दिल न मिला, जिसकी न लुटी दुनिया और जिसका दिल न जला, वो प्रीत करेगा क्या, वो गीत लिखेगा क्या। हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस, दिल टूटने का अनुभव कहीं ना कहीं जिंदगी में आपको थोड़ी सी समझ भी दे जाता है। और ये एक ऐसा काम है जिसको थोड़ा सा करना चाहिए इंसान को, हाँ, कि ये ना रहे कि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि जिस विद्यार्थी ने हॉस्टल की लाइफ नहीं जी, उसने अपने जीवन का एक स्वर्णिम अध्याय नहीं जिया। और लिटरेचर कहता है कि अगर आपने हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद एक भावनात्मक पहलू से आप दूर रह गए। हमारे साथ अनिल वर्मा जी हैं सदापुर से। भाई, बहुत प्यारा गीत, बिल्कुल मौसम से मेल खाता हुआ। जी हाँ, शुभ संध्या आपको भी अनिल वर्मा जी। कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, और प्रणाम चरण स्पर्श आपको। मेरे साथ जुगल किशोर वर्मा जी जो हमको सुन रहे हैं, भाई MP से, शुभ संध्या। मनुष्य जी आपको भी शुभ संध्या। और बताइए जुगल जी, क्या मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है या नहीं? यहाँ तो मतलब कुछ ऐसी बरसात पड़ रही है कि घर से निकले तो पानी एकदम नहीं, दो मिनट आगे गए बूंदाबांदी हुई, तीन मिनट के बाद एक बैग पानी का लहरा आया। क्या कुछ ऐसी ही आंख मिचौली बारिश MP में भी खेल रही है? जी हाँ, हो सकता है खेल रही हो। आइए आपको ले चलते हैं फिर एक गीत की ओर, मौसम के हिसाब से आपको गीत सुनाते हैं। जी हाँ, तो फिलहाल मौसम के हिसाब से एक प्यारा सा गीत और सुन लीजिए, सुनते रहिए। और रेडियो गणस्थल 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसको मिला दो उसके जैसा। जी हाँ, वास्तव में और पानी का कोई रंग नहीं होता। अच्छा, ऐसे ही जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। वो जिस महफिल में बिठाल दीजिए उस महफिल में ढल जाते हैं। और सबके लिए जीवन की अलग अलग परिभाषा है। धरातल पर खड़ा एक बच्चा हवाई जहाज उड़ाने के सपने देखता है, लेकिन विमान में बैठा पायलट घर लौटने हेतु धरातल के सपने देखता है। यही जीवन है। जो बच्चा है वो सोच रहा है कि एक दिन मैं पायलट बनूंगा और हवाई जहाज उड़ाऊंगा, और जो हवाई जहाज उड़ा रहा है वो सोचता है कि कितनी जल्दी अपने घर पहुंचूं। उसको आसमान दिखाई दे रहा है, उसको जमीन की प्रतीक्षा है। तो जो हमारे पास नहीं है उसी की प्रतीक्षा है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। जी कहा गया कि हैरत ये नहीं कि अपना हाल बताना पड़ा मुझे, हैरत ये नहीं कि अपना हाल बताना पड़ा मुझे, मैं मर रहा हूं ये मर के दिखाना पड़ा मुझे। हैरत ये नहीं कि अपना हाल बताना पड़ा मुझे, मैं मर रहा हूं ये मर के दिखाना पड़ा मुझे। एक तुम ही तो झांकते थे मेरी आंखों के अंदर, एक तुम ही तो झांकते थे मेरी आंखों के अंदर, और तुम ही को रोकर दिखाना पड़ा मुझे। चीख चीख कर बताया कि मुझे तैरना नहीं आता, चीख चीख कर बताया कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर समंदर में डूब कर दिखाना पड़ा मुझे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान को तकलीफ मुझे लगता है तब होती है जब वो सही हो और उसको अपने आप को सही साबित करना पड़े। मुझे लगता है तब इंसान को बहुत मतलब अजीब सा लगता है कि मैं सही हूं और सत्य को साबित करना पड़ रहा है। मुझे तैरना नहीं आता और ये बात सामने वाला जानता है, और फिर मुझे साबित करना पड़े कि डूब के मर जाए तब मानोगे क्या भाई, मान जाओ। जी हाँ, मेरे साथ क्या बात है गोरखपुर से अनिल शास्त्री दादा चरण स्पर्श जुड़ चुके हैं। शुभ संध्या आपको भी। जी हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। जुगल किशोर ने बता दिया है, सर जी एमपी में नहीं हो रही है बारिश, 4-5 दिन हो गए। इस साल बारिश बहुत कम हुई है, अभी फसल को पानी चाह रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और कुछ दिनों में बरसात हो जाएगी। अभी तो रक्षाबंधन सावन हरा ही हरा होता है। सविता शास्त्री जी हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको। कैसे हैं आप? और शुभ संध्या, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी होंगी। धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास से हैं। जी हाँ मनुष्य जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या आपको भी धर्मेंद्र मोहन जी। अनिल वर्मा जी लिखते हैं कि आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, जब ख्वाब कोई आए तो लगता है कि तुम हो, बागों में खिला कोई गुलाब का फूल, ऐसा लगा जैसे वो कहता है कि तुम हो, हर एक नज़र पूछ रही है ये सवाल, इस शहर में जो सबसे जुदा है वो तुम हो। बशीर बद्र की गज़ल याद आई दोस्तों, क्या बात है क्या बात है, मेरे बहुत प्रिय शायर, मेरे बहुत प्रिय कवि वो। और जी आइए अब आपको ले चलते हैं फिर एक बार गीतों की दुनिया में। और गीतों की दुनिया में भाई अब की बार

जी, जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है। बस तुम्हें बहुत ही, मतलब जिसने भी लिखा क्या कमाल का लिखा। और भाई गायक कलाकार की तो क्या ही बात की जाए, कायनती गले के मालिक मोहम्मद रफ़ी, और फिल्माया भी गया जुबली कुमार के ऊपर, अर्थात राजेंद्र कुमार के ऊपर, झुक गया आसमान। बहुत ही प्यारी मूवी है, उसका बहुत ही प्यारा सा गीत। जिंदगी किसी, लोग कहते हैं किसी एक इंसान के न रहने से ज़िंदगी समाप्त नहीं होती, लेकिन एक बात और है, हो सकता है आप इस दुनिया के लिए सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी एक इंसान के लिए आप पूरी दुनिया है। तो हो सकता है कि आपके रहने से या न रहने से किसी को बहुत फर्क पड़ता है। ये सर बुलंद होते ही शाने से कट गया, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया। मतलब इंसान जब प्रसिद्धि पा लेता है तो फिर उसको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। अगर अमिताभ बच्चन जी को निकलना है मुंबई में किसी काम से और इमरजेंसी है, घर में नौकर नहीं है, तो शायद पैदल की अवस्था वाली, मतलब चलेंगे तो फिर वो उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे, उतना लोग नोटिस करेंगे उनको, उतना ध्यान देंगे उनके ऊपर। बहुत ज़्यादा कामयाबी इंसान को थोड़ा सा मजबूर करती है सामान्य जीवन बिताने के लिए। मोहतरम मतलब दुनिया में जाना जाने वाला, मैं मोहतरम हुआ तो जमाने से कट गया, माँ आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, माँ आज मुझको छोड़ के गांव चली गई, मैं आज अपने आईना खाने से कट गया, जोड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी। शादी होती है तो आपने देखा होगा लोग जयमाल डालते हैं। जोड़े की शान बढ़ गई मतलब शादी हो गई और एक दूसरे को फूलों का हार पहनाया गया। जोड़े की शान बढ़ गई, महफिल महक उठी, लेकिन ये फूल अपने घराने से कट गया। अगर आप ध्यान से देखें तो कट गया, घराने से गया वो फूल, अब मुरझा ही जाना है उसके नसीब में। ऐ आंसुओं तुम्हारी जरूरत है अब मुझे, ऐ आंसुओं तुम्हारी जरूरत है अब मुझे, कुछ मैल तो बदन का नहाने से कट गया। उस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर, उस पेड़ से किसी को शिकायत न थी मगर, ये पेड़ सिर्फ बीच में आने से कट गया, वरना वही उजाड़ हवेली से जिंदगी, वरना वही उजाड़ हवेली से जिंदगी, तुम आ गए तो वक्त ठिकाने से कट गया। जी हाँ, अगर आप आ गए तो इसका मतलब वक्त अच्छा कट गया। एक इंसान के आने से आपकी जिंदगी महक उठती है। एक इंसान के आने से कभी कभी लगता है कि पतझड़ में बहार आ गई हो। एक इंसान जो आपके लिए पूरी दुनिया होता है। जी हाँ, आइए आप भी किसी न किसी इंसान के लिए वही बहार होंगे, या हो सकता है आपके लिए कोई वही पतझड़ में बहार हो। तो सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा नगमा और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणसलेट 9.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा कर रहा है आपकी प्रतीक्षा।

जी हाँ, अब जिस पल का इंतज़ार था आपको वो पल आ पहुँचा है। अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सी ऊब शामिल हो गई है रोज़ जीने में। पलों को दिन में, दिन को काट कर जीना महीने में। महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर। अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं। मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है। तुम्हारा फ़ोन आया है, तुम्हारा फ़ोन आया है। जी हाँ, अब हम प्रतीक्षा करेंगे आपके फ़ोन की भी और चैट बॉक्स से, तो एक फरमाइश हम लेंगे चैट बॉक्स से और देख लेंगे भाई फ़ोन से। रविवार संडे का स्पेशल वाला दिन होता है और पहली फरमाइश मेरे पास श्री प्रीति शुक्ला जी की आ चुकी है, हमारी बहन जी हैं, और बहुत प्रणाम आपको। और गीत है अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, बहुत ही प्यारा गीत है भाई। देवानंद पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं हमारी बहन जी ने कौन सा गीत भेजा है। फिलहाल पहला गीत आपकी फरमाइश पर।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया। बहराइच से ये फरमाइश थी। और अब चलते हैं भाई, हमारे पास अगली फरमाइश है अनु पांडे की, जो हमको सुनती हैं बेलसा से। आईने ये बता कैसे उनका दिल चुराना है, फिल्म का नाम मोहब्बत है। आइए आपको ले चलते हैं, आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, अनु पांडे की फरमाइश बेलसा से।

तो भाई बाहों में लेकर प्यार करना है, और ये सावन का महीना है और बाहों में प्यार हो गया। अब आइए आपको ले चलते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो आई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन आशु मिश्रा जी की। और फरमाइश उन्होंने बहुत प्यारी की है, क्या बात है, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मीत रे, मेरे मितवा। आहा, मोहम्मद रफ़ी और, जी हाँ, लता और रफ़ी, और ये दोनों आपस में भाई बहन, लता जी राखी बांधती थी, रक्षाबंधन भी करीब है। और आइए गीत सुनते हैं उन दोनों की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा गीत, ये आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर।

अब जरा सोचिए, अगर पुकार इतनी अच्छी होगी तो कौन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और आपको गीत बुला रहे हैं। अब चलते हैं श्री धर्मेश त्रिपाठी जी की तरफ। फिल्म का नाम सावन, सोनू निगम के ऊपर फिल्माया गया ये बहुत ही प्यारा सा गीत, और मैंने भी बहुत दिन के बाद इसको सुना है। आइए आपको सुनाते हैं सोनू निगम की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा गीत, तू बुला ले बुला ले बुला ले मेरे रब्बा, मेरे महबूब से तू मिला दे। बहुत ही प्यारा सा गीत।

अब इतनी शिद्दत से बुलाएंगे तो कौन नहीं जाएगा साहब, बिल्कुल जाना ही पड़ेगा। बहुत ही पैसा गीत ये हमने इंजॉय किया श्री धर्मेश त्रिपाठी जी की फरमाइश पर। अब चलते हैं भाई रवि जी की तरफ, जो हमको सुनते हैं गोंडा से, और सफ़ेदों की मैं, क्या बात है, सफ़ेदों से मैं नुसरत नाजिर, क्या गीत चुना है भाई। और देखिए मतलब नाग पंचमी गई, और आइए अब लेडी स्मगलर का ये गीत आपको सुनाते हैं रवि जी की प्यारी सी फरमाइश पर।

हाँ, क्या बात है भाई, क्या गीत दिया आपने रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं भाई, राजू जी सीतापुर से बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर के आए हैं, मिलके ना होंगे जुदा, जुदा कसम खा ले चाहे लाख तूफान आए। जी हाँ, मोहब्बत को परवान चढ़ाता हुआ ये प्यारा सा गीत राजू जी सीतापुर की फरमाइश पर।

जी हाँ बिल्कुल, राजू जी ने कसम खा ली है मिलके न होंगे जिदा, और हम ये चाहेंगे कि भाई आप अगर एक बार मिल गए हैं तो भगवान न करे मिलने के बाद कोई किसी से अलग हो, क्योंकि उसका गम बहुत पता चलता है। लोग कहते हैं मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, कोई तेरा बिछड़ता तो तुझे मेरा पता चलता। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और जब गोंडा का नाम आता है तो हृदय में कितना प्यार उमड़ता है, आपको क्या बताएं। जी हाँ, तो आप गोंडा से सुन रहे हैं, चलिए ले चलते हैं आपको रेणु तिवारी जी की फरमाइश, और बहुत ही प्यारी फरमाइश है। फरमाइश है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का ज़माना था दिल टूट गया। जी हाँ, और जैसे ही टूटता है ऐसे लोग और नाचते हैं। पहली बार मैंने देखा कि ऐसा गीत भी आया कि दिल टूटने पर लोग नाच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, दिल टूटते रहे और आप नाचते रहिए इस गीत के साथ।

जी हाँ, पत्थर के ज़माने में दिल टूट जाते हैं, और इस वास्तव में इस दौर में, इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हो। बड़े नादान हो साहब, शीशी है जहर की हो दवा ढूंढ रहे हो। बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया रेणु तिवारी जी की फरमाइश पर। और अब चलते हैं भाई, ऐसा नाम जिनमें धर्मेंद्र भी हैं और साथ साथ मोहन भी हैं, यानी भगवान भी हैं और एक्टर भी हैं, और गीत है यार आ जाना, थोड़ा वक्त निकाल कर सुनते हैं धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

क्या बात है भाई, दोस्ती के नाम बहुत ही प्यारा सा गीत हमने एंजॉय किया। श्री धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता हैं भाई राजू सलमानी जी, और गीतों का जो चुनाव करते हैं वो बड़ा गजब का करते हैं। खंडहर बता रहा है कि इमारत बुलंद थी, अभी इस दौर में ये हाल है हमारे राजू सलमानी भाई का, तो आप यकीन कीजिए मतलब क्या गीत भेजते हैं। आज गीत भेजा है पायल की झनकार रस्ते रस्ते। जी हाँ, राजू सलमानी जी की बहुत ही प्यारी सी फरमाइश, और इसके पश्चात हम चलेंगे सोनिया तिवारी जी की फरमाइश, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गुंडा शहर की धड़कन, और सुनते ही नहीं सुनाते भी रहिए अपने अगल बगल वालों को।

क्या गीत चुन लिया राजू सलमानी जी आपने, पायल की झनकार रस्ते रस्ते। और वास्तव में लगता है कि इस गीत में पायल की झनकार। अब चलते हैं सोनिया जी की तरफ। सोनिया तिवारी जी, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। और इसके बाद अरविंद मौर्या जी की फरमाइश हमारे पास है, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। फिलहाल एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, सोनिया तिवारी जी की फरमाइश।

जी हाँ, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब चलते हैं भाई अरविंद मौर्या जी की फरमाइश जो हमको सुनते हैं मनकापुर से। बहुत ही प्यारे इंसान है बाथी मेरी, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा।

बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना भाई अरविंद मौर्या जी की फरमाइश। अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे और जानकार श्रोता श्री राजेश सिंह जी की तरफ, जो सुनते हैं हमको मालवीय नगर से मेरा मन तेरा प्यासा। बहुत ही प्यारा सा गीत है राजेश सिंह।

बहुत ही प्यारा गीत हमने एंजॉय किया भाई राजेश सिंह जी की फरमाइश पर, और अब उन्हीं के नवा राशि यानी उन्हीं के नाम राजेश कुमार जी, फरमाइश है चाहत से है बेगानी मेरी सुबह शाम।

जी हाँ, और अब चलते हैं भाई मनोज कुमार, अपने ज़माने के सुपरस्टार, जिनको देख करके चेहरे पर बड़े बड़े बाल उनके। आपने सभी ने गीत सुना होगा, तेरी दो टकिया की नौकरी पे मेरा लाखों का सावन जाए। मनोज कुमार को न तब नौकरी मिली न आज नौकरी मिली, एक ऐसा नाम जो हिंदी साहित्य में सदा के लिए अमर हो गया। मनोज कुमार जी ने फिल्म बनाई क्रांति, जिंदगी की न टूटे लड़ी, और उन्हीं पर, उन्हीं को देखकर किसी और का नाम रखा गया मनोज। आज वो सुपरस्टार हैं और आगे भी रहेंगे। फिलहाल ये प्यारा सा गीत के गुप्ता जी की फरमाइश पर, जिंदगी की न टूटे लड़ी।

0: गोंडा से है।
1: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
3: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, तो ये जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
3: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
2: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
5: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
2: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
6: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
7: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
2: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
8: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
2: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, और अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता और एक ऐसे श्रोता जो एकदम अपडेट रहते हैं और हमेशा अच्छे गीत भेजते हैं। अब देखिए उन्होंने आज गीत भेजा है यूपी का डान। अब कौन है भैया, ये तो जाने इम्तियाज जी।

जी हाँ बिल्कुल, गुस्ताखी माफ है। और अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे श्रोता मुमताज अंसारी जी की तरफ। और गीत भेजा है उन्होंने, मुझे इश्क है तुझी से मेरी जाने जिंदगानी।

हाँ, पिया पिया पिया, बहुत ही प्यारी सी फरमाइश। अब चलते हैं भाई अपने दर्द कुमार जी की तरफ, जिनको हम प्यार से सुरेश कुमार कहते हैं। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, पालकी फिल्म की बहुत ही प्यारी सी गजल ये रफ़ी साहब की आवाज़ में।

जी हाँ, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, बहुत ही प्यारी सी गजल ये हमने सुनी। और अब चलते हैं निधि जी सीतापुर की तरफ, आग लगे तनमन में। और नागेश्वर धाकर जी, आपने गीत कहाँ लिखा, क्योंकि आपने इतनी चैटिंग कर डाली कि आपका गीत मिल नहीं रहा है, और कृपया अपना गीत आप हमको पुनः मैसेज कर दें ताकि आपका हम गीत जान सकें कि आपका कौन सा गीत है। आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं, केवल लिख कर भेजिए, हम बजाते हैं।

बहुत ही प्यारा सा गीत हमने भाई एंजॉय किया। और अब चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे श्रोता नागेश्वर धाकर जी। भाई वास्तव में इन्होंने गीत कब भेजा जान नहीं पाए, और अब भेज दिया है कि वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा, और मैं चाहता हूँ कि आपका शहजादा नहीं आपकी शहजादी आए वादी इश्क से। फिलहाल नागेश्वर धाकर जी की फरमाइश पर वादी इश्क से आया है मेरा शहजादा।

जी हाँ भाई, और अब चलते हैं नागेश्वर धाकड़ जी के पास, फिर नव्या जी की तरफ, और गीत है उनका माँ का लाडला बिगड़ गया। लेकिन अब भाई हम लोग हैं तो संभाल लेंगे, लेकिन फिलहाल बिगड़ने नहीं देंगे, लेकिन गीत सुना देते हैं आपको।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 92-981-976, 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: मेरे बस में हो तो मैं जाऊं न दुनिया छोड़कर, मेरे बस में हो तो मैं जाऊं न दुनिया छोड़कर, जब तलक रख दूं न सब टूटे हुए दिल जोड़कर। इस बात का ऐलान करने वाले जो शख्स हैं उनके बारे में आज करेंगे बात। जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप इस्तकबाल आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम चल रहा है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और ख़ास। जी हाँ, रविवार का एक दिन आता है हफ्ते में जिस दिन आपके साथ कुछ ठीक ठाक वक्त गुजरते हैं और वो लम्हे जो गुजरते हैं वो बहुत शानदार होते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है आपसे रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं, आपकी फरमाइश की गीतें जो गीत हैं वो भी बजती हैं, अपनी पसंद से गीत हम गोंडा मैसेज मसाला में बजाते हैं ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाले में। और अब आपकी फरमाइश के बाद आते हैं बहारे गजल की तरफ। तो जिसने ये कहा कि मेरे बस में हो तो मैं जाऊं न दुनिया छोड़कर, जब तलक रख दूं न सब टूटे हुए दिल जोड़कर, इस बात का ऐलान करने वाली शख्सियत का नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जिंदगी के कई सारे मौजूआत को छुआ, घर को छुआ, आंगन को छुआ, पिता को छुआ, तरबियत को छुआ, वालिद वालिदैन को उनकी गज़लें टच करती हुई, स्पर्श करती हुई, और हम तो ये कहेंगे कि शायद ही जिंदगी का कोई ऐसा पहलू हो जिस पहलू पर उनकी कलम न चली हो। अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया हमने तो उन्होंने लिखा था कि मोहब्बत इब्तदा मेरी, इब्तदा मतलब शुरुआत, मोहब्बत इब्तदा मेरी, मोहब्बत इम्तिहा मेरी, मैं हिंदुस्तान हूँ सबसे निराली है अदा मेरी, सुनी जाती है सदियों से, सुनी जाएगी सदियों तक, हजारों बोलियों से मिलके बनती है सदा मेरी। सदा मतलब आवाज़। तो हिंदुस्तान को मोहब्बत की ज़मीन कहने वाला ये शायर हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। न जाने कितने विद्यार्थी उनकी लिखी हुई गज़लों पर पीएचडी करते हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ता है। जी हाँ, आइए तो अब चलते हैं गज़ल की ओर और सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे।

0: दोस्तों, जिंदगी सचमुच एक हसीन इत्तेफाक है। अगर इत्तेफाक ना हो तो मोहब्बत ना हो, शायरी ना हो, संगीत ना हो। अभी जो गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, कभी उसमें एक आवाज और भी शामिल थी। उस आवाज की मलिका नेहा आज इस वक्त हमारे बीच हैं। दोस्तों, मैं आप सब लोगों की तरफ से उन्हें गुजारिश करूंगा कि वो एक बार फिर मेरा साथ देकर इस अधूरी गजल को पूरी कर दें और शाम को अमर कर दें।
1: ये क्या कह रहे सागर?

तुम्हारे बाद किसे अपना कहें भाई, बहुत ही प्यारी सी गज़ल ये हमने सुनी, बहुत एहसासात को छूती हुई ये गज़ल आती है हमारे पास। और जी हाँ, हमारे साथ नव्या जी हैं जी, प्रणाम करते हैं आपको, शुभ संध्या आपको। और अनूप मिश्रा जी, हाँ सौ चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी, अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी, कोई बात नहीं। क्या बात है अनूप मिश्रा जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और जी, और सोनिया त्वरी जी मेरे साथ हैं, और मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस पर दम निकले। क्या बात है, क्या बात है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बात है भाई। और नागेश्वर जी, आपको भाई शुभ संध्या, कैसे हैं आप? और लिखते हैं कि खुद को खोने का पता ही न चला, किसी को पाने की यूं इम्तिहान कर दिया। हा हा, अब मुझे याद आता है कि वो वसीम बदली साहब के बारे में आज बात ही कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा कि तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं, तुझे पाने की कोशिश में कुछ इतना खो चुका हूं मैं कि अब अगर मिल भी तू जाए तो अब मिलने का गम होगा। मतलब इतना आपको पाने के लिए छटपटाए हैं कि अगर आप अब मिल भी जा रहे हैं तो मिलने का गम हो जाएगा। ठीक है, आप दूर रहें। उन्होंने कहा था कि मैं जब घर छोड़कर निकला तो ये कैसी तमन्ना थी, कोई आए मुझे रोके मना कर मुझको ले जाए। उन्होंने कहा कि किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना। आपकी सबसे बड़ी ताकत आप स्वयं है, किससे नाराज हो, किस बात का शिकवा करना, छोड़ बैठे हो अगर खुद पे भरोसा करना, अरे जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, जा मेरे यार नहीं तुझ पे भरोसा करना, तुझको आता है बहुत अपना पराया करना, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, ठोकरों को भी नहीं होती हर एक सर की तलाश, भाप लेती है किसे आता है सजदा करना। अगर आपको, आपके पास विनम्रता है तो लोग आपको ठोकर नहीं मार पाएंगे, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, झुक के मिलने पे जो आ जाए कहीं थोड़ा गुरूर, तो भी तन्हाई में जाकर ही सर ऊंचा करना, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आपको मिलेंगे अपने आसपास, ऐसा एक शख्स ही कुछ भी नहीं करने देता, और वो जो कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, होता कुछ और है। अब ये आज के समय का सच है, अगर आप एक तरफ से देखें तो ये सच लगेगा कि होता कुछ और है, कुछ दिखता है कुछ लगता है, होता कुछ और है, कुछ दिखता है कुछ लगता है, अरे कितना दुश्वार है आंखों पे भरोसा करना। और अंतिम की पंक्तियां हम, आप सभी अपने साथ ले जाइएगा, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे हों जो बहुत महत्वपूर्ण हों, उन्हें खोइएगा नहीं। आजकल रिश्ते थोड़े से खोए से जा रहे हैं, उसका पीछे का कारण कि मेरे बारे में मुझे छोड़कर सबसे पूछा, मेरे बारे में मुझे छोड़कर सबसे पूछा, उसको आया ही नहीं मुझ पे भरोसा करना। जिसकी बात हो उससे पूछ लीजिए, ये जिंदगी में बड़ा बड़े काम की चीज़ है।
अगर आप दूसरे से पूछेंगे तो शायद वो उस बात को उतना बेहतर नहीं बता पाएगा जिसकी बात है उससे होनी चाहिए। तो चीजें पारदर्शी होती हैं, नहीं तो गलत फहमियों से रिश्ते बिखर भी जाया करते हैं साहब। और रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अगर मिलकर बिखर गए तो अफसोस होता है, एक तड़प बनी रहती है। जी हाँ, हमारे साथ नव्या जी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं। मनुष्य जी शुभ गुड इवनिंग, गज़लों की दुनिया में आपका स्वागत है और गज़ल भी बहुत लकी चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नव्या जी को पसंद आया भाई, नाइस कलेक्शन। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अरविंद जी हैं मनकापुर से, हमारे साथ प्रणाम करते हैं आपको। और जी और अरविंद लिखते हैं, हर रात तन्हाई से बातें होती है मेरी, दर्द भी इबादत बन गया है, जिंदगी है ये मेरी। जी हाँ बिल्कुल, होना भी चाहिए। और दर्द की भी अपनी एक अदा है साहब, वो भी सहने वालों पे फिदा है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जिंदगी में ज्यादा परेशानियां उनको मिलती हैं जो इसके आदि हो चुके होते हैं। और अगर हम बात करें तो इंसानियत की बात करें तो ये कहेंगे कि किसी के चेहरे की मुस्कान की वजह बन जाओ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। चलते चलते यही मेरी पंक्ति होती है, किसी के चेहरे पर मुस्कान की वजह बन जाओ। इंसानियत यही है, बिना मतलब किसी के काम हो। आवश्यकता नहीं, मतलब आज के दौर की बात देखें तो आज के दौर के 80% रिश्ते इस बात पर चल रहे हैं कि ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए संबंध बनाए रखो। नहीं साहब, निस्वार्थ भाव से अगर आप रिश्ते बनाते हैं तो उन रिश्तों में बड़ा दम होता है, और जब उसके पीछे कुछ स्वार्थ छुपा होता है तो शायद वो रिश्ते उतने मजबूत नहीं होते, वो वक्त की आंधी से लड़कर बिखर कर चकनाचूर हो जाएंगे। जी हाँ, आइए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में। और होता है कि जिसने आपको खुशी दी हो, अक्सर ये होता है कि वो गम दे देता है, लेकिन हम चाहते यही हैं कि जिसने हमको खुशी दी है वो हमको गम न दे। आइए गम और खुशी के बीच की इस कशमकश को इन गजलों के माध्यम से, इन नगमों के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारे से नगमात आप

दिल ने फिर याद किया वर्क सी लहराई है। पंक्ति है, हम वो परवाने हैं जो शम्मा का दम भरते हैं। मतलब साहित्यकार क्या कुछ कह जाता है, लेकिन अपने दिल को निकाल के रख देता है। वसीम बदरी साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। सिर पर तो बिठाने को है तैयार जमाना, सिर पर तो बिठाने को है तैयार जमाना, लेकिन तेरे रहने को यहाँ घर न मिलेगा। जाती है चली जाए ये मैं खाने की रौनक, जाती है चली जाए ये मैं खाने की रौनक, कम जर्फों के हाथों में तो सागर न मिलेगा। कहते ठीक है, कुछ चीजों का फासा कम होना अच्छा है। और अभी जो आपने नगमा सुना, दिल ने फिर याद किया फिल्म है, और जहां तक मुझे लगता है, मैं बहुत विश्वास के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद ये इकलौता ऐसा नगमा होगा जिसको मोहम्मद रफ़ी, मुकेश कुमार और सुमन कल्याणपुर इन तीनों ने गाया है। जहाँ तक मुझे याद आता है कि ऐसा शायद ही कोई ऐसा नगमा हो जो मुझसे छूट गया हो या मुझे याद ना रहा हो, लेकिन इन्हीं तीन गायक कलाकारों ने, यानी रफ़ी जी ने, मुकेश जी ने और सुमन कल्याणपुर ने शायद कोई और गीत नहीं गाया है। ये शायद इकलौता नगमा है जो हमने आपको सुनाया। आइए अब ले चलते हैं आपको पुनः गजलों की दुनिया में, नगमों की दुनिया में। जी हाँ, कुछ वक्त है और वक्त बिताते हैं आपके साथ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का भी वक्त आ चुका है। जी हाँ, तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन। आसमान वाले ने चाहा तो कल 9:30 पर पुनः आपसे मुलाकात होगी आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 एफएम, यह है गोंडा शहर की धड़कन।

नमस्कार श्रोताओं, रात का ये समय हमेशा कुछ अलग होता है। दिन का शोर थम चुका होता है, लेकिन यादों की आवाजें जाग जाती हैं। कई लोग इस समय गहरी नींद में होते हैं और कुछ लोग अपनी अधूरी बातों के साथ जाग रहे होते हैं। मैं हूं आपकी अपनी लेट नाइट आरजे और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसमें ना कोई खूनी हवेली है, ना कोई चीखती हुई आत्मा, लेकिन यकीन मानिए, कहानी समाप्त होने के बाद आप बहुत देर तक सोचते रह जाएंगे, क्योंकि कुछ आत्माएं डराने के लिए नहीं, सिर्फ अपना वादा निभाने लौटती हैं। आज की कहानी का नाम है आखिरी खत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते थे हरिप्रसाद। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, चेहरे पर सादगी और आंखों में बरसों की ईमानदारी। पूरे 40 वर्षों तक उन्होंने डाकिया बनकर लोगों के घर घर खत पहुंचाए। किसी के बेटे की नौकरी का पत्र, किसी की बेटी की शादी का निमंत्रण, किसी माँ के नाम विदेश से आया संदेश, हर खुशी और हर दुख उनकी इस पुरानी चपड़े की थैली से होकर गुजरता था। रिटायर हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी एक आदत आज भी नहीं बदली थी। हर शाम वो अपनी पुरानी डाक थैली साफ करते, उसे बड़े प्यार से कपड़े से पोछते और मुस्कुरा के कहते, जब तक ये थैला मेरे पास है, मुझे लगता है मैं अभी भी लोगों की उम्मीदें ढो रहा हूँ। गांव के बच्चे उन्हें प्यार से डाक बाबू कहते थे। उस दिन भी शाम से बारिश हो रही थी। हरिप्रसाद आराम से बैठ गए, अपनी थैली की फटी हुई सिलाई ठीक करने लगे। फिर अचानक उनके मन में आया, क्यों ना अंदर भी टटोल के देख लें। और फिर अचानक उंगलियां भीतर किसी कागज से टकराई। उन्होंने हैरानी से अंदर हाथ डाला, धीरे धीरे एक पुराना पीला लिफाफा बाहर निकला। धूल जमी हुई थी, किनारे घिस चुके थे, लेकिन उस पे लिखा नाम अब भी साफ दिखाई दे रहा था। श्री अर्जुन मिश्र, भेजने वाली मीरा, तारीख 16 जुलाई 1994। हरि प्रसाद की आंखें फैल गई। उन्होंने खुद से कहा, हे भगवान, ये खत मेरी थैली में आज तक कैसे रह गया? उनके हाथ कांपने लगे। 40 साल की नौकरी में उनसे कभी ऐसी भूल नहीं हुई थी। उन्होंने लिफाफा मेज पे रखा और गहरी सांस ली। उसी क्षण बहुत तेज से बिजली कड़कने लगी और लाइट चली गई। पूरे कमरे में अंधेरा और सन्नाटा घिर गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल बाद उन्हें बहुत ही हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई स्त्री बहुत दूर से कोई पुराना दर्द भरा गीत गा रही हो। हरिप्रसाद ने टॉर्च जलाई। कमरा एकदम खाली था। उन्होंने खिड़की की ओर रोशनी डाली। बारिश की बूंदे कांच पे फिसल रही थी। कोई नहीं, उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद पड़ोस में से कोई आवाज आ गई होगी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मेज पे गई, उनका दिल जोर से धड़क उठा। मेज खाली थी। वो पुराना लिफाफा मेज से उड़के उनकी गोद पे आ गया था। उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने उसे कभी उठाया भी था। उन्होंने धीरे से हाथ में लिया। लिफाफा बिल्कुल सूखा था, जबकि खिड़की खुली हुई थी और बारिश की फुहारें कमरे में आ रही थी। उसी समय हवा के साथ चमेली की भीनी सी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। हरिप्रसाद ने बहुत धीमे स्वर में पूछा, कौन है? कोई है क्या इस कमरे में? कोई उत्तर नहीं मिला। सिर्फ बारिश की आवाज आ रही थी और दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। उस रात हरिप्रसाद ने
चाहकर भी वो खत नहीं खोला। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया और मन ही मन निश्चय किया, कल सुबह चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े, ये खत अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेगा। उन्हें तो बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि सिर्फ ये एक खत नहीं, बल्कि 32 वर्षों से अधूरी पड़ी एक कहानी थी, जो अब खुद अपना अंत लिखने के लिए बेताब थी। क्या सचमुच कोई अदृश्य शक्ति हरिप्रसाद को खत की मंजिल तक ले जाना चाहती थी, या ये सब एक बूढ़े डाकिये का भ्रम था? इस रहस्य का पहला पर्दा उठेगा एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सुबह हो गई, बाहर से पक्षियों की आवाजें आ रही थी, हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी, दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। हरि प्रसाद की आंख में तो नींद थी ही नहीं, बार बार उनकी नजर उसी पुराने लिफाफे पर चली जाती। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो खत उन्हें बुला रहा हो। सुबह की पहली चाय पीकर उन्होंने अपना पुराना झूला उठाया, लिफाफा उसके अंदर रखा और निकल पड़े उस पते की तलाश में जहां उन्हें 35 साल पहले पहुंचना था। सड़कें अभी भी कच्ची पक्की थी, लोग आ जा रहे थे, बैलगाड़ियां चल रही थी, हल्की हल्की हवा भी बह रही थी और बूंदाबांदी वो तो हो ही रही थी, मगर किसी ने भी हरि प्रसाद को रोका नहीं। वो अपनी साइकिल पे चलते गए। गांव बहुत बदल चुका था, जहाँ कभी मट्टी के घर थे अब वहाँ पक्की दीवारें थी। पुराने बरगद की जगह एक छोटा सा बाजार बन चुका था। हरि प्रसाद कई लोगों से पूछ रहे थे, बेटा अर्जुन मिश्र का घर किधर है? हर कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। किसी ने कहा, नाम तो कभी सुना ही नहीं। किसी ने कहा, शायद ये बहुत पुराने जमाने की बात होगी, यहाँ तो कोई इस नाम का रहता ही नहीं। आखिरकार गांव के चौराहे पर एक बूढ़े चाय वाले ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, अरे आप तो डाक बाबू है ना? हरि प्रसाद मुस्कुराए, बोले, हाँ भाई, पहचाना तुमने? अरे कैसे नहीं पहचानूंगा, मेरी पहली नौकरी का खत भी तो आप ही लाए थे। अब मैं रिटायर हो गया हूँ और ये चाय की दुकान पे बैठता हूँ। दोनों कुछ पल मुस्कुराए, पुरानी पुरानी बातें अपने मन में याद किया। फिर हरि प्रसाद ने धीरे से पूछा, अर्जुन मिश्र कहाँ मिलेंगे? इतना सुनते ही चाय वाले के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ क्षण चुप रहकर पूछा, आपको इतने साल बाद उनका नाम किसने याद दिलाया? एक खत, हरि प्रसाद ने बहुत धीरे से उत्तर दिया। चाय वाले के हाथ से चाय का गिलास लगभग छूट गया। क्या क्या ये वो मीरा का खत है? हरि प्रसाद चौंक पड़े, तुम मीरा को भी जानते थे? चाय वाले ने गहरी सांस ली, पूरा गांव जानता था उनको। मीरा और अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन शादी के दो दिन पहले मीरा अचानक गायब हो गई। डाकिया बाबू ने पूछा, गायब हो गई? हाँ, 3 दिन बाद नदी के किनारे उसकी चप्पल मिली, लेकिन मीरा वो तो कभी मिली ही नहीं, ना उसके बारे में किसी ने कुछ सुना। हरि प्रसाद ध्यान से सुनते रहे। चाय वाले ने धीमे से कहा, लोग कहते हैं उसने नदी में छलांग लगा दी, कुछ लोग कहते हैं वो नाव में बैठ करके कहीं दूर चली गई और अर्जुन मिश्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। हरि प्रसाद ने अपने झोले को कस कर पकड़ लिया। उन्हें लगा मानो भीतर रखा लिफाफा हल्का सा गर्म हो गया है। उन्होंने झट से झोला खोला, लिफाफा वही था, लेकिन उसमें चमेली की वही भीनी सी खुशबू आ रही थी जो पिछले रात उनके कमरे में फैली थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चाय वाले ने रास्ता बताया। गांव के आखिरी छोर पे एक पुराना मकान है, वहीं रहते हैं अर्जुन बाबू अकेले, बिल्कुल अकेले। धीरे धीरे हरि प्रसाद उस मकान के सामने पहुंचे। लकड़ी का पुराना दरवाजा जिस पर समय की धूल जमी थी, उन्होंने धीरे से दस्तक दी। कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं मिला, फिर अंदर से बहुत धीमे कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला, सामने लगभग 75 वर्ष का एक वृद्ध खड़ा था। चेहरे पे गहरी झुर्रिया, लेकिन आंखों में जैसे कोई आज भी किसी का इंतजार कर रहा हो। जी कहिए, क्या काम है? हरि प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा, क्या आप अर्जुन मिश्र हैं? वृद्ध ने सिर हिलाया, जी मैं ही अर्जुन हूँ। हरि प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने झोले से वो पुराना लिफाफा निकाला, दोनों हाथों से आगे बढ़ाया और बस इतना कहा, अर्जुन जी मैं बहुत देर से आया हूँ। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। जैसी उनकी नजर भेजने वाले के नाम पर पड़ी, उनका पूरा शरीर थरथरा उठा। उन्होंने फुसफुसाकर कहा, मीरा। उसी क्षण घर की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी जो बरसों से बंद थी अचानक टिक-टिक करके चलने लगी। हरि प्रसाद और अर्जुन दोनों एक साथ उस घड़ी की ओर देखने लगे। अर्जुन की आंखों में भय उतर आया। उसने धीमे स्वर में बोला, डाक बाबू, ये घड़ी तो 30 साल से बंद है। टिक टिक की आवाज और स्पष्ट हो गई और फिर अचानक चमेली की खुशबू उस कमरे में फैलने लगी। श्रोतागण, क्या ये केवल संयोग था या किसी ने सचमुच समय को फिर से चलाना शुरू कर दिया था? क्या मीरा की कहानी अब खुद अपने शब्दों में सुनाई जाएगी? जानेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: वेलकम बैक प्यारे श्रोतागण। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी सजा मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो इंतजार होता है जिसका कोई अंत नहीं होता। 32 साल, 384 महीने और 11,000 से भी ज्यादा दिन अगर कोई किसी का इंतजार करे तो क्या प्रेम बचा रहता है या सिर्फ आदत बन जाती है? आज इस प्रश्न का उत्तर शायद समय स्वयं देने वाला है। अर्जुन ने कांपते हाथों से खत खोला। हर शब्द जैसे उसके सीने में उतरता जा रहा था। पत्र समाप्त हुआ लेकिन अर्जुन उसी कागज को देखते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ पल तक कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ रोते रहे। हरि प्रसाद ने धीरे से अपना हाथ उनके कंधे पे रखा, बोला, अर्जुन जी। अर्जुन ने कहा, नहीं डाक बाबू, आज मुझे बोलने दीजिए। 32 साल से जो शब्द मेरे भीतर कैद है, आज उन्हें बाहर आने दीजिए। मीरा, मीरा तुम्हें याद है, तुम कहती थी अगर कभी हम बूढ़े हो गए तो शाम को इसी बरामदे में बैठकर बारिश देखेंगे। मैंने ये बरामदा कभी नहीं बदला। हर साल इसकी टूटी हुई कुर्सी ठीक करवाई क्योंकि मुझे लगता था एक दिन तुम आओगी और फिर मुझे बहुत डांटोगी। अर्जुन, तुमने घर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तुम्हें पता है मीरा, लोग कहते थे तुम मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मेरा दिल हर बार कहता था नहीं, मेरी मीरा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो जरूर लौटेगी क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था। अर्जुन ने खत को चूम लिया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने लिखा है तुम मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मीरा, कभी कभी किसी को उसकी सांसों से अलग करके क्या बचाया जा सकता है। मैं जिंदा था लेकिन जिया नहीं, लोग मुझे अकेला कहते रहे, उन्हें क्या पता मैं अकेला था ही नहीं। हर शाम मैं तुमसे बातें करता था, तुम्हारे हिस्से की चाय भी बनाता था। आज भी रसोई में 2 कप रखे हैं। हरि प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, अगर उस दिन ये खत मेरी नजर में आ जाता तो शायद। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं नहीं डाक बाबू, आज अपने आप को दोष मत दीजिए, गलती आपकी नहीं थी। अगर ये खत पहले आ जाता तो शायद मैं मीरा को कभी जाने ही नहीं देता और तब हर दिन वो अपने दर्द के साथ मरती रही। हरि प्रसाद फूट फूट के रो पड़े, लेकिन एक डाकिये की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है। आज पहली बार मुझे लग रहा है मैं हार गया, मैं अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर पाया। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे, नहीं आप हारे नहीं हो, आप तो आज भी एक प्रेम कहानी को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। घड़ी में 12 बज गए। 12वीं घंटी बजते ही पूरा कमरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। बारिश की आवाज जैसे किसी ने धीमी कर दी हो। दीपक की लौ बिना हवा के धीरे धीरे कांपने लगी और तभी वही चमेली की भीनी सी खुशबू जो पिछली रात हरि प्रसाद के घर आई थी पूरे कमरे में फैल गई। हरि प्रसाद ने चौक के चारों ओर देखा, अर्जुन क्या तुमने? अर्जुन ने आंखें बंद कर ली, उनके होंठ कांपे। हाँ वो आ गई है। हरि प्रसाद ने घबरा के पूछा, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे रही है? अर्जुन मुस्कुराए, अरे ये तो वो अपना पसंदीदा गीत गा रही है, जब भी बारिश होती थी वो यही गुनगुनाती थी। गुनगुनाहट धीरे धीरे और पास आने लगी, फिर बरामदे में रखी खाली लकड़ी की कुर्सी अपने आप हल्के से हिलने लगी। हरी प्रसाद का गला सूख गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, सिर्फ कुर्सी धीरे धीरे झूल रही थी। फिर गीले पैरों के निशान दरवाजे से कमरे की ओर दिखाई देने लगे। बाहर बारिश हो रही थी। अंदर आते आते वे निशान सूख नहीं रहे थे, बल्कि हल्की चमेली की पंखड़ियों में बदलते जा रहे थे। हरी प्रसाद ने जीवन में पहली बार डर और शांति दोनों को एक साथ महसूस किया। अर्जुन अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे उन निशानों की ओर बढ़े। उनकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, वो बहुत शांत थे। मीरा, अगर सचमुच तुम हो तो प्लीज इस बार छिपना मत। 32 साल से मैं सिर्फ तुम्हारी खामोशी सुन रहा हूँ। आज एक बार अपनी आवाज सुना दो। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि दोनों की सांसों की आवाज भी सुनाई देने लगी। और तभी अर्जुन के ठीक पीछे एक बहुत धीमी, बहुत परिचित और बहुत ही स्नेह भरी आवाज आई। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। आवाज फिर आई, इस बार और भी पास। इस बार अर्जुन, मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। प्यारे श्रोतागण, कहानी अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां शायद प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होने वाला है। क्या सचमुच 32 वर्षों का इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है, या रात अभी कोई और रहस्य अपने भीतर छिपाए बैठी है? कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आखिरी खत का सबसे भावुक और सबसे अलौकिक पल अभी बाकी है। सुनते रहिए 89.6 FM ज्ञानस्थली रेडियो। हम लौटेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

लौटा था। अर्जुन ने धीरे धीरे मुड़कर देखा, दरवाजे के पास एक सफेद साड़ी में एक युवती खड़ी थी। वही मासूम मुस्कान, वही बड़ी बड़ी सी प्यारी आंखें, समय जैसे उसके लिए कहीं रुका ही नहीं था। लेकिन इस बार अर्जुन भागकर उसके पास नहीं गए, वो बस उसे देखते रहे, जैसे डर हो कि पलक झपकते ही फिर वो खो जाएगी काफी समय के लिए। काफी देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखें बोलती रहीं। फिर मीरा मुस्कुराई, इतने सालों बाद भी सिर्फ देखते रहोगे या कुछ कहोगे भी? अर्जुन की आवाज टूट गई, अगर बोलने लगा तो शायद रोना बंद नहीं कर पाऊंगा। मीरा की भी आंखें भर गई, रो लो अर्जुन, आज 32 साल का हिसाब आंसुओं से ही पूरा होने दो। अर्जुन एक एक कदम उसकी ओर बढ़े, तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं माना कि तुम इस संसार में नहीं हो या तुम मुझे छोड़ के चली गई। सब कहते थे भूल जाओ, लेकिन जिसे दिल हर सांस में महसूस करे उसे कोई कैसे भूल सकता है? मैं हर शाम तुमसे बात करता था, तुम्हारे पसंद का दीपक जलाता था, तुम्हारे पसंद की चाय बनाता था, और जब बारिश होती थी तो एक कुर्सी हमेशा खाली छोड़ देता था। मीरा धीरे से बोली, मैं आती थी अर्जुन। अर्जुन ठिठक के, क्या? हाँ, हर बारिश में जब तुम बरामदे में बैठते थे मैं यही होती थी। जब तुम कहते थे मीरा आज बारिश बहुत हो रही है तो मैं मुस्कुराती थी, जब तुम रोते थे मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ पाती थी, सिर्फ तुम्हारे पास बैठी रहती थी। अर्जुन फूट फूट के रो पड़े, तो फिर मीरा इतना दर्द क्यों दिया, एक बार सामने क्यों नहीं आई? मीरा ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि अर्जुन तुम्हें जीना था, जब तक तुम्हारी सांसों में किसी का सहारा बनने की ताकत थी मुझे लौटने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारा इंतजार पूरा हो गया है। हरि प्रसाद चुपचाप कोने में खड़े थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटी मैंने जीवन में लाखों खत पहुंचाए, लेकिन आज पहली बार समझ में आया कि कुछ खत कागज पर नहीं लिखे जाते, वे दो धड़कनों के बीच लिखे जाते हैं, और उनका पता सिर्फ ईश्वर जानता है। मीरा ने सर झुकाकर प्रणाम किया, डाकिया बाबू अगर आप उस दिन ये खत पहुंचा देते तो शायद अर्जुन मुझे जीने के लिए मजबूर करता। मैं बहुत बीमार थी और मैं हर दिन उसे टूटते हुए देखती। आज जो कुछ हुआ वो शायद ईश्वर की सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर योजना थी। हरि प्रसाद की आवाज भर्रा गई, तो क्या प्रेम का अंत यही होता है? मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बाबूजी, सच्चे प्रेम का अंत नहीं होता, उसकी प्रतीक्षा समाप्त होती है। बाहर बारिश धीरे धीरे थमने लगी थी। मीरा ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया, अर्जुन आज चलोगे मेरे साथ? अर्जुन ने बिना एक पल सोचे अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। फिर अचानक उन्होंने हरि प्रसाद की ओर देखा, डाक बाबू जी बेटा, अगर कभी ऊपर भी डाक खाना हुआ तो वहाँ भी नौकरी कर लीजिएगा, हो सकता है बहुत से खत अब भी पहुँचना बाकी हो। तीनों हंस पड़े और उसी हंसी में तीनों की आंखें भीग गई। मीरा ने धीरे से कहा, चलो अर्जुन, अब वहाँ कोई इंतजार नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों साथ होंगे। धीरे धीरे कमरे में एक उजली शांत रोशनी फैलने लगी। हरि प्रसाद ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा हो। गांव वालों ने अर्जुन के घर का दरवाजा खुला देखा, सब अंदर पहुंचे। अर्जुन अपनी उसी पुरानी कुर्सी पर बैठे थे, सिर हल्का सा पीछे टिका हुआ था, होठों पर एक ऐसी मुस्कान
जो शायद

35 वर्षों से कहीं खो गई थी। उनकी मुट्ठी बंद थी। जब हरि प्रसाद ने धीरे से उसे खोला तो उसमें वही पुराना खत था, लेकिन अब उसके नीचे एक नई पंक्ति लिखी हुई थी। वो पंक्ति कल रात वहाँ नहीं थी। उस पे लिखा था, डाक बापू धन्यवाद, आपने मेरा खत नहीं पहुँचाया, आपने मेरा इंतजार खत्म किया है, धन्यवाद मीरा। हरि प्रसाद की आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने खत को अपने माथे से लगाया, धीरे से बोले, आज मेरी 40 साल की नौकरी सफल हो गई। उसी समय बरामदे से हवा का एक झोंका आया, खाली कुर्सी धीरे से अपने आप हिली और चमेली की दो ताजा कलियां अर्जुन के चरणों के पास आकर ठहर गई। श्रोताओं, हम जीवन भर लोगों को खोने से डरते हैं, लेकिन शायद प्रेम में कोई कभी खोता नहीं। कुछ लोग हमारे साथ चलते हैं, कुछ हमारी यादों में और कुछ हमारी हर बारिश में। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने परसों से बात नहीं की, तो उसे याद कीजिए। अगर वो इस दुनिया में है तो उसे अपना समय दीजिए, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी यादों को अपनी मुस्कान दीजिए, क्योंकि सच्चे प्रेम को आखिरी खत की जरूरत नहीं पड़ती। वो दिल से भेजा जाता है और रूह तक पहुंच जाता है। मैं हूं आपकी लेट नाइट आरजे, आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम ज्ञानस्थली रेडियो का लेट नाइट हॉरर शो। अगली मुलाकात तक अपने अपनों से अपनी बातें अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि कुछ खामोशियां पूरी जिंदगी का इंतजार बन जाती है। नमस्कार।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
2: कुछ चीजें भारत की हो या फिर बाहर की, यानी कि एशियाई हो, अमेरिका में हो या फिर लंदन में हो, लेकिन अगर मेड इन इंडिया की बात हो तो वो अपने आप में एक अपनी पहचान बनाते हैं। मेड इन इंडिया का मतलब है कि हमारे भारत में ही जन्मी और पढ़ी हुई और उसके बाद में वहीं पर रमी हुई। आपने शायद सुना होगा मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया का मतलब होता है कि भारत की ही बहुत सारी ऐसी पहचान को अपने मुकाम पर पहुंचाना। मेड इन इंडिया यानी कि मुझे तो कुछ याद आ रहा है भाई मेड इन इंडिया से। शायद आपने ये वर्ड अपने आप ने कई बार सुना होगा, कई बार गानों के रूप में सुना होगा, कई बार आप लोगों ने ऐसे गुनगुनाता हुआ सुना होगा। यस ऑफ कोर्स, मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है मेड इन इंडिया हमारी अलीशा चेन्नई का, क्योंकि अलीशा चेन्नई का ये गाना मेड इन इंडिया आज भी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कोई खूबसूरत याद, हम कभी भी उसे निकालना नहीं चाहते हैं। रात के सफर में आज हम लेकर के आए हैं अलीशा चेन्नई। जी हाँ, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज लेकर के आई हूँ रात के सफर में अलीशा चेन्नई के बारे में। आपने खूबसूरत सा नाम कई बार सुना होगा, कई गाने भी सुने होंगे उनके, लेकिन आज मेड इन चाइना मेड इन इंडिया कैसे बनी हम आपको बताने वाले हैं। अलीशा चेन्नई का जन्म 18 मार्च 1965 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वे एक इंडियन पॉप एंड इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं, जिन्हें 90 के दशक में क्वीन ऑफ इंडी टॉप के नाम से जाना गया। इंडी टॉप इसलिए बोला क्योंकि उस समय इंडिया में नंबर वन टॉप कर रही थी हमारी अलीशा चेन्नई। धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे नाम मिलते गए, धीरे धीरे कहें कि उन्होंने अपना पैर इस तरीके से जमा लिया सिर्फ पॉप म्यूजिक में कि उनके जैसा कोई फिर और दिखाई नहीं। इसीलिए समय बढ़ता गया, उनका करियर आगे बढ़ता गया। एल्बम पे एल्बम जब रिलीज होने लगे तो बहुत सारे गानों की भरमार कोशिशों और उनकी उम्मीदों पर खरे उतरने के बाद में उन्हें एक एल्बम से नवाजा गया जिसका नाम था जादू। जादू से वाकई उनके जीवन में एक जादू सा आ गया और उन्हें एक प्यारा सा नाम फिर से दिया गया जो कि था इंडी पॉप, यानी हमारे इंडिया, हमारे भारत में ऐसा इंडियन पॉप गाने वाली फीमेल प्लेबैक सिंगर कोई और हो ही नहीं सकती थी, जिसका नाम आज हम बड़े सम्मान से लेते हैं अलीशा चेन्नई। तो आइए सुनते हैं उसके एक बहुत ही खूबसूरत से पॉप म्यूजिक में जाकर के इस गाने को। मैं आज पॉप म्यूजिक को इसलिए आपके सामने लेकर के आई हूँ क्योंकि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे गाने हैं हम सुनते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसे गानों को सुने जिसको सुनने पर हम सिर्फ सुने नहीं हमारे पैर भी थिरके। तो आज हम सुनेंगे भी और अपने पैरों को भी थिरकाएंगे अलीशा चेन्नई के साथ। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से एक गाने को।

अलीशा चनाय उनका सबसे चर्चित जो एल्बम था वो था मेड इन इंडिया 1995 था, जिसमें इंडी टॉप के क्षेत्र में ये जो एल्बम थी मेड इन इंडिया वो क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने 2005 में फिल्म बंटी और बबली के गीत कजरारे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। अब आप कहेंगे ये गाना कुछ सुना सुनाया सा लगता है। बिल्कुल, कजरारे को गाया था अलीशा चनाय ने, जो आज भी हर शादी में हर एक फंक्शन में जरूर से गाया जाता है। कजरारे गाना वैसे तो सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन उसको पॉप म्यूजिक में कन्वर्ट करने की जो कला थी वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा चनाय की ही खूबसूरत सी आवाज में थी। तो उन्होंने इस प्यारे से गाने को जब गाया तो अलीशा चनाय भी अपने आप में एक अद्भुत सी, जिसे कहते हैं ना कि वो कोशिशों के बाद में जब निखर के कोई चीज आती है, तो उन्हें लगा अरे ये गाना मैं ही गा सकती हूँ। बिल्कुल, संगीत शैली और प्रभाव के लिए ये मुख्य रूप से हिंदी पॉप और बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली का मिश्रण भी कहा जाता है। हिंदी पॉप इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कजरारे सिंपल सी लैंग्वेज में गाना था, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड के पॉप घरेलू शैली को अपनाया और इस प्यारे से मिश्रण को तैयार किया। 1990 के दशक में पॉप म्यूजिक में उन्होंने जो ब्रेक दिया वह भारतीय संगीत उद्योग में एक मायने में एक नया चैप्टर था, जो कि आज तक अगर अलीशा चनाय को किसी भी म्यूजिक कॉन्टेक्स्ट में बुलाया जाता है या फिर लाइव में बुलाया जाता है तो भी वो सबसे पहला गाना मेड इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया वाला ही गाना सभी को सुनाती हैं। वे बॉलीवुड में ब्लैक तो करती, लेकिन बड़ी फिल्मों के लिए भी उन्होंने अपने गीतों में आवाज दी। बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, जैसे बंटी और बबली के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि कजरारे गाना सिंपल लैंग्वेज में भी गाया जा सकता था, लेकिन अलीशा ने अपनी आवाज को एक अलग तरीके से उसमें पॉप म्यूजिक को मिक्सचर कर दे करके इसकी आवाज को नए गीतों में तराशा। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारे से गाने को, जो कि अलीशा का एक दूसरी एल्बम से है।

अलीशा ने अपने करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी। उनका पहला एल्बम जादू जो कि 1985 में था। 90 के दशक में उनका एल्बम मेड इन इंडिया जो कि सुपर हिट नहीं सुपर से सुपर हिट रहा, देश भर में प्रसिद्ध कर दिया गया। इस एल्बम का टाइटल जो रहा वो मेड इन इंडिया भारत में पॉप संगीत को प्रतीक बन गया। प्रतीक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पहले मेड इन इंडिया कभी नहीं कहीं कोई टैग नहीं था, लेकिन उनकी इस एल्बम के बाद में हर जगह पर मेड इन इंडिया का टैग भी बनने लगा। अलीशा ने कई सुपरहिट गाने दिए जैसे कजरारे, तिनका तिनका, ओ बेबी और बहुत सारे गाने जो कि मूवीज में अगर हम देखें उनका सफर जब शुरू हुआ तो बंटी एंड बबली, करम, दिल है कि मानता नहीं, खुददार और विजय पथ, तो जैसे गाने रुक रुक जो तब्बू की आवाज में अगर कोई गाना गा सकता था तो वो सिर्फ अलीशा चन्ना ही थी। रोचक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने शुरुआती दिनों में संगीतकार भप्पी लहरी के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। कई गानों के साथ में उनका जो सफर था वो बहुत ही खूबसूरत सा था। पॉप संगीत को भारत में लोकप्रिय बनाने में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है। मेड इन इंडिया गाने में मॉडल मिलिंग सोनल नजर आए थे। अलीशा आज भी सोशल मीडिया पर हमेशा से एक्टिव दिखती हैं। कहीं भी अगर लाइव कॉन्टेक्ट होता है या फिर लाइव प्रोग्राम्स के लिए वो बेहद प्रचलित संगीतकारों में सिंगर्स में जानी जाती हैं। सभी के दिल को मोह लेने वाली अलीशा बहुत ही प्यारी सी आवाज में उनके गाने को हम आज भी बेहतर रूप से सुनते हैं। तिनका तिनका जो कि करम मूवी 2005 में सुपर हिट से भी सुपर हिट हुई थी। अलीशा की सुरीली आवाज और सॉफ्ट टोन वाला ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

अलीशा चेन्नई का वैसे तो नाम अलीशा चेन्नई ही है, लेकिन उनका पूरा और असली नाम सुजाता चेन्नई था। सुजाता चेन्नई वो उनका व्यक्तिगत नाम यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर उन्हें स्टेज नाम दिया गया अलीशा चेन्नई। कई शोज के बाद में उनकी पर्सनालिटी को जो सूट करने लगा वो अलीशा, और उनके चाहने वालों ने, उनकी फैन फॉलोइंग ने उन्हें ये नाम दिया जो कि आज हम सभी इसी के नाम से उन्हें जानते हैं, जो कि है अलीशा चेन्नई। उनका जन्म 18 मार्च 1965 में अहमदाबाद गुजरात में तो हुआ ही, साथ ही साथ राष्ट्रीयता उनकी भारतीय ही है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की थी। उनके पिता का नाम मदन चेन्नई था जो क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए थे। वो कहते हैं ना कि जैसे बड़े होते हैं वैसे ही बच्चों में एक न एक खूबी आ ही जाती है। पिता जो क्लासिकल म्यूजिक से इतने ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर से ही शुरू हुई। उनकी शिक्षा अगर देखी जाए जो कि संगीत से जुड़ी हुई थी, वो उनके पिताजी के द्वारा ही यानी कि मदन चेन्नई से मिली। मदन चेन्नई ने भी कई बार उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। बाहर शोज करने के साथ साथ वो उनके साथ हमेशा से साथ में रहते थे। बेटी को आगे पढ़ाने की ललक, उन्हें आसमान तक पहुंचाने की जो एक उम्मीद और कहते हैं ना कि जो एक उत्साह होता है, वो उनमें भरपूर था। बस तब क्या था, एक पिता का साया और एक पिता का साथ दोनों मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। इसी तरीके से अलीशा चेन्नई का सफर संगीत में शुरू हुआ। अलीशा ने 1980 के दशक की शुरुआत में बहुत सारे ऐसे गाना गा करके शुरू की गई थी। उनके करियर की शुरुआत संगीतकार पप्पी लहरी के साथ उन्होंने बॉलीवुड में सबसे पहला मौका जो कि उन्हें जादू की एल्बम से मिला था, उसके बाद में एक से एक उनकी एल्बम को रिलीज करते हुए देखा गया। तो आइए एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि विजयपथ की मूवी से है, 1994 में आई हुई विजयपथ मूवी का रुक रुक रुक अरे बाबा रुक, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

फिल्म फेयर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2005 में कजरारे गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिकाओं को के रूप में उन्हें दिया गया, जिन्हें क्वीन ऑफ इंडी पॉप की उपाधि भी दी गई, क्योंकि उन्होंने भारतीय पॉप को मुख्य धारा में लाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ में कजरारे जो कि सिंपल से गाने को भी उन्होंने अपनी शैली में गा करके आज भी सभी को मुग्ध करने वाली ये गाना हम सभी के जहन में है, इसीलिए उन्हें सम्मान और पुरस्कार की हकदार तो वो बनती ही हैं। अलीशा का संगीत भारतीय और पारसी पॉप धुनों का एक मिक्सचर भी है। उनके गीतों में मॉडर्न बीट्स, डिस्को रिदम और कैची मेलोडी होती है जो हम सभी को एक तरह से मनमुग्ध कर देती है। उनकी आवाज नाजुक, स्टाइलिश और यूथफुल मानी जाती है। यूथफुल इसीलिए क्योंकि आज के नौजवान भी या पहले में भी सभी लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते थे। अलीशा जब ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी तब भी उनके शोज उनके लिए इतने ज्यादा मायने रखते थे। कभी कभी एक्टिवेट शो में भी वो दिखाई देती थी। वे सोशल मीडिया पर मौजूद तो हैं, इंस्टाग्राम पर अपने पुराने और नए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की तैयारी भी करती हैं और साथ ही साथ में कई ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने बात भी करी। लेकिन कहा जाता है कि हर एक पर्सनालिटी के पीछे कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर कंट्रोवर्सीज तो होती है। वो कहते हैं ना, जिनके पीछे उपलब्धियां होती हैं, जिनके नाम होते हैं, उनके साथ में कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी होती हैं। सब बताएंगे लेकिन एक प्यारे से खूबसूरत सॉन्ग के बाद।

कहते हैं ना कि जब कोई उपलब्धि हो जाती है तो उसको छूने के लिए कई बार ऐसे होता है कि हम पहुंच तो जाते हैं लेकिन पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारा साया और साथ नहीं छोड़ती हैं। बस ऐसी ही कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी अलीशा चनाय के साथ थी, लेकिन कहते हैं कि जो सरल और जिनकी वाणी बहुत ही मधुर होती है वे भी अपनी बात से लोगों को मनवाने के लिए अपनी बात को मनवाई लेते हैं। वैसे ही लाख कॉन्ट्रोवर्सीज क्यों न हो, लेकिन अलीशा ने अपनी प्यारी सी आवाज को लेकर के कई ऐसे मामलों को, कई ऐसे मुद्दों को पीछे छोड़ा और साथ ही साथ ऐसे कई संगीतकारों के साथ भी बैठ कर के जिनके साथ उनका कभी विवाद भी हुआ होगा पर उनके पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलना। साथ ही साथ जब उनके साथ में बैठ कर के वो रिकॉर्डिंग करती थी, उनके जाने के बाद भी जिनसे उनका विवाद हुआ होता था वे भी उनकी तारीफ किया करते थे, कारण उनका सरल और प्यारा सा नेचर, उनकी प्यारी सी आवाज। तो ये होता है जो कि उपलब्धियों को छूने के बाद भी किसी के अंदर कोई घमंड बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ अब मैं आप सुनाऊंगी एक प्यारा सा गाना जो कि डॉन मूवी का है 2006 में, आज की रात, जो कि अलीशा चनाय की आवाज में। आइए सुनते हैं।

तो आज के सफर में अलीशा चनाय के इस प्यारे से बहुत से संगीत के सफर को हमने आपके साथ में शेयर किया, जिसमें म्यूजिकल स्टाइल के साथ में कंटेंट स्टाइल, और जैसा कि आप सभी को पता है कि अवार्ड्स, रिकॉर्डिंग्स, हर एक के बारे में हमने आपको बताया। कहते हैं कि प्लेबैक सिंगर का जो करियर होता है वो सिर्फ यूं ही कह देना आसान नहीं होता है। कई ऐसी चीजों के साथ में उन्हें सफर करना पड़ता है जो कि उनकी समझ से कभी कभी परे हो जाती हैं।